किसी गांव से एक आदमी गुजर रहा था, उसके पास में रहे होंगे 19-20 ऊंट। ऊंट लेकर के जा रहा था, पुराना जमाना, राजस्थान की बात है, ऊंटों को लेकर के चला जा रहा था। रात हो गई तो उसे ठहरना पड़ा। जैसे ही रस्सियां निकाली थैला से, झोला से, तो 18 ऊंटों को तो बांध दिया, पर एक ऊंट रह गया। क्योंकि या तो उसे लगा कि हम रस्सी ला नहीं पाए, या रस्सी कहीं गिर गई। अब वो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि इस ऊंट को बांधा कैसे जाए। वेद प्रकाश ध्यान से सुनना, वो आदमी सामने एक झोपड़ी में आदमी रहता था, पड़ोसी सराय में रहने वाला एक झोपड़ी वाला आदमी था। उसे लगा कि इस आदमी के पास जाएं, बूढ़े आदमी के पास, शायद ये कोई रस्सी दे दे, ऊंट को बांध दिया जाए, वरना बड़ी दिक्कत होगी, रात भर ये भी खड़ा रहेगा, हमको भी रखवाली करनी पड़ेगी, और सो नहीं पाएंगे तो दिन में चलने में दिक्कत होगी। तो वो पड़ोसी के पास गया, जहां रुका था उस झोपड़ी में गया, तो प्रार्थना की कि क्षमा करो, मैं एक यात्री हूं और मैं 19 ऊंटों का जत्था लेकर के जा रहा हूं, और मेरे पास 18 ऊंटों की रस्सी तो है, लेकिन एक रस्सी गिर गई, तो अगर आप बुरा ना मानो तो सुबह तक के लिए मुझे रस्सी दे दो, कल मैं जाऊंगा तो रस्ते में कहीं से खरीद लूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रस्सी नहीं, मैं तो बहुत फक्कड़ आदमी हूं, और रस्सी क्या, मेरे पास तो एक कपड़ा ही है, वो मैंने पहन रखा है, वरना मैं कपड़ा दे देता, पर अगर मैं कपड़ा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, एक ही धोती है मेरे पास और रस्सी तो दूसरी है नहीं। तो इस आदमी ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हुई, लगता है मुझे रात जागना पड़ेगा, लगता है मेरी रात आज व्यर्थ जाएगी। तो उस बूढ़े आदमी ने बुला के कहा, इधर आओ, सुनो, तुझे पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो बोले मैं करूं क्या, बोले कुछ करने जैसा है, तू एक काम कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे ही नाटक कर, झूठ मूठ का एक खूंटा गाड़, उसके गले में हाथ लगा ताकि उसे लगे कि रस्सी बांध रहे, और झूठ मूठ के खूंटे के पास जाकर झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक कर, ये तुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने कहा ऐसे में हो सकता, बोले तू करके तो देख, ट्राई अगेन। वो आदमी आया वापस, उसने वही काम किया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ की गले में हाथ लगाया, रस्सी जैसे बांधने का नाटक किया, और उसने जैसे ही रस्सी से खूंटा में बांधा और दबकार करके ऊंट को कहा कि बैठ जा, ऊंट बैठ गया। इसको लगा कि बहुत अच्छा उपाय, बड़ा प्यारा उपाय, और पूरी रात आराम से गुजर गई। सुबह हुआ तो बाकी 18 ऊंटों को उसने रस्सी खोली, रस्सी थैले में फिर से भरी। अब 19 में ऊंट को वो एक घंटे तक उठाता रहा, वो उठे ही ना। अब ये आदमी बड़ा परेशान, ना वो चले ना वो उठे। तो इस आदमी को लगा कि हो सकता है जो बूढ़ा दादा रहता है झोपड़ी में, वो कोई तंत्र मंत्र जानता है, और उसने रात को कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता कर दिया है कि अब ऊंट उठ नहीं रहा। तो वो भागा भागा गया कि क्षमा करो, मैं रात को भी आया था, मैं सुबह फिर आ गया। तो बूढ़े दादा ने कहा कि क्यों आए हो, बोले बड़ी बात तो कुछ है नहीं, आपने रात को जिस ऊंट को झूठ मूठ की रस्सी बांधने को कहा था मैंने किया, और आपकी कृपा से काम तो सफल रहा, लेकिन अब एक नया लफड़ा फंस गया। बोले क्या, मैं सुबह से 2 घंटा हो गया ऊंट को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उठ नहीं रहा। तो बूढ़े दादा ने कहा कि अरे मूर्ख, अरे पहलवान, तूने जैसे रस्सी बांधी थी वैसे खोल तो। तो उस आदमी ने कहा कि जब बांधी नहीं थी तो खोलूं क्या, बोले यही तो मैं कहना चाहती हूं, जो बांधी थी वही खोल दे। और आदमी वापस आया, उसने ऊंट की रस्सी खोली, और ताज्जुब यह रहा कि ऊंट उठ भी गया और चला भी। अब बताओ, रस्सी थी भी नहीं और रही रात भर, रस्सी खोली भी नहीं, नहीं खोली भी नहीं और ऊंट खुल गया। यही वेद प्रकाश तुम्हारा और हमारा हाल है, और पंचकुला के पागलों यही तुम लोगों का हाल है। हमने झूठ मूठ के रिश्तों को अपना रिश्ता बना लिया है, तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये रिश्तों की डोर को तोड़ दी जाए, इस दुनिया में कोई भी बंधन है नहीं है, ना किसी से कोई बंधन है, हमने मान लिया तो बंधन है। तो तुमने पूछा कि बंधन से मुक्त कैसे हूं, एक ही उपाय है, अगर तुम कहीं बंध गए हो तो तुम मुक्त होना भी प्रारंभ करो कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसलिए अक्सर हम एक गीत की लाइनें बहुत बोलते हैं, नाता एक राम जी से,

अपना संबंध बनाना ही है, नाता जोड़ना ही है, तो वेद प्रकाश राम जी से नाता जोड़ो। राम जी से नाता जोड़ोगे सब अपने हो जाएंगे। तुम संसार से नाता जोड़ोगे फुटकर फुटकर फुटकर बनाते ही रहोगे अपने, और एक दिन सब ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन अगर तुम राम जी से नाता जोड़ लोगे तो तुम्हें दुनिया को अपना बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और आपने पूछा कि बंधन की मुक्ति का उपाय क्या, बंधन की मुक्ति का यही उपाय है। फिर भी हम एक सूत्र दे देते हैं, अगर तुम लोग हमारी आज की ये कथा सुनोगे तो शायद बहुत लोग सन्यास लेने की सोच लें। तो हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाह रहे, वरना तुम्हारी लुगाइयां हमारे ऊपर FIR करेंगी कि बागेश्वर बाबा की कथा सुनने गए थे और बाबा ने छुड़वा दिया घर बार। नहीं नहीं नहीं, हम आपको एक उपाय और दे सकते हैं, अगर हमारी अब तुम मानो तो। तुम घर में भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, लुगाई के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, बच्चों के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, संसार के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, महात्मा के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, अपने निजी लोगों के भी रहोगे और सबके रहोगे। अगर वो उपाय जानना चाहते हो तो एक सूत्र है जिंदगी में उतार लेना, तुम तन से संसारी हो जाओ मन से सन्यासी हो जाओ। बहुत सटीक सूत्र है, तुम तन से तो संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। तुम्हारा मन ऐसा रहे जैसे कोई सन्यासी चला आ रहा हो, माथे पर तिलक हो या ना हो पर वाणी में उसकी याद जरूर होनी चाहिए, गले में माला हो या ना हो कोशिश पर होनी चाहिए, पर ना भी हो चल जाएगा पर याद रहे, हिंदुत्व फीका नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पागलो, तुम अगर तन से संसारी मन से सन्यासी रहोगे जीवन तुम्हारा सुधरा रहेगा। एक बात और जो कहने जैसी है, आपने पूछा है कि बंधन से मुक्त कैसे हो, देह को मैं मत मानो, तैमे तोर, तोर में माया।

ऐसे ही संसार है, अगर तुम संसार को अपना मान लोगे तो तुम अहमता में भर जाओगे, झूठी दुनिया के चक्कर में फंस जाओगे। संसार को तुम सराय समझो, बस स्टैंड, यात्री आते हैं जाते हैं, यही शरीर का हाल है, आएंगे और जाएंगे, यही इस दुनिया का हाल है, जो आया है वो जाएगा। आया है सो

0: धर्मी सिंहासन चढ़े ओ पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात।
1: एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे, उनके गांव में दिया नहीं जलता था, लाइट नहीं थी, पुराना जमाना, 80-90 साल पुरानी बात। तो गांव भर क्या करता था, पूरी रात जागता था और हाथ में तसला लेता था जैसे ही शाम होता था। और लोग पूछते थे एक दूसरे से, क्या कर रहे, बोले चलो अंधेरे को ढोए, मकान में जाएं, तसले में ऐसे ऐसे भरें और बाहर फेंकें, फिर भरें, फिर पूरी रात यही करते थे। और सुबह आते ही जैसे ही सूर्योदय होता था, अरे भैया भग गया भग गया भग गया, फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया। ठठरी के बरे क्या हलवा फेंका, अरे वो तो सूर्योदय आते ही अपने आप अंधेरा भाग जाता है, लेकिन उनको लगता था कि हम भगा रहे तो अंधेरा भागा। पूरी रात यही हुआ। इतने में एक लड़की की शादी हुई, लड़की थी पंचकुला की, नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई की शादी हुई उस गांव में। अब रात भर फिर से घर वाले जागने लगे तो उस बहू ने पूछा, ये रात को लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? तो पति ने कहा, सब लोग अंधेरा ढोने के लिए जा रहे हैं, अंधेरे को भगाने के लिए जा रहे हैं। लड़की बोली, बड़े पागल हो, चूंकि पंचकुला की लड़की होशियार तो होती ही है, बड़े पागल हो, कहीं अंधेरा ढोया जाता है? पति बोला, चुप रहे, हमारे दादा परदादा करते रहे, तू आके मुंह चला रही। वो कुछ ना बोली, बेचारी समझदार तो थी। दूसरे दिन उसने कुछ नहीं किया, चार बत्ती बनाई, थोड़ा सा घी डाला और जैसे ही अंधेरा हुआ सो दिया को जला दिया, और जैसे ही जलाया आ हा हा, पूरा घर खुश हो गया, वाह भैया वाह, गजब की बहू आई है, हम लोगों को अंधेरा नहीं ढोना पड़ रहा, अंधेरा भाग गया। दूसरे दिन गांव वालों ने पूछा, भैया आज तुमने अंधेरा नहीं ढोया, आवाजें नहीं आई? बोले, हम तो भैया सोते रहे, बहू ऐसी आई कि वो ऐसा चमत्कार करती है कि अंधेरा चला जाता है। लोगों ने बहू से पूछा, मंत्र बताओ? अरे बोले, मंत्र वंत्र कुछ नहीं है, दिया जलाओ अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही तुम अपने अंदर में अज्ञान का जो अंधेरा रख रखे हो उसको लेकर टेंशन मत लो, हनुमान जी के ज्ञान के प्रकाश का दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। बोलो सीताराम। अब संकट आ गए तो क्या करें? आहा।

का भजन करेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसके संकट कट जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो संकट काटने के लिए, संकटों को मिटाने के लिए हनुमान जी देखो क्या है। हमें एक भजन याद आ गया, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हम तो फ्री हैं। किसी ने कहा मरना क्यों चाहते? अरे जिन नेत्रों से रघुनाथ जी को ना देख पाए वो शरीर तो छोड़ देना चाहिए, जीने से क्या फायदा। और कितनी अद्भुत बात, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना हो उसका जीवन किसी काम का है क्या? ऐसे समझो, नदी हो पर नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। अच्छा, कोई व्यक्ति या स्त्री बहुत सुंदर हो लेकिन नाक कटी हो, किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, तीसरी बात, मिठाई हो पर मीठी ना हो, मिठास ना हो तो क्या उसे मिठाई कहोगे? बोलो हाँ या ना। अच्छा, चौथी बात, रात हो लेकिन अंधेरा हो ना तो क्या उसे रात कहोगे? हाँ या ना। नहीं, विद्यालय हो पर विद्या ना पढ़ाई जाती हो तो क्या विद्यालय कहोगे? भोजनालय हो पर भोजन ना बनता हो तो क्या उसे भोजनालय कहोगे? मंदिर हो पर मूर्ति ना हो तो क्या प्रणाम करोगे? नहीं। उसी प्रकार इन

0: हो लेकिन इंसानियत ना हो तो क्या इंसान कहोगे? नहीं। उसी प्रकार इंसानियत हो पर भगवान की भक्ति ना हो तो क्या उसे इंसान कहोगे? नहीं। जैसे पानी के बिना नदी का महत्व नहीं, शंख के बिना आरती का महत्व नहीं, पुरुष के बिना स्त्री का और स्त्री के बिना पुरुष का महत्व नहीं, पुत्र के बिना मकान का महत्व नहीं, गुरु के बिना शिष्य का महत्व नहीं, भगवान के बिना भक्त का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार भक्ति के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। हैं? भक्ति नहीं तो जीवन किस काम का? भक्ति जीवन में नहीं आवे प्रिय श्रोताओ तो जीवन मिलना ना मिलना, अच्छा तुम क्या इसीलिए पैदा हुए हो कि जन्म लिया बड़े बड़े भाई पड़े बड़े और पढ़े पढ़ने गए, बीए की नौकरी की लुगाई मिली, बच्चे भाई और मर गए, क्या इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ? ना ना ना, केवल इसलिए जन्म नहीं हुआ। बोले फिर किस लिए जन्म हुआ? संत कहते हैं मेरे पागलो, भगवान ने जन्म तो भगवान को पाने के लिए जन्म दिया है। जीते जी भगवान को जान जाओ, जीते जी भगवान को पा जाओ। अब तुम लोगों ने वृथा जीवन बहुत खो दिया भैया, बहुत समय गवा दिया, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए, व्यर्थ गवा रहे हो, सो सो कर गवा रहे। कुछ लोग खा खा कर गवा रहे हैं, अपना खा रहे, दूसरे का भी खा रहे और तीसरे का भी खा रहे, घर भर का खा रहे, समाज का खा रहे, देश का खा रहे, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, फिर भी खा रहे, फिर भी खा रहे। उनसे कहो जो खाना चाहिए वही खाओ, नहीं, आदमी एक ऐसा है। अच्छा तुम कभी विचार करना, एक बात बताओ, शेर कितने भी दिनों का भूखा हो, एक महीने का दो महीने का, तुम उसके सामने पिज्जा रख दो खाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। अच्छा गाय कितने भी दिन की भूखी हो, मांस रख दो क्या खाएगी? बोलो बोलो। नहीं, शेर पिज्जा नहीं खाता, गाय गंदा भोजन नहीं खा सकती, और आदमी कुछ भी धर दो सब खा जाता है। एक आदमी ऐसा है कुछ भी धर दो सब खा जाता है, और ज्यादा समझाओगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। हाँ, ज्यादा उसे ज्ञान दोगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। आदमी बहुत विचित्र है, इसलिए हम एक प्रार्थना तुम लोगों से करना चाहते हैं। आज हम एक बात पढ़ रहे थे, है तो थोड़ी सी कड़वी पर बुरी लगे तो लगने दो, हमें क्या करना। आजकल सांप बेरोजगार हो गए, सांप बेरोजगार हो गए, तो हमने सांपों से पूछा, पंचकुला का ही था हम, हाँ, सांप तो पंचकुला में ही पाए जाते हैं। हमने सांपों से पूछा, आजकल तुम काम धाम नहीं करते? सांप बेरोजगार हो गए क्योंकि कुत्ते काटने लगे, और कुत्ते भी आजकल काम नहीं करते हैं क्योंकि आदमी आदमी के तलवे चाटने लगे। हाँ, सांप काटते नहीं है, बेरोजगार हो गए। हमने पूछा क्यों नहीं काटते? बोले आदमी ही इतना आदमी को काट रहा है कि हमारे जहर की जरूरत ही नहीं। सांप कह रहा है कि हमारे जहर की जरूरत नहीं, आदमी ही आदमी को काट रहा है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, तुम अपने बच्चे को बीए पढ़ाओ, एमए पढ़ाओ, पीएचडी पढ़ाओ, डीएड करवाओ, बीएड करवाओ, शिक्षा में भेजो, कलेक्टर बनवाओ, आईपीएस बनाओ, पर एक प्रार्थना है, उनको सबसे पहले इंसान बनाओ। भैया तुम्हारी बेटी या बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, लेकिन अगर वो इंसान नहीं बन पाया तो उसकी पढ़ाई लिखाई नौकरी किसी काम की नहीं है। तुम्हारी बेटी या बेटा तुम्हें छोड़कर चले जाए, उसे संस्कार ना दे पाए कि तुम्हारे साथ रहें, उसकी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत किसी काम की नहीं है। तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ पर उनको संस्कार देना मत भूलो।
1: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: पूरे देश में छाई गणेश उत्सव की रौनक, पंडालों में बप्पा के अनोखे रूप के दर्शन को उमड़े भक्त, हैदराबाद में कैंडी से बनी बप्पा की मूर्ति तो सूरत में साइबर विघ्नहर्ता पधारे। अंबानी फैमिली के गणपति सेलिब्रेशन में सितारों का मेला, सलमान, सचिन, बाबा रामदेव समेत शामिल हुई कई जानी मानी हस्तियां। गणपति पंडालों में भक्तों की भारी भीड़, लालबाग चौराहा के दरबार में पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, विधि विधान से की दर्शन पूजन। एशिया कप जीतकर घर लौटी चैंपियन बेटियां, दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का स्वागत। भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच आज, संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को आज मिल सकता है प्लेइंग 11 में मौका।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर गणेशोत्सव का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल, विधि विधान से उतारी गजानन की आरती। मुंबई में अंबानी परिवार में हुई बप्पा की स्थापना, फिल्मी हस्तियों समेत सियासी हस्तियों ने की शिरकत। पत्नी के साथ सुनील शेट्टी भी पहुंचे एंटीलिया, सचिन तेंदुलकर भी परिवार के साथ बप्पा के स्वागत के लिए पहुंचे। नीता अंबानी ने किया मेहमानों का स्वागत, ऑरेंज साड़ी में बेहद सुंदर लगी नीता अंबानी। कथावाचक जया किशोरी भी बप्पा का स्वागत करने पहुंची एंटीलिया। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने भी अपने घर में की गणपति की स्थापना, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें की शेयर। अभिनेता रामचरण ने भी विधि विधान से अपने घर में की बप्पा की स्थापना, इंस्टा पर तस्वीरें की साझा। तस्वीरों में पूरी श्रद्धा के साथ बप्पा की आरती करते नजर आ रहे हैं अभिनेता, परिवार के अन्य सदस्य भी हैं मौजूद। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने हर साल की तरह इस साल भी परिवार संग की गणपति स्थापना, फैंस के साथ तस्वीरें की शेयर। तस्वीरों में पूरे परिवार के साथ पारंपरिक लिबास में नजर आ रही हैं अभिनेत्री, अपने हाथों से कर रही हैं बप्पा का श्रृंगार। मनोरंजन की दुनिया के सितारे भी गणपति उत्सव के रंग में रंगे नजर आए, कलाकारों में गणेश उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह। बॉलीवुड की मशहूर एक्टर काजोल ने बप्पा के दर्शन के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की शेयर। सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जिसमें वो गणपति की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में सुनील शेट्टी हाथ जोड़कर बप्पा का आशीर्वाद मांगते दिख रहे हैं। अभिनेता तुषार कपूर ने मुंबई में अपने घर के पारंपरिक तरीके से बप्पा का स्वागत किया। इस मौके पर तुषार कपूर पारंपरिक परिधान में नजर आए और उन्होंने अपने परिवार के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और आरती की। अभिनेता अर्जुन बिजलानी ने भी अपने घर किया बप्पा का स्वागत, अपने फैंस के साथ तस्वीरें की शेयर। सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें शेयर की जिसमें वे अपने घर गणपति को लाते हुए और अपने परिवार के साथ नाचते गाते दिख रहे हैं। एक्टर करण वाहे ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन के पलों का वीडियो शेयर किया, अपने फैंस को दी गणेश चतुर्थी की बधाई। ऋत्विक धनजानी ने मिट्टी से बनी इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दीवाना बनाने वाले रोहित सराफ ने भी गणपति उत्सव की तस्वीरें साझा की, बप्पा की विशाल मूर्ति के सामने खड़े नजर आए। अभिनेता नील नितिन मुकेश के घर भी पधारे बप्पा, परिवार संग विधि विधान से की पूजा अर्चना, सोशल मीडिया पर तस्वीरें की शेयर। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के यहां भी हुई बप्पा की स्थापना, तस्वीरों में बप्पा की आरती करते दिखे सचिन। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया के जयकारों की सुनाई दी गूंज, आरती में पूरा परिवार हुआ शामिल। अभिनेत्री अनन्या पांडे भी पूरी भक्ति के साथ बप्पा की आराधना करती दिखी, विधि विधान से की बप्पा की स्थापना। तस्वीरों में चंकी पांडे के साथ परिवार के अन्य सदस्य भी आए नजर, अनन्या ने फैंस को दी गणेश चतुर्थी की बधाई। अभिनेता नाना पाटेकर के घर हुई बप्पा की स्थापना, विधि विधान से बप्पा की आरती करते दिखे अभिनेता। नाना पाटेकर के घर हर साल पूरी श्रद्धा के साथ होती है बप्पा की स्थापना, परिवार के अन्य सदस्यों ने भी की बप्पा की आरती। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी परिवार के साथ बप्पा को लाए वो अपने घर, गणेश जी की स्थापना कर सुख शांति के लिए दुआ की। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने भी अपने घर पर बप्पा की स्थापना और पूजा की, सभी लोगों को दी पर्व की बधाई। फिल्म अभिनेत्री हंसिका मोटवानी के घर भी पधारे बप्पा, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें।

0: हर साल की तरह इस साल भी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी के घर हुआ गणपति बप्पा का भव्य आगमन। सोनाली ने इस साल का गणेशोत्सव किसानों को किया समर्पित। इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा बैलगाड़ी पर विराजमान है। नागपुर के पंडालों में भी हो रही बप्पा की स्थापना, विधि विधान से की जा रही है गणेश जी की पूजा। एक से बढ़कर एक बप्पा की प्रतिमाओं से सज रहे हैं नागपुर के बाजार। बप्पा की छोटी सी प्रतिमा से लेकर कई फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है आकर्षण का केंद्र। बप्पा की मूर्ति के साथ तरह तरह के मूषक भी भक्तों को लुभा रहे हैं, जमकर हो रही है खरीदारी। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर वर्षा में गणेश स्थापना, पत्नी अमृता फडणवीस के साथ की बप्पा की पूजा। नागपुर में गणेश उत्सव की धूम, ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ भक्त अपने लाडले बप्पा को ला रहे हैं घर। पर्व की खुशियां बांटने सीएम फडणवीस के घर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, भक्तिभाव से की बप्पा की आरती। सीएम की पत्नी ने गृहमंत्री का गर्मजोशी से किया स्वागत, सीएम ने बप्पा की मूर्ति की भेंट। नागपुर में केंद्रीय मंत्री गडकरी के घर भी पधारे बप्पा, परिवार संग की बप्पा की आरती, देश की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। महाराष्ट्र के लालबाग चौराजा के दरबार की तर्ज पर दिल्ली के पीतमपुरा में भी सजा लालबाग के राजा का भव्य दरबार।
1: लालबाग के राजा के
0: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया भगवान गणेश की प्रतिमा का अनावरण, भक्तिभाव से की बप्पा की पूजा। बप्पा के आगमन पर 2100 शंखनाद के साथ दिल्ली में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ एक ही समय में बजाए गए 2100 शंख। पंडितों के साथ साथ महिलाओं और बच्चों ने भी बजाया बप्पा के स्वागत में शंख, सभी ने मिलकर की बप्पा की आरती। बप्पा के दरबार की खूबसूरती देखने बड़ी संख्या में बप्पा के भक्त पहुंच रहे हैं पंडाल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गणेश चतुर्थी पर गणपति को लगाया गया 551,000 मोदकों का भोग। गणेश चतुर्थी पर भक्तों ने दिखाया गजब का उत्साह, मंदिर परिसर में ढोल की थाप पर थिरकते नजर आए बप्पा के भक्त। स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर सजाया गया गणपति का दरबार, महाआरती के बाद भक्तों को वितरित किया गया प्रसाद। आने वाले 10 दिनों तक भक्तों को बांटा जाएगा ये प्रसाद, बड़ी संख्या में बप्पा के दर्शन को आ रहे हैं भक्त। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित सिद्धिविनायक गणेश जी का ये मंदिर विक्रमादित्य कालीन है और अब करीब 2500 साल पुराना है। गणेश चतुर्थी पर हैदराबाद में दिखा बप्पा का अलौकिक रूप, 24 कैरेट गोल्ड से बनी बप्पा की अद्भुत प्रतिमा। गणेश प्रतिमा पर 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग है और 3.8 लाख से ज्यादा अमेरिकन डायमंड से इसे सजाया गया है। करीब 48 किलो वजनी इस प्रतिमा को तैयार करने में 8 महीने का समय लगा और 8 कुशल कारीगरों ने मिलकर इसे तैयार किया है। नासिक की एक मिठाई की दुकान पर सजे गोल्ड कवर वाले मोदक, 27,000 रुपए प्रति किलो है इसकी कीमत। सोने और चांदी से सजे मोदक बने चर्चा का विषय, बड़ी संख्या में लोग मोदक देखने आ रहे हैं मिठाई की दुकान। गणेश चतुर्थी के मौके पर हैदराबाद के बीजेपी ऑफिस में भी हुई गणेश जी की स्थापना। पार्टी से सभी कार्यकर्ता और नेता बप्पा की आरती में हुए शामिल। देश की उन्नति के लिए बप्पा से मांगा वरदान। पार्टी ऑफिस में बप्पा की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर पर्यावरण संरक्षण का भी दिया संदेश। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर विशाखापट्टनम में ओडिशा के गवर्नर ने किए सस्य गणपति के दर्शन। 21,000 पौधों का उपयोग करके तैयार की गई है सस्य गणपति की प्रतिमा। भगवान गणेश के इस अनूठे भव्य स्वरूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं यहां भक्त। महाराष्ट्र के साकीनाका में सजा विघ्नहर्ता गणपति का दरबार। बप्पा का अलौकिक रूप देखने बड़ी संख्या में आ रहे हैं बप्पा के भक्त। इस पंडाल में गणपति बाप्पा विट्ठल के अवतार में है और मानव गरुण भी है विराजमान। बप्पा की प्रतिमा लगभग 33 फीट की है और इसका संतुलन गजब का है। बप्पा का एक पैर के बूते मानव गरुण पर सवार है। गणेश चतुर्थी पर जामनगर में आयोजित की गई है लड्डू ईटिंग प्रतियोगिता। बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में शामिल हुए बप्पा के भक्त। इस वर्ष प्रतियोगिता में कुल 55 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसमें 30 महिलाएं 20 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। पिछले 18 वर्षों से आयोजित हो रही है प्रतियोगिता। कोल्हापुर में शाही ठाट बाट के साथ हुआ गणेशोत्सव का आगमन। न्यू पैलेस में घुड़सवार दस्ते के साथ निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा। बजाई गई पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन। छत्रपति घराने के सभी सदस्यों ने पूरे विधि विधान से की बप्पा की पूजा अर्चना। अमरावती में नेता नवनीत राणा के घर भी हुए बप्पा का आगमन। विधि विधान से की बप्पा की स्थापना। घर में देखने को मिला भक्तिमय माहौल। परिवार के सभी सदस्य रहे मौजूद। पूरे उत्साह के साथ की गई बप्पा की आरती।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
7: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए गणपति महोत्सव का पावन समय चल रहा है और इसीलिए आज हम गणेश जी की महिमा का एक विशेष एंगल आपको बताने वाले हैं। गणेश जी का वास्तु के साथ क्या संबंध है? देखिए भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं बल्कि विघ्न नाशक, दोषों को बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि प्रदाता हैं। भगवान गणेश की कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश हो जाता है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई घर और कार्य स्थल के वास्तु दोष भगवान गणेश की सही मूर्ति लगाने से नष्ट हो सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि भगवान गणेश के चित्र का, मूर्ति का प्रयोग कैसे करें, ये आप जान लें और ये आप समझ लें। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश की विभिन्न रंग की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है और इन रंगों की अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग प्रतिमाएं घर के विशेष स्थान में लगाने से वास्तु दोष का नाश होता है। आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर आप सही तरीके से सही रंग की, सही आकृति की गणपति की मूर्ति लगाएंगे तो वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं तो उसके नियम क्या हैं? याद रखिए, गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां अपने घर में ना रखें और पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी ना रखें। गणेश जी की वही प्रतिमा घर में स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड़ बाईं तरफ हो, लेफ्ट साइड में हो, और बहुत बड़ी मूर्ति न रखें। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल यानी आधे फिट से ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र सर्वोत्तम माना जाता है, इसको स्थापित करना सबसे ज्यादा शुभ है। और आप अपने घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा करिए और गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित मत करिएगा। वैसे तो गणपति की कृपा से आप किसी भी दोष को दूर कर सकते हैं, वो विघ्न नाशक हैं, संकट हरने वाले हैं। वास्तु दोष कैसे गणेश जी की कृपा से दूर होगा? बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाइए या इसी रंग का चित्र लगाइए। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रहण मत करिए, एक साथ बहुत सारी गणपति की मूर्तियां ना लगाएं, एक स्थान पर केवल एक मूर्ति रखें। शयन कक्ष में, बेडरूम में वैसे तो किसी भी भगवान की मूर्ति न रखें, लेकिन गणपति की मूर्ति बिल्कुल भी आपको बेडरूम में नहीं रखनी है। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही आप गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं, बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति न लगाएं। अपने घर के पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र लगाएं। रोज सवेरे पूजा में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, दूब अर्पित करें। घर में बहुत सारे गणपति अगर आप लगाना चाहते हैं तो तमाम गणेश जी की मूर्तियां लगाने से बेहतर है कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगाएं या जगह जगह पर लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं। स्वस्तिक गणपति का प्रतीक माना जाता है। अगर आप ऐसा भी करें तु आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और घर में सुख शांति और समृद्धि आ सकेगी। किस तरह के गणेश जी की मूर्ति कहां लगाई जाए या किस रंग का चित्र गणपति का कहां लगाया जाए जिससे समस्याएं और वास्तु दोष दूर हो जाएं। गणेश जी की धातु की प्रतिमा अगर मेटल की प्रतिमा है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, तो इसको लिविंग एरिया में लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर गणपति की मेटल की मूर्ति लिविंग एरिया में लगाते हैं तो इससे घर के लोगों में आपसी प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। सफेद रंग के गणपति की छोटी सी प्रतिमा या चित्र धन स्थान पर रखें, निरंतर धन आता रहेगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा या पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति पूजा स्थान पर रखेंगे। ऐसा करने से हर तरह की विघ्न बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति या हरे रंग के गणेश जी का चित्र पढ़ने या काम करने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। देखिए, जब आप गणपति की मूर्ति या चित्र लगाते हैं घर के अंदर की तरफ, यानी गणपति की पीठ बाहर की तरफ होगी और चेहरा अंदर की तरफ होगा, यानी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको गणपति के दर्शन होंगे। इस तरह से अगर आप अंदर की तरफ गणपति की मूर्ति लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणपति का चित्र या मूर्ति लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। मेन डोर पर देवी देवताओं का चित्र बिल्कुल मत लगाइए, उचित नहीं है। मेन डोर पर आप कोई प्रतीक, कोई चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे ओम लिख के लगा सकते हैं, जैसे स्वस्तिक बना सकते हैं, जैसे शिव जी का त्रिशूल लगा सकते हैं। कोई चिन्ह या कोई प्रतीक, या सबसे अच्छा होगा कि मेन डोर के दोनों तरफ राइट भी और लेफ्ट भी एक एक स्वस्तिक लाल रंग का बना के लगा दिया जाए या लाल रंग के स्वस्तिक का चित्र वहां लगा दें, तो ऐसा करने से घर में शुभता ज्यादा आएगी। अगर नियमित रूप से आप धन का आगमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निरंतर आपके पास धन आता रहे, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिएगा। तुलसी दल अर्पित करके अगर मंगलवार को प्रार्थना करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो क्या करेंगे? गणेश महोत्सव का पावन समय चल रहा है, सफेद रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करें या सफेद रंग के गणपति का चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उनको दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें और रोज शाम को कपूर जलाकर उनकी आरती करें। निरंतर 3 महीने तक ऐसा करते जाएं, आपको जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: पूरे देश में छाए गणेश उत्सव की रौनक, पंडालों में बप्पा के अनोखे रूप के दर्शन को उमड़े भक्त, हैदराबाद में कैंडी से बनी बप्पा की मूर्ति तो सूरत में साइबर विघ्नहर्ता पधारे। अंबानी फैमिली के गणपति सेलिब्रेशन में सितारों का मेला, सलमान, सचिन, बाबा रामदेव समेत शामिल हुई कई जानी मानी हस्तियां। गणपति पंडालों में भक्तों की भारी भीड़, लालबाग चराजा के दरबार में पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर, विधि विधान से किए दर्शन पूजन। उज्जैन के चिंतामणि गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा को अर्पित किए गए 125,000 लड्डू, मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला। भारत की मदद से रोशन होंगे नेपाल के घर, पड़ोसी देश को 18 घंटे बिजली सप्लाई करेगा भारत, फ्लड डैमेज के बाद राहत मिशन के तहत फैसला। एशिया कप जीतकर घर लौटी चैंपियन बेटियां, दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का स्वागत। भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच आज, संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को आज मिल सकता है प्लेइंग 11 में मौका।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल, सोना खरीदना हो या बेचना हो, हमारा जॉय आलोकास्ट द बेस्ट है।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में, और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: नमस्कार।
3: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गणेश जी के बारे में, जिन्हें लोग गणपति बप्पा, गणराज भी कहते हैं। तो गणेश जी की हम पूजा करते हैं, उनके चित्र की पूजा करते हैं, उनकी प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो किस तरह से हम पूजा करें ताकि हमारे घर का वास्तु दोष जो है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, उस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
4: अगर नियमित रूप से आप धन का आगमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निरंतर आपके पास धन आता रहे, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिएगा। तुलसी दल अर्पित करके अगर मंगलवार को प्रार्थना करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
3: और चलिए अब जान लेते हैं 15 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 15 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 7:44 तक, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:21 तक, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: और चलिए अब जान लेते हैं कि गणेश जी और वास्तु का आपस में संबंध क्या है।
4: जी, देखिए गणपति महोत्सव का पावन समय चल रहा है और इसीलिए आज हम गणेश जी की महिमा का एक विशेष एंगल आपको बताने वाले हैं। गणेश जी का वास्तु के साथ क्या संबंध है? देखिए भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं बल्कि विघ्न नाशक, दोषों को बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि प्रदाता हैं। भगवान गणेश की कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश हो जाता है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई घर और कार्य स्थल के वास्तु दोष भगवान गणेश की सही मूर्ति लगाने से नष्ट हो सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि भगवान गणेश के चित्र का मूर्ति का प्रयोग कैसे करें ये आप जान लें और ये आप समझ लें। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश की विभिन्न रंग की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है और इन रंगों की अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग प्रतिमाएं घर के विशेष स्थान में लगाने से वास्तु दोष का नाश होता है। आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर आप सही तरीके से सही रंग की, सही आकृति की गणपति की मूर्ति लगाएंगे तो वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा।
3: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मेष, वृष और मिथुन, उनका क्या कहता है राशिफल।
4: मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी। धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और आइए अब जान लेते हैं गणेश जी की स्थापना के क्या क्या नियम है।
4: अगर आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं तो उसके नियम क्या हैं? याद रखिए, गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां अपने घर में ना रखें और पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी ना रखें।

0: बड़ी मूर्ति न रखें, मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल यानी आधे फिट से ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र सर्वोत्तम माना जाता है, इसको स्थापित करना सबसे ज्यादा शुभ है। और आप अपने घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा करिए और गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित मत करिएगा।
1: और आइए अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है। करियर में अभी रुकावट रहेगी। पारिवारिक समस्या का ध्यान दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में शांति बनाए रखें। धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और अब वक्त हो गया है सवालों को और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न दिया ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखती हैं। 27 जुलाई 1967 का जन्म है। 10:30 रात को भुज गुजरात। ये पूछ रही हैं कि मेरे विदेश में सेटल होने की क्या संभावना है और आने वाले समय में मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। दिया जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और मीन राशि की। महादशा मंगल की और अंतर दशा केतु की चल रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप कई बार विदेश की यात्राएं कर सकती हैं, विदेश जा सकती हैं, लेकिन विदेश में सेटल होने की संभावना आपकी कुंडली में नहीं बनती है। आपकी कुंडली के हिसाब से वैवाहिक जीवन बहुत एवरेज है और 2027 में अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा, अन्यथा वहां पर इस उम्र में आकर भी आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ सकता है। 2028 से आपका जीवन बेहतर दिख रहा है, लेकिन आप सेटल होंगी भारत में ही और 2028 से जिंदगी आराम से चल पाएगी। एक मो

0: बनवा के पहने, 12-14 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं उसका जवाब पंडित जी से, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न मनीष चौहान जी ने हमें उज्जैन से लिखा है। 29 अगस्त सन 2000 का जन्म है। 1:10 दोपहर में नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूं, किस तरह की तैयारी करूं, किस तरह के करियर में जाने का प्रयास करूं। मनीष, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह। महादशा सूर्य की और अंतरदशा केतु की चल रही है। अगर आप कानून के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी की कोशिश करें तो 2027-28 का अच्छा समय है। इस समय में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है कानून संबंधी क्षेत्र में, या एमपीएससी की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। एक मोती बनवा के पहनिए, 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए जान लेते हैं कि कैसे गणेश जी की कृपा से वास्तु दोष दूर हो सकते हैं।
0: वैसे तो गणपति की कृपा से आप किसी भी दोष को दूर कर सकते हैं। वो विघ्न नाशक हैं, संकट हरने वाले हैं। वास्तु दोष कैसे गणेश जी की कृपा से दूर होगा? बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाइए या इसी रंग का चित्र लगाइए। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रहण मत करिए। एक साथ बहुत सारी गणपति की मूर्तियां ना लगाएं। एक स्थान पर केवल एक मूर्ति रखें। शयन कक्ष में, बेडरूम में वैसे तो किसी भी भगवान की मूर्ति न रखें, लेकिन गणपति की मूर्ति बिल्कुल भी आपको बेडरूम में नहीं रखनी है। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही आप गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं, बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति न लगाएं। अपने घर के पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र लगाएं। रोज सवेरे पूजा में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, दूब अर्पित करें। घर में बहुत सारे गणपति अगर आप लगाना चाहते हैं तो तमाम गणेश जी की मूर्तियां लगाने से बेहतर है कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगाएं या जगह जगह पर लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं। स्वस्तिक गणपति का प्रतीक माना जाता है। अगर आप ऐसा भी करें तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और घर में सुख शांति और समृद्धि आ सकेगी।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन गए हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जान लेते हैं कि किस तरह की गणेश जी की मूर्ति कहाँ लगाने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे।
0: किस तरह के गणेश जी की मूर्ति कहाँ लगाई जाए या किस रंग का चित्र गणपति का कहाँ लगाया जाए जिससे समस्याएं और वास्तु दोष दूर हो जाएं? गणेश जी की धातु की प्रतिमा, अगर मेटल की प्रतिमा है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, तो इसको लिविंग एरिया में लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर गणपति की मेटल की मूर्ति लिविंग एरिया में लगाते हैं तो इससे घर के लोगों में आपसी प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। सफेद रंग के गणपति की छोटी सी प्रतिमा या चित्र धन स्थान पर रखें, निरंतर धन आता रहेगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा या पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति पूजा स्थान पर रखेंगे। ऐसा करने से हर तरह की विघ्न बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति या हरे रंग के गणेश जी का चित्र पढ़ने या काम करने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में अच्छा होता जाएगा, काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें, अनाज का दान कर लें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: संदेह, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए, वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का तीसरा सवाल उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न पुष्पा जी ने वाशिम से लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि इनकी पुत्री का नाम और बर्थ डिटेल ना बताया जाए। अपनी पुत्री के लिए पूछ रही हैं, क्या कुंडली में कोई दोष है, विवाह कब होगा, कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। पुष्पा जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है तुला लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। आपकी पुत्री की कुंडली में ऐसा कोई विराट या भयंकर दोष नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इनका शुक्र कमजोर है, जिस वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। साल 2028 के जून के बाद 2028 में इनका विवाह होना चाहिए और वैवाहिक जीवन एवरेज है, उसको बहुत अच्छा या बहुत बुरा नहीं कहेंगे। एक उनको ओपल बनवा के पहना दीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाइए। इनको बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को अगर केले का दान करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए आज के अंतिम सवाल की ओर, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अंतिम प्रश्न एक महिला ने हमें पुणे से लिखा है, अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। इनकी जन्म तारीख है 26 जनवरी 1982, 5:35 प्रातः, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, लिखती हैं पुणे से। ये कह रही हैं कि मैं काफ़ी समय से नौकरी बदलना चाहती हूँ, मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है, दिक्कतें बहुत हो रही हैं, तो भविष्य में मेरा करियर और मेरा जीवन कैसा रहेगा। आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और मकर राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है। नौकरी बदलने का समय आपका अक्टूबर 2026 के बाद है, नवंबर 2027 से जून 27 के बीच में अगर आप प्रयास करें तो आपकी नौकरी बेहतर तरीके से बदलेगी। लेकिन साल 2026 और 27 में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चोट चपेट, दुर्घटना और सर्जरी से बचने का प्रयास करिए। पीला पुखराज आपने बिल्कुल ठीक पहना है, वो पहने रहिए, साथ में एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करने से आपको लाभ होगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम गणपति के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आपने बताया कि गणपति की जो पिक्चर होती है, जो फोटो होती है, उसे घर से बाहर नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसा क्यों?
0: जी देखिए, ऐसा लोग समझते हैं कि घर का मुख्य द्वार है, बड़ा पवित्र स्थान है, तो बहुत सारे लोग वहाँ देवी देवताओं का चित्र लगा देते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ स्वस्तिक लगा देते हैं, कुछ लोग मंत्र लिख देते हैं, श्लोक लिख देते हैं, बहुत सारे लोग तो कलर्ड जिसपे देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं वो टाइल भी लगवा लेते हैं अपने मेन डोर पे। ऐसा करना लेकिन उचित नहीं है। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ आपको गणपति का चित्र नहीं लगाना है या गणपति की मूर्ति स्थापित नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गणपति की पीठ में पीठ की तरफ दरिद्रता रहती है और गणपति के पेट की तरफ संपन्नता रहती है। तो अगर गणपति को आप बाहर की तरफ लगाएंगे तो उनका पेट बाहर की तरफ होगा, रोड साइड में होगा, और उनकी पीठ अंदर की तरफ होगी, यानी दरिद्रता आपके घर के अंदर की तरफ होगी और घर में आर्थिक समस्याएं और दरिद्रता आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर गणपति का चित्र या मूर्ति स्थापित ना करें। देखिए, जब आप गणपति की मूर्ति या चित्र लगाते हैं घर के अंदर की तरफ, यानी गणपति की पीठ बाहर की तरफ होगी और चेहरा अंदर की तरफ होगा, यानी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको गणपति के दर्शन होंगे। इस तरह से अगर आप अंदर की तरफ गणपति की मूर्ति लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणपति का चित्र या मूर्ति लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। मेन डोर पर देवी देवताओं का चित्र बिल्कुल मत लगाइए, उचित नहीं है। मेन डोर पर आप कोई प्रतीक, कोई चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे ओम लिख के लगा सकते हैं, जैसे स्वस्तिक बना सकते हैं, जैसे शिव जी का त्रिशूल लगा सकते हैं। कोई चिन्ह या कोई प्रतीक, या सबसे अच्छा होगा कि मेन डोर के दोनों तरफ राइट भी और लेफ्ट भी एक एक स्वस्तिक लाल रंग का बना के लगा दिया जाए, या लाल रंग के स्वस्तिक का चित्र वहां लगा दें, तो ऐसा करने से घर में शुभता ज्यादा आएगी।
1: तो आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन आने वाला है उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 15 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका मध्यम बना रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि गणेश जी की पूजा में क्या अर्पित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। शास्त्र कहता है कि शिव जी जल से, विष्णु जी अलंकार से और सूर्य नमस्कार करने से प्रसन्न होते हैं। गणेश जी की पूजा में उन्हें सिंदूर और मोदक अर्पित किया जाता है, लेकिन गणपति प्रसन्न होते हैं दूर्वा अर्पित करने से। गणेश जी की पूजा में आप कुछ भी अर्पित न करें, केवल दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपकी कामनाएं पूरी होंगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 15 सितंबर 2026 यानी कि मंगलवार का शुभपहर कौन सा है।
0: दिनांक 15 सितंबर 2026 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 15 सितंबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु, कौन सी मेटल अच्छी होती है। आज की गुडलक राशि है कुंभ, एक्वेरियस। आपको एक स्टील का छल्ला धारण करना चाहिए हमेशा। ऐसा करने से आपके जीवन के उतार चढ़ाव कम होंगे।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, अगर कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो क्या करेंगे, गणेश महोत्सव का पावन समय चल रहा है, सफेद रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करें या सफेद रंग के गणपति का चित्र स्थापित करें, रोज सवेरे उनको दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें और रोज शाम को कपूर जलाकर उनकी आरती करें। निरंतर 3 महीने तक ऐसा करते जाएं, आपको जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है, गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है, और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दिव्य रंग देखने को मिलते हैं, देश ही नहीं दूसरे हिस्सों में भी आस्था के इस उत्सव के दिव्य और भव्य रंग देखने लायक होते हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर घर से लेकर पंडालों तक गणपति विराजमान हो चुके हैं। इसके अलावा गणेश मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ है। गणेशोत्सव के लिए अलग अलग थीम पर बने पंडाल और बप्पा की प्रतिमाएं भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं।

गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पूरा देश इस जयकारे से गूंज रहा है। गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के साथ ही हर तरफ उल्लास का वातावरण है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का मतलब सिर्फ बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का उत्सव है। छोटे से लेकर बड़े शहरों तक यहाँ इस उत्सव के भव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। पुणे हो या फिर नागपुर या अकोला या जालना, इन जगहों पर पंडालों से लेकर गणेश मंदिरों तक के पूरे विधि विधान के साथ गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। पूजा अर्चना से लेकर आरती हुई और गणपति दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पुणे का पारंपरिक गणेशोत्सव शहर की 5 मानाचे गणपति मूर्तियों की भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ और इसी परंपरा के मुताबिक धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आस्था, भक्ति और उत्साह के भव्य रंग देखने को मिले।

0: पुणे की विसर्जन की सभी शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है और जितने भी शुरू के पांच यानी कि माना से पांच गणपति यानी कि शुरू के पांच गणपति होते हैं उनका प्रतिष्ठापना होने के बाद ही पुणे की सभी यात्राएं शुरू होती है। उसी तरह अब पूरी पुणे की शोभा यात्राएं शुरू हो चुकी है। ये बाहुल देखिए पुणे का, जिस पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई, लोकमान्य तिलक हो, बाबू साहेब अंबेडकर हो, ये सभी शुरू के कुछ साल में थे। इन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ सब समाज साथ में आए, समाज की उन्नति हो इसलिए प्रयास किया और उसके बाद पुणे में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई।
1: इसी तरह नागपुर में नागपुर के राजा विधिवत पूजा और प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य पंडाल में विराजमान हुए। अकोला में भी भक्तों ने धूमधाम के साथ बप्पा को अपने साथ ले जाकर उनकी स्थापना की। जालना में भी गणेश चतुर्थी पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ हुआ। बप्पा के जय घोष के बीच राज राजेश्वर गणपति मंदिर में शासकीय महापूजा सम्पन्न हुई। गुजरात में भी गणेशोत्सव का दिव्य शुभारम्भ हुआ। ये तस्वीरें महेसाणा की हैं, जहां गणेश चतुर्थी पर प्राचीन गायकवाड़ी गणपति मंदिर में भगवान गणेश को पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर यानी विशेष सलामी दी गई। इस मंदिर में गायकवाड़ शासनकाल से गणपति को विशेष सलामी देने की परंपरा पिछले 150 सालों से चली आ रही है। वडोदरा में 100 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा के साथ गणेशोत्सव का भव्य रूप से शुभारम्भ हुआ। गायकवाड़ राज परिवार के लक्ष्मी विलास पैलेस में भगवान गणेश की शाही आगवानी हुई। बारिश और शहनाई की धुनों के बीच बप्पा को एक विशेष पालकी में दरबार हॉल में लाया गया और फिर राजगुरु ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ श्री जी की स्थापना संपन्न करवाई। वहीं पाटन जिले के सबसे पुराने गणेश महोत्सव स्थल गणेशवाड़ी में 149वें गणेश महोत्सव का भव्य शुभारम्भ हुआ। इस अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ पालकी यात्रा निकालकर विधि विधान से स्थापित किया गया। गणेश चतुर्थी पर राजस्थान के मंदिरों में भी आस्था का हुजूम उमड़ा। जयपुर के गणेश डोंगरी मंदिर में सुबह से ही आम लोगों से लेकर खास भक्तों का दर्शन पूजन का सिलसिला लगातार चलता रहा। वहीं सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाई। गणेश चतुर्थी पर यहां 3 दिवसीय लक्खी मेले का आयोजन भी हुआ। दिल्ली में भी गणेशोत्सव की भव्य तस्वीरें देखने को मिली। लक्ष्मीनगर में दिल्ली के महाराजा का भव्य दरबार सजाया गया।
2: यहां पर दिल्ली का महाराजा साक्षात यहां पर विराजमान हो चुके हैं। देखिए इनकी दिव्यता और भव्यता। पूरे इस बार के पूजा पंडाल की थीम क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं उनके हाथ में ड्रोन कैमरा है, ब्रह्मोस आप देख रहे हैं और तमाम चीजें यानी कि विघ्नहर्ता से विकास करता जो इस बार का मुख्य थीम है यहां का, वो यहां दर्शाया गया है।
3: दिल्ली का महाराजा 24 सालों से कार्य कर रहा है और इस बार 25वीं सिल्वर जुबली है, तो हमारे मंडल के हर सदस्य ने सोचा कि क्या कुछ नया दे, हम क्या कुछ करें। फिर हमने 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे प्रस्तापित किया है, क्योंकि गणपति जी के वो पिताश्री है, देवों के देव है, नीलकंठ है, महादेव है, तो इस बार 12 ज्योतिर्लिंग को हमने दर्शाया है यहाँ पे।
1: उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक देश के हर हिस्से में गणेशोत्सव की दिव्य छटा बिखरी हुई है। हैदराबाद में एक से बढ़कर एक बप्पा की भव्य प्रतिमाएं बिठाई गई हैं, जिनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ 2047 के विकसित भारत थीम पर भव्य मंडप सजाया गया है, जिसमें रोबोटिक गणपति विराजमान है।
4: गणेश महाराज के मंडप में विकसित भारत रूप में विकसित भारत का थीम सिलेक्शन करके इस बार मंडप को तैयार कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन भी हम लोग टेम्पल में लगाए, गणेश महाराज को भी रोबोटिक गणेश मतलब आर्मर ड्रेस पहना के रोबोटिक स्टाइल में गणेश महाराज को तैयार करे।
1: यही नहीं, हैदराबाद के बेखम बाजार में फिलखाना इलाके में कीमती मूर्तियां देखने को मिल रही है। यहाँ 24 कैरेट सोने की परत वाली गणेश जी की मूर्ति भी लगाई गई है, जिसे 3.5 लाख से ज्यादा अमेरिकन डायमंड से सजाया गया है।
5: इस मूर्ति का कुल वजन 48 kg है और ये 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड की हुई है मूर्ति। बोलो गणेश महाराज की जय। 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने ये मूर्ति तैयार की है, जिसमें 3,50,000 से भी ज्यादा अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं। और ये जो मूर्ति है पंच धातु में बनी हुई है, 5 अलग अलग मेटल यूज करके बनाई हुई है। इसका
6: बेस मेटल ब्रास है और जैसे कि आप देख सकते हैं मूर्ति के अंदर काफी अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं और सारा का सारा स्टोन फिटेड है, इसमें कोई भी स्टोन चिपका हुआ नहीं है। और पीछे आपको दशावतार के दर्शन होंगे, ऊपर तिरुपति बालाजी के दर्शन होंगे।
1: पूरे देश गणेशोत्सव के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। गणेश चतुर्थी पर असम के गुवाहाटी के गणेश मंदिर में भी दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। पुणे से ओमकार बाबले, नागपुर से योगेश पांडे, अकोला से धनंजय सामले, जालना से गौरव विजय साली, महसाणा से मनीष मिश्री, वडोदरा से तुषार पटेल, पाटन से सुनील पटेल, सवाई माधोपुर से सुनील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की कर लेते हैं, जिसका पहला गाना कल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज हो गया है। गाने के बोल हैं जय जय राम, जिसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी जादुई आवाज दिए है। ये गाना भगवान राम और सीता के विवाह पर केंद्रित है। गणेश चतुर्थी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने गाने के साथ ही एक मोशन पोस्टर भी कर रिलीज किया, जिसमें राम और सीता का अटूट प्रेम नजर आ रहा है।

0: गणेश चतुर्थी पर रामायण के मेकर्स का फैंस को तोहफा, पैन इंडिया फिल्म रामायण का पहला गाना और मोशन पोस्टर रिलीज। जय जय राम की गूंज के साथ छाई अरिजीत श्रेया की जादुई आवाज। रणबीर कपूर साई पल्लवी स्टारर पौराणिक फिल्म रामायण का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। मेकर्स भी फैंस की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गणेश चतुर्थी के मौके पर मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए रामायण का पहला गाना जय जय राम एक नए पोस्टर के साथ रिलीज किया। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर रिलीज किए गए इस भक्ति सॉन्ग में सिया राम के दिव्य संबंध को दिखाया गया है। गाने में भगवान राम और सीता के भव्य विवाह को भी दिखाया गया है। गाने में भक्ति और आध्यात्मिक भाव को प्रमुखता दी गई है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में गाया ये गाना लोगों को काफी पसंद आ रहा है। महज 4 घंटे में ही सोशल मीडिया पर इस गाने को 1.4 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। एआर रहमान के मधुर संगीत और कुमार विश्वास के असरदार शब्दों के मेल ने गाने को एक अलग ही ऊंचाई दी है। भारतीय पारंपरिक संगीत और आधुनिक धुनों का ऐसा संतुलन है जो सुनने वालों के दिल में उतर जाता है। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर मेकर्स ने गाने के साथ ही रामायण का एक दिव्य पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें साई पल्लवी माँ सीता के रूप में और रणबीर कपूर राम के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में दिखाया गया है कि दोनों ही एक शांत झरने के पास जंगल में एक चट्टान पर बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर ये झलक उनके वनवास के दिनों की है। मेकर्स ने नए पोस्टर की झलक शेयर करते हुए इसे सिया राम का अमर और अटूट प्रेम करार दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही रामायण 2 हिस्सों में रिलीज की जाएगी। हाल ही में फिल्म के पहले पार्ट का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसमें यश ने रावण के रूप में खूब लाइमलाइट बटोरी थी।
1: देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा।
0: करीब 4,000 करोड़ के मेगा बजट वाली ये फिल्म 6 नवंबर को दीपावली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी।
2: मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए मुझे स्वीकार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त, जानिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: देशभर में गणेशोत्सव की रौनक, दूसरे दिन विधि विधान से हो रही है गजानन की पूजा अर्चना। गुड न्यूज टुडे पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर में भक्तों का मेला, करोड़ों रुपयों के आभूषणों से बाप्पा का श्रृंगार, गणपति को पहनाई गई पेशवा की काल की पोशाक। मुंबई में अंबानी परिवार की गणेश पूजा, फिल्मी सितारों का लगा मेला, सचिन बाबा रामदेव समेत शामिल हुई कई जानी मानी हस्तियां। बॉलीवुड पर चढ़ा गणेश उत्सव का रंग, अभिनेता राजपाल यादव के घर पधारे गजानन, एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर बाप्पा की भव्य आरती। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा को अर्पित किए गए 125,000 लड्डू, मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला। भारत की मदद से रोशन होंगे नेपाल के घर, पड़ोसी देश को 18 घंटे बिजली सप्लाई करेगा भारत, फ्लड डैमेज के बाद राहत मिशन के तहत फैसला। जैसलमेर में ड्रोनथॉन 2026 का आयोजन, रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगा स्वदेशी ड्रोन तकनीक का दम, एयरफोर्स ने किया वायु उत्तम का प्रदर्शन।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गुड न्यूज टुडे के ऑफिस में पधार चुके हैं गजानन, और तमाम दर्शकों को भी गणपति के दर्शन गुड न्यूज टुडे के माध्यम से होंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है।
2: और चलिए अब शुरुआत करते हैं, और क्योंकि आज दूसरा दिन है गणेशोत्सव का, तमाम तस्वीरें तो हम देशभर से आपको दिखा ही रहे हैं। अरविंद जी भी हमारे साथ मौजूद है, और अरविंद जी आज दूसरा दिन है तो उस पर भी बात करेंगे कि दूसरे दिन किस तरीके से पूजा करनी है।
1: बिल्कुल। तो अरविंद जी आज हमें बताइए कि किस तरह से हम पूजा करेंगे और किस तरह से पूरी विधि विधान के साथ हम पूजा करेंगे, आगे हम इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि उम्मीदों भरे पैर की खुशोभरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
2: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। बिना थमे बिना रुके अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: शुभ समाचार की शुरुआत गणेशोत्सव के साथ करेंगे। तो आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है, देश भर में ये उत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर शहर सजे पूजा पंडाल में बप्पा के दर्शन और पूजन के लिए लाखों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लेकिन कुछ ऐसे अनोखे पूजा पंडाल हैं जो अपनी अनोखी थीम की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुंबई से सूरत तक एक ऐसे ही अनोखे गणेश पंडाल सजे हैं, इनके दर्शन आगे हम आपको करवाएंगे।
2: वहीं बप्पा की भक्ति का रंग पूरे देश पर चढ़ा है। महज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का असर देखने को मिलता है। एक ऐसी ही तस्वीर मुंबई से सामने आई जब भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर मुंबई में लालबाग चौराहा के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे। सर्जियो ने बप्पा के दर्शन किए और उनका आशीष लिया।
1: वहीं इस गणेश उत्सव का रंग सितारों पर भी दिख रहा है, सितारे भी गणपति पूजा कर रहे हैं। अंबानी फैमिली के गणपति सेलिब्रेशन में सितारों का मेला लगा है। इसमें सलमान, सचिन, बाबा बागेश्वर समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, तो वहां भी आपको लिए चलेंगे।
2: चैंपियन बेटियां एशिया कप जीतकर घर लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय टीम का जोरदार स्वागत हुआ, इस स्वागत की तस्वीरें भी आगे आपके सामने।
1: इसके अलावा आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच होगा। चर्चा है कि इस मैच में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है, और रणनीति क्या होगी आगे बताएंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
2: देश भर में गणपति उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के लालबाग के राजा के दरबार की तर्ज पर दिल्ली के पीतमपुरा में भी लालबाग के राजा के भव्य दरबार सजा हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान गणेश की प्रतिमा का अनावरण किया, भक्तिभाव के साथ बापा की पूजा की।
1: मुंबई में अंबानी परिवार ने भी अपने घर में बप्पा की स्थापना की। इस मौके पर फिल्मी हस्तियां समेत सियासी हस्तियों ने भी शिरकत की। नेता से लेकर अभिनेता तक सभी बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। पत्नी के साथ सुनील शेट्टी एंटीलिया पहुंचे, लेकिन तेंदुलकर भी परिवार के साथ बप्पा के स्वागत के लिए पहुंचे। नीता अंबानी ने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गणेश चतुर्थी पर गणपति को 5,51,000 मोदकों का भोग लगाया गया। मंदिर परिसर में बप्पा के भक्त ढोल की थाप पर थिरकते भी नजर आए। गणपति का दरबार स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है, तो वहां महाआरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।
1: गणेश चतुर्थी पर हैदराबाद में भी बप्पा का अलौकिक रूप दिखा। 24 कैरेट गोल्ड से बप्पा की अद्भुत प्रतिमा बनाए गए। गणेश प्रतिमा को 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग और 3.8 लाख से ज्यादा अमेरिकन डायमंड से इसे सजाया गया। करीब 48 किलो वजनी इस प्रतिमा को तैयार करने में 8 महीने का समय लगा।

0: उत्सव पर पप्पा के प्रिय भोग यानी मोदक की भी भारी डिमांड है। नासिक की एक मिठाई की दुकान पर गोल्ड कवर वाले मोदक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इन कीमती और स्वादिष्ट मोदक की कीमत 27,000 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग मोदक देखने के लिए मिठाई की दुकान पर पहुंच रहे हैं।
1: पोखरण में पहली बार वायुसेना का ड्रोनोथॉन 2026 का

0: किंग 11 में एक बदलाव तय है। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है।
1: नयनतारा स्टार मुथु की अमन 2 का टीजर राइज ऑफ महाशक्ति रिलीज किया गया है। टीजर में पौराणिक अतीत से लेकर मुश्किल भरे वर्तमान तक की कहानी की झलक दिखाई दे रही है। एक तरफ खतरनाक हमला अस्तित्व की लड़ाई है तो दूसरी तरफ वर्तमान में आप लोगों के आगे आई बड़ी आपदा।
0: दक्षिणी मेक्सिको में 330,000 से ज्यादा ऑलिव रिडले समुद्री कछुए बड़ी संख्या में अंडे देने के लिए पहुंचे हैं मेक्सिको को। ओक्साका में 48 घंटे से भी कम समय में हजारों कछुए अंडे देने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, जबकि 2025 में करीब 270,000 कछुओं ने समुद्र तट पर घोंसले बनाए थे।

0: तो आज के शुभ समाचार की शुरुआत गणपति बप्पा के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी खुद मौजूद है, अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज द्वितीय दिन है गणेश उत्सव का, मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा भी इस वक्त मौजूद है। तो चलिए करते हैं बप्पा की शुरुआत। और गणपति उत्सव का द्वितीय दिन आज बड़े ही शोरों से मनाया जा रहा है। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। गणपति बप्पा की भक्ति में पूरा देश इस वक्त मग्न है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों तक, हर तरफ बस बप्पा के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। कहीं बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हैं, तो कहीं गणपति की विशाल और मनमोहक प्रतिमाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो बड़ा ही खूबसूरत माहौल इस वक्त चारों तरफ है। गणपति उत्सव ने देश के अलग अलग हिस्सों को भक्ति उत्साह और उमंग के एक रंग में रंग दिया है। मुंबई में लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त वहां पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गणपति के चरणों में शीश झुका रहे हैं। तो वहीं मुंबई में अंबानी परिवार के लोगों ने भी बड़े ही जोरों शोरों से गणपति बप्पा का आगमन किया। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बप्पा उनके घर पधारे हैं, जहां बप्पा के उत्सव में शामिल होने के लिए भी कई सितारे अंबानी परिवार के घर पहुंच रहे हैं। कौन कौन अंबानी परिवार के उत्सव में शामिल हुआ आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गणेश उत्सव 10 दिन चलेगा। जी हाँ, पूरे 10 दिन तक गणेश उत्सव चलेगा और आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है, द्वितीय दिन है और भक्तों में भारी उत्साह है। गुड न्यूज टुडे भी गणेश उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। चलिए देश से तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से गणेशोत्सव की शुरुआत कल हुई थी। आज दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की तमाम भीड़ देखने को मिल रही है मंदिरों में और जीएनटी में भी गणपति बप्पा का दरबार सज चुका है। कल से ही हमने हर दिन की पूजा, क्योंकि गणपति जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है अरविंद जी, और आज दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन की शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए?
1: देखिए, दूसरे दिन की भी शुरुआत, जैसे आपने पहले दिन पूजा की है तो पूजा लंबी की है, दूसरे दिन आप बेशक लंबी पूजा ना करके पूजन संक्षिप्त करें, लेकिन गणपति की जो है मंत्रों का जाप विशेष करें। जैसे कि हमने गणपति का पूजन पूरी तरह से कर लिया है और अब जैसे आपको हम बताएं कि गणपति के विषय में आपको विशेष जानकारी, विशेष आपको यह ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं ना कि जो आप उनका नाम जपेंगे, जो आप उनका अर्चन तवार्चन या जो उनकी आप पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ पूजा करेंगे, उसका विशिष्ट फल है। ये हमने जो की ये षोडशोपचार से पूजा है, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता दें कि कुछ भी यदि आपको नहीं आता है तो ओम गं गणपतये नमः बोल करके आप संपूर्ण अपनी सामग्री चीज को अर्पित कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत बढ़िया एक नाम बोलते हैं, गणपति बप्पा मौर्या। ये आखिर मौर्या कौन है? मौर्या मतलब मोर नहीं है, मौर्या मतलब मोर नहीं है, और गणपति गण किसके पति हैं? तो ये शब्द आप लोग बोलते हैं, लेकिन इस शब्द की यथार्थ में जो अर्थ है, गण हुए भगवान शिव के, भगवान शिव के जो गण हुए, उन गणों के जो है सेना नायक हुए गणपति, यानी उनके मालिक हुए गणपति। तो इस

0: ने भगवान शिव के गणों के भगवान गणेश गणपति कहलाए। अब गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया जो शब्द कहते हैं, महाराष्ट्र में एक जो है ऋषि हुए मोरवी, वो ऋषि जो है अत्यधिक भगवान गणपति की तपस्या करते थे और प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए जाते थे। तो जब उनका पूरा जीवन बीत गया और वो वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए तो गणपति जी ने कहा कि अब आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनको स्वप्न में उनने कहा, मैं स्वयं आपको दर्शन दूंगा। अगले दिन वो नहीं गए, वो उसी भांति तपस्या में बैठे। जब बैठे तो गणपति जी ने उनको जो है साक्षात दर्शन दिए। तो जब दर्शन दिए तो उनने गणपति ने कहा कि अब आप बताइए आपको क्या मुझसे जो है वर चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो उनने कहा कि मुझे हे गजानन गणपति मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपके नाम के पीछे मेरा नाम जोड़ा जाए। ठीक, तो मौर्या जो ऋषि थे वो कुछ समय के बाद प्रश्नन के बाद उनके नाम के पीछे नाम जोड़ा, तो गणपति बप्पा मौर्या ये है।
1: पंडित जी आपकी इस जानकारी से मुझे लगता है काफी हमारे दर्शक है जिन्हें आज पता चल गया होगा कि गणपति बप्पा मौर्या क्यों कहा जाता है।
0: इसलिए कहा जाता है गणपति बप्पा मौर्या। और गणपति की आराधना देखिए ये क्या है, मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता है, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले कोई ना कोई विघ्न आता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई ना कोई ऐसी बाधा आती है, और कहीं कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं इनको प्रथम पूजनी कहा गया है। और ये भी बता दें ऐसा नहीं कि भगवान शंकर जी की शादी हुई थी तो उस टाइम पे गणपति नहीं थे, गणपति उस टाइम पे भी थे, वहां भी भगवान शिव और माता पार्वती की शादी में भगवान गजानन गणेश का पूजन हुआ है। तो ये आदि देव है, ये आदि देव है। यह एक अलग है कि सृष्टि काल के जो है अनंतराल में जो है माँ पार्वती के उपटन से इनका जो है जन्म हुआ।
2: तभी कहते हैं अरविंद जी कि कभी भी हमें किसी भी चीज की शुरुआत करनी है, कोई पूजा भी करनी है, सबसे पहले गणपति
0: करनी। और आपकी ये जो चतुर्थी है, दो चतुर्थी मेन होती है, एक विनायक चतुर्थी एक संकष्टी चतुर्थी। तो अभी हम लोग जिसका जो है मना रहे हैं ये विनायक चतुर्थी है, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आती है। और संकष्टी जो संकष्टी चतुर्थी है वो माघ आपका जब आता है महीना, माघ के कृष्ण पक्ष में आती है, उसको संकष्टी कहते हैं। इन दोनों चतुर्थियों में प्रायः व्यक्ति व्रत रहते हैं। ये चतुर्थी महाराष्ट्र आदि में विशेष है, और वो संकष्टी जो चतुर्थी है वो यूपी एमपी आदि क्षेत्रों में विशेष प्रचलित है। तो किसी भी व्यक्ति को ये दो जो आपकी चतुर्थी आती है गणेश चतुर्थी, इनमें निश्चित रूप से गणपति का व्रत रखना चाहिए। और मान लीजिए व्रत नहीं आप रख पाते हैं तो कम से कम गणपति का ध्यान करें, गणपति के प्रति जो है आप समर्पित रहें, तभी आपके जीवन में आने वाली जो परेशानी है, आने वाली जो विघ्न बाधाएं हैं उनको वो दूर करें।
1: जी बिल्कुल पंडित जी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ धर्मेंद्र दुबे जुड़ रहे हैं मुंबई से, और हमारे साथ धनंजय जुड़ रहे हैं अकोला से। तो सबसे पहले चलिए आपको मुंबई लिए चलते हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। तो धर्मेंद्र इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, गणेशोत्सव के तमाम रंग उनको दिखाइए।
3: बिल्कुल, गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या, और जिस तरीके से हर गली नुक्कड़ सड़क पर मुंबई महाराष्ट्र में गणेश जी को विराजमान किया गया है, हर जगह के वो राजा हैं। तो इस समय मैं उपनगर मुंबई के सबसे ऊंची प्रतिमा जिनकी ऊंचाई लगभग 43 फीट है और साकीनाका के महाराजा के नाम से बहुत ज्यादा प्रख्यात है, मैं उस दरबार में मौजूद हूँ। आप भी खुद बप्पा का दर्शन करें। इस समय बप्पा जो है शिव जी के अवतार में, यानी कि खंडोबा जी के अवतार में है, शिवलिंग भी साथ में है, और देखिए कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हाथों में तलवार है, त्रिशूल है, डमरू है, 43 फीट, सोचिए जरा इतने ज्यादा ऊंचे हैं, किस तरीके से इनका आगमन हुआ होगा। और जब हुआ तो इतनी तेजी से वायरल हुए थे इनके सारे वीडियो, हर किसी के इंस्टाग्राम पर पहुंच गए हुए थे, और लगातार इनका दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे देखे खंडोबा का अवतार है, आपको बताया कि महाराष्ट्र में खंडोबा नाम की एक बहुत बड़ी मंदिर है और वो शिवजी को प्रेरित है, और उन्हीं के अवतार को लेकर के साकीनाका के महाराजा के पंडाल में गणेश जी को स्थापित किया गया है। और जैसा कि इस बार 12वें दिन विसर्जन होना है, 2 दिन ज्यादा लग रहे हैं और 12 दिन लगातार श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर आएंगे। आपको बताएं कि देखिए कितने खूबसूरती से इन्हें बनाया गया है, वाकई में मूर्तिकार की बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी कि जिस तरीके से गणन किया, जो आकार दिया है गणेश जी को, वाकई में बहुत भव्य बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं। सबसे खास इनकी सूंड देखिए, सून जो है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्यूट नजर आ रही है और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि बप्पा यहाँ आने वाले सारे श्रद्धालुओं को सीधे देख रहे हैं और देखकर यही कह रहे हैं कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके सारे दुख दूर कर देंगे। सिर्फ बप्पा ही नहीं, बप्पा के आसपास का जो ये पंडाल है, पंडाल को जिस तरीके से चलचित्र दिया गया है वहां भी देखिए, जेजूरगढ़ पर्वत शिवलिंग का आकार है, मृत्यु लोकी दूसरे कैलाश शिखर और बकायदा जो मंदिर वहां बनी हुई है उनकी तस्वीरें भी यहां पर बैनर पर लगाई गई है। ये तो बाई तरफ है, इसके अलावा दाई तरफ भी देखिए, और जिस तरीके से हम सिनेमा हॉल में जाते हैं बालकनी भी वहां पर होती है फिल्म देखने के लिए, बप्पा को ठीक से देखने के लिए भी यहाँ पर पीछे की तरफ बालकनी बनाई गई है और वहां भी लोग जाकर चढ़कर बकायदा बप्पा का दर्शन करते हैं। और इस समय ये जो बप्पा है, ये जो पंडाल है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा वायरल होते जा रहा है और 42वां साल है। खास बात यह है कि 42 फीट की ऊंचाई तो है ही बप्पा की और 42वां साल भी है, मतलब 42 साल हो चुके हैं बप्पा को यहाँ पर विराजमान करके। और अभी सुबह का वक्त है, यहाँ जहां पर बप्पा को स्थापित किया गया ये साकी नाका सिग्नल के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑफिसेज हैं, हमेशा ही ट्रैफिक और भीड़ भाड़ वाला इलाका यहाँ होता है।
2: आपके पास लौटेंगे, काफी खूबसूरत प्रतिमा यह आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे। एक बार धनंजय का रुख करते हैं जो कि अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, आज दूसरा दिन है गणेश उत्सव का, वहां पर कैसी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, दिखाइएगा।
4: देखो दूसरे दिन गणपति बप्पा मोरिया की एक गुण जो है वो कार्यकर्ता जो है हर कार्यकर्ता के दिल में है, क्योंकि आज दूसरा दिन है। देखिए बप्पा की इस भव्य मूर्ति को जो है सुबह सुबह जो है वो आरती किए जा रही है, बप्पा को भोग चढ़ाए जा रहे हैं। स्वराज्य गणेश पंडाल की ये सुंदर मूर्ति है जठारपेट की और कार्यकर्ता आप देख सकते हो कि यहाँ पर अरे कार्यकर्ता जो है कल के बप्पा के जल्लोष के साथ जो उन्होंने नाच गाए लेकिन उससे थकान हुई, लेकिन बप्पा की सुबह सुबह जो आरती है वो आरती करने से वो बिल्कुल 9 बजे के ही घड़ी के उस दौर पर पहुंचे यहाँ पर, क्योंकि सबसे अहम बात है कि अकोला के जो गणपति बप्पा है तो सार्वजनिक पंडालों में विराजते हैं, वो जो है वो बड़े कृपाशील है और सभी भक्तों की आस रहती है। आप देख सकते हो कि हर भक्त जो है वो यहाँ पर गणपति बप्पा मोरिया की गुंज के साथ जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक कार्यकर्ता हमारे साथ है, सर मुझे बोलिए कि थकान भी नहीं उतरी लेकिन उससे पहले आज जल्लोष हो रहा है।
5: पापा के लिए कभी किसी कोई भक्त को थकान कभी होती नहीं है, पापा के ये 10 दिन हमारे लिए बहुत ही आनंदमय दिन होते हैं, हम साल भर ये दिनों की राह देखते हैं, इसलिए थकान का कोई सवाल ही नहीं। आप देख सकते हैं सभी लोग रात को 1:30 बजे घर जाने के बाद में भी उसी जोश के साथ यहाँ सब आरती के लिए पहुंचे हैं और हमारे मंडल की यह खासियत रही है कि हम हर साल कुछ ना कुछ समाज उपयोगी कार्यक्रम करके इस परिसर में अच्छा संदेश देने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी आरती के पहले हमने सफाई अभियान इस पूरे परिसर में किया, कल स्वागत के समय जो फूल और सब स्वागत परिसर के आसपास के जितने लोग रहने वाले हैं गुलाल किरा था वो सब हमने, आप देख सकते हैं रास्ते पे अभी कुछ नहीं है, वो सब पूरा साफ ये मंडल के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है। उसी प्रकार पिछले साल हमने एक प्रण लिया था कि अभी बड़ी मूर्ति का विसर्जन हम नहीं करेंगे, जो हमारी पूजा की मान की मूर्ति है उसी छोटी मूर्ति का विसर्जन हम करते हैं। और हमारे यहाँ के जो जिले का एक गणपति संग्रहालय है नंद
1: देखिए जी धनंजय, इस वक्त हर पंडाल हर मंडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ गणपति के रंग में रंगा हुआ है। लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ और धर्मेंद्र आप भी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में जहां बप्पा विराजमान है, पंडित जी हमारे साथ हैं, तो शुभ मुहूर्त में पूजा होना भी उतना ही जरूरी है। तो पंडित जी बिना समय गवाए चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं।
0: देखिए लगभग हमारी पूजा तो हो गई है और इसमें हमें प्रार्थना करनी है, तो अब हम जो है बगैर समय जो है वो किए प्रार्थना कर लेते हैं। और मैं फिर बता दूं, देखिए जैसे कल हमने पूजन किया था उसी प्रकार आप यदि स्टूडियो में देख रहे हैं GNT चैनल को, तो सारी सामग्री आपको इसी प्रकार जो है लगानी है। जैसे हमने वस्त्र चेंज किए हैं, पुष्पमाला आदि आपको सारे चेंज दिख रहे हैं, तो ये सारा हमने विधान पूजन का कर लिया है। आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपको इसी प्रकार करना है। और मान लीजिए पृथक पृथक यानी अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं दूध दही घी शहद से, तो जैसे पंचामृत बना लें उससे एक बार आप स्नान करा दें और इस तरह से मोदक आदि आप चढ़ा दें। देखिए कहते हैं ना कि मोदक के विषय में और आपको ये दीप आदि के विषय में अभी बताएंगे। सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं। हरे ओम मां ये पूजा के बाद की क्षमा प्रार्थना है कि जो आपसे कहीं कोई त्रुटि रह जाती है उस त्रुटि को भगवान जो है माफ करें। तो क्या करते हैं अपन पूजा में, उसी की क्षमा याचना करते हैं।

करञ्चकम् अनायकैकनायकम् विनाशिते भदैत्यकम् नता शुभाशुनाशकम् नमामि तम् विनायकम्। ये आपने गजानन गणेश की प्रार्थना की, साथ में उनकी माता का प्रार्थना बहुत जरूरी होता है, तो भगवती का कीजिए।

0: ప్రణతం. హరి ఓం మా ఓం గం గణపతయ నమః. మా గౌరీ నమః. వరుణస్ దేవతాభ్యో నమః. కలశస్ దేవతాభ్యో నమః. అనుగ్రహ దేవతాభ్యో నమః. షోడశ మాతృకేభ్యో నమః. సప్తగత మాతృకేభ్యో నమః. సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమః. ప్రార్థనా పూర్వకం నమస్కరోమి సమర్పయామి. और ये ध्यान रखिएगा, एक आपकी अखंड ज्योत है, जो मैंने ये दो दीप प्रज्वलित करी है, तो ये आपका जो है कर्म दीप होता है और वो आपका जो है साक्षी दीप होता है. साक्षी मीन्स अखंड ज्योत जो होती है वह आपके कर्मों की साक्षी होती कि आपने 3 दिन के गणपति बैठाए, 5 दिन के, 7 दिन के, उसके अंतराल में क्या कर्म कर रहे हैं, ये उसका साक्षी है. और ये कर्म दीप है, जैसे हमने अभी धूप दिखाई थी, धूप के बाद दीप दिखाया, तो ये अलग से एक दीप आप जो है प्रज्वलित कर लें यदि इस प्रकार के विधान का पूजन कर रहे हैं. और विधान का नहीं कर रहे हैं तो आपको एक ही दीप के साथ जो नहीं अखंड ज्योत नहीं जो प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसी दीप में आप पूजन जो है अपना कर सकते हैं.
1: जी
0: जी. और जो मोदक के विषय में कह रहा था, तो मोदक ही क्यों चढ़ाते हैं और आप सुन रहे हो कि कोई 1000 चढ़ा रहा है, कोई 5000 चढ़ा रहा है, ऐसा क्यों? यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फलम अवाप्नोति. जब व्यक्ति 1000 मोदक भगवान गजानन गणेश को चढ़ा देता है या 1000 मोदक से भगवान का अर्चन कर देता है तो वांछित फल मवाप्नोति, उसको मनोवांछित फल मिलता है. प्रायः बड़े उद्योगपति जो 1000 मोदक का भगवान को प्रसाद लगाते हैं तो यो मोदक सहस्त्रेण यजति सवांछित फल मवाप्नोति, फिर उसको जिस मनोकामना से वह मोदक को चढ़ा रहे हैं वह मनोकामना उनकी निश्चित रूप से पूर्ण होती है.
1: अरविंद जी, जो दूसरे दिन की जैसे हम पूजा कर रहे थे वो पहले दिन से थोड़ा सा अंतर है या?
0: हाँ, अंतर है. पहले दिन जो पूजा होती है वो सांगोपांग के साथ और षोडशोपचार से पूजा होती है, और दूसरे दिन मान लीजिए आपके पास समय नहीं हो तो आप पंचोपचार से पूजन जो है कर सकते हैं. और आपको एक चीज और बता दे कि आरती, आरती प्रायः बप्पा की क्यों जो है विशेष होती है, उसका एक विशेष का एक बप्पा की ही नहीं, आरती सभी भगवानों की होती है. और आरती का विधान भी आपको बता दें, आरती जो है 4 बार तो उनके चरणों में घुमानी चाहिए, 2 बार उनके नाभि क्षेत्र में घुमानी चाहिए और 1 बार उनके मुखमंडल में घुमानी चाहिए. कितनी बार हो गया? 7 बार. और इसी प्रकार आप 7 बार पूरे उनके शरीर में घुमाते हैं तो 14 बार आरती घुमाते हैं. और 14 बार आरती घुमाने का मतलब कि 3 लोक 14 भुवन, अर्थात 14 लोक जो होते हैं इस तरह से वो 14 बार आरती घुमाते हैं. बप्पा की परिक्रमा एक होती है, सबकी परिक्रमा अलग अलग है. भगवती की परिक्रमा 3 है, भगवान गजानन की एक ही परिक्रमा आप उनके मंदिर की लगाएंगे, जैसे भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं हैं. और जो आरती का मतलब है, थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन मैं आरती का बड़े विधान से आपको बता दे रहा हूं कि आरती जो हम करते हैं उसमें अपने आप को हर तरह से भगवान के प्रति समर्पित करते हैं. जैसे कि आरती में आपका दीप है, ये अग्नि तत्व है, जो 5 हमारे तत्व होते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा, तो अग्नि तत्व हुआ दीप हमारा. इसके बाद जो ये जल है हमारी आचमनी है, और जो हम शंख में जल भर के रखते हैं छिड़काव करते हैं वो हुआ जल तत्व. इसके बाद हमने जो धूप जो है प्रज्वलित करते हैं वो हुआ धूप और कपूर, वो वायु और आकाश तत्व. और इसके बाद जो पुष्प हम अर्पित कर रहे हैं तो पुष्प हम जो जमीन से उगाते हैं वो हुआ पृथ्वी तत्व. तो कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण पृथ्वी हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं अपने सहित. तो आरती का ये विशेष महत्व.
1: तो आरती की विशेषता तो आपने सुन ली, और ब्रेक यहाँ हम ले रहे हैं और ब्रेक के उस पर हम दिखाएंगे किस तरह से तमाम सितारे, हमारे टेलीविजन के सितारे और हमारे तमाम सितारे जो हैं बॉलीवुड से, उनके घर गणपति बप्पा का किस तरह से आगमन हुआ, किस तरह से ढोल नगाड़ों के संग उन्होंने बप्पा की स्थापना की. बने रहिए हमारे साथ.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर.
3: गणपति के किस प्रतिमा से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है? गणपति की कौन सी प्रतिमा लगाने से पढ़ाई में मन लगने लगता है? और गणपति की किस प्रतिमा से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं? कैसे करेंगे गणपति वास्तु दोष समाप्त? जानिए मेरे साथ.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है.
7: गुड न्यूज़ टुडे.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: देशभर में गणेशोत्सव की रौनक, दूसरे दिन विधि विधान से हो रही है गजानन की पूजा अर्चना। गुड न्यूज टुडे पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर में भक्तों का मेला, करोड़ों रुपए के आभूषणों से बापा का श्रृंगार, गणपति को पहनाई गई पेशवा की काल की पोशाक। मुंबई में अंबानी परिवार की गणेश पूजा, फिल्मी सितारों का लगा मेला, सचिन बाबा रामदेव समेत शामिल हुई कई जानी मानी हस्तियां। बॉलीवुड पर चढ़ा गणेशोत्सव का रंग, अभिनेता राजपाल यादव के घर पधारे गजानन, एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर बाप्पा की भव्य आरती। जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा को अर्पित किए गए 125,000 लड्डू, मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला। भारत की मदद से रोशन होंगे नेपाल के घर, पड़ोसी देश को 18 घंटे बिजली सप्लाई करेगा भारत, फ्लड डैमेज के बाद राहत मिशन के तहत फैसला।

0: 2026 का आयोजन रक्षा क्षेत्र पे बढ़ेगा, स्वदेशी ड्रोन तकनीक का दम, एयरफोर्स ने किया वायु उत्तम का प्रदर्शन।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। गणेश उत्सव की धूम जगह जगह पर नजर आ रही है, तस्वीरें अब आपको कुछ दिखाते हैं। मनोरंजन की दुनिया के सितारे भी गणपति बप्पा को अपने घर पर लेकर आए हैं और उसकी धूम भी नजर आ रही है। दरअसल इस उत्सव के रंग में पूरा समा रंगा हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कलाकारों में अलग ही चकाचौंध दिख रही है। दुनिया के सितारे गणपति के उत्सव में रंगे हुए हैं। गणेश उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह है और सितारों के घर पर गणपति बप्पा पधारे हैं, अपने बप्पा को घर लेकर सितारे आ रहे हैं।
1: किस तरह से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन तमाम लोग कर रहे हैं। गणेश उत्सव को लेकर जबरदस्त उत्साह लोगों में दिख रहा है। सितारे अपने बप्पा को घर लेकर आए हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने बप्पा के दर्शन के साथ गणेश चतुर्थी मनाई और अपने सेलिब्रेशन की झलक शेयर की।
0: सोनू सूद ने भी अपने परिवार के साथ गणपति आराधना की है, तस्वीरें निकलकर सामने आई है, ये तस्वीरें उन्होंने शेयर की। सोनू सूद अपने परिवार के साथ गणपति बप्पा की पूजा करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने परिवार के साथ पहले बप्पा की प्रतिमा लेने गए, फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की।
1: तो वहीं सुनील शेट्टी ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जिसमें वो गणपति की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं सुनील शेट्टी हाथ जोड़कर बप्पा से आशीर्वाद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं।
0: वहीं नाना पाटेकर और तुषार कपूर ने पूरे पारंपरिक अंदाज में गजानन की आराधना की है। राजपाल यादव ने भी अपने परिवार के साथ बप्पा का स्वागत किया है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनोरंजन जगत के सितारे और वो भी अपने घर पर बप्पा को लेकर आए हैं और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी तेजी से वायरल भी हो रही हैं।

0: चलिए शिल्पा शेट्टी के गणेशोत्सव की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हर साल अपने परिवार के साथ गणपति पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी शेयर करती हैं और इस बार भी इस तस्वीर में शिल्पा अपने पति और बच्चों के साथ दिख रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिल्पा शेट्टी के गणपति की। हर साल इतने ही जोश के साथ शिल्पा शेट्टी अपने घर गणपति बप्पा को लेकर आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और हर साल की तरह पूरा परिवार इस बार भी गणपति बप्पा को उतने ही हर्षोल्लास के साथ अपने घर पर लेकर आया है। हर साल की तरह इस बार भी सोनू सूद पूरी तरह से गणेश उत्सव के रंग में रंगे दिख रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ उन्होंने अपने घर में बप्पा का स्वागत किया और फिर पूरे विधि विधान के साथ गजानन की आराधना भी की है। हर साल सोनू सूद अपने घर पर बप्पा को लेकर आते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पूरी विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा की और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। अपने परिवार के साथ सोनू सूद गणपति बप्पा की आरती उतारते नजर आए और पूरे विधि विधान के साथ गणपति को अपने घर पर लेकर आए।
1: तो सुनील शेट्टी भी वहीं गणपति बप्पा की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की है। तस्वीर में बप्पा अपने घर में भगवान की अर्चना वो करते दिखाई दे रहे हैं। सुनील शेट्टी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पूजा अर्चना हुई और सोनू सूद भी आपको देखा कि किस तरह से सुनील शेट्टी जो हैं उन्होंने बप्पा की अर्चना की, उनको मोदक अर्पित किए और आप देखिए ये मोदक सुनील शेट्टी बप्पा को अर्पित करते हुए।
0: तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। मुंबई में नाना पाटेकर के घर पर भी गणेश चतुर्थी की धूम नजर आई। ये तस्वीरें देखिए, नाना पाटेकर और उनके परिवार ने बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया। नाना पाटेकर ने पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने एक एक कर विघ्नहर्ता की आरती उतारी, उनका आशीर्वाद लिया। तो नाना पाटेकर और उनका परिवार हर साल धूमधाम से इसी तरह गणेश उत्सव मनाता रहा है।
2: जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ति प्रसन्न पूजार्थे दूर्वां कुरान समर्पया।
0: चलिए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। अंबानी परिवार भी हर साल बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाता है। तस्वीरें देखिए, इस बार भी मुकेश अंबानी के घर पर गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए तमाम नामी चेहरे जुटे। रितेश जुनेलिया के साथ रवीना और विकी कौशल भी इस पूजा में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे और ये अंबानी परिवार की तस्वीरें हैं। वरुण, नताशा, जानवी कपूर भी इस पूजा के लिए एंजेलिया पहुंचे थे।
1: जी हाँ, कृति और नुपुर सेनन भी इस पूजा में शामिल हुए गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। रेखा भी एंटीलिया में मौजूद थी। तो देखिए किस तरह से अंबानी परिवार ने गणपति का स्वागत किया। तो गणेशोत्सव के रंग तो पूरे देश में आप देख ही रहे हैं लेकिन मुंबई में इसकी रौनक अलग ही होती है, बेमिसाल होती है। अंबानी परिवार भी बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेशन के लिए कई नामी चेहरे मुकेश अंबानी के घर पहुंचे। परिवार की बहू ने भी गणपति रखा। राधिका मौचन ने भगवान गजानन का स्वागत सम्मान एक सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया। जी हाँ, राधिका मौचन बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक नृत्य करती है। इस डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया।

0: तो देश के अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, गणेश उत्सव की धूम हर जगह पर नजर आ रही है। अरविंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरविंद जी, अभी आप बता रहे थे पूजा की विधि विधान, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए पूजा के समय, वो बताइए।
1: एक पूजा के समय आप एक चीज का विशेष ध्यान दें कि सबसे ऊंची चीज होती है कि जब आप पूजा कर रहे हो उस वक्त आपका दिमाग का जो एक कहते हैं ना कि एकाग्र होना बहुत जरूरी है, मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है पूजा का, तभी जो है संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक तो ये हो गया, और दूसरा गणेश जी की पूजा में कभी भी भूल करके आप तुलसी दल और तुलसी पत्र दोनों आप नहीं अर्पित करें। ये उसके साथ साथ देखिए कि आप के लिए मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप महंगी से महंगे मीठा, महंगी से महंगी चीजें लाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद भी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि आप स्वच्छता के साथ अपने घर में बनाएं और घर से बना करके लाएं, फिर आप भगवान को प्रसाद चढ़ाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी दुकान से लाते हैं, पता नहीं उसने नहाया है नहीं नहाया है, बर्तन कैसे शुद्ध हैं, पवित्र हैं नहीं हैं, और आप महंगी चीज लाए आपने चढ़ाया, तो जो अशुद्ध चीज आप मान लीजिए आपने चढ़ाई, तो जो आकाश मार्ग में जो राक्षसी जो है तो गण होते हैं, जो राक्षसी लोग होते हैं, वो जो है उस पूजा को, उस जो है आपकी तपस्या को भगवान तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। तो पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ करें। भगवान ऐसा नहीं कहते कि हमारी आप पूजा करें ही करें, आप बेशक 5 मिनट की करें लेकिन पूरी समर्पणता के साथ पूरी शुद्धता के साथ पूजन करें। और एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं कि जैसे हमने षोडशोपचार से पूजन यहाँ किया है, पृथक पृथक सभी का किया है, यहाँ पे माँ गौरी का संक्षिप्त जो है नवग्रह षोडश मातृका कलश का आदि का पूजन किया है, आप ये हमने कर लिया है, बाकी लाइव हम बाद में हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि इतनी सारी सामग्री हो, इस सामग्री से ऊंचा आपका भाव हो
0: जी।
1: भाव जब आपका होगा तो निश्चित रूप से जो है भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं, और जब भाव उच्चस्थ होता है तो वह हर चीज आपको प्राप्त होती है जिस चीज के लिए आप भगवान से कामना करते हो। आपको भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, प्राणी क्या मांगेगा, उससे हो सकता है मांगने में कोई जो है शब्दों में गलती हो जाए, वो आपकी हृदय की कल्पना को बहुत अच्छे से जानते
2: हैं। पंडित जी, तभी शायद कहा भी जाता है कि भगवान तो भाव का भूखा होता है। पूजा की विधि आपने बताई, आप जरा हमारे दर्शकों को भोग भी लगाते हुए दिखाई दे जरा कि
1: देखिए ये आपके मोदक हैं, और मोदक के विषय में भी बता रहा था कि यो मोदक शास्त्रेण यति समांचित फलमवाप्नोति, तो जो मोदक भगवान गजानन गणेश को विशेष प्रिय है वो प्रिय इसीलिए है क्योंकि वो लंबोदर हैं, उनका पेट जो बड़ा है और उनकी जो खाने की क्षमता है वो विशेष है। आप भगवान को भोग जब लगाएं तो ध्यान रखें कि तुलसी दल भगवान विष्णु के उसमें चढ़ता है, मैंने इसमें दूर्वा डाल रखी है, तो आप इस तरह से और भगवान को भोग आप ऐसे लगाएं मंत्र बोलते हुए, और नहीं मंत्र आता है तो आंख बंद करके आप यही करें कि प्रभु आपको यह मेरा प्रसाद जो है स्वीकार हो, त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत्। वैसे मंत्र है हरे ओम मानाभ्या आसीदंतरिक्ष गुणश्रेष्ठ समवर्तता पद्भ्याम भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणबल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा स्वदेशो नैवेद्यान्ते समर्पयामि। इस तरह से आप नैवेद्य को जो है अर्पित कर दें, और अर्पित करने के बाद आप 4 बार जल जो है कर दें, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। वैसे हमने नैवेद्य में पंचमेवा भी फल आदि सभी चीजें आपके पास जो हो जाए, जरूरी नहीं कहते भगवान की ये हो, लेकिन उस चीज में आपका भाव प्रधान हो।
0: अरविंद जी, कोई ऐसी चीज कि सिर्फ एक चीज काफी हो पूजा के लिए, क्योंकि अगर कोई इतना सब नहीं कर सकता तो क्या ऐसी चीज है जिससे सिर्फ पूजा संपन्न हो सके?
1: देखिए एक चीज कोई सामग्री विषय में तो एक चीज तो नहीं कह सकते, लेकिन यदि कुछ नहीं है तो आपके पास 2 चीजें हो, एक तो उनके लिए प्रसाद और दूसरा उनके लिए दूर्वा। भाई किसी भी प्राणी को जब तक कुछ आप खिलाएंगे नहीं तो उनकी क्षुधा कैसे होगी। और वैसे कहते हैं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, इनके विषय में जो कहा गया ना कपित्थ माने कैंथा के लिए, और ये जो जितनी भी ये मैक्सिमम मोदक खाती थी, तो मोदक क्या होता है मीठा होता है, तो मीठा जो है शुगर की लेवल को बढ़ाता है, तो जामुन और आपकी क्या नाम थे कपित्थ ये आदि खाने के बाद जो है आपका शुगर का लेवल कम रहता है। ये पहले ही शास्त्रों में वर्णित है, ऐसा नहीं कि आज शुगर का हमें पता चल रहा है, आपका श्लोक है ना कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम सो कविनाशकाम उमा सुतम सो कविनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो आप जो है भगवान गजानन को मीठा में मोदक ना हो, कुछ भी हो जाए वो भी चलेगा, लेकिन प्रसाद और कुछ आप जो है दूर्वा अर्पित कर दे, इतने में भी वो भगवान जो है प्रसन्न।
2: तो पंडित जी से आपने हेल्थ के बारे में भी जान लिया कि मोदक जो है वो पहले भी लोग उसको मीठे को लेके उतने ही सतर्क थे जितने आज हैं। पंडित जी से आगे भी हम लेंगे जानकारी, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं दिल्ली। मुंबई के लालबाग के राजा के तर्ज पर दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में भी लालबाग के राजा की स्थापना की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणेश पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान जैसे ही बप्पा के प्रथम दर्शन लोगों को हुए, पूरा पंडाल बप्पा के जयकारों और मंत्रोच्चार से गूंज उठा।
0: इस खास मौके पर 2100 लोगों ने एक साथ शंखनाद का रिकॉर्ड भी बनाया। और इस पंडाल में गणेश उत्सव के दौरान क्या क्या होने वाला है, देखिए हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा की एक खास रिपोर्ट।

0: गणेश उत्सव की धूम पूरे हिंदुस्तान में है। मुंबई के लालबाग के राजा के बाद अब लालबाग के राजा दिल्ली में भी पहुंच चुके हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो लालबाग के राजा हैं उनको एकता पंडाल में सजाया गया है। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं दिल्ली के लालबाग के राजा की। गणेश उत्सव की धूम दिल्ली में भी देख रही है और एक तरफ जहाँ गणेश उत्सव हो रहा है वहीं दूसरी ओर शंखनाद भी हो रहा है। आज जो है शंखनाद की कवायद भी की जा रही है। लगभग 2100 शंखों का नाद एक साथ करने की तैयारी भी यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर जितने भी लोग आए उनके हाथों में शंख देख सकते हैं और भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये पीतमपुरा का एनएसपी इलाका है जहाँ पर एक बड़े से ग्राउंड में ये भव्य आयोजन किया गया है।
1: गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति उत्सव का आपके 10वां साल है, 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। गणपति की जनता मन्नतों के देवता प्रभु, जो मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी करते हैं प्रभु, तो उसके हिसाब से लोगों की जनसंख्या हर बार बढ़ती जा रही है। गणपति जी का आशीर्वाद लेने अपनी मन्नत करवाने के लिए लोग बाग दर्शन करने आते हैं। हमने भव्य पंडाल मेला झूला खाने का सब सिस्टम हाइजीन रोजाना भजन संध्या अलग अलग संत अलग अलग महात्माएं रोजाना भजन कर रहे हैं।
2: गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। तो पूजा पूरे विधि विधान से हमारी पूजा हो गई है, भगवान को भोग लग चुका है। अब पंडित जी से हम अनुग्रह करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए आरती शुरू करें।
3: जी जी जरूर। जब आप आरती करते हैं तो सबसे पहले ऐसे जल का जो है घुमाव करते हैं और आरती को आप यूं उठाएं और भगवान के जो है सामने कैसे क्या घुमाना है बता ही चुका हूं। हरि ओम।

0: हारी कामना को पूर्ण करें जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूरार्तिक्यन्ते समर्पयामि जलेन शीतलेह करणम पुष्पै देवाधिवंदनम। ऐसे आप आरती दिखा करके और फिर आरती को जो ऐसे लेते हैं उस आरती में भी एक विशेषता यह होती है कि उस लव में परमपिता परमात्मा का दिव्य तेज होता है, उस तेज को हम अपने मस्तक में अपने मुखमंडल में धारण करें।
1: तो चलिए, हमारी पूजा अभी सुबह की संपन्न हो चुकी है, दिन भर गणेश उत्सव की धूम जीएनटी पर बनी रहेगी, कवरेज जारी।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है।
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देशभर में गणेशोत्सव की रौनक, दूसरे दिन विधि विधान से हो रही है गजानन की पूजा अर्चना। गुड न्यूज टुडे पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर में भक्तों का मेला, करोड़ों रुपए के आभूषणों से बप्पा का श्रृंगार, गणपति को पहनाई गई पेशवा के काल की पोशाक। बॉलीवुड पर चढ़ा गणेशोत्सव का रंग, अभिनेता राजपाल यादव के घर पधारे गजानन, एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर बप्पा की भव्य आरती। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक, बप्पा को अर्पित किए गए 125,000 लड्डू, मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला। हिमाचल के नाहन में ऋषि पंचमी समारोह का जश्न, महासू के भक्तों ने किया अग्नि चलन अनुष्ठान, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। भारत की मदद से रोशन होंगे नेपाल के घर, पड़ोसी देश को 18 घंटे बिजली सप्लाई करेगा भारत, फ्लड डैमेज के बाद राहत मिशन के तहत फैसला।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 सितंबर 2026 दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रातः 7:44 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:21 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, गणपति महोत्सव का पावन समय चल रहा है और इसीलिए आज हम गणेश जी की महिमा का एक विशेष एंगल आपको बताने वाले हैं। गणेश जी का वास्तु के साथ क्या संबंध है? देखिए, भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं बल्कि विघ्न नाशक, दोषों को बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि प्रदाता हैं। भगवान गणेश की कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश हो जाता है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई घर और कार्य स्थल के वास्तु दोष भगवान गणेश की सही मूर्ति लगाने से नष्ट हो सकते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि भगवान गणेश के चित्र का, मूर्ति का प्रयोग कैसे करें ये आप जान लें और ये आप समझ लें। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश की विभिन्न रंग की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है और इन रंगों की अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग प्रतिमाएं घर के विशेष स्थान में लगाने से वास्तु दोष का नाश होता है। आपके घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों ना हो, अगर आप सही तरीके से सही रंग की, सही आकृति की गणपति की मूर्ति लगाएंगे तो वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी। धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।
कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए दिखाई दे रही है। करियर में अभी रुकावट रहेगी। पारिवारिक समस्या का ध्यान दें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करते हैं तो उसके नियम क्या हैं? याद रखिए, गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां अपने घर में ना रखें और पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां कभी ना रखें। गणेश जी की वही प्रतिमा घर में स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड़ बाई तरफ हो, लेफ्ट साइड में हो, और बहुत बड़ी मूर्ति न रखें। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल यानी आधे फिट से ज्यादा ना हो तो बेहतर होगा। पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र सर्वोत्तम माना जाता है। इसको स्थापित करना सबसे ज्यादा शुभ है और आप अपने घर में गणपति की स्थापना कर रहे हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा करिए और गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित मत करिएगा। वैसे तो गणपति की कृपा से आप किसी भी दोष को दूर कर सकते हैं। वो विघ्न नाशक हैं, संकट हरने वाले हैं। वास्तु दोष कैसे गणेश जी की कृपा से दूर होगा? बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाइए या इसी रंग का चित्र लगाइए। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रहण मत करिए। एक साथ बहुत सारी गणपति की मूर्तियां ना लगाएं। एक स्थान पर केवल एक मूर्ति रखें। शयन कक्ष में, बेडरूम में वैसे तो किसी भी भगवान की मूर्ति न रखें, लेकिन गणपति की मूर्ति बिल्कुल भी आपको बेडरूम में नहीं रखनी है। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही आप गणेश जी की मूर्ति लगा सकते हैं। बाहर की तरफ गणेश जी की मूर्ति न लगाएं। अपने घर के पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र लगाएं। रोज सवेरे पूजा में गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, दूब अर्पित करें। घर में बहुत सारे गणपति अगर आप लगाना चाहते हैं तो तमाम गणेश जी की मूर्तियां लगाने से बेहतर है कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगाएं या जगह जगह पर लाल रंग

शांति और समृद्धि आ सकेगी। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन गए हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। किस तरह के गणेश जी की मूर्ति कहाँ लगाई जाए या किस रंग का चित्र गणपति का कहाँ लगाया जाए जिससे समस्याएं और वास्तु दोष दूर हो जाएं। गणेश जी की धातु की प्रतिमा अगर मेटल की प्रतिमा है, चांदी की है, पीतल की है, तांबे की है, तो इसको लिविंग एरिया में लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर गणपति की मेटल की मूर्ति लिविंग एरिया में लगाते हैं तो इससे घर के लोगों में आपसी प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ेगा। सफेद रंग के गणपति की छोटी सी प्रतिमा या चित्र धन स्थान पर रखें, निरंतर धन आता रहेगा और आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा या पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति पूजा स्थान पर रखेंगे, ऐसा करने से हर तरह की विघ्न बाधाएं आपके जीवन से दूर होंगी। हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति या हरे रंग के गणेश जी का चित्र पढ़ने या काम करने के स्थान पर रखें, ऐसा करने से शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में अच्छा होता जाएगा, काम की तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान दें, अनाज का दान कर लें तो दिन बेहतर होगा।

मीन राशि करियर पर विशेष ध्यान दें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, जब आप गणपति की मूर्ति या चित्र लगाते हैं घर के अंदर की तरफ, यानी गणपति की पीठ बाहर की तरफ होगी और चेहरा अंदर की तरफ होगा, यानी जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको गणपति के दर्शन होंगे। इस तरह से अगर आप अंदर की तरफ गणपति की मूर्ति लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणपति का चित्र या मूर्ति लगाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। मेन डोर पर देवी देवताओं का चित्र बिल्कुल मत लगाइए, उचित नहीं है। मेन डोर पर आप कोई प्रतीक, कोई चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे ओम लिख के लगा सकते हैं, जैसे स्वस्तिक बना सकते हैं, जैसे शिव जी का त्रिशूल लगा सकते हैं। कोई चिन्ह या कोई प्रतीक, या सबसे अच्छा होगा कि मेन डोर के दोनों तरफ राइट भी और लेफ्ट भी एक एक स्वस्तिक लाल रंग का बना के लगा दिया जाए, या लाल रंग के स्वस्तिक का चित्र वहां लगा दें, तो ऐसा करने से घर में शुभता ज्यादा आएगी। अगर नियमित रूप से आप धन का आगमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निरंतर आपके पास धन आता रहे, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करिएगा। तुलसी दल अर्पित करके अगर मंगलवार को प्रार्थना करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो क्या करेंगे? गणेश महोत्सव का पावन समय चल रहा है, सफेद रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करें या सफेद रंग के गणपति का चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उनको दूर्वा अर्पित करके प्रार्थना करें और रोज शाम को कपूर जलाकर उनकी आरती करें। निरंतर 3 महीने तक ऐसा करते जाएं, आपको जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

बहू और बेटियां में आज देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में छाया सेलिब्रेशन का खुमार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

किसी गांव से एक आदमी गुजर रहा था, उसके पास में रहे होंगे 19-20 ऊंट। ऊंट लेकर के जा रहा था, पुराना जमाना, राजस्थान की बात है, ऊंटों को लेकर के चला जा रहा था। रात हो गई तो उसे ठहरना पड़ा। जैसे ही रस्सियां निकाली थैला से, झोला से, तो 18 ऊंटों को तो बांध दिया, पर एक ऊंट रह गया। क्योंकि या तो उसे लगा कि हम रस्सी ला नहीं पाए, या रस्सी कहीं गिर गई। अब वो बड़ी टेंशन में पड़ गया कि इस ऊंट को बांधा कैसे जाए। वेद प्रकाश ध्यान से सुनना, वो आदमी सामने एक झोपड़ी में आदमी रहता था, पड़ोसी सराय में रहने वाला एक झोपड़ी वाला आदमी था। उसे लगा कि इस आदमी के पास जाएं, बूढ़े आदमी के पास, शायद ये कोई रस्सी दे दे, ऊंट को बांध दिया जाए, वरना बड़ी दिक्कत होगी, रात भर ये भी खड़ा रहेगा, हमको भी रखवाली करनी पड़ेगी, और सो नहीं पाएंगे तो दिन में चलने में दिक्कत होगी। तो वो पड़ोसी के पास गया, जहां रुका था उस झोपड़ी में गया, तो प्रार्थना की कि क्षमा करो, मैं एक यात्री हूं और मैं 19 ऊंटों का जत्था लेकर के जा रहा हूं, और मेरे पास 18 ऊंटों की रस्सी तो है, लेकिन एक रस्सी गिर गई, तो अगर आप बुरा ना मानो तो सुबह तक के लिए मुझे रस्सी दे दो, कल मैं जाऊंगा तो रस्ते में कहीं से खरीद लूंगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे पास तो ऐसी कोई रस्सी नहीं, मैं तो बहुत फक्कड़ आदमी हूं, और रस्सी क्या, मेरे पास तो एक कपड़ा ही है, वो मैंने पहन रखा है, वरना मैं कपड़ा दे देता, पर अगर मैं कपड़ा दूंगा तो मैं नंगा हो जाऊंगा, एक ही धोती है मेरे पास और रस्सी तो दूसरी है नहीं। तो इस आदमी ने कहा कि अब तो बड़ी दिक्कत हुई, लगता है मुझे रात जागना पड़ेगा, लगता है मेरी रात आज व्यर्थ जाएगी। तो उस बूढ़े आदमी ने बुला के कहा, इधर आओ, सुनो, तुझे पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। तो बोले मैं करूं क्या, बोले कुछ करने जैसा है, तू एक काम कर, जैसे रस्सी बांधता है वैसे ही नाटक कर, झूठ मूठ का एक खूंटा गाड़, उसके गले में हाथ लगा ताकि उसे लगे कि रस्सी बांध रहे, और झूठ मूठ के खूंटे के पास जाकर झूठ मूठ की रस्सी बांधने का नाटक कर, ये तुझे पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। उसने कहा ऐसे में हो सकता, बोले तू करके तो देख, ट्राई अगेन। वो आदमी आया वापस, उसने वही काम किया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ की गले में हाथ लगाया, रस्सी जैसे बांधने का नाटक किया, और उसने जैसे ही रस्सी से खूंटा में बांधा और दबकार करके ऊंट को कहा कि बैठ जा, ऊंट बैठ गया। इसको लगा कि बहुत अच्छा उपाय, बड़ा प्यारा उपाय, और पूरी रात आराम से गुजर गई। सुबह हुआ तो बाकी 18 ऊंटों को उसने रस्सी खोली, रस्सी थैले में फिर से भरी। अब 19वें ऊंट को वो एक घंटे तक उठाता रहा, वो उठे ही ना। अब ये आदमी बड़ा परेशान, ना वो चले ना वो उठे। तो इस आदमी को लगा कि हो सकता है जो बूढ़ा दादा रहता है झोपड़ी में, वो कोई तंत्र मंत्र जानता है, और उसने रात को कोई ऐसा तंत्र मंत्र बता कर दिया है कि अब ऊंट उठ नहीं रहा। तो वो भागा भागा गया कि क्षमा करो, मैं रात को भी आया था, मैं सुबह फिर आ गया। तो बूढ़े दादा ने कहा कि क्यों आए हो, बोले बड़ी बात तो कुछ है नहीं, आपने रात को जिस ऊंट को झूठ मूठ की रस्सी बांधने को कहा था मैंने किया, और आपकी कृपा से काम तो सफल रहा, लेकिन अब एक नया लफड़ा फंस गया। बोले क्या, मैं सुबह से 2 घंटा हो गया ऊंट को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उठ नहीं रहा। तो बूढ़े दादा ने कहा कि अरे मूर्ख, अरे पहलवान, तूने जैसे रस्सी बांधी थी वैसे खोल तो। तो उस आदमी ने कहा कि जब बांधी नहीं थी तो खोलूं क्या, बोले यही तो मैं कहना चाहती हूं, जो बांधी थी वही खोल दे। और आदमी वापस आया, उसने ऊंट की रस्सी खोली, और ताज्जुब यह रहा कि ऊंट उठ भी गया और चला भी। अब बताओ, रस्सी थी भी नहीं और रही रात भर, रस्सी खोली भी नहीं, नहीं खोली भी नहीं और ऊंट खुल गया। यही वेद प्रकाश तुम्हारा और हमारा हाल है, और पंचकुला के पागलों यही तुम लोगों का हाल है। हमने झूठ मूठ के रिश्तों को अपना रिश्ता बना लिया है, तो हम लोग फंसे हुए हैं। ये रिश्तों की डोर को तोड़ दी जाए, इस दुनिया में कोई भी बंधन है नहीं है, ना किसी से कोई बंधन है, हमने मान लिया तो बंधन है। तो तुमने पूछा कि बंधन से मुक्त कैसे हूं, एक ही उपाय है, अगर तुम कहीं बंध गए हो तो तुम मुक्त होना भी प्रारंभ करो कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। इसलिए अक्सर हम एक गीत की लाइनें बहुत बोलते हैं, नाता एक राम जी से,

0: अपना संबंध बनाना ही है, नाता जोड़ना ही है, तो वेद प्रकाश राम जी से नाता जोड़ो। राम जी से नाता जोड़ोगे सब अपने हो जाएंगे। तुम संसार से नाता जोड़ोगे फुटकर फुटकर फुटकर बनाते ही रहोगे अपने, और एक दिन सब ताश की गड्डी की तरह बिखर जाएंगे। लेकिन अगर तुम राम जी से नाता जोड़ लोगे तो तुम्हें दुनिया को अपना बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाए। और आपने पूछा कि बंधन की मुक्ति का उपाय क्या, बंधन की मुक्ति का यही उपाय है। फिर भी हम एक सूत्र दे देते हैं, अगर तुम लोग हमारी आज की ये कथा सुनोगे तो शायद बहुत लोग सन्यास लेने की सोच लें। तो हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाह रहे, वरना तुम्हारी लुगाइयां हमारे ऊपर FIR करेंगी कि बागेश्वर बाबा की कथा सुनने गए थे और बाबा ने छुड़वा दिया घर बार। नहीं नहीं नहीं, हम आपको एक उपाय और दे सकते हैं। अगर हमारी अब तुम मानो तो तुम घर में भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, लुगाई के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, बच्चों के भी रहोगे और भगवान के भी रहोगे, संसार के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, महात्मा के भी रहोगे और परमात्मा के भी रहोगे, अपने निजी लोगों के भी रहोगे और सबके रहोगे। अगर वो उपाय जानना चाहते हो तो एक सूत्र है जिंदगी में उतार लेना, तुम तन से संसारी हो जाओ मन से सन्यासी हो जाओ। बहुत सटीक सूत्र है, तुम तन से तो संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ। तुम्हारा मन ऐसा रहे जैसे कोई सन्यासी चला आ रहा हो, माथे पर तिलक हो या ना हो पर वाणी में उसकी याद जरूर होनी चाहिए, गले में माला हो या ना हो कोशिश पर होनी चाहिए, पर ना भी हो चल जाएगा पर याद रहे, हिंदुत्व फीका नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पागलो, तुम अगर तन से संसारी मन से सन्यासी रहोगे जीवन तुम्हारा सुधरा रहेगा। एक बात और जो कहने जैसी है, आपने पूछा है कि बंधन से मुक्त कैसे हो, देह को मैं मत मानो, तै में तोर, तोर में माया। एक पेड़ पर की डाली पर दो तोता बैठे, एक तोता ने पेड़ को अपना मान लिया, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये आम देता है तो यही हमारा है, उसको अपना मान लिया। एक दूसरा तोता रहता, वो कहता है कि ये है तो पेड़, आम तो खिलाने को दे रहा है पर ये अपना नहीं है क्योंकि इस पे तो हजारों पक्षी आएंगे और जाएंगे। ऐसे ही संसार है, अगर तुम संसार को अपना मान लोगे तो तुम अहमता में भर जाओगे, झूठी दुनिया के चक्कर में फंस जाओगे। संसार को तुम सराय समझो, बस स्टैंड, यात्री आते हैं जाते हैं, यही शरीर का हाल है, आएंगे और जाएंगे, यही इस दुनिया का हाल है, जो आया है वो जाएगा,
1: आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर, धर्मी सिंहासन चढ़े और पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात।
0: एक गांव में इतने पागल लोग रहते थे, उनके गांव में दिया नहीं जलता था, लाइट नहीं थी, पुराना जमाना, 80-90 साल पुरानी बात। तो गांव भर क्या करता था, पूरी रात जागता था और हाथ में तसला लेता था जैसे ही शाम होता था, और लोग पूछते थे एक दूसरे से क्या कर रहे, बोले चलो अंधेरे को ढोएं, मकान में जाएं, तसले में ऐसे ऐसे भरें और बाहर फेंकें, फिर भरें, फिर पूरी रात यही करते थे। और सुबह आते ही जैसे ही सूर्योदय होता था, अरे भैया भग गया भग गया भग गया, फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया, ठठरी के बरे क्या हलवा फेंका। अरे वो तो सूर्योदय आते ही अपने आप अंधेरा भाग जाता है, लेकिन उनको लगता था कि हम भगा रहे तो अंधेरा भागा है। पूरी रात यही हुआ। इतने में एक लड़की की शादी हुई, लड़की थी पंचकुला की, नाम था मुन्नी बाई, मुन्नी बाई की शादी हुई उस गांव में। अब रात भर फिर से घर वाले जागने लगे तो उस बहू ने पूछा ये रात को लोग शोर क्यों मचा रहे हैं, तो पति ने कहा सब लोग अंधेरा ढोने के लिए जा रहे हैं, अंधेरे को भगाने के लिए जा रहे हैं। लड़की बोली बड़े पागल हो, चूंकि पंचकुला की लड़की होशियार तो होती ही है, बड़े पागल हो, कहीं अंधेरा ढोया जाता है। पति बोला चुप रहे, हमारे दादा परदादा करते रहे, तू आके मुंह चला रही। वो कुछ ना बोली, बेचारी समझदार तो थी। दूसरे दिन उसने कुछ नहीं किया, चार बत्ती बनाई, थोड़ा सा घी डाला और जैसे ही अंधेरा हुआ सो दिया को जला दिया और जैसे ही जलाया आ हा हा पूरा घर खुश हो गया, वाह भैया वाह, गजब की बहू आई है, हम लोगों को अंधेरा नहीं ढोना पड़ रहा, अंधेरा भाग गया। दूसरे दिन गांव वालों ने पूछा, भैया आज तुमने अंधेरा नहीं ढोया, आवाजें नहीं आई। बोले हम तो भैया सोते रहे, बहू ऐसी आई कि वो ऐसा चमत्कार करती है कि अंधेरा चला जाता है। लोगों ने बहू से पूछा मंत्र बताओ, अरे बोले मंत्र वंत्र कुछ नहीं है, दिया जलाओ अंधेरा भाग जाएगा। ऐसे ही तुम अपने अंदर में अज्ञान का जो अंधेरा रख रखे हो उसको लेकर टेंशन मत लो, हनुमान जी के ज्ञान के प्रकाश का दीपक जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। बोलो सीताराम। अब संकट आ गए तो क्या करें? आहा

जी का भजन करेगा, हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसके संकट कट जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो संकट काटने के लिए, संकटों को मिटाने के लिए हनुमान जी देखो क्या है। हमें एक भजन याद आ गया, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हम तो फ्री हैं। किसी ने कहा मरना क्यों चाहते? अरे जिन नेत्रों से रघुनाथ जी को ना देख पाए वो शरीर तो छोड़ देना चाहिए, जीने से क्या फायदा। और कितनी अद्भुत बात है, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति ना हो उसका जीवन किसी काम का है क्या? ऐसे समझो, नदी हो पर नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो। अच्छा, कोई व्यक्ति या स्त्री बहुत सुंदर हो लेकिन नाक कटी हो, किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, तीसरी बात, मिठाई हो पर मीठी ना हो, मिठास ना हो तो क्या उसे मिठाई कहोगे? बोलो हाँ या ना। अच्छा, चौथी बात, रात हो लेकिन अंधेरा हो ना तो क्या उसे रात कहोगे? हाँ या ना। नहीं, विद्यालय हो पर विद्या ना पढ़ाई जाती हो तो क्या विद्यालय कहोगे? भोजनालय हो पर भोजन ना बनता हो तो क्या उसे भोजनालय कहोगे? मंदिर हो पर मूर्ति ना हो तो क्या प्रणाम करोगे? नहीं। उसी प्रकार इंसान हो लेकिन इंसानियत ना हो तो क्या इंसान कहोगे? नहीं। उसी प्रकार इंसानियत हो पर भगवान की भक्ति ना हो तो क्या उसे इंसान कहोगे? नहीं। जैसे पानी के बिना नदी का महत्व नहीं, शंख के बिना आरती का महत्व नहीं, पुरुष के बिना स्त्री का और स्त्री के बिना पुरुष का महत्व नहीं, पुत्र के बिना मकान का महत्व नहीं, गुरु के बिना शिष्य का महत्व नहीं, भगवान के बिना भक्त का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार भक्ति के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। है? भक्ति नहीं तो जीवन किस काम का? भक्ति जीवन में नहीं आवे प्रिय श्रोताओ तो जीवन मिलना ना मिलना। अच्छा, तुम क्या इसीलिए पैदा हुए हो कि जन्म लिया, बड़े भाई पढ़े पढ़ने गए, बीए की नौकरी की लुगाई मिली, बच्चे भय और मर गए, क्या इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ? ना ना ना, केवल इसलिए जन्म नहीं हुआ। बोले फिर किस लिए जन्म हुआ? संत कहते हैं मेरे पागलो, भगवान ने जन्म तो भगवान को पाने के लिए जन्म दिया है। जीते जी भगवान को जान जाओ, जीते जी भगवान को पा जाओ। अब तुम लोगों ने वृथा जीवन बहुत खो दिया भैया, बहुत समय गवा दिया, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। व्यर्थ गवा रहे हो, सो सो कर गवा रहे, कुछ लोग खा खा कर गवा रहे हैं, अपना खा रहे, दूसरे का भी खा रहे और तीसरे का भी खा रहे, घर भर का खा रहे, समाज का खा रहे, देश का खा रहे, फिर भी पेट नहीं भर रहा है, फिर भी खा रहे। उनसे कहो जो खाना चाहिए वही खाओ, नहीं। आदमी एक ऐसा है, अच्छा तुम कभी विचार करना, एक बात बताओ, शेर कितने भी दिनों का भूखा हो, एक महीने का, दो महीने का, तुम उसके सामने पिज्जा रख दो खाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। अच्छा, गाय कितने भी दिन की भूखी हो, मांस रख दो क्या खाएगी? बोलो बोलो। नहीं, शेर पिज्जा नहीं खाता, गाय गंदा भोजन नहीं खा सकती, और आदमी कुछ भी धर दो सब खा जाता है। एक आदमी ऐसा है, कुछ भी धर दो सब खा जाता है, और ज्यादा समझाओगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। हाँ, ज्यादा उसे ज्ञान दोगे तुम्हारा भेजा खा जाएगा। आदमी बहुत विचित्र है, इसलिए हम एक प्रार्थना तुम लोगों से करना चाहते हैं। आज हम एक बात पढ़ रहे थे, है तो थोड़ी सी कड़वी पर बुरी लगे तो लगने दो, हमें क्या करना। आजकल सांप बेरोजगार हो गए, सांप बेरोजगार हो गए, तो हमने सांपों से पूछा, पंचकुला का ही था हम, हाँ, सांप तो पंचकुला में ही पाए जाते हैं। हमने सांपों से पूछा, आजकल तुम काम धाम नहीं करते, सांप बेरोजगार हो गए क्योंकि कुत्ते काटने लगे, और कुत्ते भी आजकल काम नहीं करते हैं क्योंकि आदमी आदमी के तलवे चाटने लगे। हाँ, सांप काटते नहीं है, बेरोजगार हो गए। हमने पूछा क्यों नहीं काटते, बोले आदमी ही इतना आदमी को काट रहा है कि हमारे जहर की जरूरत ही नहीं है।
सांप कह रहा है कि हमारे जहर की जरूरत नहीं, आदमी ही आदमी को काट रहा है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, तुम अपने बच्चे को बीए पढ़ाओ, एमए पढ़ाओ, पीएचडी पढ़ाओ, डीएड करवाओ, बीएड करवाओ, शिक्षा में भेजो, कलेक्टर बनवाओ, आईपीएस बनाओ, पर एक प्रार्थना है, उनको सबसे पहले इंसान बनाओ। भैया तुम्हारी बेटी या बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, लेकिन अगर वो इंसान नहीं बन पाया तो उसकी पढ़ाई लिखाई नौकरी किसी काम की नहीं है। तुम्हारी बेटी या बेटा तुम्हें छोड़कर चले जाए, उसे संस्कार ना दे पाए कि तुम्हारे साथ रहें, उसकी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत किसी काम की नहीं है। तुम अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर उनको संस्कार देना मत भूलो।

बहू और बेटियां में आज देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में छाया सेलिब्रेशन का खुमार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड कर करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या कंधे का दर्द हो या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शार्प को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
22: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी, तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
23: टीवी पे फौजी के बारे में देखा,
0: तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से भाइयों पर निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
2: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
3: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है, ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
24: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
24: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में गणेश उत्सव की रौनक का दूसरे दिन विधि विधान से हो रही गजानन की पूजा अर्चना, जयंती पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर में भक्तों का लगा मेला, करोड़ों रुपए के आभूषणों से बप्पा का हुआ श्रृंगार, गणपति को पहनाई गई पेशवा की काल की पोशाक। बॉलीवुड पर चढ़ा गणेश उत्सव का रंग, अभिनेता राजपाल यादव के घर पधारे गजानन, एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर बप्पा की भव्य आरती। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की रौनक, बप्पा को अर्पित किए गए 1,25,000 लड्डू, मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा मेला। हिमाचल के नाहन में ऋषि पंचमी समारोह का जश्न, महासु के भक्तों ने किया अग्नि चलन अनुष्ठान, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। भारत की मदद से रोशन होंगे नेपाल के घर, पड़ोसी देश को 18 घंटे बिजली सप्लाई करेगा भारत, फ्लड डैमेज के बाद राहत मिशन के तहत लिया गया फैसला।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: देश भर में गणेश उत्सव की रौनक, लालबाग चौराहे के दर्शन को लेकर उमड़ रही भक्तों की भीड़। पप्पा के भव्य स्वरूप और मुख दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतारें, मुंबई पुलिस और मंडल कार्यकर्ता संभाल रहे व्यवस्था। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए चिंचपोकली चौराहे गणपति पंडाल में इकट्ठे हुए भक्त, 107 साल पुराना है चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल। गणेश उत्सव पर पुणे में दिखा विशेष उत्साह, महिलाओं ने किया गणेश अथर्वशीष का पाठ। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत डगरूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में हुआ यह धार्मिक पाठ, करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने किया गणेश का पाठ। पुणे में गणेश उत्सव के दौरान विघ्नहर बप्पा का हुआ लौकिक श्रृंगार, करोड़ों रुपए के सोने के गहनों से सजे विघ्नहर का। बप्पा का ये दिव्य और भव्य रूप भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना, 200 साल से भी अधिक पुराने पारंपरिक और ऐतिहासिक गहनों से होता है श्रृंगार। बप्पा के सिर पर सजा भव्य नक्काशी वाला सोने का मुकुट, माथे पर हीरा और चंद्रकोर की सजावट, सिर पर छत्र के साथ देखते ही बन रहा है विघ्नहर बप्पा का ये शाही रूप। गणपति बप्पा के 5 दिवसीय जन्मोत्सव के अवसर पर बप्पा को पहनाए गए पेशवा कालीन पोशाक, साल में सिर्फ 2 बार भक्तों को देखने को मिलता है बप्पा का यह अद्भुत स्वरूप। इस मौके पर पूरे मंदिर परिसर की हुई भव्य सजावट, फूलों और रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया गणपति का दरबार। गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की दिखी रौनक, भगवान को लगाया गया 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग। विघ्नहर्ता के दर्शनों के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, सुबह पंचामृत अभिषेक के साथ हुए बप्पा के मनमोहक दर्शन और उनका श्रृंगार। अपने तीनों स्वरूप चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान है गणपति। मान्यता है कि श्री राम लक्ष्मण और माता सीता ने की थी इस मंदिर की स्थापना। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा, 200 साल से जारी है ये शाही परंपरा। ढोल नगाड़ों के बीच राजमहल पहुंची बप्पा की मूर्ति, राजमहल के भव्य दरबार हॉल में राजवी परिवार की मौजूदगी में राजपुरोहित ने की पूजा अर्चना। राजगढ़ में 15 फीट ऊंचे चिंतामण गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालुओं ने के दर्शन। ढोल नगाड़ों के बीच हुई महाआरती, बप्पा को लगाया गया लड्डुओं का भोग। गणेश उत्सव के लिए मंदिर में की गई आकर्षक लाइटिंग, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भक्तों की आस्था का केंद्र है 164 साल पुराना यह मंदिर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने गणेश चतुर्थी पर की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। लालबाग चौराहे के दर्शन के लिए पहुंचे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की प्रार्थना टेका मत्था। मुंबई में अंबानी परिवार में भी हुई बप्पा की स्थापना, फिल्मी हस्तियों समेत सियासी हस्तियों ने इसमें की शिरकत। राधिका मर्चेंट ने भगवान गजानन का स्वागत सम्मानित सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया, सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है उनका ये डांस वीडियो। नीता अंबानी ने किया मेहमानों का स्वागत, ऑरेंज साड़ी में बेहद सुंदर लगी नीता अंबानी। अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में कई संत भी शामिल हुए और कैलाशानंद गिरी जी महाराज समेत कई संतों ने इसमें शिरकत की। बाबा बागेश्वर बाबा रामदेव ने भी बढ़ाई गणेश उत्सव की शोभा, एंटीलिया पहुंचे संत। सैफ अली खान और करीना कपूर भी बप्पा के दर्शन के लिए परिवार के साथ एंटीलिया पहुंचे, करिश्मा कपूर भी साथ नजर आई। अंबानी के घर पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी गणेश उत्सव में शामिल हुए। रितेश देशमुख की पत्नी जेलेनिया डिसूजा के साथ अंबानी के गणपति उत्सव में शामिल हुए, वरुण धवन भी यहां पर पहुंचे। अनिल कपूर भी अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में शामिल हुए, पत्नी के साथ सुनील शेट्टी भी पहुंचे एंटीलिया। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल भी अंबानी हाउस पहुंचे, गणेश उत्सव में शामिल हुए। सिंगर कैलाश खेर एंटीलिया पहुंचे, गणेश उत्सव में शामिल हुए। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी बप्पा के रंग में रंगे हुए नजर आए, पत्नी और बेटी समेत अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में शामिल हुए। एक्टर संजय दत्त भी एंटीलिया पहुंचे, एकता कपूर जितेंद्र भी अंबानी हाउस पहुंचे। कथावाचक जय किशोरी भी बप्पा का स्वागत करने के लिए एंटीलिया पहुंचे, मशहूर संगीतकार जोड़ी अजय अतुल भी साथ नजर आए। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर काजोल ने बप्पा के दर्शन के साथ मनाई गणेश चतुर्थी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर गणेश उत्सव का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए, विधि विधान से उतारी गए गजानन की आरती। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर वर्षा में गणेश स्थापना, पत्नी अमृता फडणवीस के साथ की बप्पा की पूजा। पर्व की खुशियां बांटने सीएम फडणवीस के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, भक्ति भाव से बप्पा की आरती उतारे। नागपुर में केंद्र मंत्री गडकरी के घर भी पधारे बप्पा, परिवार संघ की बप्पा की आरती, देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। नागपुर में गणेश उत्सव की धूम, ढोल नगाड़ो और गाजे बाजे के साथ भक्त अपने लाडले बप्पा को ला रहे घर। हैदराबाद का एकर गणेश पंडाल बना बच्चों की पहली पसंद, टॉफी से तैयार की गई है विघ्नहर्ता की प्रतिमा। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की तर्ज पर किया गया ये प्रयोग, प्रतिमा में कई तरह की टॉफी और चॉकलेट का किया गया है इस्तेमाल। मूर्ति की तरह ही पूरे पंडाल को भी बच्चों की थीम से ही सजाया गया है, हर साल नई थीम पर बनाया जाता है गणेश पंडाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी अलग अलग थीम पर सजे हैं गणेश पंडाल, दर्शनों के लिए भक्तों का लगातार आना जाना जारी। घर पर बप्पा बिठाने के लिए बाजारों में भी गणपति मूर्तियों की लगातार बढ़ रही है डिमांड, हर तरह के आकार स्वरूप भी प्रतिमा मौजूद। महाराष्ट्र के साकीनाका में सजा विघ्नहर्ता गणपति का दरबार, बप्पा का अलौकिक रूप देखने बड़ी संख्या में जुट रहे हैं बप्पा के भक्त। इस पंडाल में गणपति बप्पा विट्ठल के अवतार में हैं और मानव गरुड़ पर विराजमान है। बप्पा की प्रतिमा लगभग 33 फीट की है और इसका संतुलन गजब का है, बप्पा एक पैर के बूते मानव गरुड़ पर सवार है। गणेश चतुर्थी पर जामनगर में आयोजित की गई लड्डू ईटिंग प्रतियोगिता, बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में शामिल हुए बप्पा के भक्त।

कोल्हापुर में शाही ठाट बाट के साथ हुआ गणेश उत्सव का आगमन समापन। न्यू पैलेस में घुड़सवार दस्ते के साथ निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा, बजाए गए पारंपरिक वाद्य यंत्र। छत्रपति घराने के सभी सदस्यों ने पूरे विधि विधान से की बप्पा की पूजा। अमरावती में नेता नवनीत राणा के घर भी हुआ बप्पा का आगमन, विधि विधान से बप्पा की स्थापना की गई। घर में देखने को मिला भक्तिमय माहौल, परिवार के सभी सदस्य और मौजूद लोगों ने पूरे उत्साह के साथ की गणपति बप्पा की आरती। गणेश चतुर्थी पर अमरावती में एक पर्यावरण प्रेमी की शुभ पहल, बप्पा की प्रतिमा के साथ दे रहा एक पौधा बिल्कुल। बप्पा की सभी मूर्तियां भी मिट्टी से बनाई गई और

महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में एकमात्र संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है राजूर का राजूरेश्वर गणपति मंदिर। गणेश चतुर्थी पर बप्पा का हुआ भव्य श्रृंगार। पोखरण में पहली बार वायुसेना का ड्रोनाथॉन 2026। 60 से ज्यादा कंपनियां ले रही कार्यक्रम में हिस्सा। कंपनियां अपने उत्पादों और प्रणालियों का करेंगे लाइव प्रदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस ऑपरेशंस पर केंद्रित है इसका आयोजन। मानव रहित हवाई प्रणालियों और काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों पर फोकस, उद्योग जगत को जोड़ने की कोशिश। वायुसेना के शीर्ष अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हुए इसमें शामिल। आधुनिक तकनीक को परखने और भविष्य के सैन्य तैयारियों के समाधान खोजने के लिए हुआ इसका आयोजन। 16 सितंबर तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आयोजित किया गया है पहला ड्रोनाथॉन 2026। मिशन आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है इसका मकसद। गणेश चतुर्थी पर राम भक्तों को बड़ी सौगात। फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम हुआ रिलीज।

0: एआर रहमान ने दिया है संगीत, डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखे हैं इसके बोल, अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल ने दी है अपनी खूबसूरत आवाज। फिल्म हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी अब एक और पौराणिक कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए तैयार हैं। महावीर जैन फिल्म्स और विशाल चतुर्वेदी ने किया राम बोला कैमरा। नयनतारा स्टारर मुथुती अम्मा नतू का टीजर राइज ऑफ महाशक्ति किया गया रिलीज। टीजर में पौराणिक अतीत से लेकर मुश्किल भरे वर्तमान तक की कहानी की झलक पेश की गई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में छाया सेलिब्रेशन का खुमार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आप

0: आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती। और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है। पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में गणेश उत्सव की रौनक, दूसरे दिन विधि विधान से हो रही गजानन की पूजा अर्चना, जयंती पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर में भक्तों का लगा मेला, करोड़ों रुपए के आभूषणों से बप्पा का हुआ श्रृंगार, गणपति को पहनाई गई पेशवा के काल की
3: पाएंगे।
2: बॉलीवुड पर चढ़ा गणेश उत्सव का रंग, अभिनेता राजपाल यादव के घर पधारे गजानन, एक्टर अर्जुन बिजनानी के घर बप्पा की भव्य आरती।

उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की रौनक। बप्पा को अर्पित किए गए 1.25 लाख लड्डू। मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा मेला। हिमाचल के नाहन में ऋषि पंचमी समारोह का जश्न। महासू के भक्तों ने किया अग्नि चलन अनुष्ठान। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। भारत की मदद से रोशन होंगे नेपाल के घर। पड़ोसी देश को 18 घंटे बिजली सप्लाई करेगा भारत। फ्लड डैमेज के बाद राहत मिशन के तहत लिया गया फैसला।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, गणपति बप्पा जो हैं वो पधार चुके हैं। देश के कोने कोने और हर शहर के भव्य पंडालों में गणपति बप्पा मोरया की गूंज है। लेकिन बप्पा का आगमन मोदक के स्वाद के बिना तो देखिए अधूरा है। ये बात तो आप भी मानेंगे। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने जब प्रथम पूज्य गणेश जी को अमृत से बना मोदक खिलाया था, तब से ये बप्पा का सबसे प्रिय व्यंजन बन गया। गणेश पुराण के अनुसार बप्पा को 21 मोदक का भोग लगाने से वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। बप्पा के आगमन पर मोदक की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग पारंपरिक उकडीचे मोदक के साथ साथ अब नए फ्लेवर्स जैसे कि चॉकलेट और केसर मोदक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि आजकल तो मार्केट में चॉकलेट मोदक भी इजीली अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि मोदक की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसकी कहानी आखिर क्या है और ये गणपति का सबसे प्रिय भोग आखिरकार किस तरह बना।

0: गोल मटोल, सुंदर सजीला, क्या रूप सजा है। ऊपर अध्यात्म का सफेद रंग और अंदर जैसे भक्ति का भाव भरा है। मोद यानी आनंद देने वाला, इसीलिए तो नाम मोदक है। और इसका महत्व ये है कि महाकाय यानी बाप्पा को सबसे ज्यादा प्रिय है। एक मिठाई जिसका अपना इतिहास, अपनी खास परंपरा है, गणपति की भक्ति से गहरी जुड़ी है। अब जब बाप्पा पधार चुके हैं, भक्तों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही है और गजानन के सामने सजे हैं उनके प्रिय मोदक। इन मोदकों में सिर्फ मिठास नहीं, भक्तों की श्रद्धा भी घुली है। गणेश उत्सव की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मोदक है। बिना मोदक के गणपति की पूजा अधूरी मानी जाती है। पारंपरिक तौर पर नारियल और गुड़ से बनने वाला मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। भक्तों की तरफ से बापा को मोदक के भोग मात्र से शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान मोदक की खुशबू से गणपति अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं।
1: सबसे पहले 15 साल पहले मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ ने मिलके ये सोचा कि महाराष्ट्रियन फूड हेरिटेज हमें बरकरार रखना है, इसलिए हमने ये शुरुआत की, स्टार्टअप किया ये बिजनेस को। पहले तो सिर्फ 100 मोदक बिके पहले साल, उसके बाद धीरे धीरे करके अब हजारों लाखों में हमारा मोदक बना चुके हैं आज तक। हम
0: मुंबई हो या पुणे, महाराष्ट्र में हर जगह इस वक्त बड़ी तादाद में मोदक बनाए जा रहे हैं। वजह भी है, गणेश उत्सव में इनकी भारी मांग होती है, न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के दूसरे हिस्सों और यहाँ तक कि मोदक विदेश भी जाते हैं।
2: तो ये जो तारदालकर फैमिली जो पुणे के कोथुड में रहती है, ये इस तरह के जो गणपति बप्पा के लिए भोग के लिए ये मोदक बनाते हैं, लेकिन ये जो मोदक है बाहर जाते हैं, यानी कि सिंगापुर जाते हैं और महाराष्ट्र के कई कोनों में ये जो मोदक है वो जाते हैं और इसके साथ ही इनका बिजनेस भी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा एक 12 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये जो गणेश फेस्टिवल है, इस दौरान ये जो मोदक है उसका आस्वाद लेने के लिए हर कोई तरसता है।
0: मोदक का अनूठा स्वाद इसे मनभावन बनाता है। लेकिन ये भी दिलचस्प बात है कि उत्तर भारत में जहाँ भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाया जाता है, पश्चिम और दक्षिण भारत में उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है। अब सवाल है कि बापा को मोदक इतने क्यों पसंद हैं? तो सुनिए, कहानी ये है कि माता पार्वती को इंद्र ने एक मोदक दिया था, मोदक एक लेकिन पुत्र दो, गणेश और कार्तिकेय। इसीलिए माता ने शर्त रखी कि जो सभी तीर्थों की परिक्रमा करके लौट आएगा वही मोदक खाएगा। कार्तिकेय तो अपने मोर पर सवार होकर तीर्थों की यात्रा पर निकल गए, लेकिन बुद्धिमान गणेश ने झटपट अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती की परिक्रमा की और दलील दी कि माता पिता में ही सभी तीर्थ हैं। पुत्र की बुद्धिमता से पार्वती प्रसन्न हुई और मोदक उन्हें दे दिया। लेकिन मोदक से जुड़ी एक और कहानी है जिसके मुताबिक भगवान शिव माता पार्वती और गणेश अनसुईया के आश्रम पहुँचे। तमाम खाद्य पदार्थों के बावजूद बालक गणेश का पेट नहीं भरा, तब अनसुईया ने उन्हें खाने के लिए मोदक दिया था।
3: तो माता जी ने तुरंत ही मोदक बनाया और मोदक गणपति जी को दिया। जैसे गणपति जी ने मोदक खाया वैसे ही गणपति जी को तो डकार आई, साथ साथ भोलेनाथ को भी किस बार डकार आई। तो पार्वती माता जी ने पूछा कि प्रभु पाया तो मतलब गणेश जी ने खाया तो गणेश जी ने, मतलब पाना बोलते हैं संस्कृत में। तो भोलेनाथ बोले कि सभी में गणपति हैं और मैं ही गणपति का रूप हूँ, गणपति ही मेरे रूप हैं, क्योंकि अथर्वशीर्ष में लिखा है तम ब्रह्मा तम विष्णु तम दृष्टम दृष्ट गणेश, मतलब भगवान गणपति ही सभी देवी देवता के रूप माने जाते हैं। तभी से 21 मोदक गणपति जी को चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और 21 मोदक चढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि गणपति जी के मतलब प्रसन्न होते हैं और जिनके यदि कोई कार्य रुका हुआ है, कोई कार्य नहीं हो रहा पा रहा है, तो 21 मोदक यदि आप चढ़ा दें तो गणपति जी प्रसन्न हो जाते हैं।
0: चावल, नारियल और गुड़, मोदक इन तीन चीजों से बनता है और ये तीनों धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए मोदक से शुभता और पवित्रता का भाव भी जुड़ा है। मुंबई में गणेश उत्सव के रौनक शुरू होते ही मिठाई बाजार भी गुलजार है, जहां भांति भांति के मोदक सजे हैं। पूजा हो या फिर कोई आयोजन, भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है और इस खास प्रसाद से अपने आराध्य देव को प्रसन्न कर भक्त भी खुशी से झूम उठते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गणेश उत्सव की धूम हो और मुंबई के मोदक का जिक्र ना हो, ये तो भला कैसे ही हो सकता है। बप्पा के स्वागत में मुंबई की गलियां और बाजार मोदक के स्वाद से महक उठते हैं। मुंबई में वैसे तो हर कोने पर मोदक आपको मिल ही जाएंगे आसानी से, और उन्हीं में से एक है लाडू सम्राट मिठाई के खास मोदक, जहां मौजूद है मोदक के अलग अलग वैरायटीज यानी कि स्वाद। भले ही समय के साथ मोदक के स्वाद में काफी ज्यादा बदलाव आ गया हो, लेकिन तमाम आधुनिक फ्लेवर्स के बावजूद उकडीचे मोदक आज भी लोगों के नंबर वन पसंदीदा मोदक है। बप्पा की स्थापना के दिन और अनंत चतुर्दशी पर इसकी मांग सबसे ज्यादा होती है।

0: मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में, और जहाँ पर लालबाग के राजा भी विराजमान हैं, और उनसे ही सटे हुए 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही ज़्यादा सालों पुराना मिठाई का स्वादिष्ट ऐसा दुकान है जो लाडू सम्राट के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि श्री गणेश जी को जो पसंद है मोदक, उनसे ही संबंधित तमाम तरह तरह के स्वादिष्ट ट्रेंडिंग डिमांडिंग मोदक यहाँ बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, और मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा तस्वीरें देखें, ये पूरा का पूरा शॉप जो है वो मोदकों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के मोदक, छोटे बड़े मध्यम, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये बड़ा सा मोदक थोड़ा सा देखें, जो कि इस शॉप की शान भी यहाँ पर बढ़ा रहा है। साथ ही साथ ये भी प्रतीक कर रहा है कि भाई अब फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है मुंबई महाराष्ट्र में। अलग अलग तरीके के मोदक यहाँ पर सजाए गए हैं और रखे भी गए हैं, और एक तमाम संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपने मन का जो मोदक है वो लेते हैं। यहाँ देखिए सजाया गया है इस तरफ भी बहुत ही सुंदर तरीके से। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं, किस मोदक की सबसे ज़्यादा डिमांड है, और शॉप के ओनर हैं आप।
1: अच्छा,
0: क्या नाम है साहब आपका?
1: सिद्धांत राक्षे।
0: सिद्धार्थ, ये बताओ कि अब तो मोदक के लिए मैंने देखा बहुत देर पहले भीड़ लगी थी, और मैंने वेट किया कि भाई थोड़ा सा भीड़ कम हो तो मैं आपसे बातचीत करूं, कितना स्पेशल है सबसे पहले तो आप बताइए आपके लिए मोदक।
1: हमारे लिए तो बहुत स्पेशल है, सबसे ज़्यादा ये 10 दिन जो है वी लुक फॉरवर्ड टू इट, पूरे साल भर राह देखते हैं ये 10 दिन के लिए। रास्ता बंद हो जाता है, भीड़ इतनी रहती है, नेटवर्क जैम हो जाता है, सब बहुत केयरटेक रहता है, बट यही तो मज़ा है 10 दिन।
0: अच्छा, ये बताइए कि गणेश जी को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है, और यही वजह कि आप भी जो है प्रसाद के रूप में सबको दे रहे हैं, आपको क्या पता है गणेश जी और मोदक का आपस का प्रेम कुछ अगर पता हो तो?
1: पता है, मतलब उनका सबसे फेवरेट है, हमारे आरती बचपन से आरती गाई जा रहे हैं कि उनको कितना पसंद है उसका, एंड इस वजह से और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम वो प्रसाद बनाते हैं, बीट उकड़ी मोदक, मावा मोदक, कड़क बूंदी मोदक, सब तरीके के मोदक बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन सा मोदक मांगा जा रहा है यहाँ पर आकर, सबसे ज़्यादा ट्रेंड में क्या है?
1: सबसे ज़्यादा ट्रेंड में तो मावे के मोदक से है, उसके अलावा काजू के मोदक जो है, ड्राई फ्रूट मोदक वगैरह। इस साल जो आपको मालूम होगा इतने सारे इंसिडेंट्स हुए ये साल में कि बिकॉज ऑफ वॉर या जो भी है, शुगर प्राइजेस वगैरह की वजह से सब प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़े हैं, बट इस बार भी हमने प्राइजेस बढ़ाए नहीं, सो इस वजह से थोड़ा और इनफ्लो ज़्यादा है।
0: नहीं, ये बात तो अच्छी है कि आपने प्राइस नहीं बढ़ाया, क्योंकि भाई फेस्टिवल है आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा बताएं कि ये जो मोदक है आजकल चॉकलेट का भी तो डिमांड है, लोग मांग रहे हैं।
1: हाँ, चॉकलेट मोदक का डिमांड है, बहुत पसंद है, उसमें हम सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट के नहीं बनाते, हम चॉकलेट मावा, चॉकलेट ड्राई फ्रूट काजू में, चॉकलेट के फ्लेवर में, उसके अलावा अंजीर, स्ट्रॉबेरी, बिस्कॉफ, ये सब थोड़े बहुत फ्लेवर्स हमें हम बनाते हैं, बट हमारा क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिशनल ब्रांड है तो हम ट्रेडिशनल मोदक ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कंदी मावे में मोदक हो गया, या फिर खोबरा मावा का मोदक हो गया, आंबा मावा का मोदक।
0: मोदक है ना जो मराठियों के घर में हमेशा ही बनाया जाता है, जो चावल का बनता है, वाइट वाइट, क्या नाम?
1: उखड़ी मोदक, वो भी हमारा स्पेशलिटी है, हम वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं उखड़ी के मोदक। सो गणपति के जो फर्स्ट गणपति जब भी विराजमान होते तभी सबसे ज़्यादा उनका उस आइटम का भोग लगता है, सो पहले दिन ही हमारा रात को 2 बजे से लेके वो पूरा फर्स्ट डे हम उखड़ी मोदक ही बनाते बैठते हैं।
0: सफ़ेद कलर का मोदक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जितने ज़्यादा बप्पा खूबसूरत लगते हैं उतने ही ज़्यादा देखिए मोदक भी कितने शानदार प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा है थोड़ा सा बताएं?
1: ये वाला खोबरे का, ये खोबरा मावा है, ये रेगुलर मावा मोदक है।
0: खोबरे मावे के अंदर ये पूरा खोबरा है, इसके अंदर कुछ होता नहीं है,
1: खोबरा खोबरा और मावा रहता है। यस।
0: और ये पीला वाला,
1: ये मावा का है, ये अपना रेगुलर मावे का है, एंड देन ये केसर वाले मावे का है।
0: अच्छा,
1: केसर का, और ये कंदी मावा है, ये हमारा स्पेशलिटी, हम सातारा से है, सो हमारे सतारा एरिया का सबसे स्पेशल मावा है।
0: अच्छा, सतारा में ये बहुत ज्यादा चलता है ये वाला मोदक,
1: ये
0: क्या खासियत है, ऐसा क्यों?
1: वहाँ का मिल्क अलग है, वहाँ का मिल्क का से मावा बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, बहुत ही ऑथेंटिकेट प्रोसेस है। उसके अलावा वहाँ पे जो जहाँ से हम ये दूध लेते हैं वो जो है वो हमारे यहाँ पे एक प्लेटो है, वहाँ पे जो ग्रेजन कैटल है उनके दूध से बनाया जाता है, तो इसका डिस्टिंक्ट टेस्ट आता है।
0: अच्छा, क्या बात है। और ये देखिए रंग बिरंगी मोदक, हाँ ये पिंक है, ग्रीन है, ये ऐसे क्यों, ये अलग अलग स्वाद है इसका भी?
1: हाँ जी हाँ, ये जैसे स्ट्रॉबेरी का है, पिस्ता का है, अंजीर का है, चॉकलेट का है, एंड देन रेगुलर काजू का है. ये सब काजू में बनते हैं. ये काजू में अलग अलग फ्लेवर्स यूज करके बनाया जाता है.
0: मतलब हम लोग अब उस मोदक की तरफ चल रहे हैं जो महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति भी है ना, ये हर घर में बनाई जाती है. तो इसके बारे में ही आप बता रहे थे. तो ये इसके अंदर क्या क्या है मिश्रण में?
1: मिश्रण में बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही टेस्टी है. फ्रेश कोकोनट है, जैगरी है, कार्डमम है, केसर है, ड्राई फ्रूट्स है. बस सिंपल है बट जो इसका प्रोसेस है ना, क्योंकि बाहर का जो आटा है वो राइस का रहता है, ग्लूटेन ज़्यादा रहता नहीं है राइस में.
0: आपने कौन सा यहाँ पे पसंद किया है?
2: ये तो अभी पसंद तो अभी तक नहीं किया, लेकिन हम लोग अभी यही लेके जाते हैं.
0: कौन सा? ये खोपरे वाला मोदक है. खोपरे वाला मोदक है.
2: हाँ.
0: अच्छा, इसका स्वाद ही अलग है ना?
2: स्वाद ही अलग है, गणपति को भी पसंद आता है.
0: कितने साल पुरानी आपकी दुकान है और लगातार बहुत आपको लोग पसंद कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं ऑनलाइन जो भी है, थोड़ा सा आप बताएं. मुझे लगता है पूछता ही नहीं आपके पिता और दादा भी.
1: यस यस, मेरे दादाजी ने शुरुआत की थी महाराष्ट्र लाडू समाट के नाम से, एंड देन उसका कुछ मिसहैप में वो दुकान गिर गई थी. देन इयर्स लेटर मेरे फादर ने वापस शुरू किया इन 1991 मुंबई लाडू समाट के नाम से, एंड देन तब से ये दुकान है और मैं अभी थर्ड जनरेशन ये दुकान को सब देखभाल कर रहा हूँ.
0: मज़ा आ रहा है. कितना इंतज़ार होता है, आप खुद कितना गणेश उत्सव को एंजॉय करते हैं और आपको कितना पसंद है और कैसे आपने जिया है, कुछ बताएं.
1: मज़ा तो बहुत आता है. बचपन से 16 साल हो गए मुझे काम करते हुए यहाँ पे. सो बचपन से ही मैं दुकान में ही काम कर रहा हूँ. बहुत ज़्यादा ही घर जाने का मन नहीं करता है. सुबह 8-9 बजे आ जाते हैं, रात को 2 बजे दुकान बंद करते हैं. 2 बजे का क्लोजिंग टाइम में क्या बंद करते हैं, 3-3:30 बज जाते हैं, फिर भी घर जाने का मन नहीं करता. रात को 3:30 बजे भी आप अगर आओगे तो पूरा रास्ता भरा रहता है. तो पब्लिक चल रही है रात को, अभी स्ट्रीट लाइट्स के से ज़्यादा 100 times ज़्यादा वो हैलोजन वगैरह लग के जो पूरा रौनक आ जाती है वो
0: आता है ना. हर कोई गणपति बप्पा
1: मोरिया
0: मंगल
1: मोरिया,
0: क्या बात है. तो इस तरीके से मुंबई की तमाम वो शॉप हैं जहाँ पर मोदक जो हैं रखे गए हैं और कहीं ना कहीं प्रसाद के रूप में कुछ इस तरीके से बड़े ही सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मोदक बेचे भी जा रहे हैं और वाकई में एक अनोखे रूप में भी दिख रहे हैं. सबसे खास बात इस मोदक की होती है जो वाकई में महाराष्ट्र की संस्कृति कहीं ना कहीं दर्शाती है. वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई.
3: आज के दौर में भले ही बाजार में स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मावा, ड्राइड और ड्राई फ्रूट जैसे कई और फ्लेवर्स और टेस्ट वाले मोदक जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र की परंपरा का अहम हिस्सा उकडीचे मोदक की बात ही निराली है. देखिए, घर हो या फिर बाजार, हर जगह इन दिनों बप्पा की इस पसंदीदा मिठाई का लाजवाब स्वाद तैयार हो रहा है. तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही घर में जहां बनाया जा रहा है ये खास मोदक.

0: एक बड़े ही सुंदर से घर में यहाँ पर हम मौजूद हैं और सामने मराठी मानुस यानी कि मराठी संस्कृति दर्शाती एक ऐसी लीडिंग है जो इस समय मोदक का निर्माण कर रही है और स्पेशली जो मराठियों को बहुत पसंद है, साथ ही साथ इसका वाकई में टेस्ट बहुत ज़्यादा गजब का होता है और यहाँ पर जितने भी घर होते हैं सभी लोग अपने घरों में मोदक इस तरह का बनाते हैं जिन्हें प्रसाद के रूप में बप्पा को भी चढ़ाया जाता है, साथ ही साथ दूसरे भी जो त्यौहार हैं उसमें भी चढ़ाया जाता है, रिश्तेदारों को भी दिया जाता है। और ख़ास बात यह है कि जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ यहाँ पर बना करके बाहर भी चीज़ें भेजी जाती हैं। इस मोदक का नाम क्या है?
1: ये उकड़ी के मोदक है, महाराष्ट्र।
0: नॉर्मली मराठी और जो मानुस हैं यहाँ पर और गणेश उत्सव में उकड़ी के मोदक बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और आसान है घर में बनाना?
1: मतलब आसान तो मतलब इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा मुश्किल ही है।
0: अच्छा, तो देर से बना रहे हो, कितने मोदक अभी तक आपने बना लिए?
1: दो घंटे से मैं तो लगी हुई हूँ यहाँ पे इसमें। अच्छा। मोदक बनने में और मैंने अभी 20-21 बनाए हैं।
0: 20-21 बनाए और ये यहाँ पर रखा भी हुआ है, ये देखिए बकायदा। थोड़ा सा दिखाएं आप वैनी, इसको उठाइए अपने हाथों में, मोदक को आपने बनाया है, बड़ा सुंदर लग रहा है, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। ये देखिए, ये है उकड़ी का मोदक। अच्छा, ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उकड़ी से क्या कहते हैं, उकड़ी का मतलब क्या है?
1: मतलब वो चावल का आटा रहता है, ये जो ये व्हाइट कलर का है चावल का आटा है और उसके अंदर मतलब ये गुड़ और खोबरा जो नारियल रहता है वो पीसा हुआ रहता है उसमें मिक्स करके गुड़ और नारियल वो मिक्स करके
0: वगैरह भी
1: और ये काजू बादाम और ऊपर से केसर भी डालते हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर जो मिश्रण है वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर आ रहा है और कितना सुंदर दिख रहा है और वाकई में स्वाद बड़ा ही गजब है, लाजवाब है। उकड़ी का मोदक मुझे लगता है कि दूसरे भी राज्यों में बहुत ही रेयर जगह मिलता होगा लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के हर घरों में बन रहा है तो शॉप में तो होगा ही। सुना है कि ये जो मोदक है आप दूसरों को भी आप बेचते भी हो, आप डोर टू डोर आप सप्लाई क्या कहेंगे?
1: हाँ, मतलब मैं अभी मेरा होम टू होम बिजनेस है, मतलब मैं घर से ही लोगों को कुछ ऑर्डर रहेगा तो ऐसे ही देती हूँ। बहुत मतलब पागल जैसे लोग रहते हैं बापा के लिए, दीवानगी पूरी। और हमारे ये लालबाग परेल एरिया में तो पूछो ही मत, बहुत सारे हम गणेश गली है, चिंतामणि है सामने हमारे सामने और हमारा रंगारी बदक चाल का गणपति वो तो अभी मतलब बहुत ही अच्छा देखा गया है, मतलब रंगारी बदक चाल ने तो लोगों को आइए अच्छे से आइए, मतलब शांति से लाइन से जाइए और मतलब कुछ ये मत करिए, मतलब ज्यादा शोर शराबा ये विदाउट करके अच्छे से शांति से हाँ सुरक्षा से
0: परिवार
1: परेशान मत कीजिए।
0: आपने बोल दिया तो ये देखिए इस तरह से गणेश उत्सव इस समय हर जगह मनाया जा रहा है और स्पेशली उकड़ी का जो ये मोदक है इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और मुझे तो लगता है कि जैसा कि वैनी ने बताया कि यहाँ पर आइए बड़े प्यार से दर्शन करिए अपने परिवार के साथ सुरक्षा के साथ, तो यहाँ पर आकर के उकड़ी का मोदक खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वाकई में इसका जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।
2: पूरे देश में गणपति उत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। अंबाजी मंदिर के गणेश मंदिर और उज्जैन के सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा को विशेष भोग लगाया गया। बप्पा के इन पवित्र धामों से भक्तों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है।
3: उज्जैन के श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश भक्तों का उल्लास देखिए, बप्पा की भक्ति की उमंग देखिए। महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में मौजूद 2500 साल पुराने इस मंदिर में महाकाल से पहले श्री गणेश के दर्शन की परंपरा रही है। राजा भर्तृहरि ने इस मंदिर की स्थापना की थी। गणेश उत्सव के पावन अवसर पर श्री सिद्धिविनायक मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है और बप्पा को 5,51,000 मोदकों का महाभोग भी लगाया गया।
4: यहाँ पर भगवान को राशि श्रृंगार किया गया एवं स्वर्ण मरनी के तर्ज पर यहाँ पर भगवान का श्रृंगार किया गया। इसी के साथ यहाँ पर 5,51,000 का मोदक का भोग लगाया जाएगा, 7-10 दिन तक जो चलेगा श्रद्धालुओं को वितरण किया जाएगा।
3: जाहिर है प्राचीन मंदिर से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। यहाँ दर्शन पूजन के लिए आने वाले भक्तों को कलावा बांधा जाता है। मान्यता है कि ये कलावा भक्तों को हर दुख मुसीबत से दूर रखता है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त बप्पा का आशीष लेने पहुंच रहे हैं। ये गुजरात के बनासकांठा में अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित अंबाजी शक्तिपीठ का गणेश मंदिर है। यहाँ भी भक्तों में गणेश उत्सव का उल्लास है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ बाप्पा के दर्शन को आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर यहाँ बाप्पा को 21 किलो लड्डू और अन्नकूट का भोग लगाया गया। विनायक के इस धाम से भक्तों की विशेष आस्था जुड़ी है। ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ मंगल मूर्ति अपने परिवार के साथ विराजते हैं।
5: भगवान सिद्धि विनायक दादा का मंदिर अपने संपूर्ण परिवार के साथ में यहाँ पर विराजमान है। भगवान गणेश जी के यहाँ दो पत्नी रिद्धि सिद्धि, उनके दो पुत्र शुभ और लाभ, उनके दो पौत्र सेम और कुशल और उनकी एक पुत्री संतोषी माँ अपने पूरे परिवार के साथ में भगवान गणेश जी यहाँ पर विराजमान है। भगवान महागणपति के चरणों में आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर यहाँ 21 किलो मोदक लड्डू का प्रसाद भोग लगाया गया है।
3: गणेश उत्सव के दौरान यहाँ आस्था भक्ति का अद्भुत मेला चलेगा। माँ के इस धाम में हर ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है और विघ्नहर्ता के दर्शनों की चाह भक्तों को यहाँ खींच रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और अंबाजी धाम से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए फिलहाल वक्त चला है आप सभी से अलविदा कहने का। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में छाया सेलिब्रेशन का खुमार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: घर में गणेशोत्सव की रौनक, दूसरे दिन विधि विधान के साथ हो रही गजानन की पूजा अर्चना, जीएनटी पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर में भक्तों का मेला, करोड़ों रुपए के आभूषणों से बप्पा का श्रृंगार, गणपति को पहनाए गए पेशवा के काल की पोशाक। बॉलीवुड पर चढ़ा गणेशोत्सव का रंग, अभिनेता राजपाल यादव के घर पधारे गजानन, एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर बप्पा की भव्य आरती। मुंबई में ब्रिक्स समिट थीम पर बना गणपति पंडाल, कलाकार ने भक्ति के साथ पेश की देशभक्ति की मिसाल, सम्मेलन से जुड़े पहलुओं को खूबसूरती से दर्शाया। हिमाचल के नाहन में ऋषि पंचमी समारोह का जश्न, महासु के भक्तों ने किया अग्नि चलन अनुष्ठान, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। भारत की मदद से रोशन होंगे नेपाल के घर, पड़ोसी देश को 18 घंटे बिजली सप्लाई करेगा भारत, फ्लड डैमेज के बाद राहत मिशन के तहत फैसला। लंदन में दिखे वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी किनारे भव्य आरती हुई, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।

0: गणपति बाप्पा
1: मौर्य,
0: मंगल मूर्ति
1: मौर्य।
0: नमस्कार, लंच टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। गणपति बप्पा की भक्ति में पूरा देश मग्न है और जीएनटी की लाइव कवरेज लगातार जारी है और गणेश उत्सव की जिस तरीके से धूम देश भर में मच रही है उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
0: बिल्कुल, देखिए गणपति बप्पा की स्थापना हमने जीएनटी में कर दी है और ये रंग भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये खास पेशकश लगातार जारी है, लेकिन देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, दिल्ली से लेकर देश भर के अलग अलग राज्यों और शहरों तक हर तरफ बस बप्पा के जयकारों की गूंज आपको सुनाई देगी। कहीं बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सज चुके हैं, श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हैं, तो कहीं गणपति की विशाल और मनमोहक प्रतिमाएं लोगों को अपनी तरफ लगातार आकर्षित कर रही हैं।
1: देखिए, गणपति उत्सव ने देश के अलग अलग हिस्सों को भक्ति, उत्साह और उमंग के एक रंग में रंग दिया है। मुंबई में लालबाग के राग के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, साथ ही अपनी मनोकामनाओं के साथ गणपति के चरणों में शीश झुका रहे हैं। और वहीं मुंबई में अंबानी परिवार के घर बप्पा पधारे, जहां पर बप्पा के उत्सव में शामिल होने के लिए सितारे पहुंचे। कौन कौन अंबानी परिवार के उत्सव में शामिल हुए ये भी आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गणेश उत्सव 10 दिन तक चलेगा और आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है।
0: जी हाँ, देखिए दूसरे दिन की रौनक आपको दिखा रहे हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखा जा सकता है। आपका पसंदीदा चैनल गुड न्यूज टुडे भी गणेशोत्सव पूरे उत्साह उमंग के साथ मना रहा है। आज गणेश स्थापना का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन किस प्रकार की रौनक है वो भी देश भर के अलग अलग हिस्सों से लगातार तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने रख रहे हैं।
1: देखिए, महाराष्ट्र समेत देश भर से आ रही गणपति उत्सव की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन भक्तों के उल्लास और उमंग को भी अब आप देख लीजिए। गणेश मंदिर से हमारे संवाददाता उत्सव की तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सितारे किस कदर गणपति उत्सव के रंग में रंग चुके हैं।
0: और देखिए, क्या आम क्या खास, हर कोई इस उत्सव में पूरी तरह से रंग गया है। कई बॉलीवुड स्टार्स गणपति बप्पा को घर लेकर आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, तो कई सितारे उनके दर्शन पूजन के लिए बप्पा के तट पर पहुंचे हैं। शिल्पा शेट्टी ने बप्पा के दर्शन के साथ गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया। अपने सेलिब्रेशन की झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। वहीं एक्टर सोनू सूद ने अपने परिवार के साथ गणपति आराधना की तस्वीरें भी शेयर की हैं। इसके अलावा सोनू अपने परिवार के साथ पहले बप्पा की प्रतिमा लेने गए, फिर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। सुनील शेट्टी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो गणपति की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इस वीडियो में सुनील शेट्टी हाथ जोड़कर बप्पा का आशीर्वाद मांगते दिखाई दे रहे हैं।
1: वहीं नाना पाटेकर और तुषार कपूर ने पूरे पारंपरिक अंदाज में गजानन की आराधना की है। राजपाल यादव ने भी अपने परिवार के साथ बप्पा का स्वागत किया, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिल्पा शेट्टी से लेकर राजपाल यादव तक हर सितारा गणपति की भक्ति में लीन नजर आया है और तमाम श्रद्धालु गणपति पंडालों में भी पहुंच रहे हैं, जहां पर भव्य प्रतिमाएं गणपति की मौजूद हैं।

0: तो देखिए, शिल्पा शेट्टी ने अपने पूरे परिवार के साथ गणपति पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में शिल्पा अपने पति और बच्चों के साथ दिखाई दे रही हैं। तो किस तरह से बॉलीवुड स्टार्स लगातार इस उत्सव में रंगते जा रहे हैं, वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक के बढ़कर एक बॉलीवुड स्टार्स ने गणपति उत्सव का आनंद लिया है।
1: शिल्पा शेट्टी से जुड़ी तस्वीरें तो आपने देख ली। गणेश उत्सव कितने धूमधाम के साथ शिल्पा शेट्टी के घर पर मना। तमाम सितारे वहां पर पहुंचे गणेश के दर्शन के लिए। और साथ ही अब तस्वीर आपको दिखाते हैं सोनू सूद से जुड़ी। हर साल की तरह इस बार भी सोनू सूद पूरी तरह से गणेश उत्सव के रंग में दिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरे उत्साह के साथ उन्होंने अपने घर में बप्पा का स्वागत किया और फिर पूरे विधि विधान के साथ गजानन की आराधना की। अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं।
0: तो देखिए, सोनू सूद को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं बप्पा का स्वागत करते हुए। सोनू सूद को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है अपने परिवार के संग। उन्होंने किस तरह से गणपति बप्पा की आरती उतारी, किस तरह से घर में उन्होंने गणपति बप्पा को स्थापित किया है, वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। परिवार संग उन्होंने इस पूरे उत्सव को सेलिब्रेट किया।

0: వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్య సర్వత గణపతి బాప్ప మంగళమూర్తి బాప్ప मंगलमूर्ति।
1: चलिए सोनू सूद की तस्वीरें तो आपने देख ली। एक और एक्टर जो इस उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं वो हैं गोविंदा चीची, जिन्होंने अपने बेटे यशवर्धन और बेटी टीना आहूजा के साथ गणेश चतुर्थी मनाई है। गोविंदा ने बताया है कि उनके घर में गणपति उत्सव की परंपरा उनकी मां ने शुरू की थी, जिसे वो कई सालों से निभाते आ रहे हैं। अब उनका बेटा यश इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।
2: तस्वीरें आप देखिए, गोविंदा अपने परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। बेटे यश की सफलता और बेटी टीना के लिए एक अच्छे जीवन साथी की कामना उन्होंने गणेश उत्सव पर की है।
0: मंगलमूर्ति वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु।
1: देखिए क्या आम और क्या खास, हर कोई इस मौके को भुनाना चाहता है। गणेश उत्सव का ये रंग लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो गणेश उत्सव के रंग में रंगा हुआ बॉलीवुड तो नजर आ ही रहा है। फिल्मी सितारे भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा की आराधना कर रहे हैं। कोई अपने घर पर गणपति की स्थापना कर रहा है, तो कोई बप्पा के दर्शन के लिए आ रहा है।
2: सुपरस्टार रामचरण ने सोशल मीडिया पर गणेश उत्सव का एक वीडियो शेयर किया, फैंस को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। एक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी के जीवन से बाधाएं दूर करें, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें, इसकी कामना सुपरस्टार ने यहां पर की। तो तमाम तस्वीरें आपको जो हस्तियां हैं उनके घर किस तरीके से इस गणेश उत्सव को मनाया जा रहा है उसकी हमने दिखाई।
1: चलिए गोविंदा को तो आपने देख लिया, आप देख लीजिए मुंबई में नाना पाटेकर के घर भी गणेश चतुर्थी की धूम दिखाई दी। नाना पाटेकर उनके परिवार ने बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया। नाना पाटेकर ने पूरे विधि विधान के साथ गणपति की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों

0: शेयर की और ये पोस्ट काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस तस्वीर में बप्पा अपने घर में भगवान की अर्चना करते हुए बप्पा की दिख रहे हैं। सुनील शेट्टी उनका परिवार उनके साथ मौजूद है और बप्पा से अपनी मनोकामना मांगते हुए सुनील शेट्टी नजर आ रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। 90s की बेहतरीन अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने पूरे भक्ति भाव के साथ गणेशोत्सव मनाया। बप्पा की आराधना करते हुए सोनाली ने वीडियो को शेयर किया। तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, गणपति बप्पा मौर्या। एक तरफ सुनील शेट्टी, सोनाली बेंद्रे और अब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की तस्वीरें आप देखिए। गणेश उत्सव के रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। रश्मिका ने सोशल मीडिया पर गणपति के आगमन की तस्वीरें साझा की और सोशल मीडिया पर रश्मिका के फैंस तस्वीर को खूब पसंद भी कर रहे हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया है। उन्होंने अपनी मां के साथ मुंबई के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीर शेयर की। अभिनेत्री ने बताया कि ये तस्वीरें उनकी पिछले मंदिर यात्रा की हैं और मां के साथ वहां पहुंचना उनके लिए बेहद खास अनुभव था। पोस्ट में उन्होंने उस शख्स का भी मजेदार अंदाज में शुक्रिया अदा किया जिसने उनकी और उनकी मां की तस्वीरें खींची और तुरंत उनकी मां के फोन पर एयर ड्रॉप कर दी। अभिनेत्री ने लिखा, शायद ये तस्वीरें आज के दिन पोस्ट करने के लिए ही खींची थी। और इसी कड़ी में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी बप्पा के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, गणपति बप्पा मौर्या। और पूजा की इस पोस्ट पर फैंस भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं। बॉलीवुड सितारों की इन पोस्ट से साफ है कि सितारों के दिल में बप्पा के लिए गहरी आस्था है। और अब देखिए कार्तिक आर्यन की तस्वीरें जो इन दिनों इंग्लैंड में है लेकिन विदेश में रहते हुए भी उनका बप्पा से जुड़ाव कम नहीं हुआ। कार्तिक ने गणपति बप्पा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और लिखा, घर से मीलो दूर हूं लेकिन बप्पा से कभी दूर नहीं। ये तस्वीर और पोस्ट दिखाती है कि बप्पा के लिए आस्था की कोई सीमा ही नहीं, चाहे देश हो या विदेश, हर जगह गूंज रहा है गणपति बप्पा मौर्या। देखिए वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस सुनील शेट्टी की बेटी आतिया शेट्टी के घर भी विघ्नहर्ता का आगमन हुआ। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बप्पा की तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। गणपति को उनके प्रिय मोदक का भोग आतिया ने यहां पर लगाया। तो एक्टर आयुष शर्मा के घर भी गणपति बप्पा का आगमन हुआ। आयुष ने बप्पा के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, बप्पा आ गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया पर सामने आई ये तस्वीरें फैंस का दिल जीत रही हैं। कुल मिलाकर हर तरफ बस एक ही जयकारा है, गणपति बप्पा मौर्या। अंबानी परिवार भी हर साल बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव मनाता है और इस बार भी मुकेश अंबानी के घर पर गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए तमाम नामी चेहरे जुटे हुए हैं।
1: और देखिए रितेश जनिलिया के साथ कैटरीना और विकी कौशल भी इस पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे। वरुण, नताशा और जानवी कपूर भी इस पूजा के लिए एंटीलिया पहुंचे थे। वहीं कृति और नुपुर सनन भी इस पूजा में शामिल हुई गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। रेखा भी एंटीलिया में मौजूद थी।
2: विकी लेफ्ट, विकी
1: तो चलिए गणेशोत्सव के रंग तो पूरे देश में ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन मुंबई की देखिए रौनक ही अलग है, मुंबई की बात ही अलग है। मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंबानी परिवार में भी इस उत्सव को धूमधाम से मनाया गया है। बड़े धूमधाम से गणेश चतुर्थी का पर्व यहां पर मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी सेलिब्रेशन के लिए कई नामी गिरामी चेहरे मुकेश अंबानी के घर पर पहुंचे।
0: अंबानी परिवार की बहू राधिका मर्चेंट ने भगवान गजानन का स्वागत सम्मान एक सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया है। इस डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, काफी शेयर किया जा रहा है, लोग इस वीडियो को काफी पसंद भी कर रहे हैं।

गणेश चतुर्थी पर मुंबई में अंबानी परिवार के एंटीलिया हाउस में कई हस्तियां जुटी हैं। इनमें संत भी शामिल रहे, बाबा बागेश्वर, बाबा रामदेव और कैलाशानंद गिरिजी महाराज समेत कई संत यहां पर पहुंचे, गणेश पूजा में शामिल हुए हैं।

0: तो देखिए, गणेशोत्सव की इस रौनक के बीच में बप्पा के प्रति आस्था और परिवार के साथ जुड़ी हुई यादें हर किसी के लिए काफी खास हो जाती हैं। बॉलीवुड के साथ साथ टीवी के सितारों के बीच गणेशोत्सव का जश्न पूरे जोश और उत्साह के साथ देखने को मिला। एक्टर अर्जुन बिजलानी के घर गणपति बप्पा का आयोजन हुआ। इस उत्सव को सेलिब्रेट किया गया जहाँ इंडस्ट्री के कई जाने माने सितारे बप्पा का आशीर्वाद लेने आए। अर्जुन बिजलानी के घर हुई इस खास पूजा में निया शर्मा समेत कई सितारों ने भी शिरकत की।
1: सभी ने मिलकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की, पूरे भक्ति भाव के साथ इस पावन मौके पर सेलिब्रेट किया। वहीं गणपति उत्सव के रंग में रंगे सितारे ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, किसी ने बप्पा के आगे माथा टेका तो किसी ने गणेश उत्सव की खुशियों में जमकर हिस्सा लिया। सितारों की मौजूदगी ने इस गणपति सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा खास बना दिया है। भक्ति, आस्था और ग्लैमर से सजे इस जश्न में हर किसी के चेहरे पर बप्पा के स्वागत की खुशी साफ नजर आई है।
0: देखिए, अर्जुन बिजलानी के घर गणपति पूजा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं और सितारों का ये गणेशोत्सव वाला अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।
1: तो देखिए, पूरे देश में गणपति उत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों में भव्य दिव्य गणेश प्रतिमाओं की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात के वडोदरा में लक्ष्मी विलास महल में गजानन की प्रतिमा विराजमान की गई है।
0: देखिए, गायकवाड़ राज परिवार द्वारा गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना की गई, ये सदियों पुरानी शाही परंपरा है। हर साल यहाँ धूमधाम से गणपति स्थापना की जाती है। गणेश चतुर्थी पर त्रिची के रॉकफोर्ट उच्ची पिल्यार को 150 किलोग्राम कोझुकट्टई चढ़ाया गया। कोझुकट्टई दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु और केरल का एक लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है, जो मुख्य रूप से भगवान गणेश को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसे मोदक का दक्षिण भारतीय रूप कह सकते हैं। वहीं राजगढ़ के चिंतामण गणेश मंदिर में 15 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा के दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। देखिए, देश भर के रंग दिखाने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अकोला से धनंजय साबले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुंबई की रौनक आपको दिखाते हैं। धर्मेंद्र, गणपति बाप्पा मोरया, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? दिखाइए तस्वीरें, आज कैसी रौनक है?
2: बिल्कुल, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरे इलाके में, जो उपनगर में आता है और मुगरेश्वर नाम का एक मंडल है, जहां पर हमेशा ही सालों से बढ़कर एक बप्पा को विराजमान किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि चलचित्र कुछ इस तरीके से होता है कि यहां आने वाले जो श्रद्धालु हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश होकर जाते हैं। देखिए, गणपति बप्पा को सभी प्यार करते हैं लेकिन बच्चों के बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए चलचित्र बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले एक बार आप खुद भी बप्पा का दर्शन देखें। देखिए, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं इस समय बप्पा। मुगरेश्वर के दरबार में हम मौजूद हैं और वाकई में जहां तक भी नजरें जाएं हर जगह से बप्पा की खूबसूरती ही देखने को मिल रही है। लेकिन क्या खास चलचित्र है और इस बार ये मंडल क्या दिखाने वाला है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मंडल की तरफ से काफी पदाधिकारी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हीरा भाई सोलंकी जी हैं, बहुत स्वागत आपका। थोड़ा सा बताएं कि इस बार, हर साल ही कुछ ना कुछ चलचित्र होता है, इस बार क्या खास है?
3: वैसे तो हमारे विघ्नहर्ता जो है, हर साल हम लोग कुछ ना कुछ चलचित्र इसलिए भी रखते हैं कि आज की जो जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि गणपति बापा के, हमारे उनके पिताजी जो है शंकर भगवान, इस टाइम शंकर भगवान के कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने चलचित्र रखा हुआ है। हम लोग को मोगरेश्वर बाल मित्र मंडल को, हम लोग को 54 ईयर्स से हम लोग कंटिन्यूस गणपति बापा का ये पंडाल लगा रहे हैं और इस बार हम लोग ने पहले चलचित्र में ऐसा बताया है कि भगवान, शंकर भगवान समाधि में बैठे हैं, कामदेव जो है वो शंकर भगवान को समाधि में पुष्प बाण मारते हैं और उससे उनकी समाधि खुल जाती है और भगवान का तीसरी आंख जो है वो कामदेव पे गिरती है और वहां पे वो भस्म उनको किया जाता है, वो पहले चलचित्र में दिखाया है।
2: अच्छा, टोटल तीन चलचित्र।
3: हाँ, और उसके बाद जो है भगवान की शादी बताया है भोलेनाथ भगवान की शादी बताया है, उसमें देवताओं भी है, भूत लोग भी है, वो सब लोग जो है वो चलचित्र में उनका वो चलचित्र दिखाया है। और तीसरा जो है, आज की जनरेशन को ये पता नहीं होगा कि गणपति बापा का जो ये सिर है वो हाथी का क्यों है ऐसा। इसके लिए यहाँ पे ये मेन यहाँ पे हम लोग ने माता जी को, पार्वती माँ को दिखाया है, गणपति बापा को दिखाया है, शिव जी आ रहे, शिव जी को अंदर घर में नहीं जाने दे रहे, और गणपति बापा और शंकर भगवान का जो है वो युद्ध होता है और उसमें
1: लौटेंगे और उसके बाद जो माता जी आते हैं उनके उत्साह के बारे में बताइएगा। एक बार धनंजय का रुख कर लेते हैं जो कि अकोला में मौजूद है। धनंजय, समय बढ़ रहा है, ऐसे में पंडालों में श्रद्धालु की संख्या क्या बढ़ रही है, कितनी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गणपति के दर्शन के लिए, तस्वीरें दिखाइएगा।
4: बिल्कुल, मैं फिलहाल हूँ अकोला के पुराना शहर के तीसरे सार्वजनिक विसर्जन मिरणों की तीसरे नंबर पर, यानी तीसरे मान की जो गणपति है, जागेश्वर जो मंडल है उसकी ये भव्य पीतल की जो मूर्ति है जो है आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर है। एकमात्र अकोला में ये पीतल की मूर्ति है। अभी अभी ये जो है अलीगढ़ से बना के लाई है, लगभग 4 फीट की ये मूर्ति है और सुंदर मूर्ति का जो आप रूप देख सकते हो कि भव्य रूप यहाँ पर है। वे भक्त जो है गजानन की आरती करते नजर आ रहे हैं, सुख करता दुख हरता, मानो जो सुख सभी को दे और सभी दुख हर ले, इसी प्रकार की जो आरती है यहाँ पर शुरू है। और अकोला में जो है बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है ये गणपति बप्पा का उत्सव होता है। सार्वजनिक पंडालों में जिस तरीके से आप देख सकते हो कि भक्त जो है बड़े श्रद्धा के साथ बप्पा की जो आरती है वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी जो है अपने आराध्य को जो है यहाँ पर उनकी आरती करते नजर आ रही है। हमारे साथ इस मंडल के जो कार्यकर्ता है वो है कि ये प्रतिमाएं जो है ये कहाँ से लाई है, क्या इसकी खासियत है?
5: ये श्री जागेश्वर गणेशोत्सव मंडल जहीन चौक जुनेश्वर अकोला का प्रमुख, जो अकोला के जो तीन गणपति माने जाते हैं इसमें तीसरे नंबर का गणपति है। और पर्यावरण के रखने के लिए हमने ये पीतल की मूर्ति यहाँ पे बैठाई है, विराजमान की है। कल इसका शाम को स्थापना की गई है और ये मूर्ति अलीगढ़ से लाई है, इसका 150 किलो वजन है।
4: देखिए भक्तों की जो आस्था है, क्योंकि आस्था में अकोला में भी इसीलिए कम नहीं है क्योंकि ये उत्सव जो है ये सभी का है। और सबसे अहम बात यही है कि ये जागेश्वर महाराज का एक गणपति मंदिर है जो मेरे पीछे, यानी पंडाल के पीछे, ये लगभग 1807 शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर है और यहाँ की सुंदर मूर्ति है। इसी को लेकर जो है ये जागेश्वर गणेश उत्सव पंडाल में जो है यहाँ पर जो है गणपति बप्पा का उत्सव निरंतर किया जाता है। और इसमें जो सार्वजनिक विसर्जन मिरणों निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, उस शोभा यात्रा में ए बप्पा का जो है वो तीसरे नंबर का स्थान है। पहले नंबर का जो है बारा भाई गणपति का है और दूसरे नंबर का जो है
1: तस्वीरें बहुत अच्छी आप दिखा रहे हैं। चलिए अब सीधा एक बार फिर से धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, अगर पॉसिबल है तो थोड़े श्रद्धालु से भी बातचीत कीजिए, जानिए उनका भाव क्या है गणपति बप्पा के प्रति।
6: गणपति बप्पा मंगलमूर्ति।
2: आज के युग जिनमें जेंजीज भी आते हैं उन्हें नहीं पता है, सीधे मंडल के पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या खास है। हीरा भाई सोलंकी हमारे साथ हैं, वाकई में बहुत ही शानदार बप्पा दिख रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है उनको देख करके। चलचित्र मैंने देखा कुछ तीन तरह के अलग अलग स्टूडियो हैं, थोड़ा सा प्लीज बताएं कि क्या है वो तीनों।
3: देखिए हर साल जैसे हम लोग गणपति बापा का पंडाल लगाते हैं यहाँ पे और गणपति बापा के आखिर ये विघ्नहर्ता है, हमारे हर एक विघ्न को ये हर लेता है और हमारे को सुख शांति देता है। इस बार हम लोग ने यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे तीन चलचित्र रखा हुआ है, तीन पंडाल में अलग अलग चलचित्र रखा हुआ है। पहले हम लोग ने दिखाया।
1: चलिए ठीक है धर्मेंद्र, आपके पास लौटेंगे, आप तस्वीरें दिखाइएगा। एक बार फिर से अकोला का रुख कर लेते हैं। धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, आज क्योंकि गणेश उत्सव का दूसरा दिन है तो कल से आज में आप क्या वहां पर अंतर देख पा रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा श्रद्धालुओं से बात कीजिएगा, वो कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं?
4: बिल्कुल आज दूसरा दिन है उतने, क्योंकि कल की पूरी बैंड ढोल ताशों के बाद जो है कार्यकर्ता जो है महिलाएं जो है बड़े धूमधाम के साथ बप्पा की जो है शोभा यात्रा निकाली थी। बावजूद जो है रात को 1:30 बज गया, लेकिन भक्तों में जो उत्साह है आज सुबह से ही कम नहीं हुआ। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है बप्पा के इस पूरे 10 दिनों के लिए?
7: बहुत सारा उत्साह है।
4: कितना उत्साह लग रहा है अभी?
8: बहुत ही अच्छा लग रहा है उत्साह।
4: मुझे बोलिए कि आप जिस तरीके से यहाँ पर पापा को आज आरती की है, कितना उत्साह लग रहा है?
8: चांगला वाटला,
4: यानी अच्छा लग रहा है। कितना उत्साह लग रहा है आज?
8: अच्छा लग रहा है, सब भक्तों में बहुत उत्साह है।
4: क्या विघ्नहर्ता से क्या बात करेंगे, बारिश नहीं आ रही है?
9: बारिश आनी चाहिए बोलते हैं हम भगवान को।
4: भगवान को क्या, भगवान मानेगा बारिश आएगी, विघ्न हरेगा? देखो भक्ति का इतना ही कहने की, सभी भक्तों का जो है सामने आइए जरा, आप सब
10: पापा मानेंगे, आ जा आ जा,
11: उत्साह उत्साह करेंगे तो गणपति पापा पानी लाएंगे, ये आशा है हमारे को, और खेती वालों को भी अच्छा पानी मिलेगा, यानी पानी अच्छा मिलेगा तो अगले साल और अच्छा परमाने करेंगे।
4: देखिए गणपति पापा मोरिया के इस गुंज के साथ जो है वो अकोला में भी जो है बप्पा के पास में बड़ी आस्था रखी है, क्योंकि बप्पा जो है किसे विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इस लंबोदर को विघ्न हरने के लिए मानो बारिश नहीं है अभी, लगभग जो है इस पंडाल में हम सभी लोग जो है वो पसीना तर हुए, लगभग 38 से 39 डिग्री यहाँ पर तापमान है, बारिश की बेहद जरूरत है और उस बारिश भगवान लाएंगे।
0: आस्था ही इतनी गहरी है बप्पा के प्रति कि हर कोई सरंग में रंगा हुआ आज पूर्ण तरह से नजर आ रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए, धनंजय आपका और धर्मेंद्र आपका भी। चलिए अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा देते हैं, लाल बादशाह राजा के दरबार में किस तरह की रौनक है वो दिखाते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में सुबह से भक्तों का तांता दर्शन के लिए लगा हुआ है, आम ही नहीं खास भी यहाँ बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। बप्पा की भक्ति का रंग पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, महज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का असर देखने को मिलता है। और एक ऐसी ही तस्वीर अब मुंबई से सामने आई है, तस्वीर आपको दिखाते हैं जब भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए और सर्जियो गोर ने बप्पा के दर्शन के लिए उनका आशीर्वाद भी उसके बाद लिया। तो चलिए गणेशोत्सव के इस खास मौके पर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं, घर हो या फिर पंडाल हो, बप्पा के द्वार पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। लेकिन आज आपको एक ऐसे पंडाल में लेकर चलते हैं जहां भक्ति आस्था के साथ एकता और सौहार्द के रंग खूब बिखरे हैं। दर्शन करवाते हैं आपको साकीनाका का विघ्नहर्ता गणेश जी के, इस बार वो विट्ठल के अवतार में गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
12: सब देख के हमने एक ऐसा रखा है कि जो आए अंदर वो प्रसन्न हो जाना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट किया है।
13: 7 साल से हम मिलजुल के हिंदू मुसलमान की एकता करके हम ये गणपति उत्सव मनाते हैं।
14: मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक बिखरी है, जहां देखो जिधर देखो पर्व की सतरंगी छटा निखरी है। आस्था और भक्ति के साथ गणेशोत्सव संदेश ये भी दे रहा है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। तभी तो मुंबई के साकीनाका के महाराज का बीते कई सालों से हर धर्म के लोग मिलकर वंदन करते आ रहे हैं।
15: कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ, साकीनाका का विघ्नहर्ता के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, पहले आप सीधे गणपति बप्पा का दर्शन ही कर लें। देखिए ये उपनगर मुंबई की एक बहुत ही ज़्यादा उन लिस्ट में नाम शामिल हैं जो बड़े प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं और कितने सुंदर तरीके से इस समय यहाँ पर विराजमान की गई है। खास बात यह है कि मानव गरुण पर बप्पा विराजे हैं, विट्ठल के अवतार में हैं और हाइट देख के लग रहा है कि लगभग 33 फीट होगी। बैलेंस का पूरा ये मामला है और सोचिए मूर्तिकार कितने ज़्यादा सीरियस होंगे और कितना मेहनत उन्हें की होगी और कितने एक्सपीरियंस हैं वो कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है बप्पा की इतना बड़ा आकार उन्होंने दे दिया है।
14: विघ्नहर्ता गणपति यहाँ विट्ठल अवतार में हैं जो गरुड़ पर सवार हैं। साकीनाका के विघ्नहर्ता की ये प्रतिमा हर किसी को खींच ले रही है। करीब 33 फीट के बप्पा की ये प्रतिमा सर्वधर्म एकता का प्रतीक मानी जा रही है। वहीं आयोजकों को भी बप्पा का शुभ आगमन इस गणेशोत्सव के सफल होने की उम्मीद दे रहा है।
12: लोग तो थे और बाकी के बाहर के जितने सपोर्टर थे, जैसे पुलिस प्रशासन है, BMC है, सबने सपोर्ट किया है। वायर का जो भी है काम वो हमारे सरकारी अली भाई है, रियाज भाई है, डेरिंग कोटिया ने और बाकी जितने पदाधिकारी है सबनों ने मेहनत किया है उस काम के लिए। और आगमन भी हमारा बहुत अच्छा हुआ, भव्य आगमन हुआ इस साल में और अभी पूरा उत्सव भी आप लोग के वजह से अच्छा जाएगा ऐसा उम्मीद करता हूँ।
14: आज मुंबई की हर गली हर नुक्कड़ पर साकीनाका के बप्पा की तरह कई रूप विराजमान है। बप्पा के इन रूपों को कड़ी मेहनत से आकार भी दिया गया। ऐसे में साकीनाका के इन गणपति को भी तैयार करने में हर समाज हर तबके से जुड़े लोगों की भागीदारी रही है।
13: हम मंडल के साथ में ही हैं, आज 7 साल से हम मिलजुल के हिंदू मुसलमान की एकता करके हम ये गणपति उत्सव मनाते हैं और जितना बेस्ट हो सकता है हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं।
14: जाहिर है यहाँ आस्था का ज्वार समुदायों की सीमा से परे है, तभी तो हर साल गणेशोत्सव पर यहाँ आस्था भक्ति के साथ ही एकता और सौहार्द के भी रंग बिखरे हैं।
7: जिस तरह अली भाई ने कहा कि इस मंडल की खासियत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एकजुट रह के इस मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्यार का, भाईचारे का एक प्रतीक भी इसी मंडल के माध्यम से जाएगा। हम सब एक नारा इस मंडल से निकलता है
16: कि हमारे एक एक कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं पूरे, मेरे को लगता है लगभग 1.5 से 2 महीने से इन लोग की तैयारी चल रही है। एक एक कार्यकर्ता रात दिन एक कर जो मेहनत कर रहे उसका ये आज सफलता मिली है।
14: कहते हैं कि महाराष्ट्र के गणेशोत्सव का मतलब ही सिर्फ बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना भर नहीं, बल्कि ये पर्व आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का उत्सव है, जिसे फिलहाल पिछले 42 सालों से साकीनाका के विघ्नहर्ता हर गणेशोत्सव की तरह इस बार भी अपनी अलौकिक छटा के माध्यम से दर्शाएंगे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये कवरेज लगातार जारी है। गणेश उत्सव की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे अलग अलग हिस्सों की।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में छाया सेलिब्रेशन का खुमार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: देश भर में गणेश उत्सव की रौनक, दूसरे दिन विधि विधान के साथ हो रही गजानन की पूजा अर्चना, जयंती पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन।
9: पुणे के महागणपति मंदिर में भक्तों का मेला, 4 दिनों के मुक्त द्वार दर्शन की रौनक, श्रद्धालुओं के नंगे पांव मंदिर आने की प्राचीन परंपरा।
8: मुंबई में ब्रिक्स समिट थीम पर बना गणपति का पंडाल, कलाकार ने भक्ति के साथ पेश की देशभक्ति की मिसाल, सम्मेलन से जुड़े पहलुओं को खूबसूरती से दर्शाया।
9: भूस्खलन के बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को किया गया रवाना, यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम।
8: लंदन में दिखी वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी किनारे भव्य आरती,

चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। मुंबई में गणेश उत्सव की सजावट में भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं सजावट के माध्यम से ब्रिक्स सम्मेलन और उससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को बेहद ही रचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है और साथ ही शुभम वनमाला की भी इस थीम आधारित सजावट में ब्रिक्स समिट से जुड़े दृश्य और प्रतीकों को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और देखिए उनकी इस अनोखी पहल में गणेश उत्सव की भव्यता के साथ देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि को दर्शाया गया है।

0: महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से शुरू हो चुका है, और इसी तरीके से अपने विचार जो हैं या क्या इस समाज में चल रहा है गणपति बप्पा के माध्यम से दिखाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त मुंबई में हैं, जहां पर गणपति जी विराजमान हुए हैं, और यहां पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहां पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार, उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहां पर तैयार किया गया है। हमारे साथ हैं शुभम वनमाला, जो हर साल इसी तरीके से जो करंट अफेयर होता है या जो दुनिया में जो कुछ चल रहा होता है उसको लेकर जो डेकोरेशन करते हैं, और इस साल इन्होंने ब्रिक्स किया है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों इनके दिमाग में ये ब्रिक्स डेकोरेशन का ख्याल है, उन्हीं से जानेंगे। शुभम, पहले तो आपने ब्रिक्स का डेकोरेशन किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों दिमाग में है ब्रिक्स ही क्यों?
1: एक्चुअली ब्रिक्स समिट जो 2026 ये इंडिया होस्ट करने वाली थी, ये मुझे 1.5 महीने पहले ही पता चल गया था। तो मैंने बोला कि ये यूनिक कंसेप्ट हो सकती है, जहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी कैसे एक साथ जाती है।
0: और कितने सालों से आप कर रहे हैं, मतलब इस बार ब्रिक्स है लेकिन हर साल आप कुछ अलग अलग थीम लेकर आते हैं, कितने सालों से हो रहा है और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कहाँ से दिमाग में ख्याल आते हैं?
1: ऑलमोस्ट 8 ईयर्स पहले से ही मैं डेकोरेशन कर रहा था ये थीम पर। तो हर ईयर मैं रिसर्च करता हूँ कि कौन से टॉपिक्स वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे या फिर इंडिया में जो घटित होते हैं घटना, उनके ऊपर ही बनाता हूँ, ताकि मतलब लोगों को मतलब जानकारी हो सके, मतलब जो भी इंडिया में जो भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं या फिर जो भी घटना है उसके बारे में जो भी मतलब डिवोटीज आएंगे उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले इसके रिगार्डिंग।
0: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में जो भारत में चल रहा है उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम वनमाला कर रहे हैं, और इस साल जो है ब्रिक्स समिट यहाँ पर बनाया गया था। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
2: और देखिए, गणेशोत्सव का शुभारंभ तो हो गया है, चारों तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं, लोग अपने आराध्य को खासकर मोदक का भोग लगा रहे हैं। इसी बीच नासिक में एक मिठाई की दुकान पर एक अनोखा सा ऑफर पेश किया गया है। दरअसल यहां गोल्डन मोदक ग्राहकों का खूब ध्यान खींच रहा है, जिसकी कीमत है 27,000 रुपए प्रति किलोग्राम। तो और क्या खासियत है इसकी, वो आपको दिखाते हैं इन रिपोर्ट में।
3: रंग बिरंगी स्वादिष्ट मोदकों का ये संसार बसा है नासिक की एक दुकान पर, जहां इन मोदकों में एक खास मोदक गणेशोत्सव का लग्जरी अंदाज भी पेश कर रहा है। दरअसल इस मिठाई की दुकान चलाने वालों ने गणेश चतुर्थी पर्व के उत्साह में लग्जरी का तड़का लगाते हुए 24 कैरेट सोने की परत वाले मोदक पेश किए हैं, जिसे भक्त अनोखे भोग के तौर पर पसंद भी कर रहे हैं। इन खास मोदकों को देखने पर इनकी सतह पर सोने जैसी चमक नजर आती है, और इनका यही शाही अंदाज इन्हें सामान्य मोदकों से अलग बना रहा है। अपनी सुनहरी चमक और खास सामग्री से तैयार इस प्रीमियम मोदक की कीमत 27,000 रुपए किलो है, जबकि काजू मोदक 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ 24 कैरेट वाले इस गोल्डन मोदक की चर्चा सबसे ज्यादा है। दूसरी वेराइटीज में ड्राई फ्रूट्स, ऑरेंज और मलाई मोदक भी शामिल है।
4: कारण पिछले साल जो हमारा मोदक 20,000 रुपए किलो था, इस साल वो 27,000 रुपए किलो रखा है हमने। और अगर जैसे गणेश भक्त को पीस पे भी चाहिए तो वो पर पीस हम 540 रुपए में दे रहे हैं। हमने बहुत सारे प्रकार के मोदक भी बनाए, जैसे ब्लूबेरी मोदक बनाया हमने, पान फ्लेवर्ड मोदक बनाया है, ड्राई फ्रूट केसर मोदक बनाए, सिल्वर का मोदक बनाया है, तो कस्टमर का बहुत अच्छा डिमांड है।
3: जाहिर है गणेशोत्सव में भक्त अपने आराध्य विघ्नहर्ता के लिए खास से खास चीज तैयार करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में जब कोई मिठाई अपने स्वाद के साथ साथ दिखने में भी बेहद आकर्षक हो तो उसका लोगों का ध्यान खींचना तय है।
5: लेने की इच्छा बनाया हूँ और भगवान को प्रसाद चढ़ाने का महत्व रखता हूँ, ऐसे ही भगवान हमेशा बरकत देते रहे।
6: पिछले साल तो हमने भी ये गोल्ड के मोदक खरीदे थे, लेकिन 15,000 रुपए किलो के थे। इस साल थोड़ा भाव बढ़ गया है तो हम थोड़े से लेने वाले, लेकिन लेने वाले।
3: हालांकि यहां एक बात साफ है कि 27,000 रुपए किलो की कीमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा मोदक ही शुद्ध सोने से बना है। दरअसल इसकी सुनहरी फिनिश और प्रीमियम पेशकश ही इसे गोल्डन मिठाई का खास रूप देती है। जहां मोदक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों पुराना रहा है, तो समय के साथ इसके लुक में भी बदलाव आता रहा है। आज बाजार में चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, मावा, केसर और कई दूसरे फ्लेवर के मोदक मिल जाएंगे। ऐसे में ये गोल्डन मोदक इसी बदलती मिठाई संस्कृति की एक नई मिसाल मानी जा सकती है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको पुणे के गणेश उत्सव के रंग दिखाते हैं। पुणे से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुंबई की तस्वीरें तो आपने देखी, पुणे में भी कुछ ऐसा ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। गणेश उत्सव की अद्भुत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। और देखिए पुणे में डगड़ूशेठ गणपति पंडाल को किस तरह से सजाया गया है, वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पुणे में इस मंदिर की खास मान्यता है, कहा जाता है कि यहाँ पर आकर आप एक बार दर्शन करते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति आसानी से हो जा सकती है। तो गणपति पंडाल की तस्वीरें भी देख लीजिए। पुणे के डगड़ूशेठ गणपति पंडाल से ये रंगारंग तस्वीरें आ रही हैं निकल कर सामने।
7: जस्ट देन सो इट्स माय फर्स्ट टाइम अटेंडिंग है, सो शी इज माय फ्रेंड। हम दोनों आज जैसा देखने आए कि कैसा कल्चर है यहाँ पे, मराठी लोग कैसे सेलिब्रेट करते। सो या
8: दिस वाज माय ड्रीम, आई यूज्ड टू सी रील्स एंड एवरीथिंग, सो इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर मी टू सी इट लाइव।
9: हाँ, बहुत बढ़िया माहौल है। हम लोग तो बाहर से हैं, उड़ीसा से हैं, इधर घूमने आए हैं। काफी अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सारे लोग आए हैं सुबह सुबह भगवान के दर्शन के लिए।
2: अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति के रूप में पहचान रखने वाले पुणे के ओझर के श्री विघ्नहर गणपति का बेहद अलौकिक और राजशाही रूप भक्तों के सामने आया है। गणपति बप्पा के 5 दिवसीय जन्मोत्सव के खास मौके पर सोमवार रात करीब 11 बजे के बाद विघ्नहर बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक पहनाई गई और करीब 200 वर्ष पुराने करोड़ों रुपए मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य दिव्य श्रृंगार भी हुआ। पप्पा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठीहार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर्ता बप्पा की ये तस्वीरें देख रहे हैं।
10: अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति जो है महाराष्ट्र का, उसका नाम है विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर, जो पुणे जिले में जुन्नर में है। हम वही मंदिर में है, देख सकते हैं पीछे अभी गणेश जी का गणेश उत्सव शुरू है और इस उत्सव के दरमियान बाप्पा को विभिन्न जो अलंकार है जो उसे सजा जा रहा है। हम देख रहे हैं अभी भगवान को अच्छे से अच्छे अलंकार पहने जा रहे हैं। कितने साल के पुराने ये पूरे अलंकार हैं?
11: ये मंदिर 1784-85 को बनाया गया है, तभी से पुराने अलंकार तो है और देवस्थान ट्रस्ट ने नया अलंकार भी बनाया। सब सोने का अलंकार इधर रहते हैं और वो सब पहनाए जाते हैं।
12: कुछ अलंकार जो है पेशवेकालीन है, उसमें कंठीहार है, एक चंद्रकोर है, उसमें पेशवेकालीन हीरा जड़ा हुआ है। बाद में वो जो वस्त्र पहनाए वो रेशमी जरी के वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसमें स्वस्तिकार रहता है, बादाम हार रहता है, करगोटा रहता है, वो सब सोने का रहता है। और जो मुकुट रहता है उस पर भी वो पेशवेकालीन हीरा मौजूद है और वो पेशवेकालीन मुकुट पहनाया जाता है।
10: एक बार हम देखेंगे पीछे जाकर, ये पूरे जितने भी पुराने गहने हैं 200 साल से पहले है जो हम देख रहे हैं और भगवान का इसी गहनों की वजह से जो रूप है बहुत ही सजा गया है और देखने वाले भी जब रात भर इधर आएंगे, कल दिन भर रहेंगे, जो भी दर्शन के लिए आएंगे वो देखते रहेंगे भगवान का अच्छा सा रूप।
2: मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीतमपुरा इलाके में लालबाग के राजा की स्थापना की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस गणेश पंडाल का उद्घाटन किया और इस दौरान जैसे ही बप्पा के प्रथम दर्शन लोगों ने किए, पूरा पंडाल बप्पा के जयकारों और मंत्रोच्चार से गूंज उठा। देखिए इस खास मौके पर 2100 लोगों ने एक साथ शंखनाद का रिकॉर्ड भी बनाया। इस पंडाल में गणेशोत्सव के दौरान क्या क्या खास होने वाला है, देखिए हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा की ये खास।

0: गणेश उत्सव की धूम पूरे हिंदुस्तान में है। मुंबई के लालबाग के राजा के बाद अब लालबाग के राजा दिल्ली में भी पहुंच चुके हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो लालबाग के राजा हैं उनको एक पंडाल में सजाया गया है। आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं दिल्ली के लालबाग के राजा की। गणेश उत्सव की धूम दिल्ली में भी देख रही है और एक तरफ जहां गणेश उत्सव हो रहा है वहीं दूसरी ओर शंखनाद भी हो रहा है। आज जो है शंखनाद की कवायद भी की जा रही है। लगभग 2100 शंखों का नाद एक साथ करने की तैयारी भी यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर जितने भी लोग आए उनके हाथों में शंख देख सकते हैं और भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। ये पीतमपुरा का एनएसपी इलाका है जहाँ पर एक बड़े से ग्राउंड में ये भव्य आयोजन किया गया है।
1: गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति उत्सव का आपका 10वां साल है, 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। गणपति की जनता मन्नतों के देवता प्रभु, जो मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी करते हैं प्रभु, तो उसके हिसाब से लोगों की जनसंख्या हर बार बढ़ती जा रही है। गणपति जी का आशीर्वाद लेने अपनी मन्नत करवाने के लिए लोग बाग दर्शन करने आते हैं। हमने भव्य पंडाल मेला झूला खाने का सब सिस्टम हाइजीन रोजाना भजन संध्या अलग अलग संत अलग अलग महात्माएं रोजाना भजन कर रहे हैं।
2: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन गणपति उत्सव की ये रौनक और ये रंग लगातार जारी है देश भर के अलग अलग हिस्सों से दिखाएंगे आपको। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का अनोखे गणपति पंडालों की फेहरिस्त में। अगला नंबर आपको दिखाते हैं, ये नंबर है हैदराबाद के इस पंडाल का, जो पूरी तरह से बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस पंडाल में मिट्टी की वाणी बप्पा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि कैंडी यानी टॉफी से विघ्नहर्ता की प्रतिमा तैयार हुई है। आयोजकों का ये कहना है कि इस प्रतिमा में कई तरह के टॉफी और चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है, ताकि मूर्ति को आकर्षक बनाया जा सके। मूर्ति की तरह ही पूरे पंडाल को भी बप्पा की थीम पर सजाया गया। आयोजकों ने बताया कि ये उनका 19वां साल है और हर साल वो एक नई थीम पर गणेश पंडाल बनाते हैं। इसी कड़ी में इस साल उन्होंने गणेश जी के बाल स्वरूप को ख्याल में रखते हुए इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की है। और चलिए गणेशोत्सव से जुड़ी हुई तस्वीरें ऐसे ही लगातार आपको जीएनटी पर लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।

बहू और बेटियां में आज देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में छाया सेलिब्रेशन का खुमार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देशभर में गणेशोत्सव की रौनक, दूसरे दिन विधि विधान से हो रही है गजानन की पूजा अर्चना। गुड न्यूज टुडे पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के महागणपति मंदिर में भक्तों का मेला, चार दिनों के मुक्त द्वार दर्शन की रौनक, श्रद्धालुओं के नंगे पांव मंदिर आने का प्राचीन परंपरा। मुंबई में ब्रिक्स समिट थीम पर बना गणपति पंडाल, कलाकार ने भक्ति के साथ पेश की देशभक्ति की मिसाल, सम्मेलन में जुड़े पहलुओं को खूबसूरती से दर्शाया। भूस्खलन के बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को किया गया रवाना, यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। लंदन में दिखी वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी किनारे भव्य आरती हुई, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: मुंबई में गणपति उत्सव पर दिख रहे अलग अलग थीम वाले गणपति के सुंदर रंग, किसी कड़ी में ब्रिक्स समिट की थीम पर सजा बप्पा का दरबार। गणेश उत्सव की भव्यता के साथ देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि का भी किया गया सुंदर प्रदर्शन, लोगों के लिए बन रहा है आकर्षण का केंद्र। इस थीम पर आधारित सजावट में ब्रिक्स समिट से जुड़े दृश्य प्रतीकों को भी किया गया है सम्मानित। बप्पा के लगाए गए ब्रिक्स पर आधारित केक का भोग। गणेशोत्सव पर पुणे में दिखा विशेष उत्साह, महिलाओं ने किया गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत डगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में हुआ है धार्मिक पाठ, करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने किया गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। पुणे में गणेशोत्सव के दौरान विघ्नहर्ता बप्पा का हुआ अलौकिक श्रृंगार, करोड़ों रुपए के सोने के गहनों से सजे विघ्नहर्ता। बप्पा का ये दिव्य भव्य रूप भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र, 200 साल से भी अधिक पुराने पारंपरिक और ऐतिहासिक गहनों से होता है श्रृंगार। बप्पा के सर पर सजा भव्य नकाशी वाले सोने का मुकुट, माथे पर हीरा और चंद्रकोर की सजावट, सर पर छत्र के साथ देखते ही बन रहा है विघ्नहर्ता बप्पा का ये शाही रूप। गणपति बप्पा के 5 दिवसीय जन्मोत्सव के अवसर पर बप्पा को पहनाई गई पेशवाकालीन पोशाक, साल में सिर्फ 2 बार भक्तों को देखने को मिलता है बप्पा का ये अद्भुत रूप। इस खास मौके पर मंदिर परिसर की हुई भव्य सजावट, फूलों और रोशनी से जगमगाया नजर आया गणपति का दरबार। बप्पा के रंग बिरंगा पूरे महागणपति के मुक्त द्वार दर्शन उत्सव की भव्य शुरुआत। महागणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में राजण गांव पहुंच रहे श्रद्धालु, विघ्नहर्ता के अलौकिक स्वरूप का कर रहे हैं दर्शन। चार दिनों तक चलेगा ये खास उत्सव, श्रद्धालु सीधे गणपति की मूर्ति को हाथ लगाकर कर सकेंगे दर्शन। खुला दरवाजा है मुक्त द्वार का शाब्दिक अर्थ, इस उत्सव के दौरान भक्तों के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाते हैं मंदिर के दरवाजे। हर साल भाद्रपद गणेशोत्सव के दौरान मनाया जाता है ये उत्सव, भाद्रपद द्वारा यात्रा के नाम से भी है मशहूर। गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के प्राचीन चिंतामण गणेश मंदिर में गणेशोत्सव की रौनक, भगवान को लगाया गया 1,25,000 लड्डू का महाभोग। विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, सुबह पंचामृत अभिषेक के साथ हुए बप्पा के मनमोहक श्रृंगार। अपने तीनों स्वरूपों चिंतामण इच्छा मन और सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान गणपति, मान्यता है कि श्री राम लक्ष्मण और माता सीता ने की थी इस मंदिर की स्थापना। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित की गई है गणेश प्रतिमा, 200 साल जारी है ये शाही परंपरा। ढोल नगाड़ों के बीच राजमहल पहुंची बप्पा की मूर्ति, राजमहल के भव्य दरबार हॉल में राजवीय परिवार की मौजूदगी में राजपुरोहित ने की पूजा अर्चना। राजगढ़ में 15 फीट ऊंचे चिंतामण गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ढोल नगाड़ों के बीच हुई महाआरती, बप्पा को लगाया गया लड्डुओं का भोग। गणेशोत्सव के लिए मंदिर में की गई आकर्षक लाइटिंग, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भक्तों की आस्था का केंद्र, 164 साल पुराना मंदिर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने गणेश चतुर्थी पर पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए पहुंची भारत से अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की प्रार्थना, टेका मत था। महाराष्ट्र के साकीनाका में सजा विघ्नहर्ता गणपति का दरबार, बप्पा का अलौकिक रूप देखने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं बप्पा के भक्त। पंडाल में गणपति बप्पा विट्ठल के अवतार में है और मानव गरुण पर विराजमान है। बप्पा की प्रतिमा लगभग 33 फीट की है और इसका संतुलन गजब का है। बप्पा एक पैर के बूते मानव गरुण पर सवार है। गणेश चतुर्थी पर जामनगर में आयोजित की गई है लड्डू ईटिंग प्रतियोगिता। बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में शामिल हुए बप्पा के भक्त। इस वर्ष प्रतियोगिता में कुल 55 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 30 महिलाएं, 20 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। पिछले 18 वर्षों से आयोजित हो रही आई है प्रतियोगिता। मुंबई में अंबानी परिवार में हुई बप्पा की स्थापना। फिल्मी हस्तियां समेत सियासी हस्तियों ने भी की शिरकत। राधिका मोचन ने भगवान गजानन का स्वागत सम्मान एक सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया। सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है डांस का ये वीडियो।

नीता अंबानी ने किया मेहमानों का स्वागत, ऑरेंज साड़ी में बेहद सुंदर लगी नीता अंबानी। अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में कई संत भी रहे शामिल और कैलाशनंद गिरी जी महाराज समेत कई संतों ने शिरकत की। बाबा बागेश्वर और बाबा रामदेव ने भी बढ़ाई गणेशोत्सव की शोभा, एंटीलिया पहुंचे संत। सैफ अली खान और करीना कपूर भी बापा के दर्शन के लिए परिवार संग आए एंटीलिया, करिश्मा कपूर भी मौजूद। अंबानी के घर पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी गणेशोत्सव में हुए शामिल। रितेश देशमुख भी पत्नी जेनेलिया के साथ अंबानी के गणपति उत्सव में हुए शामिल, वरुण धवन भी पहुंचे। अनिल कपूर भी अंबानी परिवार के गणेशोत्सव में हुए शामिल, पत्नी के साथ सुनील शेट्टी भी पहुंचे एंटीलिया। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल भी पहुंचे अंबानी हाउस, गणेशोत्सव में हुए शामिल, साथ में थी कैटरीना। सिंगर कैलाश खेर भी पहुंचे एंटीलिया गणेशोत्सव।

Conchi. कथावाचक जया किशोरी भी बप्पा का स्वागत करने के लिए पहुंची एंटीलिया. मशहूर संगीतकार जोड़ी अजय अतुल भी साथ. बॉलीवुड की मशहूर एक्टर काजोल ने बप्पा के दर्शन के साथ मनाई गणेश चतुर्थी. सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें. हैदराबाद का एकर गणेश पंडाल बना बच्चों की पहली पसंद. टॉफी से तैयार की गई है विघ्नहर्ता की प्रतिमा. इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की तर्ज पर किया गया ये प्रयोग. प्रतिमा में कई तरह की टॉफीज और चॉकलेट का किया गया इस्तेमाल. मूर्ति की तरह ही पूरे पंडाल को भी बच्चों की थीम पर सजाया गया है. हर साल नई थीम पर बनाया जाता है गणेश पंडाल. मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी अलग अलग थीम पर सजे हैं गणेश पंडाल. दर्शन के लिए भक्तों का लगातार आना जारी. घर पर बप्पा बैठाने के लिए बाजारों में भी गणपति मूर्तियों की लगातार डिमांड. हर तरह के आकार स्वरूप की मिल रही है प्रतिमा. देशभर में गणेशोत्सव की रौनक. लालबाग चौराहा के दर्शन को उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़. बप्पा के भव्य स्वरूप और मुख दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें. मुंबई पुलिस और मंडल कार्यकर्ता संभाल रहे हैं व्यवस्था. भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए चिंचपोकली चार राजा गणपति पंडाल में इकट्ठा हुए भक्त. 107 साल पुराना है चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल. देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी मनाया जा रहा है गणेशोत्सव. गुवाहाटी के फतह से लंबारी में देखे बप्पा की भक्ति के रंग. गुवाहाटी के फतह से लंबारी में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन पूजा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़. श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना टेका मत्था. कोल्हापुर में शाही ठाट बाट के साथ हुआ गणेशोत्सव का आगमन समारोह. न्यू पैलेस में घुड़सवार दस्ते के साथ निकाली गई बप्पा की शोभा यात्रा. बजाई गई पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन. छत्रपति घराने के सभी सदस्यों ने पूरे विधि विधान से की बप्पा की पूजा अर्चना. हिमाचल में दिखा आस्था और संस्कृति का संगम. महासू के भक्तों ने निभाई आग पर चलने की रस्म. ऋषि पंचमी पर दिखा जश्न का माहौल. ढोल नगाड़ों के बीच झूमते नजर आए महासु महाराज के भक्त. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर वर्चुअल समीक्षा बैठक की. यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियों का जायजा लिया. आज से शुरू हो रहा है चारधाम यात्रा का दूसरा चरण. हेली सेवाएं भी इस चरण से फिर से हो रही हैं शुरू. जैसलमेर पहुंची शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स. राजधानी परंपरा में हुआ देसी विदेशी सैलानियों का स्वागत.

टूरिस्ट सीजन में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का ये पहला ट्रिप, पहले फेरे में 75 सैलानी पहुंचे जैसलमेर। तिलक और फूलमालाओं के साथ सांस्कृतिक नृत्य के बीच हुआ शाही स्वागत, शाही ट्रेन में सवार 75 सैलानियों में 64 देशी और 11 विदेशी पर्यटक शामिल। शिरडी के साईं मंदिर में बाबा की मूर्ति पर सजा गोल्ड कोटेड 9 किलो का चांदी का छत्र। मंदिर में 54 किलो चांदी के नंदी की भी हुई है स्थापना। गणेश चतुर्थी पर आगरा के भक्त ने दान किया। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक, नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में मंथन।

0: राम मंदिर निर्माण की प्रगति, संग्रहालय के विकास और पुरातात्विक अवशेषों पर होगी चर्चा। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मारस कुमार साहू ने बनाया नुआखाई जुहा सैन एनिमेशन, महज 15 मिनट में तैयार की खूबसूरत कलाकृति।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में छाया सेलिब्रेशन का खुमार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: और चलिए आपको सात समंदर पार से आई आस्था की अनोखी तस्वीरों का दीदार करवाते हैं। लंदन में वाराणसी की तर्ज पर थेम्स नदी के किनारे गंगा आरती का आयोजन हुआ। इस आरती में हजारों लोग शामिल हुए। भजन और मंत्रों के जाप के साथ हुई आरती ने थेम्स के किनारे वाराणसी के घाटों जैसी झलक दिखाई। भव्य आरती के जरिए नदी, प्रकृति और जीवन के लिए आभार जताया गया। कार्यक्रम में भजन, मंत्रोच्चार और संगीत प्रस्तुतियां हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने आरती में हिस्सा लिया और दिए जलाकर नदी के किनारे सम्मान जताया।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: सास बहू और बेटियां में आज देखिए एंटरटेनमेंट की दुनिया में छाया सेलिब्रेशन का खुमार। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, दूसरे दिन विधि विधान से हो रही गजानन की पूजा अर्चना, GNT पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के महागणपति मंदिर में भक्तों का मेला, 4 दिनों के मुक्त द्वार दर्शन की रौनक, श्रद्धालुओं ने नंगे पांव मंदिर आने की प्राचीन परंपरा निभाई। मुंबई में ब्रिक्स समिट थीम पर बना गणपति पंडाल, कलाकार ने भक्ति के साथ पेश की देशभक्ति की मिसाल, सम्मेलन से जुड़े पहलुओं को खूबसूरती से दर्शाया। भूस्खलन के बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को किया गया रवाना, यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए कड़े इंतजाम। लंदन में देखी वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी किनारे भव्य आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जामनगर में 9 वर्षीय विहान चेतरिया ने रच दिया इतिहास, सबसे ऊंची चोटी पर लहराया परचम, माउंट यूनाम फतह करने वाला सबसे कम उम्र का बना पर्वतारोही।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर।
5: हेलो दोस्तों, सास बहू और बेटियां में आपका स्वागत है। मुंबई में गणपति उत्सव की धूम शुरू हो चुकी है, जहां आम लोगों से लेकर सितारे सभी बाप्पा की भक्ति में झूमते नजर आ रहे हैं। गणपति भक्ति में डूबे सितारों के नजारे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर।
0: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए कलाकारों पर छाएगी बाप्पा की भक्ति।

0: सीरियल की खबरों संग हम आपको भक्ति के रंग भी दिखाते हैं, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां गणपति उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस साल कौन कौन से सितारों ने अपने घर गणपति स्थापित किए हैं, देखते हैं और शामिल होते हैं उनकी खुशी में।
1: हुआ गणपति बाप्पा का आगमन। सितारों के घर छाई बाप्पा की भक्ति। त्योहार पर लगा भक्ति का रंग। देश भर में मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का ये त्योहार, और ऐसे में इस त्योहार में हर बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं एंटरटेनमेंट जगत के सितारे, जो हो जाते हैं बाप्पा की भक्ति में लीन। ऐसे में सास बहू और बेटिया आज आपको लेकर चलेगा आपके फेवरेट कलाकारों के घर, जहाँ पर हुआ है बाप्पा का आगमन। तो आइए सबसे पहले चलते हैं तन्वी डोगरा और जीवांश चड्डा के बापा से मुलाकात करने के लिए। भाई हाल ही में तन्वी और जीवांश ने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की है, और 3 महीनों में ही ये दोनों शादी के बंधन में भी बनने वाले हैं। ऐसे में ये पहली बार साथ साथ मना रहे हैं गणेश चतुर्थी का ये त्योहार। तो आइए चलते हैं और इन्हीं के साथ करते हैं इनके पापा की स्थापना।

0: भाई बाप्पा का आगमन तो हो गया, आइए अब करते हैं इनसे बातें और जानते हैं कि आखिर कैसे हुई इनके रिश्ते की शुरुआत और गणेश चतुर्थी के मौके पर इन दोनों ने अपने लिए क्या क्या दुआएं और मनोकामनाएं मांगी हैं।
1: गणपति बप्पा मोरिया। तो आज मैं आप लोगों को किसी खास से मिलवाने वाला हूँ। अनाउंसमेंट तो आप लोगों ने देख ली थी, सुन ली थी, पढ़ ली थी ऑनलाइन। जो मेरी ऑफ स्क्रीन हीरोइन थी, अब वो मेरी ऑन स्क्रीन हीरोइन भी बन चुकी है, मेरी रियल पार्टनर, अब मेरी रियल लाइफ पार्टनर बन चुकी है। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ, जो खास आई हैं गणपति के लिए, अपने होने वाले ससुराल में पहले ही आ चुकी हैं, अब वो आप लोगों से मिलेंगी। आ गई हैं तन्वी डोगरा। बताओ सरप्राइज के लिए क्या कहोगे?
2: ये हमने मतलब सोचा ही हुआ था कि अभी हम रिवील नहीं करेंगे, और एक्चुअली किसी को भी नहीं पता था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन परिणीति टीम एज वेल। सब अपने अंदाजे लगाते थे कि हाँ कुछ तो है, बट वी नेवर सेड यस टू एनीवन। सो थोड़ा सा हमारा ही डिसीजन था, बट नाउ वी थॉट कि हमें बता देना चाहिए, बिकॉज
1: क्योंकि हमारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो हमने सोचा इस सीक्रेट को अब ज़्यादा नहीं छुपाते, सबको बता देते हैं, रिवील कर देते हैं। काफ़ी लोग क्योंकि एक्सपेक्ट करते थे, अंदाजे लगाते थे कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन आज तक हमने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। बट अब टाइम हमारी शादी का करीब आता जा रहा है, विद इन 3 मंथ्स हमारी शादी है, तो फिर हमने सोचा कि हम बता देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, जो हमारे फैंस वगैरह हैं उनको भी पता लग जाए कि कौन किसको डेट कर रहे हैं और क्या है।
2: कौन किसको डेट कर रहे हैं
1: और क्या है। शादी की प्लानिंग तो बस चल रही है, जैसे तैसे कर रहे हैं हम लोग, लगे पड़े हैं।
2: बहुत
1: अच्छी चल रही है, बट हाँ,
2: और सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, एंड आप सब भी इनवाइटेड होंगे।

आप डेकोरेशन देख लो, कार्स का हमने सोचा कॉन्सेप्ट रखते हैं, बिकॉज हमारा जो रेस्टोरेंट है उस पर जो रूफ टॉप है वो जंगल थीम है, तो फिर हमने सोचा कि जंगल से रिलेटेड ही रखते हैं। बप्पा को वैसे ही लाया जाए जैसे बप्पा रियल लाइफ में रहते हैं और क्या, माउंटेन्स में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो हमने फिर वैसे ही प्लान किया कि जंगल थीम की तरह रखा जाएगा बप्पा को।

0: प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा हो चुकी है, आरती हो गई है, गणपति बप्पा हमारे पास आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इस साल ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे बीच हमारी नई सदस्य आ चुकी हैं। चड्डास फैमिली के अंदर हम 5 लोग थे, अब 6 लोग हो चुके हैं। तो यस, एक्साइटमेंट बहुत है और 5 दिन बप्पा हमारे साथ रहेंगे। तो जो भी चाहे, जो भी हमारे फैंस हैं, रिलेटिव हैं, नोन्स हैं, जो भी चाहें वो आ सकते हैं चड्डास में बप्पा के दर्शन करने, हम सबसे मिलने के लिए। यस, पहले गणपति जी हमारे,
1: पहले गणपति जी हैं हमारे और बहुत अच्छा लगा, बहुत डिवाइन लग रहा है। और बप्पा ने जब मतलब उनका वो उठा
0: कपड़ा उठाया,
1: इतने क्यूट आंसू थे।
0: हाँ, बहुत एक होता है ना, एक पप्पा अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्यूटनेस थी पप्पा की है। और राजा स्टाइल में पप्पा बैठे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि एक
2: राजा है,
0: राजा है चड्डास का राजा गणपति बप्पा। यस, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति।
3: बाप्पा की स्थापना के बाद तन्वी और जियांश ने की पेट पूजा और देखिए कैसे भाई आज ये यहाँ पर खा रहे हैं ढेर सारी खट्टी मीठी पानी पूरी।

भाई आशीष सिंह ने जब से अपना बसेरा मुंबई में बनाया है भाई, तब से ही वो अपने घर हर साल गणपति बाप्पा लेकर आती हैं। और आज भी देखिए कितने खास है आशीष सिंह के गणपति बाप्पा। तो आइए देखते हैं कि कैसे आशीष सिंह कर रही हैं अपने बाप्पा का आगमन अपने परिवार के साथ। भाई इस बार आशीष सिंह के बाप्पा की मूर्ति है बेहद ही खास, और साथ ही खास है उनका डेकोरेशन भी। तो देखिए कैसे हुआ आशी के घर पे बाप्पा का स्वागत।

एक्चुअली हमारे घर पे जब गणपति बप्पा आते हैं तो एक मन्नत थी, उसके लिए आए थे, तो कहीं ना कहीं ये आखिरी साल है उस मन्नत का। तो अब हम सोच रहे हैं नई मन्नत क्या होनी चाहिए जिससे पापा, मतलब बुलाने के बहाने, वैसे पापा खुद ही रीजंस दे देते हैं, तो वो नहीं होता जब कुछ ख़त्म होने वाला होता है, जबकि हमारे बैक टू बैक ऐसे 3 मन्नत हो गई है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है इस बार आखिरी है। तो इस बार डेफिनेटली इमोशनली बहुत ज़्यादा स्पेशल है। या सच्ची बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हम गए थे कुछ 2 महीने पहले, जब पंडाल नए नए लगते हैं ना, तब हम मूर्ति देखने गए थे, और हम 3-4 बार ऐसे जाते हैं देख के फिर वी सिलेक्ट। तो हम ऐसे रैंडमली एक रात को निकल गए मूर्ति देखने के लिए, फिर हमें कुछ बहुत पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि कोई भी मूर्ति कम्प्लीट ही नहीं थी, तब एकदम स्टार्ट हुई थी बनने, और फिर हमारे घर के पास में ही था, हम ऐसे निकल रहे थे और हम वहाँ रुके और हमें लिटरली ये बप्पा दिखे, और वो जैसे मैं हर साल कहती हूँ कि हम नहीं चुनते कि कौन बप्पा घर पे आने वाले हैं, बप्पा हमें चुनते हैं, तो बप्पा ने हमें चुना कहीं ना कहीं, और वो देख के ऐसा हो गया कि प्लीज़ ये यही बप्पा चाहिए इस बार घर पर, यही आए। और वो 2 महीने पहले ही सब कुछ ओके हो गया, बाकी सारी चीज़ें फॉलो

26 साल पहली बार है जब आयुषी खुराना अपने मुंबई वाले घर में पापा का आगमन कर रही है और देखिए कैसे आज उन्होंने हर एक चीज अपने हाथों से सजाई है और पापा की भक्ति में लीन होकर कर रही है उनका स्वागत।

अपने परिवार के साथ मिलकर आयुषी ने की बापा की आरती और साथ ही हमारे कैमरे पर की बापा की मुंह दिखाई। तो आइए करते हैं आयुषी से मुलाकात और जानते हैं कि वो कितनी एक्साइटेड है बापा को अपने घर पर लेकर आने।

मैं तो बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी तब से हम हर साल अपने घर में गणेश चतुर्थी में गणपति जी की स्थापना करते थे। और मुंबई में मैं जब से आई तब से हमने एक बार भी नहीं, क्योंकि पहले हम अकेले रहते थे तो अकेले नहीं हो पाता इतनी चीज़ें, पता ही नहीं आपको कि क्या क्या करना होता है, क्या रिचुअल्स होते हैं। तो क्योंकि इस साल मम्मी है यहाँ पे मुंबई में और अब मम्मा यहीं मुंबई में ही रहती है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट। मैं बहुत टाइम से भी चाहती थी कि मैं घर में गणपति जी की स्थापना करूँ, तो बहुत दिन से गाइस ही चल रहा था कि पता नहीं कर लेंगे, होगा नहीं होगा, करे ना करे, बट दिन फाइनली आई थिंक दो दिन पहले हमने डिसाइड किया कि नहीं नहीं हम गणपति जी की स्थापना करते हैं। और फिर हमने रातों रात डेकोरेशन करके और फाइनली हमने आज गणपति जी को अपने घर पर बुलाया। यार मुझे पहले यही लग रहा था कि मैं उन्हें दिखाऊंगी कि आप मुझे ऐसे गणपति जी बना के दीजिए, लेकिन टाइम बहुत कम था क्योंकि दो तीन दिन पहले ही डिसाइड किया था। तो वहाँ पे जब हम गए हमने एक कान्हा जी वाले गणपति देखे जो ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिए, तो फिर उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे। उसके बाद मैंने देखा लालबागचा राजा वाले गणपति, तो मतलब मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि मैं जाऊं, लेकिन शूट्स के टाइम में हमें, जब लास्ट टाइम भी गणपति जी का चल रहा था तो भी शूट्स थे, तो मैं तब भी नहीं जा पाई। और इस बार मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और इसलिए अगर मैं नहीं भी जा पाई तो मैं चाहती थी कि मैं एक छोटा सा लालबागचा राजा अपने घर में भी स्थापित करूँ। तो ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे, तो मेरे को एकदम देखते ही मुझे लगा मैं इतनी वो घर लेके जाऊँगी, और फिर मैंने ऐसे बस कुछ और सोचा नहीं और यही कह रहा था।

अर्जुन पुंज और गुरुदीप के घर भी विराजे हैं बापा। वही कई सालों से ये बापा को अपने घर ले आते हैं, लेकिन इस बार ये सेलिब्रेशन इसीलिए खास है क्योंकि इस बार इनकी तैयारियों में इनकी मदद की है इनके बेटा और बेटी ने, जिसके लिए ये काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वही बापा की मूर्ति भी काफी आलीशान है और साथ ही आलीशान है उनका डेकोरेशन जहाँ पर बापा अपने दरबार में विराजे हैं।

0: गणपति पापा मोरिया। आगे हैं गुरदीप, अर्जुन, मेहर और माहिर के गणपति जी।
1: ओके, तो
2: क्या माहौल बन चुका है मेरे घर पर और ये दिन का मैं सब बेसब्री से इंतजार करती हूँ पूरे साल। तो आई एम लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट व्हेन बप्पा कम्स एंड बीज विद अस एंड दिस टाइम ही इज हियर फॉर 5 days, सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड।
0: पिछले साल तक तो मैं और गुरदीप तैयारियां करते थे लेकिन हमारे बच्चे इस साल बड़े हो गए हैं और उन्होंने हर चीज छोटी से लेके मीडियम से लेके बड़ी से लेके चीज सेलेक्ट किए और अपने सजेशन दिए। तो इस बार थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी 60-40% हमारी 40% उन्होंने ले लिए।
2: यस, बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, थोड़ा सा सजने संवरने का मौका थोड़ा ज्यादा मिल गया बिकॉज थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटी और बेटे ने उठा ली है। सो आई एम रियली हैप्पी। लाइक आई सेड, ये बेस्ट डेज होते हैं हमारे घर के और हम पूरा घर, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, कलीग सब आके हमारे साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। वी रियली लुक फॉरवर्ड। पर जो डिज़ाइन सिलेक्ट करना होता है पहले मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ, फिर बच्चों को दिखाती हूँ, अर्जुन को दिखाती हूँ और फिर सहमति से हम डिसाइड करते हैं। एंड दिस टाइम वी सिलेक्टेड दिस डेकोरेशन, ब्राइट येलो कलर। आई थॉट अच्छा लगेगा क्योंकि हम पहले हमारे मूर्ति सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम डेकोरेशन सेलेक्ट करते हैं। सो आई लव फ्रेश फ्लावर्स। You can see fresh flowers, fresh fruits की मैं हमेशा डेकोरेशन करने की कोशिश करती हूँ एंड बहुत ही अच्छे फ्लावर्स मिलते हैं इस फेस्टिवल सीजन में। सो आई ट्राई टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग एंड मेक अरेंजमेंट्स। होलीज होती हैं, समय होता है, कैंडल्स, इट जस्ट एड्स अ लॉट ऑफ यू नो डेकोरेटिंग आइटम्स एंड इट कम्प्लीट्स माई डेकोरेशन। तो और बापा जी का जब वो हम उठाते हैं दुपट्टा उनके चेहरे से, वो तो चार चांद लगा देते हैं डेकोरेशन में क्योंकि उनका जो प्रेजेंस होता है दैट इज फिनोमिनल, मैजिकल।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भेड़े का किरदार निभाने वाले मंदार भी हर साल अपने घर गणपति बापा को विराजते हैं, वो भी पारंपरिक अंदाज में। और इस बार इनका थीम है गणपति बापा के लिए मरीन। तो आइए देखते हैं कि कैसे मंदार और उनकी वाइफ और उनके पूरे परिवार ने किया है बापा का स्वागत।

0: सो बप्पा का आगमन हो चुका है और बप्पा के भक्त मंदार हमारे साथ हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बप्पा के भक्ति में मुझे रंगे हुए लग रहे हैं। तो पहले सबसे तो प्लीज बताइए, आई थिंक ये प्रॉपर जिस तरह से जो टोपी होती है और जो पोशाक होता है, कुछ उसी तरह से आप हमें नजर आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, पारंपरिक ये पोशाक है जो बापा जब भी आते हैं तो इसी पोशाक में उनका स्वागत किया जाता है। और बापा के साथ जो आजकल जो बोलते हैं ट्विनिंग किया हुआ है, जो बापा की धोती का जो कलर है वही मेरी भी धोती का कलर है, तो बापा के साथ थोड़ा सा ट्विनिंग किया गया इस बार।
0: हर साल बापा जो है आने की उनकी एक्साइटमेंट अलग ही तरह की होती है, और किस तरह से उनका श्रृंगार किया जाए, किस तरह से थीम हो, आई थिंक ये सवाल हर साल होता ही है। सो इस साल क्या थीम रखा गया? आई थिंक बापा को मरीन लाइफ का थोड़ा सा जस्ट दिया गया।
1: जी बिल्कुल, और इसके बारे में डिटेल में आपको स्नेहल बताएगी, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो आके पूरा जानकारी दे।
2: सो सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया। तो इस बार हमने एक्वा थीम रखी है, जल ही जीवन है। और मैं इस साल रामेश्वरम गई थी और वहाँ से ये शंख शिंपले और ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये था कि रामेश्वरम मतलब बापा के पापा हैं, तो बापा को भी आशीर्वाद मिले और हम सबको भर भर के आशीर्वाद मिले, यही एक थीम है हम लोगों की इस बार की।
1: नहीं, मेरा तो कंट्रीब्यूशन बस यहाँ पे बापा को लाने से लेके पूजा करने तक का ही होता है, बाकी ये श्रृंगार का सब डिपार्टमेंट मेरा और इनका और पार्थ का है। मेरा बेटा वो भी इसमें काफ़ी जुड़ गया था। जो आप थीम देख रहे हैं वो उन्हीं का सब थीम होती है कि भाई जितना भी हम लोग डेकोरेशन करें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि पूरा हम लोग इको फ्रेंडली करें, और जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करें वो पूरे रीयूजेबल हो, तो कहीं भी कोई वेस्ट ना हो, यही ध्यान रखा जाता है। इसको जो आप देख रहे हैं ये इसको शेला बोलते हैं, जो हमने किया हुआ है। ये जो फूल है ये परमानेंट फूल है, हमने बापा के लिए किया हुआ है, जिसको जासवंद बोलते हैं। जो ये एक्चुअल में ये जो फूल होता है इसका ये स्वरूप है जो गोल्डन कलर में आपको दिख रहा है। और बाकी श्रृंगार तो फूलों से हमेशा हर दिन फूल और हार के साथ करते ही है।
2: मेहनत ना कहते हुए अगर मज़ा आया कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें इसमें हम मेहनत कर रहे हैं ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बस बापा शक्ति दे रहे हैं, बापा आइडियाज़ दे रहे हैं और हमसे करवा रहे हैं, और वो करने में कभी थकावट नहीं होती है।
1: कुल गणपति बापा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया।
3: इन दिनों अपने सीरियल की शूटिंग के चलते इंदिरा चंडीगढ़ में रह रही हैं। जी हाँ, वो सीरियल गंगा माई के बिटिया में नजर आ रही हैं। लेकिन जैसे ही गणेश उत्सव का मौका आया भाई, वो लौटकर मुंबई अपने घर आ गई और देखिए कितने बेहद खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने बापा के दरबार को सजाया है। और इस बार इंदिरा का थीम भी मरीन है और यहाँ पर हर एक चीज उन्होंने अपने हाथों से सजाई है, वो भी इको फ्रेंडली। और इस बार का गणेश उत्सव इंदिरा और उनके परिवार के लिए बेहद खास है, क्योंकि उनके बेटे ने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, जिसके चलते वो बेहद ज्यादा खुश है।
0: सो चंडीगढ़ से सीधा मुंबई आ चुकी है इंदिरा और हमारे साथ गणपति बप्पा को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है चाहे कोई कहीं भी रहे वो जब भी गणपति बप्पा का आगमन होगा वो मुंबई में आ ही जाए।
4: और मैं मुंबई की पली बड़ी हूँ, लेकिन इस बार मतलब बिटवीन द शेड्यूल्स आना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बप्पा आई थिंक भुला ही लेते हैं कि भाई ये मेरा टाइम है, आना ही पड़ेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हर साल की तरह हम बाल गणपति लेकर आते हैं, और गणपति को बड़े रूप में कभी नहीं लेकर आते, हम लोग बाल गणपति के रूप में उनको 22-25 साल से लेकर आ रहे हैं। आई थिंक आई हैव लॉस्ट द काउंट नाउ, लेकिन बहुत ही सुंदर ये इको फ्रेंडली है, मिट्टी के बने हुए हैं और इनके कलर्स भी वेजिटेबल कलर्स है, हम लोग कभी आर्टिफिशियल या टॉक्सिक कलर्स नहीं वो करते। और इनका जो विसर्जन भी है हम लोग बैक रोड लोखंडवाला में जो पॉन्ड बनाते हैं उसमें ही हम लोग विसर्जन करते हैं। तो हम लोगों ने पॉल्यूशन और प्रदूषण का भी हम लोगों ने ध्यान दिया है, और हम भी यही चाहते हैं कि लोग इसी तरह से बप्पा का आगमन करें और अपना नेचर, मदर नेचर को हमेशा बचा के रखे। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि मैं मुंबई में ही पली बड़ी हूँ एंड माय हस्बैंड इज़ अ महाराष्ट्रियन, सो डेफिनेटली मैं आई लाइक टू फॉलो द महाराष्ट्रियन कल्चर अलॉट। सो टुडे आई हैव अ गजरा, बट दिस इज ओके, दिस इज अगेन इट्स मेड आउट ऑफ थ्रेड एंड क्लॉथ एंड देयर इज अ नथ आई एम वेयरिंग एंड दिस थिंग, सो थोड़ा साउथ एंड महाराष्ट्रियन का मिक्सचर मैंने हमेशा रखा है क्योंकि हमारे जो मेनू में है वो है इडली सांभर चटनी।
3: भाई हर साल की तरह इस साल भी इंदिरा के घर उनके करीबी दोस्त बापा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और देखिए कैसे बापा के आगमन की खुशी में ज्योति ने बापा के लिए एक स्पेशल डांस भी परफॉर्म किया है। छोटा सा म्यूजिक के साथ लगा देना। तो आइए करते हैं ज्योति और उनके दोस्तों, तो आइए करते हैं इंदिरा के दोस्तों से मुलाकात और जानते हैं बापा के लिए उनकी एक्साइटमेंट।

0: डांसिंग ओवर इन फ्रंट ऑफ गबप्पा, जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मम्मा भी किया करते थे, तो आई इमीडिएटली सेड यस दैट आई विल डांस, एंड इट वाज फॉर मी आल्सो, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग. सो बप्पा के सामने डांस करना, यस डेफिनेटली वेरी नाइस.
1: हाँ, हम लोग हर साल आते हैं और यहाँ पर गणेश चतुर्थी यहाँ आए बिना पूरी नहीं होती. ये जो बाल रूप है गणपति का, इनके दर्शन करने के बाद हमारा जो
2: शुरुआत गणपति की शुरुआत यहाँ से होती है, इंदिरा जी के घर से.
3: बस इट्स द मोस्ट प्योरेस्ट एंड द मोस्ट डिवाइन वाइब हियर. और राजेश जी तो मेरे पहले डायरेक्टर थे और इंदिरा इज माय साउथ सोल सिस्टर. तो आई विल नेवर नेवर नेवर मिस हर हाउस इनवाइट एवर.
4: एक्चुअली सच बात तो ये है कि सब लोग इडली सांभर चटनी के लिए आते हैं. देखा आप सब कैसे बोल रहे हैं, खाने के लिए आते हैं हम. और ये हमारी एक और पुरानी दोस्त है रितु, एंड रितु की बेटी और मेरा बेटा एक ही स्कूल से थे, तो आई थिंक काफी मुझे इनके बिफोर और आफ्टर पिक्स भी है. गणपति बप्पा.
5: कृति और कृष्णा के घर भी बापा विराजे हैं और इन बापा को कृति ने अपने हाथों से बनाया है. भाई ये बापा की मूर्ति तो है ही, लेकिन साथ में प्रेमानंद जी का आशीर्वाद भी है, क्योंकि ये मूर्ति उन्हीं से इंस्पायर हुई है.
6: तो इस साल कहीं ना कहीं हम दोनों के लाइफ में प्रेमानंद जी का एक बहुत ही प्यारा इन्फ्लुएंस रहा है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में और एवरीडे लाइफस्टाइल में भी. हमारे जो चीज़ें डिफरेंसेस आई है, पॉजिटिव चेंजेस आई है, कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है. तो बस ऐसे ही ऑन द वे जब मैं ऑफिस जा रही थी, तो मैं सोची कि इस बार मैं क्या अलग करूँ, मतलब गणपति बप्पा बनाने के लिए मैं इस बार क्या डिफरेंट बना सकती हूँ. फिर दिमाग में आया कि अरे यार, कहीं ना कहीं प्रेमानंद जी का एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस हम दोनों के लाइफ में है और इसको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने भी मन से उनको गुरु मान चुका है. और उस चीज़ को अगर गणपति बप्पा में भी, क्योंकि हर रूप में गुरु है, हर जगह हमारे गुरु है, तो गणपति बप्पा में भी वो हम गुरु देख रहे हैं. तो उससे कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन लेके गणपति बप्पा का जो रूप बनाया है वो प्रेमानंद जी महाराज के ही चित्र से ही बनाया है. तो जो अभी आप देख रहे हो इस साल, वैसे ही उनके वो येलो कपड़ा, फिर वो येलो टीका, वो सारी चीज़ें उनके वही फीचर्स हैं. बस हमारे गणपति बप्पा हमारे क्यूट से गोलू गोलू से, और उसमें हमारे प्रेमानंद जी महाराज
7: की माला है ना, माला पे आप नीचे एक माला पे देखो, वहां पे लिखा है राधे. सब मेहनत इसने करी है, सारी डेकोरेशन इसने करी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना मैंने सच में कुछ नहीं किया, इसी ने किया सब कुछ.
6: अरेंजमेंट वगैरह में भी हेल्प करी है और थोड़ी बहुत हेल्प करी है इसने. इस गणपति के दांत इसने बनाए हैं,
7: पेंट किया है.
6: कुछ कंट्रीब्यूशन इसका होना चाहिए, बिकॉज दो मिलके जब बनाए चीजें तो बहुत प्यारी बन जाती है. तो वो उसके तरफ से वो कंट्रीब्यूशन है कि तुम एक दंत.
7: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसने बनाने नहीं दिया मुझे भाई. मैं पहले जब उसका उनका हाथ बनना था ना, तो मैंने बोला कि मैं कुछ बना दूं क्या, तो इसने मुझे लुक दिया ऐसे कि, और इसने बोला, मतलब बिना बोले इसने बोला कि तू नहीं बना पाएगा, तो इसने ऐसा किया मेरे साथ.
6: फिर खराब हो गया. तो
7: फिर मैंने बोला कुछ तो बनाने दे, कुछ तो बनाने दे. बाद में बोलते चल पेंट कर लेना सिर्फ ये वाला वाइट वाला. और जब मैं पेंट कर रहा था ना, तो पीछे खड़ी थी आराम से ऐसे ऐसे ऐसे.
5: भाई सीरियल्स की दुनिया में भले ही संजीव विलन का किरदार निभाते हों, लेकिन असल जिंदगी में वो गणपति बापा के बड़े भक्त हैं. और शूटिंग में बिजी होने के बावजूद उन्होंने अपने घर पर बड़े ही जोरों शोरों से किया है बापा का आगमन.

0: ये जो गणपति का जो उत्सव है, ये सिर्फ अब मुंबई और महाराष्ट्र का नहीं रह गया है, ये देश के हर कोने में पहुंच चुका है। मैं जहां से बिलोंग करता हूं, दिल्ली NCR, वहां भी इस तरह की बहुत बड़ी धूम होती है, लेकिन स्पेशली जो मुंबई में, जो महाराष्ट्र में जो गणपति का उत्सव है, ये मतलब इस लाइक एक दिवाली है हम सब लोगों के लिए, तो हम इसको दिवाली की तरह ही मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा आयोजन होता है और पूरी मतलब 5 दिन पप्पा हमारे साथ रहते हैं और 5 दिन ऐसा रहता है कि जैसे कोई शक्ति आके विराजमान हो गई है यहाँ पर। और जिस दिन विसर्जन होता है, दिन एक ये एक ऐसा दिन होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि सच में कोई था और जो चला गया, तो जो चला गया उसका फिर से इंतज़ार रहता है। तो तभी कहते हैं कि गणपति बप्पा मोरे अगले बरस तू जल्दी आ, तो वो इंतज़ार रहता है कि कब बप्पा वापस आएंगे, कब हमें फिर हमारे घर में मतलब हमारे घर को शुद्ध बनाएंगे खुद आकर। क्योंकि बप्पा जो है, हम बप्पा को नहीं चुनते हैं, बप्पा हमें चुनते हैं कि हमें किस घर में किस रूप में जाना है। तो इस बार जो है जो बप्पा आए हैं हमारे घर में, वो दगड़ू सेठ का रूप लेके आए हैं और दगड़ू सेठ की बहुत बहुत जरूरत है भैया।
1: मुंबई से नुपुर माउची, शीतल कावा, रोशनी विश्वकर्मा और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: हर साल की तरह इस साल भी जी कुटुंब गणेश उत्सव सेलिब्रेट कर रहा है, जहां एक तरफ बाप्पा भक्ति के रंग देखने को मिलेंगे तो वहीं दूसरी तरफ गेम और एंजॉयमेंट का तड़का भी लगेगा। तो चलिए देखते हैं जी कुटुंब के गणेश उत्सव के नजारे

डांस की बहार। रिश्तों में खुशियाँ बेशुमार, कहीं जश्न तो कहीं तकरार। इसी का नाम है प्यार। गणेशोत्सव के खास मौके पर जी टीवी लेकर आ रहा है जी रिश्तों का मेला, जहां जी के तमाम सितारे एक साथ मिलकर मना रहे हैं बप्पा का त्योहार। और इस मेले में रिश्तों के रंग भी हैं, रोमांस की अदा भी है, दोस्ती की शुरुआत भी है और डांस का धमाका भी। और तो और, इन रिश्तों को कभी एक साथ इस तरह आने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आज क्या जगधात्री शिवाय, क्या रामलीला, क्या शिवाय वृंदा स्वाति और क्या संजोग, सभी मिलकर मना रहे हैं खुशियों का जश्न और बिखेर रहे हैं त्योहार के कई सारे रंग। रंग नंबर एक, संजय की दो दीवानियाँ। फिलहाल तो सीरियल में संजय और वृंदा का आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन इस गणेश चतुर्थी के मौके पर संजय अपनी दो दीवानियों के साथ डांस फ्लोर पर रोमांस का रंग जमा रहे हैं। कभी स्वाति बनती है संजय की बाहों का हार,

वही संजय संग तो स्वाति और वृंदा दोनों ही झूम कर नाची हैं, लेकिन स्वाति और वृंदा इन दोनों की खास परफॉर्मेंस भी है जो सभी दर्शकों के लिए होगी सरप्राइज से भरी।

रंग नंबर दो, जगधात्री और शिवाय की प्रेम कहानी। सीरियल में तो शिवाय और जगधात्री के रिश्ते ने पूरी तरह प्यार का नाम नहीं लिया है, लेकिन जी रिश्ते के मेले में दोनों के बीच रोमांस का मूड कुछ और ही कह

भाई यहाँ तो शिवाय और जगधात्री की कभी नजरें मिल रही हैं, तो कभी मस्ती भरे डांस में दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका रिश्ता प्यार से ज्यादा दोस्ती का जो है।

0: हैपनिंग एक्चुअली. मुझे तो सबसे प्यारा ही कॉस्ट्यूम लगा. यूजुअली जगधात्री को आपने नवमारी में देखा होगा, उसकी जो चांद बिंदी है उस पर देखा होगा, एक हाफ टाई जो बना के रहती है, बहुत ही साधारण सिंपल लुक. हालांकि ये भी अच्छा सिंपल है बट थोड़ा ग्लैमर है एंड क्योंकि परफॉर्मेंस रिलेटेड है और गणेश चतुर्थी का उत्सव है तो इसीलिए ब्राइट एकदम येलो कलर पहना हुआ है एंड ये बालों में फूल भी लगाए हैं. बहुत ही अच्छा सा गेटअप है एंड इट्स पर्ल्स जड़े हुए हैं, हीरे मोती सब कुछ जड़े हुए हैं मेरे कॉस्ट्यूम में, जो कि ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. बट ऐसा दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा तामझाम है बट इट इज़ सो कम्फी. इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल है डांस करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए. मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस वाले कॉस्ट्यूम्स होते हैं ना, इवन लहंगा फॉर इंस्टेंस, वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं. मुझे लगता है ऐसे शादी और एंगेजमेंट जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में पहनते हैं वो भी इतने कम्फर्टेबल होने चाहिए कॉस्ट्यूम्स.
1: रंग नंबर 3, राम और लीला के प्यार का खेल. बस सीरियल में तो दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो रहा है, लेकिन यहाँ इस रिश्ते के मेले में डांस फ्लोर पर इनके बीच चढ़ गया है मस्ती का रंग, वो भी प्यार का. जरा देखिए कैसे दोनों म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं और साथ ही साथ अपने डांस का टशन दिखा रहे हैं, और इसी टशन में इनका प्यार भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है.

0: हमारा कंपटीशन है राम और मेरे बीच और हमें देखना है कि कौन जीतेगा. एंड बाद में फाइनली इट्स गर्ल्स वर्सेस बॉयज जिसमें मैं और जगदात्री एक टीम में है और राम और शिवा एक टीम में है. तो वो फिर हमारा एक कंपटीशन होता है. सो मेहनत जल्दी जल्दी हमें तैयार होना था क्योंकि हम लोग शूट कर रहे थे और शूट के बाद हमें यहाँ पर आना था एंड ज़्यादा टाइम था नहीं. तो हमने फटाफट हेयर किया, मेकअप किया एंड मैं थोड़ा एक्साइटेड थी क्योंकि शो में अभी तक ऐसी कोई भी ग्लैमरस लुक अभी तक आई नहीं है. तो फाइनली अभी आज मुझे चांस मिला है एंड द आउटफिट इज वेरी ब्यूटिफुल एज यू कैन सी, वेरी ब्यूटिफुल और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है.
1: रंग नंबर 4, जोड़ियों में तकरार. यूँ तो हमेशा कपल्स के बीच टशनेबाजी नजर आती है लेकिन इस बार हो रहा है गर्ल्स वर्सेस बॉयज. जरा देखिए कैसे दोनों जोड़ियां जब डांस फ्लोर पर आई तो असली टशन तब देखने को मिला जब सामने आती हैं लीला और जगधात्री. दोनों लड़कियां एक हो चुकी हैं और अब मिलकर दोनों लड़कों को दे रही हैं जबरदस्त टशन. इनके डांस में एटीट्यूड है, मूव्स में मस्ती है और एक्सप्रेशन में पूरा टशन. तभी तो देखिए कैसे टशन वाले डांस के साथ साथ लड़के और लड़कियों के बीच शुरू हो गई है रस्सी खींचने की प्रतियोगिता भी.

सच तो है, जाओ मेरा अच्छा दोस्त है, उसका जीता भी जरूरी है।

0: करती थी, बट यहाँ पर एक मौका मिल जाता है इंटरेक्ट करने का भी, एक दूसरे को जानने का भी, परफॉर्म भी करते हो तो मज़ा दुगना हो जाता है. और बहुत सारी चीज़ें होंगी. जी ने इतनी सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की हैं जो कि इन्वॉल्व करेंगी कैरेक्टर्स को, उनके को स्टार्स के साथ. आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, आपको डांस देखने को मिलेगा, आपको मतलब हंसी मजाक फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा बेसिकली. एक तो ब्रिंग इट ऑन करके एक गाना है जहाँ पर हम टग ऑफ वॉर कर रहे हैं रामलीला के एक्टर्स के साथ, राम और लीला के साथ, एंड मैं और शिवाय हैं. बट ऑफकोर्स इट्स बॉयज वर्सेस गर्ल्स, तो हम एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं. बट फिर गणेश जी आ जाते हैं और हमें समझाते हैं कि जीतने दो, तुम ही जीत रही हो, बट इन्हें जीतने दो क्योंकि ये तुम्हारे पति हैं, दोस्त भी हैं, उनका जीतना ज़रूरी है. तो हम ऐसे जीतने देते हैं.
1: ये जैसे न्यू ईयर होता है ना, बिल्कुल वैसा फील होता है जब गणपति जी आते हैं तो. मुंबई में स्पेशली ऐसा फील होता है जैसे न्यू ईयर हो. सबसे पहले तो गणपति बापा मोरया, क्योंकि गणेश चतुर्थी फाइनली आ गई है, बप्पा आ गया है. तो मुझे जैसे मैं शिमला से आती हूँ और मुंबई में जब मैंने ये चीज़ देखी तो इट्स वेरी डिफरेंट एंड द होल वाइब इज सो एनर्जेटिक. बहुत अच्छा रहा उनसे मैं पहली बार मिली और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके. बहुत ही स्वीट है दोनों, जगदात्री और शिवाय, और उनके साथ परफॉर्म करके भी एकदम ऐसे लगा जैसे हम पहले से ही परफॉर्म कर रहे हैं साथ में, इस तरह की हमारी ट्यूनिंग थी. सो बहुत मज़ा आया. बेसिकली सेंटर्ड है अराउंड गणेश चतुर्थी, तो हम बप्पा का इसमें बप्पा के ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग सब परफॉर्म करने वाले हैं. कुछ कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, कुछ नोक झोंक होने वाली है, कुछ प्यारी प्यारी बातें होने वाली है. तो बहुत मज़ा आने वाला है व्यूअर्स को क्योंकि सारा का सारा जी परिवार एक साथ आ रहा है. एंड हमारे लिए तो ये बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोगों का शो अभी अभी ऑन एयर आया है, एंड इस मोमेंट पे जब हम सबसे मिल पाएंगे तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं.
2: बहुत बेहतरीन एक्टर है जी टी के, मैं सब नेचर से डांस करते हैं एंड मैंने कोशिश की है कि ठीक से परफॉर्म करूँ. अगर आपको अच्छा लगा तो आई एम वेरी हैप्पी. आई थिंक मैं था लीला थी एंड जगदात्री एंड शिवाय देवदास, एंड हमने साथ में डांस किया बॉयज वर्सेस गर्ल्स जो थीम था, एंड थीम के एंड में छोटा सा मैसेज भी था, तो आई थिंक व्यूअर्स को देख के काफी अच्छा लगा.
3: रंग नंबर 5, शिवाय की धमाकेदार परफॉर्मेंस. जब डांस के मंच पर एनर्जी लेवल को बढ़ाने की बारी आई तो पहुंच गए शिवाय. जरा देखिए कैसे आते के साथ ही उन्होंने अपने अंदाज में डांस फ्लोर पर लगा दिया है एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का. जरा देखिए कैसे हाथों में झांझ लिए शिवाय अपने डांस का दम दिखा रहे हैं, वो भी फुल ऑन एनर्जी के साथ.

0: पूरा जी फिल्म यहाँ पे है और सभी लोग गणेश उत्सव मनाते हैं, ड्रामा है, हंसी मजाक है, रोमांस है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तो जी को तुम एक साथ सारे लोग एक साथ हैं, वहाँ पर तरह तरह के एप्स हैं, तो आई थिंक ये पब्लिक को एंटरटेनमेंट है। जी को तुम है तो कॉम्पिटिशन तो होगा सबके साथ, ठीक है, सबका अपना अपना कुटुम आएगा, जैसे जगन्नाथ जी को तुम्हें बाकी शोज हैं उनके साथ हमारे क्या टास्क होते हैं, जब नहीं समझ लेते हैं और सब अपने विशेष लिए पाएंगे, जिसको जो मांगना है वो मांगना, बहुत कुछ है, धमाकेदार होगा। जो
1: रंग नंबर 6 संजोग के डांस का स्वैग। भाई अभी हाल ही में संजोग ने अपने सीरियल में अपने डांस का जलवा दिखाया ही था, लेकिन जैसे ही बारी आई जी रिश्ते के मेले में डांस का रंग जमाने की, तो देखिए कैसे संजोग ने भी अपनी सिंगल परफॉर्मेंस से स्टेज पर बिखेर दिए डांस एनर्जी और एंटरटेनमेंट के कई रंग, और हाथ में झंडा पकड़कर लहरा दिया अपने डांस का परचम।

0: जी आपने देखा ही होगा, मैं अभी अभी आया हूँ, बहुत ही मजा आया गाइस। एंड जो ये जी रिश्तों का मेला गणेश उत्सव सेलिब्रेशन करते हैं, इट्स माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। विघ्नहर्ता सॉन्ग पे मैंने परफॉर्म किया, बहुत ही मजा आया।
1: देखिए ये सैफ्रन कलर,
0: सब कह रहे थे कि अच्छा लग रहा है, आप बताइए कैसा लग रहा है।
2: यानी जी रिश्तों का मेला में सिर्फ पप्पा का उत्सव नहीं, बल्कि रिश्तों की केमिस्ट्री, रोमांस की अदा, दोस्ती का रंग, टशन की टक्कर और डांस का धमाका, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। पप्पा के आशीर्वाद के साथ साथ जी स्टार्स का ये मेला एंटरटेनमेंट के नाम एक धमाकेदार सेलिब्रेशन है, जिसकी जी सितारों ने जमकर की है तैयारी। जाते जाते देख लीजिए पर्दे के पीछे के ये नज़ारे, जहां पर सभी कलाकार मंच पर अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो ये ट्रेलर है, असली धमाका अभी बाकी है।

0: सीरियल्स की दुनिया में आने वाले नए नए ट्विस्ट कहानियों को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। हर मोड पर दर्शकों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आपके पसंदीदा सीरियल्स में कौन सा नया ट्विस्ट आया है।
1: बरेली के बच्चा

0: माही, इन लोगों का कितना बन गया है?
1: अरे भैया डालो ना जल्दी।
2: कलर्स टीवी के सीरियल बरेली के बच्चन में वही हो रहा है त्योहार का सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन के साथ साथ रखा गया है मोहल्ले में कंपटीशन भी, जिसमें सभी परिवार वालों ने हिस्सा लिया है। ऐसे में देखिए कैसे भाई बच्चन परिवार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन कंपटीशन में इनकी दाल शायद गल नहीं पा रही है, क्योंकि इनसे सुई ही पुरोई नहीं जा रही है। भाई फूलों की माला बनानी है, लेकिन तभी देखिए कैसे बच्चन परिवार ने निकाला नया जुगाड़।
3: ए माई, इसको नीचे रखो, फूल इकट्ठा करो।
1: अरे सतनुज क्या कर,
4: भाग जाओ, पकड़ो
1: तुम ये, पकड़ो,
4: हम जीत क्या जाएंगे,
1: अरे पकड़ो, पता नहीं भाभी अब क्या लिए,
5: गजब गजब गजब गजब,
1: शाबाश,
5: अरे बेईमानी कर रहे हो भाई,
1: अरे कभी नहीं कर रहा है यार,
5: अरे काका फूल भी नहीं, इसे जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़
1: फूल नहीं आप,
4: अरे आरती जल्दी कर दे।
6: इनकी राधा तो पहुंच गई कृष्णा तक।
7: ये मटकी तोड़ रहे,
2: इस रेस में इनकी जीत भी हुई, और देखिए कैसे रोमांटिक समा भी बन गया, लेकिन अब बारी मटकी फोड़ने की, और देखिए कैसे भाई कृष्णा और संगम की जुगलबंदी ने भाई मटकी वाला टास्क भी जीत लिया और नाम कर ली अपनी ट्रॉफी।

0: प्रतियोगिता के विजेता हैं कृष्णा बच्चन और संगम बच्चन।
1: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है तीज सेलिब्रेशन, जहां पोद्दार फैमिली त्योहार पर डांस कर रही है। खुशी के माहौल के बीच ट्विस्ट तब आता है जब अभिरा के सामने आती है मायरा के बॉयफ्रेंड की सच्चाई। ऐसे में आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा।

0: आपका कोई बॉयफ्रेंड है?
1: त्योहार की खुशियों में लगा ट्विस्ट का ब्रेक।
0: बेटा जी, मुझे ये सब पता है कि आपने उसके लिए व्रत रखा था, जिसे खुलवाने के लिए वो यहाँ हमारे घर आया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो मायरा।
1: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ी ही धूमधाम से तीज का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां आज सारी सुहागनों ने किए हैं 16 श्रृंगार और ये सभी खुशी खुशी तीज का त्योहार मना रही हैं और साथ हैं इन सबके पति देव भी। भाई तीज का त्योहार हो और ऐसे में नाच गाना ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो देखिए कैसे आज परिवार की सारी जोड़ियां एक दूसरे संग ताल से ताल मिला रही हैं और इस त्योहार को दिल खोलकर ये सभी कर रही हैं एंजॉय।

0: या अरमान हो या फिर अरमान के मम्मी पापा, आज तो बच्चे हो या बूढ़े, सभी त्योहार की खुशियां साथ साथ मिलकर मना रहे हैं और शुरू हो गया है इनका नच बलिए।
1: डांस तो हम लोग सभी एंजॉय करते हैं, बिकॉज आई थिंक वी ऑल लव टू डांस। एक्टिंग करने के बाद हम लोग को शायद डांस करना, कुछ लोग हैं जिनको थोड़े संकोच करते हैं, लेकिन मैं, मनीषा, मनोज, हम लोगों को तो डांसना बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी थोड़ी खुश भी इसलिए हुई हूँ बिकॉज माधव जी जो संदीप हैं, जो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, पहले वो थोड़ा संकोच करते थे, थोड़े झिझकते थे, लेकिन अब वो बहुत कमाल का डांस करने लग गए हैं। और ये अच्छा होता है पार्टनर के लिए, बिकॉज यू नो आपका तालमेल जो अच्छा बना रहता है तो सुंदर लगता है नाच, और टाइमिंग अच्छी होती है आपकी, आप स्टेप्स नहीं भूलते हैं, तो दैट्स नाइस एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। अदरवाइज यहाँ पर जैसा आपने कहा कि कोई उत्सव हो, कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, कोई त्यौहार हो, कोई जश्न हो, और उसमें DKP के शो में नाच गाना ना हो तो फीका फीका लगता है। और मेरे ख्याल से वो शायद फीका कभी होने ही नहीं देते, उसमें नमक और मिठास जो है और जो तड़का जो है वो हम बनाए रखते हैं, और हम लोगों को सबको बड़ा मजा आता है करने में। मानशु आते हैं, सुशांत आते हैं, हमें द कोरियोग्राफर्स, दे डू अ फैबुलस जॉब।
0: इस त्योहार की खुशी के बीच कहीं न कहीं अभीरा थोड़ी परेशान है। उसे शक हो रहा है कि मायरा के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अभीरा को सच जो पता चल गया है। ऐसे में वो परेशान है और अरमान जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभीरा अरमान को कुछ नहीं बताती और मायरा को वहाँ से लेकर कमरे में चली जाती है।
1: बिकॉज एक माँ को जो है वो भाप लेती है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो वो यहाँ पे समझने लगती है कि कुछ तो है गड़बड़, इसका शायद बॉयफ्रेंड है, क्योंकि जिस तरह से ये अभी सच धज रही है, तीज के उसमें पति पत्नी व्रत रखते हैं, खासतौर से पत्नियाँ व्रत रखती हैं, और आजकल तो हमारे यहाँ तो पति भी रखने लग गए हैं व्रत, यू नो, निर्जल वाला व्रत, तो यहाँ मायरा भी रख रही है, तो समझ नहीं आ रहा है अभीरा को, थोड़ी असमंजस में है, कश्मकश में है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ, उसकी बेटी के साथ। देखिए उम्र उसकी हो गई है, जहाँ पर आपको एक प्यार तो नहीं कहूँगी, इंफैचुएशन भी हो सकती है, तो उसको ये है कि असमंजस में कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है, जिस तरह से ये तैयार होती है, जिस तरह से सजती है, जिस तरह से बोलती कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ, जिस तरह से कुछ कुछ छुपाती है, जिस तरह से बाल खुले रखती है, और आज त्यौहार के उत्सव में उसने व्रत भी रखा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और व्रत उसने बता के नहीं रखा है, बस यही है कि वो कॉफ़ी पीना भूल जाती है, ऐसे बोल रही है।
0: तो भाई त्योहार में असली तमाशा तो अब शुरू हुआ है, जहाँ पर अभीरा मायरा को बताती है कि उसे पता है कि मायरा का बॉयफ्रेंड है और मायरा ने तीज का व्रत भी रखा है। इस बात पर अभीरा मायरा पर खूब भड़क रही है। मायरा अभीरा को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभीरा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। हालांकि अभीरा को ये नहीं पता चला है कि मायरा का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि कबीर ही है।
2: बेटा जी, मुझे ये सब पता है कि आपने उसके लिए व्रत रखा था, जिसे खुलवाने के लिए वो यहाँ हमारे घर आया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है।
3: तो आप एंग्री हो क्योंकि वो,
2: क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो मायरा, आपको आपको पता है तीज क्यों मनाया जाता है, आपको पता है तीज के व्रत की क्या इंपॉर्टेंस होती है? नहीं नहीं पता, लेकिन फिर भी आपने सर धर के उस रैंडम लड़की के लिए व्रत रख लिया, वो भी मुझसे झूठ बोलकर। बस बस मायरा, उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था आपको कोई लड़का पसंद है या नहीं, तो नहीं, आपने मेरी जनरेशन का मजाक बना के मेरे ऊपर ज्ञान की बाल्टी पलट दी थी और साफ साफ झूठ बोला था। और जो गलत काम करता है उसे छुपाने के लिए ही झूठ बोलता है, यानी आपको लगता है कि आपके सो कॉल्ड रिलेशनशिप में कुछ तो गलत है।
3: और जब आपने पूछा था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, पर पूछा डर क्या है?
2: अच्छा जाओ फिर, जाओ ना, जाओ जाके पापा को बताओ उसके बारे में, इतना महान है वो लड़का, तो जाओ जाके पापा को बताओ उसके बारे में। मायरा, डू यू रियलाइज कि अगर मेरी जगह आपको पापा ने देख लिया होता तो क्या होता?
3: पापा को कभी,
2: वो उस लड़के को जाकर उदयपुर के बाहर छोड़ के आता, और बिल्कुल करेक्ट कर। अब ये चाहिए सब करने की, था। एक तो मैं शक्ल भी नहीं देख पाई उस लड़की की, लेकिन मैंने ये जरूर देख लिया कि आप कैसे प्यार से उसकी शक्ल निहार रहे थे, वो भी हमारे घर बुलाकर। मायना, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई। बेटा, आपको पता है ना, तीज का व्रत मैरिड कपल्स रखते हैं। आपने हमारे ट्रेडिशन का मजाक बना के रख दिया है, या फिर हो सकता है आप दोनों ने सीखने की शादी कर ली हो, बिकॉज अब तो पेरेंट्स को कुछ भी बताने का रिवाज ही कहां रहा है, राइट?
3: Oh, please, हम किसी का मजाक नहीं बना रहे। उसने भी मेरे लिए फास रखा था जैसे पापा आपके लिए रखते हैं।
2: What?
3: हमें आप दोनों के जैसा कपल बनना था, स्वीट और लविंग, इसलिए हमने आपकी तरह एक दूसरे के लिए फास रखा।
2: मायरा, गॉड, मायरा, आर यू सीरियस? मैं और पापा सालों से मैरिड हैं। हमने लाइफ का वर्स्ट टाइम साथ में एक्सपीरियंस किया, हमारे दो बच्चे हैं। अब 4 दिन पहले उस लड़के से मिले हो, कुछ घंटे भूखे रहने से आप हमारे जैसे नहीं बन जाओगे, तो गॉड सेक मायरा, पापा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं।
3: माँ,
2: एंड नाउ प्लीज प्लीज प्लीज ये तो बोलना है बाकी 4 दिन में आपको उस लड़के से प्यार हो गया है।
3: पर आई रियली लाइक हिम बहुत ज्यादा, वो भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों एक
2: क्या हम दोनों
3: आप मुझे बोलने तो
2: क्या बोलने दो ये लाइकिंग एंड ऑल वाली नॉनसेंस, 4 दिन पहले वाली नॉनसेंस बोलने दो।
0: भाई अभीरा मायरा पर भड़क रही है और मायरा बुरी तरह से डर गई है, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड वाली बात अरमान को पता चलेगी तो बवाल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार अभीरा ने भी ठान लिया है कि वो मायरा को नहीं बचाएगी और सच को नहीं छुपाएगी।
2: कुछ और काम नहीं रह गया है। बेटा छोटे हो, अभी बहुत छोटे हो, करियर बना लो, लाइफ बना लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, लेकिन नहीं, तो इस उम्र में रिश्ता बनाना है। जानी ये कौन लड़का है और पता नहीं कहाँ से मेरी मम्मी की जिंदगी में आके टपक गया है।
3: अम्मा को अच्छा लड़का है।
2: अब प्लीज ये तो बोलना ही मत, कितने दिन से आप उसको जानते हो, आपको कैसे पता वो अच्छा लड़का है? तो पहले मेरा दोस्त था,
3: फिर बहुत अच्छा दोस्त बना और मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी बातों का मुझ पर अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, मुझे उस पर ट्रस्ट हुआ और फिर एंड में मुझे उसके लिए लाइकिंग फील हुई और वो मेरा बॉयफ्रेंड बना। फालतू टाइप का नहीं है मम्मा, बहुत स्वीट है, हेल्पफुल है, वो जहाँ जाता है सबको हंसा देता है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है मम्मा। तो लगता है मैं किसी भी स्टूपिड से लड़के को लाइक करूंगी। आप उससे मिलोगे वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज एक बार उससे मिलोगे।
2: जी नहीं।
3: पर क्यों?
2: रियली मायरा, उस लड़के से मिलना इतना नॉर्मल इवेंट है, तो चलो ना पापा को भी साथ में लेकर चलते हैं। पापा को भी बता देते हैं कि कल तक आप अपना रेड टॉप अलमारी में ढूंढ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने उनके लिए दामाद ऑलरेडी ढूंढ लिया है। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था, साफ साफ कहा था, दैट दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद मैं कोई भी बात छुपाने में आपकी हेल्प नहीं करूंगी। कि अब से मैं पापा से कोई भी बात छुपाने में आपकी हेल्प नहीं करूंगी।
3: मम्मा प्लीज हेल्प कर दो ना।
4: थैंक यू सो मच। पहले तो मेरे को भी आउटफिट बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, जिन्होंने भी ये बनाया बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं इस आउटफिट में और सबने बहुत तारीफ की। तो सीन तीज सेलिब्रेशन चल रहा है एंड मायरा ने कबीर के लिए फास्ट रखा है, कबीर ने मायरा के लिए फास्ट रखा है, तो कबीर ये आउटफिट भी मायरा ने कबीर ने मायरा को ही दी है और ये चूड़ियाँ भी कबीर ने ही दी है, तो आज फुल मायरा ने कबीर की दी हुई चीज़ें ही पहनी है। एंड या सब लोग डांस कर रहे हैं घर पे एंड मायरा अपने पेरेंट्स को देख के उन्हें रिकॉर्ड कर रही है एंड ऑल, और फिर कबीर मायरा की इमेजिनेशन में आ जाता है। तो उन्होंने अभीरा ने मायरा को किसी के साथ देख लिया है डूम में, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो कबीर है, बट उन्होंने देख लिया कि मायरा किसी के साथ तो है, बट मायरा को नहीं पता है कि मम्मा ने देख लिया, तो वो तो फुल अनजान है इस खतरे से। मायरा का बस ये गिल्ट है कि उसने पेरेंट्स से छुपाया है कि उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मायरा तो वो बात बताने जाती है, बट मम्मा की चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अलग ही टॉपिक। पे मम्मा गुस्सा।
0: तो भाई अब जब अरमान को सच पता चलेगा तो क्या तमाशा होगा ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल लक्ष्मी निवास में देखने को मिला मियां बीवी का फिल्मी रोमांस, जहां वीर और राधिका दोनों रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हैं और कर रहे हैं फिल्मी डांस। ऐसे में ये सपना है या हकीकत, चलिए देखते हैं।
0: झूम कर नाचे वीर और राधिका। शुरू हुआ दोनों का नच बलिए।
6: जश्नबाजी की शाम है।
0: जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में आ गया है डांसिंग ट्विस्ट, जहां पर एक दूसरे की ताल से ताल मिलाते नजर आए वीर और राधिका। असल में वीर और राधिका हनीमून पर आए हैं और यहां पर चल रही है एक शूटिंग, जिसे देखने के लिए राधिका यहां खड़ी हो जाती है और राधिका और वीर दोनों ही खो जाते हैं सपने में, जहाँ इस हसीन सपने में दोनों बन गए हैं हीरो हीरोइन। और देखिए कैसे हीरो हीरोइन बन दोनों डांस कर रहे हैं।

भाई डांस ने तो बना दी है वीरा और राधिका की जोड़ी, जहां दोनों एक दूसरे में खो गए हैं। वैसे आपको बता दे कि धीरे धीरे अब राधिका को भी वीर से प्यार होने लगा है, और लगता है कि ये प्यार का ही असर है।

वैसे इसी दौरान राधिका अकेली पड़ जाती है और उसकी नजरें वीर को ढूंढ रही हैं। राधिका थोड़ी परेशान भी होती है कि तभी वहाँ पहुँच जाते हैं वीर। तब जाकर राधिका की जान में जान आती है और ऐसे में आज तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में भी खो गए हैं। यानी इस हनीमून ने बना दी है वीर और राधिका की जोड़ी।

0: अब देखना होगा प्यार के एहसास के साथ प्यार का इजहार कब और कैसे होता है, और इसी के साथ इस हनीमून में कोई ट्विस्ट आएगा या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: बानी फैमिली ने अपने घर एंटीलिया में गणपति बप्पा का भव्य स्वागत किया। गणोत्सव के पावन अवसर पर फूलों और लाइटों से सजा एंटीलिया बेहद खूबसूरत नजर आया। इस खास मौके पर कई फिल्मी सितारे भी पहुंचे और उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया। देखिए अंबानी परिवार के गणपति सेलिब्रेशन के नजारे।
0: त्योहार पर सितारों की धूम। अंबानी परिवार के घर पहुंचा बॉलीवुड का कुटुंब। के दर्शन के लिए लगा सितारों का मेला।

सालों से अंबानी परिवार गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाता हुआ आ रहा है और इस बार भी इसमें लग गए हैं चार चांद और सभी दिग्गज कलाकार पहुंच गए हैं अंबानी परिवार के पापा के दर्शन के लिए। ऐसे में सास बहू और बेटियां लेकर आया है आपके लिए ये सभी खास नजारे, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से सज धज कर ये कलाकार बापा की भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं।

మాధురి నేనే. బమన్ ఇరానీ చుపాచే అప్ని వైఫ్ సంగ్. జాకీ ష్రాఫ్ నజర్ ఆయ్ అప్ని పత్ని సంగ్. इसके अलावा एटली और प्रिया भी पापा के दर्शन के लिए पहुंचे. ऐसे में कई सारे बॉलीवुड के परिवार भी यहां पर एक साथ नजर आए, जैसे कि सैफ करीना पहुंचे तैमूर और जहांगीर संग. तो वही सचिन तेंदुलकर भी अपने कुटुंब संग नजर आए.

इसके अलावा हरभजन सिंह और गीता बसरा भी अपनी बिटिया रानी संग पहुंचे। तो वहीं जितेंद्र नजर आए एकता के साथ

के अलावा काजल भी न्यासा युग के साथ पहुंची। तो वहीं राजकुमार हिरानी भी सहपरिवार यहां पर साथ साथ नजर आए। वहीं अंबानी परिवार के घर पहुंचा ठाकरे परिवार, यानी कि उद्धव ठाकरे जो पहुंचे अपनी वाइफ और बेटे आदित्य ठाकरे संग। इसके अलावा बात करें हसीनाओं की तो यहाँ सज धज कर पहुँच गई है जाह्नवी कपूर। कृति नुपुर

ವೇದಿಕಾ ಪಿಂಟು. ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ. ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ.

0: Shania Kapoor. Rasha Thadani. उसके अलावा किरण राव,
1: अपनी लिमिट में रखो, हेलो हेलो
0: रेखा,
1: अपनी बारी रे, हमसे रहो ऐसे वैसे पकड़ो, ऑर्डर जल्द हित में जारी है,
0: करिश्मा कपूर,
1: अपनी लिमिट में रखो, हेलो हेलो अब तो है अपनी बारी रे,
0: नीति मोहन, सभी के सभी देसी अंदाज में यहाँ पर बापा का आशीर्वाद लेने पहुँचे। भाई अगर हसीन आए हैं तो मुंडे कैसे पीछे रहेंगे, तो यहाँ पर नजर आए रणवीर सिंह। सलमान खान,

यानी कि बापा के दर्शन के लिए सज गया है बापा का दरबार। ऐसे में हम भी यही कहेंगे, वही बापा के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं गणपति बापा यूं ही पूरी करें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: तो आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो हम खास आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपके चेहरे पर भी आ जाएगी एक हल्की सी मुस्कान। तो देखते हैं आज की रॉकिंग खबरें।
1: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं सामंथा रुद प्रभु की, जिनका हो रहा है बेबी शावर, वो भी ट्रेडिशनल पारंपरिक अंदाज में, जहां नजर आ रहे हैं उनके हस्बैंड राज भी।

बहुत जल्द आने वाला है राइज एंड फॉल का सीजन 2। ऐसे में खबरों की माने तो प्रियंका चहर चौधरी, रजत दलाल, अनुराग डोभाल, पुनीत सुपरस्टार और गोविंदा जैसे नाम सामने आ रहे हैं। हनुमान अंश का सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आएगा। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि उसमें होगा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का कैमियो।

0: भाई इन दिनों कार्तिक आर्यन लंदन में है, लेकिन फिर भी गणेश चतुर्थी का त्योहार देखिए कैसे पूरे हर्षो उल्लास के साथ मना रहे हैं। जल्द धर्मा प्रोडक्शन लेकर आ रहा है नई फिल्म जिसका नाम है ओड़िया। ऐसे में हुई इसकी मुहूर्त पूजा।
1: अपनी जिंदगी के उस इंसान को याद करो जो आपके दिल और दिमाग को सुकून देता है।
2: मुझसे मिल।
1: तुम कि आप उसके बड़े भाई हैं।
0: देख लीजिए 108 बेस्ड हॉस्पिटल उरी का ये नई झलक। क्या अनिरुद्ध और नैना के बीच बढ़ जाएंगी दूरियां?
3: हर ओटी में, हर कॉरिडोर में तुम नजर आते हो। वो सारी चीजें नजर आती है जो मैं बहुत मुश्किल से भूली।
1: आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। तुम्हें पाने की कोशिश नहीं करूंगा।
0: नजर डालते हैं इंडिया के टॉप 1% प्रोमो पर, जहां 4 दिन और बाकी है सिर्फ और सिर्फ अनिल कपूर के इस नए शो की शुरुआत में।

शेट्टी ने शेयर किया है ये लास्ट वीडियो खतरों के खिलाड़ी 15 के फिनाले से।

0: नजर डालते हैं रोहित शर्मा के शो फैमिली हाउस विद रोहित शर्मा के इस नए प्रोमो पर।
1: आरती जी,
2: हाँ जी बाजी,
1: मुझे पाजी मत बोलो।
2: मेरे को भी भाई सबने दीदी बना दिया, जबकि अंदर से मेरी फीलिंग पूरी गर्लफ्रेंड वाली।
1: हंसने का नहीं ऐसा यार,
3: काय वाले की दीदी हिट है।
4: थोड़ी टिप्स दे दो कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे किया जाए।
5: पीपल आर लविंग यू।
1: ओह व्हाट अ मोमेंट।
0: सौरभ बेदी और निहारिका तिवारी जो इन दिनों एक दूसरे के साथ प्यार में डूबे हुए थे, निहारिका तिवारी ने अपने रिलेशनशिप का ब्रेकअप अनाउंस कर दिया है सोशल मीडिया के जरिए।
6: आज बहू और बेटियां में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात और खबरों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसके साथ ही हम आपको गणपति उत्सव के रंग भी दिखाते रहेंगे। आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: देश भर में गणेश उत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में श्रद्धालुओं का लगा मेला, जीएनटी पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के डगरुशेठ हलवाई गणपति मंदिर में आस्था का मेला, 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष का पाठ, भगवान गजानन की उतारी गई महाआरती। इंदौर में बप्पा की प्रतिमाओं का अनोखा संग्रह, भक्त ने बनाया 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय, विदेशों से भी जुटाई गजानन की मूर्ति। देवभूमि में धूमधाम से जारी पवित्र चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब दरबार में भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मौसम की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर आई सामने, आज से फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, 30 सितंबर तक करीब 9,000 टिकट बुक। लंदन में दिखी वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर थेम्स नदी किनारे भव्य आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए इसमें लोग। राष्ट्र के पुणे में आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला, श्रीमंत डगरुशेठ मंदिर में ऋषि पंचमी के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे 35,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया, गणेश नाम के जय घोष, अथर्वशीर्ष पाठ और महाआरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। देखिए ऋषि पंचमी के मौके पर जो खास आयोजन है ये हुआ, जिसमें हजारों महिलाओं ने अथर्वशीर्ष का पाठ किया।

0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: मुंबई में गणपति उत्सव पर दिख रहे अलग अलग थीम वाले गणपति के सुंदर रंग, इसी कड़ी में ब्रिक्स समिट की थीम पे सजा बप्पा का दरबार। गणेश उत्सव की भव्यता के साथ देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि का भी किया गया है सुंदर प्रदर्शन, लोगों के लिए बन रहा आकर्षण का केंद्र। इस थीम पर आधारित सजावट में ब्रिक्स समिट से जुड़े दृश्य और प्रतीकों को भी किया गया है शामिल, बप्पा के लगाया गया है ब्रिक्स पर आधारित केक का भोग। गणेश उत्सव पर पुणे के श्रीमंत डगरू शेठ मंदिर में दिखा विशेष उत्साह, महिलाओं ने किया गणेश अथर्वशीष का पाठ। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत डगरू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में हुआ ये धार्मिक पाठ, करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने किया गणेश अथर्वशीष का पाठ। पुणे में गणेश उत्सव के दौरान विघ्नहर बप्पा का हुआ लौकिक श्रृंगार, करोड़ों रुपए के सोने के गहनों से सज विघ्नहर्ता। बप्पा का ये दिव्य और भव्य रूप भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना, 200 साल से भी अधिक पुराने पारंपरिक और ऐतिहासिक गहनों से होता है उनका श्रृंगार। बप्पा के सिर पर सजा भव्य नक्काशी वाला सोने का मुकुट, माथे पर हीरे और चंद्रकोर की सजावट, सिर पर छत्र के साथ देखते ही बन रहा है विघ्नहर बप्पा का ये शाही रूप। गणपति बप्पा के 5 दिवसीय जन्मोत्सव के अवसर पर बप्पा को पहनाए गए पेशवाकालीन पोशाक, साल में सिर्फ 2 बार भक्तों को देखने को मिलता है बप्पा का ये अद्भुत स्वरूप। इस मौके पर पूरे मंदिर परिसर की हुई भव्य सजावट, फूलों और रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया गणपति का दरबार। बप्पा के रंग में रंगा पुणे, महागणपति के मुक्त द्वार दर्शन उत्सव की भव्य शुरुआत। महागणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में राजन गांव पहुंच रहे श्रद्धालु विघ्नहर्ता के अलौकिक स्वरूप का कर रहे दर्शन। 4 दिनों तक चलेगा ये खास उत्सव, श्रद्धालु सीधे गणपति की मूर्ति को हाथ लगाकर कर सकेंगे दर्शन। खुला दरवाजा है मुक्त द्वार का शाब्दिक अर्थ, इस उत्सव के दौरान भक्तों के लिए पूरी तरह खोल दिए जाते हैं मंदिर के दरवाजे। हर साल भाद्रपद गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है ये उत्सव, भाद्रपद द्वार यात्रा के नाम से भी मशहूर। गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के प्राचीन चिंतामण गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की दिखी रौनक, भगवान को लगाया गया 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग। विघ्नहर्ता के दर्शनों के लिए उमड़े भक्तों की भारी भीड़, सुबह पंचामृत अभिषेक के साथ हुए बप्पा का मनमोहक श्रृंगार। अपने तीनों स्वरूप यानी कि चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान गणपति, मान्यता है कि श्री राम लक्ष्मण माता सीता ने की थी इस मंदिर की स्थापना। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा 200 साल से जारी है ये शाही परंपरा। ढोल नगाड़ों के बीच राजमहल पहुंची बप्पा की मूर्ति, राजमहल के भव्य द्वार हॉल में राजवी परिवार की मौजूदगी में राज पुरोहित ने की पूजा अर्चना। राजगढ़ में 15 फीट ऊंचे चिंतामण गणेश मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालुओं ने की दर्शन पूजा। ढोल नगाड़ों के बीच हुई महाआरती, बप्पा को लगाया गया लड्डुओं का भोग। गणेश उत्सव के लिए मंदिर में की गई आकर्षक लाइटिंग, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भक्तों की आस्था का केंद्र है 164 साल पुराना इमारत। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता ने गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। लालबाग चौराहा के दर्शन के लिए पहुंचे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर की प्रार्थना टेका मत्था। मुंबई में अंबानी परिवार में भी हुई बप्पा की स्थापना, फिल्मी हस्तियों समेत सियासी हस्तियों ने भी इसमें की शिरकत। राधिका मर्चेंट ने भगवान गजानन का स्वागत सम्मानित सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया, सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है उनका ये डांस वीडियो। लाल कारण तेरी होती है पूजा, गौरी के संग धन्य तेरे चरणों को छू। नीता अंबानी ने किया मेहमानों का स्वागत, ऑरेंज साड़ी में बेहद सुंदर लगी नीता अंबानी। अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में कई संत भी रहे शामिल, कैलाशानंद गिरी जी महाराज समेत कई और संतों ने इसमें शिरकत की। बाबा बागेश्वर और बाबा रामदेव ने भी बढ़ाई गणेश उत्सव की शोभा, एंटीलिया पहुंचे संत। सैफ अली खान और करीना कपूर भी बप्पा के दर्शन के लिए परिवार के संग आए एंटीलिया, करिश्मा कपूर भी मौजूद। अंबानी के घर पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी गणेश उत्सव में शामिल हुए। रितेश देशमुख भी पत्नी जिलेनियस के साथ अंबानी के गणपति उत्सव में शामिल हुए। वरुण धवन भी पहुंचे। अनिल कपूर भी अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में शामिल हुए। पत्नी के साथ सुनील शेट्टी भी एंटीलिया पहुंचे। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल भी अंबानी हाउस पहुंचे, गणेश उत्सव में शामिल हुए। हैदराबाद का एकर गणेश पंडाल बना, बच्चों की पहली पसंद टॉफी से तैयार की गई है विघ्नहर्ता की प्रतिमा। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा के तर्ज पर किया गया है ये प्रयोग। प्रतिमा में कई तरह की टॉफी और चॉकलेट का किया गया है इस्तेमाल। मूर्ति की तरह पूरे पंडाल को भी बच्चों की थीम पर ही सजाया गया है। हर साल नई थीम पे बनाया जाता है गणेश पंडाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी अलग अलग थीम पे सजे हैं गणेश पंडाल। दर्शकों के लिए भक्तों का लगातार आना जाना जारी। घर पर बप्पा बिठाने के लिए बाजारों में भी गणपति मूर्तियों की लगातार डिमांड। हर तरह के आकार स्वरूप भी प्रतिमा मौजूद।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं, न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं, इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल करके

0: तेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिर पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रो इंट्राइस्टिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा, ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुडनी चुडी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है क्या? यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: देश भर में गणेश उत्सव की रौनक, बप्पा के पंडालों में श्रद्धालुओं का लगा मेला, जयंती पर दिन भर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के डगरू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में आस्था का मेला, 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्वशीष कपाट, भगवान गजानन की उतारी गई महाआरती। इंदौर में बप्पा की प्रतिमाओं का अनोखा संग्रह, भक्त ने बनाया 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय, विदेशों से भी जुटाई गजानन की मूर्ति। देवभूमि में धूमधाम से जारी पवित्र चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब दरबार में भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मौसम की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर आई सामने, आज से फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, 30 सितंबर तक करीब 9,000 टिकट बुक। लंदन में दिखी वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी किनारे भव्य आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए थे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि गणपति को न सिर्फ प्रथम पूज्य माना गया है बल्कि बुद्धिदाता भी है गजानन। कहते हैं गणपति जहां होते हैं वहां शुभ ही शुभ होता है और शुभ के साथ आता है लाभ। गणपति पूजन से हर कामना सिद्ध की जा सकती है। गणपति की कृपा यदि मिल जाए तो जीवन के हर विघ्न बाधा आसानी से दूर हो सकती है। और वाकई अगर श्री गणेश की कृपा आप पर बरस गई, जीवन में आपको मिल सकता है विजय श्री का वरदान। कैसे प्रसन्न करेंगे विघ्नहर्ता को, किन मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी होता है, आइए आपको बताते हैं।

आने वाले हर संकट को दूर करने वाले हैं गणपति। भवसागर से नैया पार लगाने वाले हैं मंगल मूर्ति। जब चारों तरफ से संकटों से घिर जाता है इंसान, तब उमा सूत की कृपा से मिलता है विजय का वरदान। धर्म ग्रंथों में भगवान गणेश की लीलाओं की कई गाथाएं हमें मिलती हैं कि कैसे उन्होंने देवताओं तक को संकट से उबारा। मुश्किलों में धैर्य दिखाने और हर संकट को सूझबूझ से काटने के कारण उन्हें प्रथम पूज्य भगवान गणपति कहते हैं, जिनकी उपासना दिला सकती है विजय श्री का वरदान। साथ ही श्री गणेश स्त्रोत के पाठ से होगा भक्तों का कल्याण।

0: धर्म ग्रंथों में भगवान गणेश की लीलाओं की कई गाथाएं हमें मिलती हैं कि कैसे उन्होंने देवताओं तक को संकट से उबारा, मुश्किलों में धैर्य दिखाने और हर संकट को सूझबूझ से काटने के कारण उन्हें प्रथम पूज्य भगवान की उपमा मिली। माना जाता है कि जो भी भक्त भगवान गणपति की उपासना करता है उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जो भी भक्त किसी कार्य के आरंभ से पहले गणपति का पूजन करता है उसे निश्चित ही विजयश्री का वरदान मिलता है। बुद्धि के प्रदाता हैं गणपति। माना जाता है कि विनायक की कृपा से तेज होती है बुद्धि, साथ ही आपके परिवार में समृद्धि बरसाएंगी रिद्धि और सिद्धि। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन के सभी सांसारिक कार्यों में विघ्न के नाश के लिए और कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि गणपति की उपासना करके देवों ने भी विजयश्री हासिल की थी। कहते हैं कि गणेश जी की उपासना से ही भगवान विष्णु ने मधु कैटभ का वध किया। गणपति के वरदान से ही शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और माँ दुर्गा ने भी गणेश जी की वंदना करके ही महिषासुर का वध किया था। धर्म ग्रंथों में गणपति को वरदान देने वाला देव कहा गया है। बापा के भक्त अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं तो बापा भी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा हो तो गणपति का कौन सा स्वरूप आपको विजय का वरदान दिलाएगा? सुनिए क्या कहते हैं इस पर ज्योतिषाचार्य।
1: इसके लिए भगवान का एक अति सुंदर स्वरूप है। एक गणेश तंत्र में इस बात का वर्णन आता है कि भगवान के स्वरूपों में से एक दुर्वा गणेश है। कई जगह उनको दुर्गा गणेश भी कहते हैं। वो लाल रंग के स्वरूप में आते हैं, लाल ही वस्त्र धारण करते हैं और धनुष धारण किए हुए हैं। जो किसी भी प्रकार से अपने शत्रुओं पर विजय चाहता हो, अजय बनना चाहता हो, मुकदमों में विजय श्रीप चाहता हो, तो भगवान के स्वरूप का जाप करने वाला और भगवान को दुर्वा अर्पण करने वाला रोग मुक्त होता है और शोक मुक्त होता है। शत्रुओं का तो नाश निश्चित है ही।
0: तो यदि आप भी गणपति से चाहते हैं सफलता और विजयी होने का वरदान, तो चलिए हम आपको बताते हैं गणपति की वो पूजा जो आपको तरक्की दिला सकती है, आपको विजयी बना सकती है। सुबह उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, किसी शांत जगह पर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर बैठें, लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर एक थाली रखें, थाली में कुमकुम से शुभ लाभ बनाएं, स्वस्तिक बनाएं, थाली में कुमकुम और केसर से रंगे अक्षत रखकर गणपति जी की मूर्ति रखें, बापा की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, लड्डू या दूध का भोग लगाएं, मूर्ति का रक्त चंदन और केसर से तिलक करें, गुड़ का भोग लगाएं, 21 लाल फूल अर्पित करें, फूल चढ़ाते समय ऐसे काम का जिक्र करें जिसमें विजय पाना आप चाहते हो, धूप दीप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं।
1: सबसे आसान है, भगवान शिव के पुत्र हैं, शिव जिस प्रकार से कल्याण करने के लिए ही आशीर्वाद देते हैं उसी प्रकार से गणपति को भी प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान को मोदक अधिक प्रिय है, भगवान को दुर्वा बहुत अधिक प्रिय है, तो भगवान को मोदक भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति, भगवान के नाम का वर्णन करने वाला व्यक्ति उनकी प्रसन्नता तुरंत ही पा जाता है।
0: ईश्वर की उपासना में पूजन सामग्री का भी बहुत ही महत्व है। जानकार बताते हैं कि गणपति के पूजन में सिर्फ मोदक और दुर्वा अर्पित कर दीजिए, आपका पूजन सफल हो जाएगा। तो देखा आपने, गणपति के पूजन का उत्तम विधान आपके जीवन से संकटों को दूर कर सकता है। जीवन में विजय की प्राप्ति के लिए गणपति की पूजा विधि को आपने समझ ली। आइए अब आपको बताते हैं गणेश जी के चमत्कारी मंत्र कौन से हैं जो सर्व बाधा निवारण के लिए जाने जाते हैं।
1: सबसे सुंदर भगवान का ओम गणपते है, लेकिन इसके अतिरिक्त भगवान जी के अलग अलग स्वरूप के अलग अलग मंत्र हैं। सब मंत्र सम्मिलित हैं श्री गणपति अथर्व शीर्ष में। जो व्यक्ति गणपति अथर्व शीर्ष का प्रतिदिन पाठ करता हो उसके पश्चात अपने बाकी देवताओं का पूजन करता हो, उस व्यक्ति के जीवन में कहीं कठिनाई या कहीं अवरोध आ ही नहीं सकते।
0: इनका बीज मंत्र है गम। किसी भी विद्या बुद्धि वाले कार्य की शुरुआत में इसको 9 बार कहना चाहिए। इनका दूसरा मंत्र है वक्र तुंडाय हूं। किसी भी तरह की बाधा को तुरंत समाप्त करने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। इनका नियमित जप मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, जिसका नियमित जप करने से हर कार्य में सफलता मिलती है, छोटी से छोटी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना हो तो नित्य प्रातः गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। तो देखा आपने, विघ्नहर्ता सुखकर्ता श्री गणेश की कृपा आपको संसार का हर सुख और वैभव दिला सकती है। गणपति के दर पर सबको सहारा मिलता है और दुखियारों को मिलती है खुशियों की सौगात। तो अगर आप भी जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, अपनी किसी कमजोरी के कारण आपके मार्ग में कोई बाधा आ रही है या फिर कोई कार्य आपका होते होते रह जा रहा हो, तो गणपति की विशेष पूजा आपकी ये इच्छा पूरी कर सकती है। आगे हम आपको बताएंगे राहु केतु को शांत करने के उपाय, साथ ही जानेंगे कि कैसे हम गणपति की कृपा से घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: आज हम आपको बता रहे हैं कि गणपति की कृपा से ना सिर्फ आपके सारे विघ्न दूर हो सकते हैं, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली हर चुनौती से भी आप पार पा सकते हैं। ये भी माना जाता है अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु के सारे संकट समाप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि वास्तु दोष दूर करने का भी सबसे उत्तम प्रयोग है श्री गणेश की साधना।

गणपति का विधिवत कीजिए गुणगान, आपके जीवन से दूर होंगे सारे व्यवधान। गौरी नंदन दूर करेंगे नौ ग्रह दोष, घर में होगा खुशियों का प्रवेश। गणपति की कृपा से दूर होगा घर का वास्तु दोष, केतु का भी शांत होगा रोष। मंगल मूर्ति की उपासना से होगी जय जयकार, सफलता के शिखर पर आप होंगे सवार। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि संसार की शक्ति है गौरी शंकर, जिनके पास सभी संकटों का समाधान है, और सभी गणों के अधिपति गणपति को माना गया है, जिनकी कृपा से हर क्षेत्र में विजय मिलना तय है।

कहते हैं जिस भक्त पर श्री गणेश की कृपा हो जाए वो संसार की हर परेशानी और बाधा से मुक्त हो सकता है। कहते हैं भगवान गणेश जी के जन्म के समय भी वैसी ही घटना हुई थी जैसी राहु केतु के जन्म के समय हुई थी। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गणेश जी की पूजा से राहु केतु संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। विशेष तौर से केतु ग्रह के नियंत्रक भगवान गणेश ही माने जाते हैं।

0: माना जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु के सारे संकट समाप्त हो सकते हैं। तो कैसे करें श्री गणेश की पूजा जिससे केतु होगा शांत और आपको मिलेगा जीत का वरदान, गौर से देखिए।
1: स्वामी ही केतु ग्रह के गणेश जी हैं। किसी व्यक्ति को अगर केतु ग्रह के कारण पीड़ा अधिक आ रही हो तो वो दो कार्य अवश्य करे। पहला कार्य ये करे कि गणपति जी को अति प्रिय दुर्वा गणेश जी को भी अर्पण करे और जो पशु भूखे हैं उनको दुर्वा चढ़ाए, यानी कि घास खरीद के पशुओं को खिलाए। केतु आपका निश्चित ठीक होने लगेगा। केतु का द्योतक कुत्ता भी है, तो इस समय पे अगर आप कुत्तों को दूध से बनी मिठाई खिलाते हैं या किसी कुत्ता जो बीमार है उसका इलाज कराते हैं तो आपका केतु ठीक होने लगता है और आपका कार्य सिद्ध होने लगता है।
0: घर के पूजा स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति रखें। नित्य प्रातः उनके सामने घी का दीपक जलाएं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। जहां तक संभव हो आचरण और व्यवहार में शुद्धता रखें। कलयुग में श्री गणेश की उपासना निश्चित ही फलदायी मानी गई है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बता रहे हैं कि जीवन की दुश्वारियों से कैसे गणपति आपको निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं श्री गणेश की कृपा से आप वास्तु दोष से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो गौर से देखिए।
1: उमा सुत भगवान गणेश जी का स्वरूप है। अगर किसी व्यक्ति के घर में वास्तु दोष चला आ रहा है तो आपने पंचमुखी हनुमान जी तो अति सुने होंगे, लेकिन पंचमुखी गणेश जी को घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रखना, वहां किसी लकड़ी के या पत्थर के या किसी भी प्रकार से स्थापित करके जिनका मुंह आपके पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर हो गणेश जी का, और वहां पर उनके आगे प्रतिदिन शुद्ध घी का दीपक जलाना और लाल पुष्प उनको अर्पण करना किसी बड़े से बड़े भी घर के वास्तु दोष को शांत करने में सक्षम है।
0: बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के रंग की गणेश जी की मूर्ति रखें। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रहण न करें, एक स्थान पर केवल एक ही मूर्ति रखें। शयन कक्ष में भगवान की प्रतिमा बिल्कुल न रखें और गणेश जी की तो बिल्कुल नहीं। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही गणेश प्रतिमा लगाएं, बाहर की तरफ कभी नहीं। पूजा के स्थान पर पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। रोज प्रातः पूजा में गणेश जी को दूध अर्पित करें।

0: तो आप भी करके देखिए ये ज्योतिषीय उपाय। माना जाता है कि ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो गणपति की कीजिए आराधना और उनसे पा लीजिए मनचाहा आशीर्वाद। आगे हम जानेंगे गणपति के पूजन में कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए जिससे आपको मिल सके बप्पा की संपूर्ण कृपा।
1: धर्म ग्रंथ के जानकार बताते हैं कि जीवन की ऐसी कोई बाधा, ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो विघ्नहर्ता की कृपा से दूर ना हो सके। इसीलिए श्री गणेश की उपासना अति आवश्यक है। तो अगर आप श्री गणेश की उपासना से हर काम में सफलता चाहते हैं तो उनके पूजन के कुछ नियम और सावधानियां भी समझ लीजिए।

0: सनातन संस्कृति के अग्रणी देव हैं गौरी शंकर केलार। जिनकी उपासना तो हर समय फलकारी मानी गई है, लेकिन माना जाता है कि बुधवार की तिथि पर उमा सूत की सबसे ज्यादा कृपा बरसती है, क्योंकि बुधवार का दिवस गणपति को समर्पित माना जाता है।
1: गणाध्यक्ष और सारी दिशाओं के स्वामी गणपति ही हैं। आप किसी भी दिशा में जाना चाहें और सफलता जाना चाहें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए या गणपति के विशेष मंत्रों का। सबसे तो सरल मंत्र और सबसे पहला मंत्र ही ओम गणपते नमः है। जाप करना शुरू करें, आपके सारे मार्ग खुलते चले जाते हैं।
0: माना जाता है कि सोमवार की तिथि पर देवाधिदेव महादेव के पूजन की परंपरा है, तो मंगलवार को महावीर बजरंगी की आराधना की जाती है। इसी तरह बुधवार को गणपति की उपासना करने से मनवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। गणपति की आराधना कितनी मंगलकारी है ये तो आप जानते ही हैं, पर गणपति की पूजा में सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गणपति की पूजा करते समय आप नीले या फिर काले रंग के कपड़े धारण न करें। पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र ही धारण करें। गणेश जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित न करें। गणपति के भोग में भी भूलकर अंदर तुलसी के पत्ते न डालें। गणेश जी की मूर्ति के पीठ के दर्शन न हो, इस प्रकार उन्हें स्थापित करें। गणेश जी के पीठ के दर्शन करने से जीवन में दरिद्रता आ जाती है। क्रोध न करें और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। लेकिन गणेश जी को भूलकर भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ऐसा करने से आपके अर्जित किए गए पुण्य कर्म समाप्त हो सकते हैं।
1: गणपति जी को अति प्रिय जैसे वस्तुएं, एक अति अप्रिय वस्तु भी है तुलसी। भगवान को कभी भी तुलसी अर्पण ना कर दें, आप हमेशा पापी हो जाएंगे। आपके सारे कार्य, जीवन में पहले किए गए सारे यज्ञ भी आपके समाप्त हो जाएंगे। गणपति जी को कभी भी भूल के तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए।
0: ज्योतिषी कहते हैं कि जीवन में शुभता लानी हो तो सर्व कल्याणकारी हैं पार्वती पुत्र गजानन गणेश की आराधना। ऐसा माना जाता है कि हर कष्ट को हर लेते हैं कष्ट विनायक, हर कामना पूरी कर देते हैं भगवान सिद्ध विनायक। इसलिए जो भी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की शरण में जाते हैं, उनको संकटों से मुक्ति का वरदान देते हैं मंगल मूर्ति।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर। ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: गणेश उत्सव पर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन को उमड़ पड़े हैं। घर हो या पंडाल, बप्पा के द्वार पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग रहा है। लेकिन आपको आज एक ऐसे पंडाल में लेकर चलते हैं जहां भक्ति आस्था के साथ एकता और सौहार्द के रंग भी खूब बिखरे हैं। दर्शन कराते हैं आपको साकी नाका का विघ्नहर्ता गणेश जी के। इस बार वो विट्ठल के अवतार में गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, आप भी देखिए।
2: वो सब देख के हमने एक ऐसा रखा है कि जो आए अंदर वो प्रसन्न हो जाना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट किया है।
3: 7 साल से हम मिलजुल के हिंदू मुसलमान की एकता करके हम ये गणपति उत्सव मनाते हैं।
4: मुंबई में गणेशोत्सव की रौनक बिखरी है, जहां देखो जिधर देखो पर्व की सतरंगी छटा निखरी है। आस्था और भक्ति के साथ गणेशोत्सव संदेश ये भी दे रहा है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। तभी तो मुंबई के साकीनाका के महाराज का बीते कई सालों से हर धर्म के लोग मिलकर वंदन करते आ रहे हैं।
5: कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ, साकीनाका का विघ्नहर्ता के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है, पहले आप सीधे गणपति बप्पा का दर्शन ही कर लें। देखिए, ये उपनगर मुंबई की एक बहुत ही ज़्यादा उन लिस्ट में नाम शामिल हैं जो बड़े प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं, और कितने सुंदर तरीके से इस समय यहाँ पर विराजमान की गई हैं। खास बात ये है कि मानव गरुड़ पर बप्पा विराजे हैं, विट्ठल के अवतार में हैं, और हाइट देख के लग रहा है कि लगभग 33 फीट होगी। बैलेंस का पूरा ये मामला है, और सोचिए मूर्तिकार कितने ज़्यादा सीरियस होंगे और कितना मेहनत उन्हें की होगी और कितने एक्सपीरियंस हैं वो कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है बप्पा की इतना बड़ा आकार उन्होंने दे दिया है।
4: विघ्नहर्ता गणपति यहाँ विट्ठल अवतार में हैं जो गरुड़ पर सवार हैं। साकीनाका के विघ्नहर्ता की ये प्रतिमा हर किसी को खींच ले रही है। करीब 33 फीट के बप्पा की ये प्रतिमा सर्वधर्म एकता का प्रतीक मानी जा रही है। वहीं आयोजकों को भी बप्पा का शुभ आगमन इस गणेशोत्सव के सफल होने की उम्मीद दे रहा है।
2: लोग तो थे और बाकी के बाहर के जितने सपोर्टर थे, जैसे पुलिस प्रशासन है, BMC है, सबने सपोर्ट किया है। वायर का जो भी है काम वो हमारे सरकारी अली भाई है, रियाज भाई है, डेरिंग कोटिया ने, और बाकी जितने पदाधिकारी है सबनों ने मेहनत किया है उस काम के लिए। और आगमन भी हमारा बहुत अच्छा हुआ, भव्य आगमन हुआ इस साल में, और अभी पूरा उत्सव भी आप लोग के वजह से अच्छा जाएगा ऐसा उम्मीद करता हूँ।
4: आज मुंबई की हर गली हर नुक्कड़ पर साकीनाका के बप्पा की तरह कई रूप विराजमान है। बप्पा के इन रूपों को कड़ी मेहनत से आकार भी दिया गया। ऐसे में साकीनाका के इन गणपति को भी तैयार करने में हर समाज हर तबके से जुड़े लोगों की भागीदारी रही है।
3: हम मंडल के साथ में ही हैं, आज 7 साल से हम मिलजुल के हिंदू मुसलमान की एकता करके हम ये गणपति उत्सव मनाते हैं, और जितना बेस्ट हो सकता है हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं।
4: जाहिर है यहाँ आस्था का ज्वार समुदायों की सीमा से परे है, तभी तो हर साल गणेशोत्सव पर यहाँ आस्था भक्ति के साथ ही एकता और सौहार्द के भी रंग बिखरे हैं।
6: तो जिस तरह अली भाई ने कहा कि इस मंडल की खासियत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एकजुट रह के इस मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्यार का, भाईचारे का एक प्रतीक भी इसी मंडल के माध्यम से जाएगा। हम सब एक नारा इस मंडल से निकलता है
7: कि हमारे एक एक कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं पूरे, मेरे को लगता है लगभग 1.5 से 2 महीने से इन लोग की तैयारी चल रही है। एक एक कार्यकर्ता रात दिन एक कर जो मेहनत कर रहे हैं उसका ये आज सफलता मिली है।
4: कहते हैं कि महाराष्ट्र के गणेशोत्सव का मतलब ही सिर्फ बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना भर नहीं, बल्कि ये पर्व आस्था, संस्कृति और सामाजिक एकता का उत्सव है, जिसे फिलहाल पिछले 42 सालों से साकीनाका के विघ्नहर्ता हर गणेशोत्सव की तरह इस बार भी अपनी अलौकिक छटा के माध्यम से दर्शाएंगे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्वशीष का पाठ, भगवान गजानन की महाआरती में दिखे भक्तों के रंग। विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं का अनोखा संग्रह, भक्त ने बनाया 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय, विदेशों से भी जुटाई गजानन की मूर्ति। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से पवित्र चारधाम यात्रा जारी, बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब में भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। मौसम की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रा यात्रियों के लिए राहत की खबर, आज से फिर से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, 30 सितंबर तक करीब 9,000 टिकट बुक। लंदन में दिखी वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी के किनारे भव्य आरती, बड़ी संख्या में

नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। बहुत स्वागत है आपका जीएनटी के गणेशोत्सव में। मेरे साथ है पंडित अरविंद शुक्ला और आज भी हर तरफ गणपति बप्पा मोरया के ही जयकारे सुनाई दे रहे हैं। वैसे इस बार बप्पा की कृपा आपको बता दें कि 12 दिन तक बरसने वाली है, यानी कि 12 दिन और 12 रहस्य, जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज इसी को लेकर बातचीत होगी। तो क्यों इस बार 12 दिन तक बप्पा विराजेंगे, अनंत चतुर्दशी के दिन समय कौन सा रहेगा विसर्जन का, वो भी आपको बताएंगे। गणेश उत्सव का आज दूसरा दिन है, उत्साह देश भर से नजर ही आ रहा है, धूमधाम से किस तरीके से बप्पा के इस उत्सव को मनाया जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। वैसे इस मौके पर इंदौर शहर में सजे पूजा पंडाल भी बप्पा के दर्शन और पूजन के लिए, जहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। वैसे केवल इंदौर ही नहीं बल्कि हम पूरे देश की बात करें, हर जगह से तस्वीरें ऐसी हैं, हर कोई बप्पा की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। और हर मांगलिक कार्य में, वैसे भी कहा जाता है कि सबसे पहले गणपति को ही पूजा जाता है, तो प्रथम पूज्य ही इसलिए इन्हें कहा जाता है, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। और पूजा क्यों अहम है बप्पा की, और सबसे बड़ी बात यह है कि बप्पा की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, इसका कारण क्या है ये भी हम समझेंगे। मंगल मूर्ति को क्यों अर्पित की जाती है, 21 दूर्वा, और ऐसे तमाम सवाल होंगे और तमाम ऐसे 12 रहस्य जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आपके घर बप्पा विराजमान है। तो आप रहिए हमारे साथ गुड न्यूज टुडे के साथ। उत्सव के तमाम रंग गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। बप्पा के दर्शन लाइव हम आपको दिखा ही रहे हैं।

देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि इंडिया का फेस्टिव मूड ऑन हो चुका है, मतलब सीधे तौर पर यह है कि बप्पा के आगमन के साथ ही इंडिया का फेस्टिव मूड ऑन हो गया और देश भर में इसकी तस्वीरें साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से पूरा देश उत्सव में डूबा हुआ है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, कोई भी इलाका क्यों ना हो, इंदौर की तस्वीरें बहुत ही भव्य तस्वीरें हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में किस तरीके से, चाहे घर हैं या पंडाल हैं, हर जगह पर बप्पा की जयकारे ही सुनाई दे रहे हैं, बप्पा की गूंज सुनाई दे रही है। हर कोई कल बप्पा को अपने घर लेकर आया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी हो रही है। पंडाल हॉपिंग लगातार की जा रही है, श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र पंडाल बने हुए। और बड़ी और खास बात यह है कि जैसा हर बार देखा जाता है कि हर पंडाल कुछ कहता है, यानी हर पंडाल में प्रतिमाएं तो मौजूद हैं, बप्पा के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी न किसी अलग संदेश के साथ पंडालों को सजाया भी जाता है। खास तौर पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर पंडाल हॉपिंग बहुत ज्यादा होती है, तो भक्ति उत्साह उमंग हर तरफ नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं, मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इसमें बॉलीवुड सितारे भी मौजूद हैं। और हर कोई, कहा जाता है कि जो भी यहाँ पहुंचता है, लालबाग के राजा के चरणों में शीश नवाता है, उसकी हर मन की मुराद पूरी होती है, और इसीलिए शायद बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। अंबानी परिवार के घर भी बप्पा पधारे हैं और वो भी वहाँ के उत्सव की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बाबा बागेश्वर, रामदेव, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, संजय दत्त समेत कई सितारे पहुंचे हैं। गणेश चतुर्थी पर बप्पा का आगमन होता है और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित किया जाता है। लेकिन इस बार गुड न्यूज और अच्छी और खास बात यह है कि गणेशोत्सव 10 नहीं बल्कि 12 दिन का है। तो इसके पीछे क्या रहस्य, ये भी हम आपको बताएंगे। इसकी वजह क्या है, सबसे पहले आचार्य राजमिश्रा जी से जान लेते हैं।

0: तो सोमवार को यानी कि कल गणेश चतुर्थी शुरू हुई, इसके बाद 14 से 25 सितंबर तक 12 दिन का आयोजन। अब अगर आप इसको इंग्लिश कैलेंडर में काउंट करेंगे तो शायद 11 दिन बनेंगे, लेकिन 12वें का रहस्य क्या वो बताएंगे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर यह पर्व शुरू हुआ है। वैसे अमूमन 10 दिन का ही ये उत्सव होता है, लेकिन इस बार दिन बढ़ने के पीछे पहली वजह तो यही है कि गणेशोत्सव में पंचमी तिथि का विस्तार हुआ है, ये एक सबसे बड़ी वजह है। और गणेशोत्सव में पंचमी तिथि 2 दिन की है, आज और कल, लिहाजा 24 सितंबर गणेश उत्सव का 11वां दिन होगा। लेकिन फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात में शुरू होगी, लिहाजा अनंत चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 सितंबर को मानी जाएगी। अनंत चतुर्दशी पर ही विसर्जन होता है, यानी कि एक दिन पंचमी तिथि की वजह से बढ़ा है और दूसरा दिन उदया तिथि की वजह से बढ़ा है। ऐसे में इस बार गणेशोत्सव 12 दिन का माना जा रहा है।
1: कई वर्षों की बात की जाए 200-250 वर्ष बाद शायद ऐसा संयोग होगा जब गणेश जी अपने 12 स्वरूपों के साथ आ रहे हैं। जनरली गणेश उत्सव कितने दिन का होता है? 10 दिन का हो गया, 10 दिन का ही जनरली होता है, लेकिन इस बार क्योंकि गणेश जी एक दिन पहले आए हैं और शास्त्रीय कहता है कि यदि शुभ दिन बढ़े तो शुभता लाते हैं, शुभ दिन बढ़े तो गुड न्यूज लाते हैं। यदि गणपति के 12 स्वरूपों का स्मरण हो जाए, 12 स्वरूपों का दर्शन हो जाए तो क्या है, विद्या आरंभे एजुकेशन में, विवाह में विवाहे चा प्रवेशे, जीवन के किसी भी कार्य को प्रारंभ करें या घर इत्यादि ना प्राप्त हो या घर में अशांति प्रवेशे निर्गमे तथा विघ्नस्त सन जायते, इन सभी चीजों में उत्पन्न हो रहा कोई भी जो विघ्न है वो आपके जीवन को परेशान नहीं कर पाता है, सारे विघ्न दूर होते हैं। तो इस बार वो सौभाग्यशाली गणेश जी का समय है जब गणेश जी अपने द्वादश स्वरूप के साथ इस बार आए हैं।
0: सौभाग्यशाली समय है और इस बार देखिए अच्छी खबर ये है कि 12 दिन का ये उत्सव है। तो गणेश उत्सव आस्था का पर्व माना जाता है। देखिए आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है, सोमवार को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर ये आरंभ हुआ था। 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होगा। 1893 से महाराष्ट्र में खास तौर पर अगर बात की जाए तो उत्सव की परंपरा शुरू हुई थी। मुंबई समेत देश भर में भव्य गणपति पंडाल सजते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, जयपुर हो, सूरत हो, गली गली बप्पा की गूंज सुनाई देती है। और गणपति जी बुद्धि सुख समृद्धि के दाता भी माने जाते हैं और हर मांगलिक कार्य में कहा जाता है कि प्रथम पूज्य वही हैं, यानी सबसे पहले गणपति की पूजा होती है और इसीलिए हम लोग कहते हैं ना श्री गणेश कर लीजिए। तो गणपति जी का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जन्म हुआ था और इस बार गणपति उत्सव 12 दिन तक चलेगा। तो आइए आपको उनसे जुड़ी 12 खास बातें भी बताते हैं, या कहें कि 12 रहस्य। तो गणपति जी को ब्रह्मांड के बजाय माता पिता के चक्कर लगाने पर शिव से प्रथम पूज्य का आशीर्वाद मिला था और गणपति जी के कान सूप जैसे बड़े हैं, इसीलिए वो गजकर्ण या सूपकर्ण भी कहलाते हैं। गणपति को हाथी के कान सर लगे क्योंकि शिव ने क्रोध में सर अलग कर दिया था। हाथी के सर और मुख लगे होने की वजह से उन्हें गजानन भी कहा जाता है। साथ ही साथ पौराणिक कहानियों के मुताबिक गणपति पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि गणपति तुलसी ने एक दूसरे को श्राप दिया था। वहीं जब गणपति ने असुर को निगला तो गणपति के पेट की जलन दुर्वा खाने से ठीक हुई, इसीलिए तो कहा जाता है कि बप्पा को दुर्वा प्रिय है। तो गणपति जी से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि गणपति युद्ध में चूहे बने, असुर पर सवार हो गए और तभी से गणपति जी चूहे की सवारी करने लगे। गजानन की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है और इसी वजह से हमेशा हर पल सक्रिय रहने का एक संदेश दिया जाता है। राक्षस को हराने के लिए उन्होंने महोदर यानी कि विशाल पेट वाले एक के तौर पर अवतार लिया था और ब्रह्मा जी की पोतियों रिद्धि और सिद्धि से गणपति जी का विवाह हुआ था। वहीं गणपति के गिरने पर चंद्रमा जब हंस पड़े थे तो फिर नाराज गणपति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि गणेश चतुर्थी पर लोग चंद्र दर्शन नहीं करेंगे और इसीलिए आपको

0: भगवान के चाहे स्वरूप स्थूल स्वरूप हो तो हर चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से नहीं देखना चाहिए। जितना आनंद चाहते हो उतना कम जाने, ये कहलाता है। भगवान के स्वरूप के दर्शन करके आनंद ले। भगवान के छोटे नेत्र हर व्यक्ति को बुराइयां न ढूंढने का संकेत देते हैं। उनका बड़ा मस्तिष्क बड़ी बुद्धि और तीव्र बुद्धि का द्योतक है। जब भगवान विचार करके ही लिखते हैं, महाराज ने भी महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को ही चुना था और उनकी विनम्र प्रार्थना में यही बात छुपी थी कि आप जो शब्द बताएंगे मुझे समझेंगे और उसके पश्चात ही आप लिखेंगे। तो गणेश जी के अतिरिक्त इतनी बुद्धिमान कोई व्यक्ति ही नहीं था जो कि महाभारत लिख पाते।
1: तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे मैंने परिचय कराया, मेरे साथ स्टूडियो में अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं और साथ ही साथ और कौन कौन है चलिए परिचय करा देती हूँ। नंदिता पांडे जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा भी मौजूद हैं और साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा भी मौजूद है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 12 रहस्य और 12 दिन, इसकी बात हो रही है। नंदिता जी आप ही से शुरुआत करूंगी। देखिए, रहस्यों पर आए, उससे पहले आपसे समझना चाहूंगी और हमारे दर्शकों के लिए भी समझाइए, दोनों कैलेंडर, एक जो सनातन कैलेंडर है वो भी और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी, 12 दिन के गणपति इस बार कहा जा रहा है, तो वो कौन सी तिथियां जो बढ़ी हैं इस बार?
2: जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न। और गणेश अवसर और मिल जाता है गणपति को के वो आतिथ्य करने का उनको, और उनको अपने घर में लाके उनकी एनर्जीज को अपने घर में वाइब्रेट करने का। तो जीएनटी के सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की अनंत शुभकामनाएं। और ये जो प्रश्न है, जी हाँ, इस बार 12 दिन के ये गणेश उत्सव चलेगा। उसकी भी एक, क्योंकि हमारे जो ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो कैलेंडर होता है उसमें, सनातनी कैलेंडर जो होता है, तो उसमें पंचमी तिथि जो है आज प्रातःकाल से शुरू हो गई है और 7:44 से आज शुरू हुई है, लेकिन कल 8:40 तक रहेगी। तो 8:44 तक का, माफ कीजिएगा, क्योंकि उदया तिथि भी कल पंचमी तिथि है, इसलिए पंचमी तिथि को कल भी मानिए माना जाएगा। इसलिए 2 दिन पंचमी तिथि का यहाँ पे वो रहेगा, अवसर रहेगा, जिसे कि ऋषि पंचमी भी बोला जाता है। यानी कि इस समय गणपति का तो आप आह्वान कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आपसे भूल चूक होकर कुछ भी गलतियां हुई हो, चाहे आपने पूजा अर्चना में की हो या वैसे भी कोई सिंस किए हो, तो ये अवसर बहुत सुंदर होता है। गणपति तो वैसे विघ्नहर्ता होते हैं और ऋषियों के साथ अगर उनके आशीर्वाद लिया जाए तो आपके सारे का माना जाता है कि जो भी आपके आपने कुकर्म किए थे उससे आपको मुक्ति मिलती है, उन पापों से आपका, उन पापों का नाश होता है। और दूसरी जो है, जब भी विदाई होती है गणपति की और उनका विसर्जन होता है, वो चतुर्दशी तिथि को होता है। अब चतुर्दशी तिथि जो है वो 24 तारीख की रात्रि को लगभग 11:15 शुरू हो रही है, 11:18 में शुरू हो रही है और वो समाप्ति हो रही है नेक्स्ट डे 25 तारीख की रात्रि को, अगेन वही 11:06 तक का। तो अगर उदया तिथि देखा जाए, चतुर्दशी की उदया तिथि जो है वो पड़ रही है 25 तारीख को, तो 25 तारीख को ही गणपति विसर्जन होगा। गणेश जी की पूजा जो होती है वो मध्यान्ह मुहूर्त में, यानी कि बेसिकली दोपहर का जो मेन टाइम होता है ना, वहां पे उस समय बहुत ज्यादा उसका फल माना जाता है। उसी तरह से विसर्जन के लिए भी ये माना जाता है कि प्रातःकाल से आप विसर्जन के मुहूर्त तो निकलते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है इज द आफ्टरनून टाइम, तो इसलिए आफ्टरनून की तिथि देखी जाती है। तो 25 सितंबर जो है वो तिथि मान्य रहेगी, उसमें सुबह से ही प्रातःकाल से मुहूर्त निकल रहे हैं जो आप गणपति का विसर्जन कर सकते हैं। और अगर मैं देखूं तो सुबह 6:11 से लेकर 11:15 तक का एक मुहूर्त निकल के आ रहा है, फिर 9:12:03 से लेकर 4:45 तक का एक मुहूर्त है, तो उस फिर उसके बाद 4:44 से लेके 6:15 तक का, फिर रात्रि के मुहूर्त आ रहे हैं, तो रात्रि तक का, अर्ध रात्रि तक का विदाई जो है गणपति की आप कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन विसर्जन क्योंकि 25 तारीख को होगा उदया तिथि के हिसाब से, तो इसलिए इस बार 12 दिन बन जा रहे हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इट्स लाइक 11 डेज, बट जो हम सनातनी कैलेंडर में देखते हैं तो टोटल 12 दिन बन रहे हैं। अरे बहुत अच्छे दिन है, तो ये पूरा समय इतना सुकून भरा है, इतना उनका आतिथ्य करिए, उनसे अपने जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उनको आप समर्पित करिए, विघ्नहर्ता है वो, सारी चीजें हर लेते हैं, उन सारे विघ्नों को हटा देते हैं। अगर आप इस समय पूजा करते हैं, कुंडलिनी शक्ति भी बहुत स्ट्रांगली बढ़ती है।
1: नंदिता जी उस पर आऊंगी और साथ ही साथ नंदिता जी, संजय जी और डॉक्टर नितिशा, आप सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको अपने जीएनटी के पप्पा के दर्शन भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ तमाम दर्शकों को, और अरविंद जी कल से हमारे साथ मौजूद हैं ही, क्योंकि

0: बप्पा की आरती भी आपने शाम में करवाई, सुबह हम जब बप्पा को लेकर आए, सारी पूजा विधि आप ही करा रहे हैं। तो अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अलग अलग तरह के रहस्यों की बात कही जाती है। जब हम कहते हैं कि बप्पा प्रथम पूज्य है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय उत्सवों की शुरुआत इससे होती है, इंडिया का फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बप्पा पधार चुके हैं, तो पहला उत्सव हम इसी को मानते हैं। प्रथम पूज्य क्यों कहा गया है?
1: देखिए, प्रथम पूज्य इसलिए कहा गया है कि गणनायक हैं ये, जो आप एक शब्द बोलते हैं, गणपति पप्पा मौर्य। तो आज आपको इसका मैं अर्थ बता दूं कि ये गणपति शब्द का अर्थ क्या है और मौर्य क्या है। गण हुए हैं भगवान शिव के, जो भगवान शिव के गण थे, उन गणों के ये सेना नायक रहे, उनके जो है गणों के ये स्वामी रहे, इसलिए इनको गणपति कहा जाता है। और गणपति पप्पा मौर्य, मौर्य शब्द इसलिए विशेष कहा जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में मौर्य ऋषि हुए, उनने महान संत हुए, ऋषि नहीं गलत कह गया, महान संत हुए। उन वो संत इनके नित्य दर्शन करते थे। जब उनकी पूरी आयु व्यतीत हो गई, लगभग वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तो भगवान गजानन गणेश ने उनको जो है स्वप्न दिया कि अब आप परेशान ना हो, मैं आपको स्वतः जो है दर्शन दूंगा। अगले दिन जब उनने जो है गजानन गणेश की फिर से बैठकर तपस्या की, तो गजानन गणेश ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो कहा कि अब आप जो है बताएं कि आपको वरदान क्या चाहिए। तो उनने वरदान में ये कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हे गणपति, आपके नाम के साथ मेरा नाम जो है जोड़ा जाए। तो तभी से उन संत का नाम जो मौर्य था, वही इनका जुड़ गया है, गणपति बप्पा मौर्य। ये प्रथम पूज्य इसलिए भी हुए, प्रथम पूज्य एक कहानी वो भी है कि इनने माता पिता की परिक्रमा की थी और देवताओं में जो है ये बुद्धि के अग्रणी कहे गए हैं, इसलिए भी प्रथम पूज्य हैं। और विघ्नेश हैं, विघ्नहर्ता हैं, मंगल मूर्ति हैं, कोई भी आप मांगलिक कार्य करेंगे तो प्रथम इनकी जो है पूजा होती है, प्रथम इनका ध्यान होता है, इसलिए इनको प्रथम पूज्य कहा गया। और वैसे भी अभी राज मिश्रा जी बता रहे थे कि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च युवा विघ्नस्तस्य न जायते। ये विघ्न को तभी नष्ट कर देते हैं जब मात्र इनका जो है प्राणी स्मरण कर ले।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जो द्वादश अभी बताया गया कि सुमुखश्चैक दंतश्च, अभी आपने उनका वर्णन किया कि द्वादश रूप क्या है, कि सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्ण कहा लंबोदरश्चम गुटो विघ्न नाशो विनायका धूम्र केतुर गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणु यादपि विद्यारंभे विवाहे च। जो इन गणपति के द्वादश नाम में से किसी एक नाम का स्मरण कर लेता है तो उसको निश्चित रूप से जो है हर तरह की विघ्न बाधा जो है जीवन में नहीं मिलती।
0: और उस पर भी हम आएंगे कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करें। लेकिन डॉक्टर नितिशा, आप क्योंकि हम 12 रहस्यों की बात कर रहे हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब यही है कि वो 12 रहस्य जो गणपति से जुड़े हैं, वो 12 बातें जो बप्पा से जुड़ी, और वो 12 बातें जो हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम उत्सव या फिर कहें हमारे तमाम आराध्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश देते ही हैं। अब जब हम बप्पा के बड़े कानों की बात करते हैं, सूप की तरह उनके कान होते हैं, गजकर्ण उनको कहा जाता है, ये इसके पीछे का रहस्य भी बताइए और ये संदेश क्या है सबके लिए।
2: थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को ओम एक दंताय चविद महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल
0: मूर्ति मौर्य,
2: मंगल मूर्ति हमारे घर आए हैं। और ये सौभाग्य है हमारा कि गणेश जी का रूप, जहाँ पे उन्हें कर्ण सूप भी कहा गया, बड़े कानों वाला, तो बड़े कानों का प्रतीक है कि वो अच्छे से बातों को सुनना और उसके बाद निष्कर्ष लेना, क्योंकि भगवान गणेश को बुद्धि विवेक का भी देवता कहा गया। तो बड़े कानों का पूरा मीनिंग हमें यही बताया गया गणेश जी के साथ कि जब आप किसी भी बात को पूरा सुनते हैं और सुनने के बाद विवेक से डिसीजन लेते हैं, इसलिए गणेश जी को बड़े कर्ण दिए गए। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि पहले पूरी बात को सुनो और फिर उसके बाद अपने अर्थ को या अपने बातों को रखना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। और गणेश जी की मूर्ति से, चाहे उनकी कोई भी बॉडी पार्ट है या उनके साथ जितनी भी जुड़ी हुई कथाएं हैं, चाहे महाभारत का लिखना, वेद व्यास जी के साथ जुड़ना, उनको विसर्जन करना, ये सारी कथाएं कुछ ना कुछ हमें बताती है कि मनुष्य को कैसे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। जी नवजोत जी,
0: बिल्कुल। संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं। संजय जी, यही से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम तीसरे पॉइंट पर जाएं तो गणपति को शिशु हाथी के कान सर लगे थे क्योंकि शिव ने क्रोध में सर काट दिया था, सूंड भी है, क्या कुछ इसका अभिप्राय है, क्या ये संदेश हमें देता है?
3: जी, सबसे पहले गणेश जी का एक मंत्र प्रारंभ करूंगा और उसके पश्चात आपका आपकी बात का आंसर करता हूँ। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम

0: समकस्य दन्तस्य कपलोगज कर्णक लंबो दृष्ट विघ्ननाशो विनायक धूम्र केतुर गणार्दक्षो भाल चंद्रो गजानना द्वदेशतानी नामानी त्रिसंध्या पठेनरा। तो ये क्या है, गणपति का जो स्वरूप है आप देखें कि जो उनकी सूंड है, कहा जाता है कि जो उनको सूंड लगाए कि जो माता अपने बच्चे के साथ करवट लेकर के सो जाती है कहा जाता है, तो उसकी जो है गर्दन काट के ले आना जब गणेश जी की जो है सूंड लगाई गई। तो कहा कि एक हथनी जो है पीट कर करके बच्चे की तरफ सो रही थी, और जो सूंड का प्रतीक है वो हमारी जो स्पेलिंग पावर है, बड़े कान हमें दर्शाते कि हमें स्वर्णशील होना है, हमें अपने कानों से भद्रम करने भी सुनोयाम भद्र सुनना है, नाक से हमें नक्षों में चक्षर अस्तु हमारी जो प्राण वायु है हे ईश्वर अच्छी से चले, हम स्मेल करें दीर्घ मस्तिष्क हम बुद्धिमान रहें, और आप देखें कि चक्षों में अक्षर अस्तु हमारे कानों से आंखों से नेत्रों से हम हमारी जो पूरा शरीर है भुजाओं से हम स्वस्थ रहें। इन मंत्रों में 12 जो नाम है वो यही दर्शाते हैं कि जैसे एक दंत कहा गया है कि भगवान का जो है एक ही दांत है जो परशुराम जी ने तोड़ दिया, आपने जैसे बताया विस्तार से और सारी गाथाओं में है, और कहा जाता है गणेश जी का जो पेट है आप देखें कि बड़ा है, और कहा जाता है कि उन्होंने अनलासुर नामक राक्षस को वो लोगों को निगल लेता था और गणपति ने उन्हीं को निगल लिया जिससे उनके पेट में गर्मी हो गई, और कहा जाता है कि जो 21 गांठें जो दूर्वा की गांठें हैं घास की गांठें हैं वो बना करके बड़ी बड़ी जो है गणेश जी को खिलाई गई, इसलिए 12 तिनके भी उनको जो है हम स्पर्श रूप से जो गणेश जी को 12 तिनके चढ़ाते हैं नाम मात्र के लिए। पर उस जमाने में क्या है गणेश जी ने जो है इतने बड़े राक्षस को निगल लिया, और कहा जाता है तब से जो है वो हर चीज को पहले से ही जज कर लेते थे। कहा है कि इतने बुद्धिमान थे कि कहते कि पूरे संसार में माता और पिता से बड़ा कोई नहीं, उन्हीं की परिक्रमा कर ली।
1: जी
0: सवारी देखें कि एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी अंधन को आंख देत कौड़िन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, कि
1: बिल्कुल
0: सबको जो सब कुछ देने वाले हैं उनकी आरती में आता है। और इनके जो 12 रहस्य आपने पूछे ये बड़े विस्तार वाली का विषय है, और कहा जाता है कि गणेश जी को जो है कोई भी श्राप जो है तुलसी जी ने चाहे दिया हो तो वापस ले लिया, तो
1: बिल्कुल
0: चाहे गणेश जी ने उनको दिया वो भी वापस ले लिया। तो क्षमा वाली जो चीजें हैं वो भी जीवन में जरूर होनी चाहिए और
1: बिल्कुल
0: हमें एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, कल भी हमने देखा था जब आप यहाँ पर बप्पा की पूजा कर रहे थे तो हमने दुर्वा की माला चढ़ाई थी। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों में रहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता और लोग अनजाने में तुलसी चढ़ा देते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए बताइए जो बप्पा को घर पर लाता है, क्योंकि अगर बड़े पूजा पंडाल या मंदिरों की बात करें वहां पर तो आप जैसे विद्वान रहते ही हैं वो लोगों को समझा देते हैं, लेकिन घर पर लोगों को नहीं पता है, अनजाने में ये गलती ना हो, क्यों नहीं चढ़ाई जाती तुलसी और क्यों चढ़ाई जाती है दुर्वा, जरा समझा दीजिए।
2: जी देखिए ऐसा है, दुर्वा जो गजानन गणेश को चढ़ाई जाती है वो उनको अतिशय प्रिय है। प्रिय का एक कारण है, क्यों प्रिय है? अनलासुर नाम का जो राक्षस था वह बहुत ही अग्निकारक, कहने का तात्पर्य उसके शरीर में अग्नि पदार्थ जो है अत्यधिक था, जिसको कोई जो है मार नहीं पा रहा था, उसने जो है हाहाकार मचा रखा था। उस अनलासुर नाम के राक्षस को गजानन गणेश ने जो है निगल लिया था, तो उनके उदर में अतिशय जो है ज्वाला हुई। उस ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान शिव जी ने चंद्रमा के लिए जो है जोर दिया कि चंद्रमा शीतल पहुंचाएं, चंद्रमा भी शीतल नहीं पहुंचाए बहुत अत्यधिक। अन्य अन्य देवी देवताओं ने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर बाद में सप्त ऋषियों ने ये दुर्वा को घिस करके उनको मस्तक में भी लगाया और दुर्वा का उनको पान कराया, तो दुर्वा से उनके शरीर में विशेष ठंडक पहुंची और उनका मस्तिष्क ठंडा हुआ। इसलिए गजानन गणेश ने उस दिन से कहा कि आज से आप मेरे परम प्रिय हुई और मेरे मस्तक को जो आपने ठंडक दी आज से सदैव आप मुझे जो है चढ़ेंगी। तो दुर्वा उनको चढ़ती भी है और दुर्वा का पान भी करते हैं। आप देख रहे होंगे गजानन गणेश की यहाँ दुर्वा हमने चढ़ाई है, तो दुर्वा इस तरफ चढ़ाई जाती है ताकि उनको खाने में दाई तरफ ताकि उनको खाने में सहूलियत हो अपनी सूंड के अनुसार, तो ये उनको ठंडक पहुंचाती है इसलिए दुर्वा चढ़ती है। अब दूसरा आपने जो तुलसी जी का पूछा, तो तुलसी जी ने जो है गजानन गणेश जी से आग्रह किया था विवाह के लिए, प्रणय निवेदन किया। गजानन गणेश जी ने कहा कि नहीं मैं अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो इस बात से उनको आहत हुआ, दोनों में वाद विवाद हुई, अंततः गणेश जी ने उनको जो है श्राप दिया कि आप मेरे पूजा में जो है स्वीकार नहीं होंगी। इसलिए तुलसी स्वीकार नहीं है गणेश जी के पूजा में, और तुलसी भगवान शिव जी को चढ़ती है, लेकिन तुलसी नहीं, तुलसी दल। नवजोत जी ये भी बता दें, तुलसी और तुलसी दल में अंतर है।
1: हाँ, वो बताते जाइए।
2: तुलसी जो है, तुलसी उसको कहते हैं तुलसी का पत्ता, और जो दल, हाँ तुलसी दल तुलसी का पत्ता है, और जो तुलसी मंजरी है, मंजरी जो है भगवान शिव को चढ़ती है, और तुलसी दल भगवान शिव को भी नहीं चढ़ता। दल माने पत्ता, मंजरी माने जो उसका फूल होता है, तो भगवान शिव को मंजरी चढ़ती है। ये जो है मेन कहानी है, इसलिए तुलसी भगवान गजानन गणेश के ना पूजन में ग्राही है और ना उसमें ग्राही। आप देखेंगे प्रसाद में भी मैंने दुर्वा डाल रखा, तो जैसे विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी चढ़ती है, उसी प्रकार गणेश जी के प्रसाद में आप दुर्वा चढ़ा सकते।
1: बिल्कुल, ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, तुलसी नहीं दुर्वा चढ़ती। और क्यों चढ़ती है, अरविंद शुक्ला जी ने बताया। अब नंदिता जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे है, चूहे की सवारी क्यों करते हैं, वो एक क्या मैसेज है, क्या संदेश है सबके लिए?
3: देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और एक बार क्या हुआ कि गंधर्व थे और क्रोच नाम था उनका, और उन्होंने जो है वो अपने इंद्र की सभा में नृत्य कर रहे थे, और नृत्य करते करते उन्होंने एक ऋषि के ऊपर उनका पांव चला गया। तो वामदेव जो ऋषि थे बहुत ही नाराज हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने कहा कि जाओ तुम एक विशाल का चूहा बनो, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। अब वो जब चूहा नीचे धरती पे आए, तो वो ऑब्वियसली चूहा बन करके उसके बाद अंधकार में रह रहे हैं आप, बिल्कुल प्रचंड प्रकोप हर जगह आपने मचाना शुरू कर दिया। तो महर्षि पराशर के आश्रम में जब इतना प्रकोप हुआ, तो उन्होंने गणपति देव को याद करा और उनसे कहा कि आप मुझे इससे विघ्नहर्ता हैं भाई, मुझे इससे मुक्ति दिलवाइए, ये मेरे सारे हवन खराब कर दे रहे हैं। तो तब गणपति ने अपना पांच फेंक करके चूहे को कंट्रोल में लिया और उसकी सवारी करी। तो ये एक ये भी दिखाई देता है कि चंचलता जो चूहे में बहुत ज्यादा होती है, और चूहा जो होता है ना लगातार कुतरता रहता है चीजों को, तो आपका जो मन होता है या बुद्धि होती है, अगर आपकी बहुत ज्यादा इधर उधर इधर उधर इराटिक डिसीजन जो आजकल अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बच्चों में दिखाई देता है कि बिल्कुल टॉलरेंस लेवल जीरो होती है। इस इंटरेस्ट के बाद 10 सेकंड का भी इंटरेस्ट अगर किसी चीज में लग गया तो बहुत बड़ा मानते हैं कि हमारी 2.5 घंटे की फिल्म देख ली। तो उस तरह के उसमें इस समय गजानन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि द डे एंड द टाइम, जिस समय आप इस चीज को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी इंद्रियों को अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, तो आप देखेंगे आप जो है ज्ञान की धारा आपके ऊपर बहेगी और आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। जो रिद्धि बुद्धि सिद्धि सब जो उनको प्राप्त है या वो देते हैं जिसको, वो हो जाती है। उसी में अगर चूहा देखे बिल में रहता है, अंधकार में रहता है, तो उसको कंट्रोल करके जब वो बैठते हैं तो वो मूषक की सवारी, इसीलिए बोला जाता है कि मूषक की सवारी उनकी होती है। और इसी में एक और वो है कि जो चंद्र चंद्रमा को भी श्राप जब लगा था, जो हम फर्स्ट डे जो चतुर्थी तिथि में नहीं देखते हैं चंद्रमा को, तो वो इसलिए भी हुआ था कि वो एक बार अपनी मूषक की सवारी से जा रहे थे, फिसल गए और चंद्रमा उसी समय हंस गए। और जब चंद्रमा को हंसता हुआ उन्होंने देखा, तो तब गजानन को बहुत क्रोध आया, उन्होंने उनको श्राप दिया कि देखो आज से तुम भी कलंकित हो जाओगे, और जो मेरी चतुर्थी तिथि के दिन तुम्हें देख लेगा उसको किसी ना किसी नाम से मतलब भ्रमित होकर के उनके ऊपर आरोप लग सकता है। और उस संन्यायक मणि के लिए भगवान कृष्ण ने भी एक बार गलती से चंद्रमा को चतुर्थी को देखा और उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने वो मणि चुरा ली, जबकि वो सत्य नहीं था। फिर भगवान कृष्ण गए और उन्होंने जंगल से जाकर के उस मणि को वापस हासिल करा और वापस दिया, तो उसी की वजह से उनको सुभद्रा से उनका विवाह हुआ था, क्योंकि सुभद्रा आगे जाकर के नरकासुर का वध करती है, उनके साथ वॉरियर की तरह आगे बढ़कर आती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं जो हर युग में चलते जाती हैं और आगे बढ़ते जाती हैं,
1: और आज की जनरेशन तक ये पहुंचनी चाहिए। और इसीलिए गुड न्यूज टुडे की ये कोशिश है कि उन तमाम रहस्यों को, आप बप्पा की पूजा आराधना तो करें लेकिन वो तमाम रहस्य आप तक पहुंचने चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना, बप्पा के और कितने रहस्य हैं, इस पर से भी पर्दा उठाएंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: से जिन पर से पर्दा हम उठाते जा रहे हैं किक करके। और यदि आपके घर भी पप्पा पधार रहे हैं तो वो कौन सी ऐसी बात है जिनका आपको बहुत ख्याल रखना है, वो भी साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं। लेकिन डॉक्टर नितिशा, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। कुछ रहस्यों का जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, अब पप्पा के मोटे पेट के पीछे क्या रहस्य है, ये क्या संदेश देता है?
1: जी नवजोत जी, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि भगवान गणेश से हमें हर उनके बॉडी पार्ट से कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही रहा है। अब उन्हें एक दंतकारी भी कहा गया और उन्होंने अंधलासुर को भी अपने पेट में रखा था, यानी एक ऐसा असुर जो पूरी तरह से ईश्वर के साथ और देवताओं के साथ युद्ध कर रहा है, उनको खाने की कोशिश कर रहा है, उसको अपने पेट में रख कर उन्होंने मुझे बताया कि जितनी भी दुनिया की जो दूसरी चीजें हैं जिनको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो भी आप अपने पेट में डिसॉल्व कर सकते हो। यानी एक दूसरे की जब हम बातों को सुनते हैं तो हमें वो अपने अंदर रख लेनी चाहिए, उसको किसी के साथ आदान प्रदान करने से बचना चाहिए। तो जैसे कि उनको एक दंतकारी कहा गया, तो एक दंतकारी का भी है कि जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो, जैसे कि उनको वेद व्यास जी ने बोला कि आपने महाभारत लिखी है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है स्वामी जी, आप तो महाभारत लिखवाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आपके साथ एक शर्त है कि आप बोलते रहेंगे और मैं लिखता रहूंगा। तब वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जो भी मैं श्लोक बोलूंगा उसको अपने मीनिंग के साथ लिखना है। तो गणेश जी ने स्वीकार किया। अब वो महाभारत लिखने की वो योग्यता शुरू हुई। जब महाभारत लिखते लिखते 11वें दिन वेद व्यास जी ने अपनी आंखों को खोला तो देखा कि गणेश जी का एक दांत नहीं था। तो गणेश जी ने क्या किया, जब वो उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने अपने एक दांत को तोड़ा और उसी से लिखना शुरू कर दिया। हमें एक परशुराम जी की भी कथा मिली है, लेकिन एक कथा वेद व्यास जी के साथ भी शास्त्रों में लिखी गई है। तो वो जब दांत तोड़ के उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने ये बताया कि अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में आती नहीं है, हमें उनको लाना पड़ता है। तो जितनी भी सृष्टि में कम से कम चीजों में हम काम कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए, और किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए वेट नहीं करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कब उसके लिए अच्छा समय मिलेगा, कब मैं वो कर पाऊंगा। आपको लग रहा है कि आपके पास संसाधन कम है तो मैं उसी समय अपने कम संसाधनों के साथ उस अपॉर्चुनिटी को लाऊं। तो गणेश जी का पेट हमें यह सिखाता है कि हमारे साथ जीवन में दुख के जितने भी अनुभव है, धैर्य और खुशी से उसको स्वीकारो और अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो, उसको खुद ग्रैब करो, उसको खुद लाने की कोशिश करो। तो भगवान से हमें ये सब सीखने का वो मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे महाभारत लिखने के बाद जब वेद व्यास जी ने उनके साथ बहुत गर्मी को देखा तो एक अंधलासुर को पेट में रखने के बाद उनको दुर्वा चढ़ाई गई। अब यहाँ पे वेद व्यास जी ने भी ये लिखा कि उनको 3 बार उन्होंने स्नान करवाया, यानी 3 बार उनको स्नान कराने के बाद ठंडक पहुंचाई गई
0: जी।
1: तो उनकी बॉडी के साथ कहीं ना कहीं गर्म ऊर्जा जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें विसर्जन भी किया जाता है और दुर्वा भी चढ़ाई जाती है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि दुर्वा हमेशा 21 गांठें ही होनी चाहिए और 3 मुख वाली ही दुर्वा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और दुर्वा आपकी हाथ से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुर्वा खास आयुर्वेदिक जब हम गुण देखते हैं तो राहु के बहुत सारे उपायों के लिए, पेट के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके उपायों के लिए दुर्वा खास के बहुत से उपाय या दुर्वा जल भी पिलवाया जाता है जी।
0: बिल्कुल, चलिए नंदा जी लौटूंगी। अब देखिए जीएनटी के पप्पा के दर्शन भी हम लगातार आपको करा ही रहे हैं, अरविंद शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और वैसे बताते चले, दूसरा साल है कि पप्पा हमारे यहाँ पधारे हैं और इस बार तो पूरे जीएनटी लुक में पप्पा आए हैं। अरविंद जी एक चीज और जानना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जब पप्पा को लेने जा रहे थे तब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन अरविंद जी ने दी थी, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो सूंड को लेकर आपने बहुत कुछ बताया था। तो किस तरीके से इसका चयन किया जाता है, क्या इसमें भी कुछ मनोकामना की बात होती है, क्या मान्यता है इसके पीछे?
2: बिल्कुल, कहते हैं कि कर्ण कम रक्त व रक्त गंधान, एक तो कहते हैं कि जो सूण उनके शरीर में है वो सबसे बड़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो रक्तम लंबो दरम सूर्पा कर्ण कम रक्तवासम रक्त गंधान लिप्तांगम रक्त पुष्पी सुपूजितम। सूण के विषय में कहा गया है कि यदि राइट की तरफ है तो उसका महत्व अलग है, लेफ्ट की तरफ है तो उसका महत्व अलग है, और सीधे सूण है तो उसका महत्व अलग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राइट की तरफ है तो इनको तीक्ष्ण गणेश कहते हैं, और इनकी पूजा में विशेष आपको पवित्रता, विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, बड़े नियम संयम के साथ आपको अनुष्ठान करना पड़ता है, तब जाके गणपति आपको जो है आशीष देते हैं, प्रसन्न होते हैं। जो लेफ्ट की तरफ सूंड होती है यानी बाएं हाथ की तरफ होती है, वो जो है शांति प्रदायक गणेश कहे गए हैं। उनकी पूजा, उनकी आराधना प्रायः जो पारिवारिक लोग होते हैं उनसे गलतियां देखिए होती रहती हैं, इतने नियम संयम और इतने ज़्यादा वो उन चीज़ों को पालन नहीं कर पाते हैं, तो वो बड़े आराम से बड़े सहजता के साथ जो है गजानन गणेश की आराधना कर लेते हैं, और कोई त्रुटि भी होती है तो उनके अंदर आवेश और क्रोध नहीं होता है। तो इसलिए लेफ्ट की तरफ जो सूंड वाले हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जो घर में रहते व्यक्ति हैं, उनको गणपति लाना चाहिए। अब गणपति कैसे पोजीशन पे होना चाहिए, हाँ, जो लंबी सूंड वाले नहीं, जो सीधी सूंड वाले हैं गणपति, उनकी प्रायः आराधना जो विशिष्ट तपस्वी साधु संत होते हैं वो लोग करते हैं, वो भी विशिष्ट शांत प्रकृति के होते हैं। तो ये मैंने तीनों का आपको बता दिया, राइट का भी, लेफ्ट का भी, सीधे का भी। अब बात विशेष आती है कि गणपति किस मुद्रा में होनी चाहिए। तो देखिए, गणपति इस मुद्रा में होनी चाहिए कि बैठे हुए हैं, हाथ में लड्डू लिए हुए हैं, आशीष दे रहे हैं। ये सारी चीजें गणपति की यदि आपके घर में तस्वीर है तो आप जो है मानिए कि आपको विशेष जो है भगवान गणपति की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ होगा तो वह आपको प्रसन्नता और प्रफुल्लता के साथ आशीष दे पाएगा, आपकी बात को सुन पाएगा। खड़ा हुआ व्यक्ति जो रहता है वह एक तरह से मन उसका थोड़ा भ्रमित भी रहता है,
0: अटेंटिव
2: ज्यादा, खड़े हुए व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, स्वतः संकुचित होते हैं।
0: बिल्कुल, ये बातें आपको बताने का मकसद ये भी, देखिए वैसे तो अभी सबके घरों में बप्पा विराजमान हो चुके, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो जो कि परमानेंटली बप्पा को अपने घर पर लाते हैं, तो अपनी मनोकामना के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से आप ला सकते हैं। एक बार जल्दी से संजय शर्मा आपके पास आना चाहेंगे, बल बुद्धि के दाता इनको कहा जाता है। एक छोटा सा उपाय जल्दी से, क्योंकि वक्त की कमी है, तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो बप्पा से इस वक्त बल बुद्धि का मांग सकते हैं आशीर्वाद।
3: कहा जाता है कि गणेश जी जो है सब वृद्धि और सिद्धि को देने वाले हैं, बल को देने वाले हैं, शक्ति को देने वाले हैं। और कहा जाता है जो 21 दूरवा की अभी आप बात कर रहे थे उसमें मैं कहूंगा एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी जो है पांच है, कर्म इंद्रियां पांच है, प्राण पांच है और महाभूत पांच है, और एक मन और जीवात्मा है, शरीर है। तो इसमें ये जो सारा शरीर है वो पंच तत्वों से ही बना है, इस कारण से जो है हमें अपने मन को स्थिर करना चाहिए। और एक लघु उपाय जो अगर आप कर सकते हो गणेश जी के लिए, तो गणेश जी के ऊपर पान के पत्ते के ऊपर लड्डू रख करके और गणपति को अर्पित करें, और गणेश जी का जो लघु मंत्र है ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का जो स्टूडेंट्स हैं वो लाभ उठा सकते हैं। और बल बुद्धि दोनों जो है जब ही आएगी, जब आपके पास ज्ञान आएगा, और ज्ञान के बाद ही शक्ति बढ़ती है व्यक्ति की जीवन के अंदर, तो आप जो है पान के पत्ते को लड्डू चढ़ा दें और गणेश जी को जनेऊ जरूर अर्पित कर दें, जिससे गणेश जी आपके जीवन में प्रसन्नता दें और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, जिससे कि आपका जीवन बड़े आनंद से चले। इस प्रकार से प्रयोग करें जिससे कि गणेश
0: बिल्कुल ये उपाय कर सकते हैं। नंदा जी आपके पास आना चाहूंगी। अब संजय जी ने लड्डू की बात की, लेकिन हमारे देश में ना अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से फेस्टिवल को मनाते हैं, कहीं लड्डू चढ़ाने की परंपरा और कहीं मोदक चढ़ाने की परंपरा है।
4: जी देखिए, प्रसाद तो नैवेद्य होते हैं, जो श्रद्धा से आप चढ़ाएं वो ज्यादा फलित होता है। और जैसे कि अभी पंडित जी बोल रहे थे कि दुर्वा घास या प्लेन सिंपल चढ़ा दीजिए, वो तो हर जगह। और दुर्वा घास की खासियत क्या होती है, ये थोड़ी सी भी अगर आप घास लगाए ना तो उसकी रूट्स अंदर फैलती जाती हैं और वो पूरे एक स्थान पे, तो जैसे उत्तराखंड में, मैं बार बार उत्तराखंड की चर्चा कर लेती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ एक जब आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि दुर्वा की तरह तुम्हारी मतलब यश तुम्हारा फैल जाए, ताकि जैसे दुर्वा घास फैलती है उसी तरह से दुर्वा घास में हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। तो आप दुर्वा घास में थोड़ा सा एक लाल फूल आप बांध लीजिए और साथ में थोड़ा सा हल्दी और सिंदूर रख लीजिए पान के पत्ते के ऊपर आप रख करके, और कोशिश करिए कि दुर्वा घास जब आप देते हैं तो उसकी जो पॉइंटेड लीव्स हैं उस तरफ से ना करके उसकी डंडी वाली साइड को गणपति के मुख की तरफ आप रखेंगे, ताकि वो एक मान्यता होती है कि निगल ले आराम से। और बहुत सिंपल सा मंत्र है कि ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणपते नमः, इस मंत्र का जाप करके जब आप कहें तो आप सिद्धि भी ले रहे हैं, बुद्धि भी ले रहे हैं, आप हर तरह की चीजों से
0: बिल्कुल
4: उनसे
0: बिल्कुल
4: मांग रहे हैं और उनको श्रीमन बोल रहे हैं। श्री भी उनकी
0: बिल्कुल
4: एक पत्नी थी जो तपस्विनी थी और गणपति की फर्स्ट वाइफ एक तरह से उनको माना जाता है, लेकिन रिद्धि सिद्धि को ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर मिला है उनकी पूजा में,
0: जी
4: तो
0: जी
4: अब
0: जी
4: उनको करें। शुभ लाभ उनके पुत्र हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, जब आपने
0: बिल्कुल
4: बुक में
0: नंदिता
4: आप
0: जी,
4: लिखते हैं तो
0: वक्त
4: पूरा
0: अभी
4: सही
0: इतना
4: होता है।
0: ही है, हालांकि बातें बहुत हैं बप्पा के बारे में और जाननी सुननी भी बहुत अच्छी लगती हैं आप लोगों से, लेकिन वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बप्पा हमारे साथ मौजूद हैं और जीएनटी के बप्पा सभी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ से गुड न्यूज टुडे से आप सब तक पहुंच रही वो है पॉजिटिविटी का संदेश, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, बने रहिए हमारे साथ, उत्सव लगातार जारी है।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: क्या सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: तो बप्पा पधार चुके हैं, गणेशोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। हर तरफ अगर देखा जाए तो बप्पा के जयकारों की गूंज है। लोग अपने अपने आराध्य को खासकर मोदक का भोग लगा रहे हैं। और इस बीच नासिक में एक मिठाई की दुकान पर आपको लिए चलते हैं, जहां पर बहुत अनोखा ऑफर मिल रहा है। दरअसल यहां पर गोल्डन मोदक ग्राहकों को खूब भा रहे हैं। कीमत सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 27,000 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। लेकिन इसकी खासियत जानिए इस रिपोर्ट में।
7: रंग बिरंगे स्वादिष्ट मोदकों का ये संसार बसा है नासिक की एक दुकान पर, जहां इन मोदकों में एक खास मोदक गणेशोत्सव का लग्जरी अंदाज भी पेश कर रहा है। दरअसल इस मिठाई की दुकान चलाने वालों ने गणेश चतुर्थी पर्व के उत्साह में लग्जरी का तड़का लगाते हुए 24 कैरेट सोने की परत वाले मोदक पेश किए हैं, जिसे भक्त अनोखे भोग के तौर पर पसंद भी कर रहे हैं। इन खास मोदकों को देखने पर इनकी सतह पर सोने जैसी चमक नजर आती है, और इनका यही शाही अंदाज इन्हें सामान्य मोदकों से अलग बना रहा है। अपनी सुनहरी चमक और खास सामग्री से तैयार इस प्रीमियम मोदक की कीमत 27,000 रुपए किलो है, जबकि काजू मोदक 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ 24 कैरेट वाले इस गोल्डन मोदक की चर्चा सबसे ज्यादा है। दूसरी वैरायटीज में ड्राई फ्रूट्स, ऑरेंज और मलाई मोदक भी शामिल है।
8: कारण पिछले साल जो हमारा मोदक 20,000 रुपए किलो था, इस साल वो 27,000 रुपए किलो रखा है हमने। और अगर जैसे गणेश भक्त को पीस पे भी चाहिए तो वो पर पीस हम 540 रुपए में दे रहे हैं। हमने बहुत सारे प्रकार के मोदक भी बनाए, जैसे ब्लूबेरी मोदक बनाया हमने, पान फ्लेवर्ड मोदक बनाया है, ड्राई फ्रूट केसर मोदक बनाए, सिल्वर का मोदक बनाया है, तो कस्टमर का बहुत अच्छा डिमांड है।
7: जाहिर है गणेशोत्सव में भक्त अपने आराध्य विघ्नहर्ता के लिए खास से खास चीज तैयार करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में जब कोई मिठाई अपने स्वाद के साथ साथ दिखने में भी बेहद आकर्षक हो तो उसका लोगों का ध्यान खींचना तय है।
9: लेने की इच्छा बनाया हूँ और भगवान को प्रसाद चढ़ाने का महत्व रखता हूँ, ऐसे ही भगवान हमेशा बरकत देते रहे।
10: पिछले साल तो हमने भी एक गोल्ड के मोदक खरीदे थे, लेकिन 15,000 रुपए किलो के थे। इस साल थोड़ा भाव बढ़ गया है तो हम थोड़े से लेने वाले, लेकिन लेने वाले।
7: हालांकि यहां एक बात साफ है कि 27,000 रुपए किलो की कीमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा मोदक ही शुद्ध सोने से बना है। दरअसल इसकी सुनहरी फिनिश और प्रीमियम पेशकश ही इसे गोल्डन मिठाई का खास रूप देती है। जहां मोदक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों पुराना रहा है, तो समय के साथ इसके लुक में भी बदलाव आता रहा है। आज बाजार में चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, मावा, केसर और कई दूसरे फ्लेवर के मोदक मिल जाएंगे। ऐसे में ये गोल्डन मोदक इसी बदलती मिठाई संस्कृति की एक नई मिसाल मानी जा सकती है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: देखिए हर तरफ ना बप्पा के जयकारे हैं, क्योंकि सुर्खियों में सिर्फ गणेश जी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वीडियोस हैं, चलिए आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
11: इतने प्यारे बाल गणेश, जिसने भी देखा बप्पा का ये रूप देखता ही रह गया। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन मेकअप और रूप ऐसा कि मानो खुद बाल गणेश सामने आ गए हों। चेहरे की मासूमियत और बप्पा वाला रूप देखते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इस नन्हे से बच्चे का ये अद्भुत रूप लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जिसने भी देखा बस यही कहा, गणपति बप्पा मोरिया। कठपुतली का खेल आपने अक्सर देखा और सुना होगा, लेकिन इस कलाकार की कलाकारी जरा देखिए, गाने की धुन बजती है और उसके साथ ही कठपुतली ऐसे थिरकने लगती है जैसे उसे हर सुर का पता हो। कलाकार अपने हुनर से कठपुतली के हर कदम को इतनी खूबसूरती से कंट्रोल कर रहा है कि देखने वाले बस देखते रह गए। आसपास मौजूद लोग भी इस अनोखी कला को देखकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। जंपी हो रही है और हो भी क्यों ना, काम का प्रेशर जो इतना रहता है। अब देखिए इस प्यारे बच्चे को आराम से बैठकर बिना किसी चिंता के अपने सिर की मालिश का पूरा आनंद ले रहा है। जैसे जैसे जंपी हो रही है, बच्चे के चेहरे पर सुकून और खुशी भी बढ़ती जा रही है। ना कोई टेंशन, ना कोई जल्दबाजी, बस आराम ही आराम। बच्चे के इस अंदाज को देख कर शायद आपका भी मन करेगा कि एक जंपी तो बनती है। मौसम चाहे जैसा हो, बस निकल पड़ो अपने रास्ते पर। अब इन आंटी को ही देख लीजिए, अपने स्कूटर पर सवार होकर बड़े आराम से निकल पड़ी हैं। मौसम भी सुहाना है और रास्ता भी इतना खूबसूरत कि सफर का मजा दोगुना हो जाए। आंटी भी बिना किसी चिंता के अपनी स्कूटर राइड का जमकर आनंद ले रही हैं। चेहरे पर खुशी, रास्ते पर मस्ती और मौसम का साथ, यानी सफर छोटा हो या बड़ा, एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए।
12: अंकल जा रहे
11: लद्दाख का ये वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे और उनका इतना प्यारा डांस की नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। डांस के हर स्टेप में क्यूटनेस है, चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में मासूमियत। इन नन्हे बच्चों की खुशी देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे ये बच्चे जब साथ में थिरकते हैं तो पूरा माहौल ही खूबसूरत हो जाता है। सच में ये नन्हे सितारे किसी परी की कहानी से कम नहीं लग रहे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही।
1: स्वागत है आपका बप्पा के इस दरबार में। तो बप्पा जीएनटी पर भी पधार चुके हैं और ये जिम्मा हमने शगुप्ता को दिया जयकारे का। गणपति बप्पा
2: मोरया,
1: मंगल मूर्ति
2: मोरया।
1: देखिए आज हम आपको जीएनटी के बप्पा के तो दर्शन कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ देश भर में किस तरीके से बप्पा के उत्सव की रौनक है, मुंबई में कैसे पंडाल सजे हैं, कितने सितारे पहुंच रहे हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए, वो तमाम तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे।
3: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और जाहिर सी बात है यहाँ का माहौल आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से गणपति बप्पा के रंग में हम सभी रंगे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम पंडाल में ही बैठे हुए हैं। ऑल दो पंडाल जा पाए या ना जा पाए, लेकिन यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है क्योंकि गणपति हमारे घर में है भाई। तो चलिए आज आपको हम वैसे अंबानी परिवार के गणपति उत्सव के रंग भी दिखाएंगे, जहां बॉलीवुड के बड़े चेहरे तो पहुंचे ही, साथ ही देश के नामी गिरामी लोग भी जुटे। तो कैसा नजर आया एंटीलिया में भक्ति का रंग, ये भी देखेंगे।
1: नमस्कार, मैं हर्ष गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। गणपति उत्सव की तमाम तस्वीरें सुबह से आपको दिखा रहे हैं, साथ ही देशभर से हमारे दर्शक भी अपने यहां पधारे बप्पा की तस्वीरें हमें लगातार भेज रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए आज बात हनुमान अंश की भी हम करेंगे, जिसके मेकर्स अब गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी पर आधारित फिल्म बनाने जा रहे हैं, और ये जो फिल्म वो बनाने जा रहे हैं इसका नाम है राम बोला। लेकिन राम सामने आते ही अब टाइटल को लेकर जो है वो संग्राम छिड़ गया है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में विस्तार से आगे बात होगी।
3: नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका शर्मा। देखिए बात उस करोड़पति विधायक की भी करेंगे जो करोड़पति होते हुए भी सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। तो क्या है एक दिन के इस भिखारी की कहानी, ये कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्व शीर्ष पाठ, भगवान गजानन की महाआरती में दिखे भक्ति के रंग। इंदौर में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं का अनोखा संग्रह, भक्त ने बनाया 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय, विदेशों से भी जुटाई गजानन की मूर्ति। होली की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा के दर्शन, शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना जारी। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से पवित्र चारधाम यात्रा जारी, बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब में भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मथा। मौसम की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर, आज से फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, 30 सितंबर तक करीब 9,000 टिकट बुक। लंदन में दिखी वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी के किनारे भव्य आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।
1: लेकिन देश भर में कहां कहां किस तरह से पंडाल सजे हैं उसकी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपका अपना पसंदीदा चैनल गुड न्यूज टुडे भी बप्पा को लेकर क्या है, शगुफ्ता गीतिका गए थे ढोल नगाड़ों के साथ, क्यों
2: सभी गए थे, इनफैक्ट सभी ने बैंड बाजा स्वैग के साथ किया है। इनफैक्ट हमने गणपति बप्पा का स्वागत तो आज हम सेकंड डे मना रहे हैं इनका।
1: बिल्कुल, दो तस्वीरें आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से पहले हमने चुनाव किया था और उसके बाद साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से बप्पा जो है हर घर में विराजे हैं। और जाहिर सी बात है आज दूसरा दिन है गणपति बप्पा की भक्ति में, पूरा देश जो है इस वक्त मगन नजर आ रहा है, न सिर्फ आम बल्कि खास सभी बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से एंटीलिया में भी बप्पा विराजे हैं।
2: तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक बप्पा की भक्ति में आम और खास सभी लोग, अंबानी परिवार ने किस तरीके से बप्पा का स्वागत किया और साथ ही साथ कैसे पूरा बॉलीवुड वहां पर पहुंचा, वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर बप्पा के स्वागत में हर कोई मगन है, हर कोई बप्पा की भक्ति में पूरी तरह से लीन है। तो चलिए गणेश उत्सव की रौनक आपको लगातार दिखा रहे हैं इन दिनों। देखिए माया नगरी में भी खूब रौनक देखने को मिल रही है, फिल्म और टीवी जगत के सितारे अपने अपने घरों में बप्पा का स्वागत कर रहे हैं, जैसे स्वैग के साथ हमने किया है।
3: बिल्कुल, स्वैग के साथ जो है बप्पा की एंट्री हो गई है, सलमान खान से लेकर गोविंदा, राजपाल यादव, अर्जुन बिजलानी और तुषार कपूर सभी सितारों के घर पर गणपति उत्सव की रौनक है। कहीं पूजा अर्चना हो रही है, कहीं बप्पा की आरती उतारी जा रही है, तो कहीं आरती के जरिए गणपति की आराधना की जा रही है। देखिए बप्पा के रंग में किस तरीके से बॉलीवुड रंगा हुआ नजर आ रहा है।

0: गणपति उत्सव के रंग हर तरफ बिखरे हुए हैं, क्या आम क्या खास, हर कोई बाप्पा की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। और जब बात बॉलीवुड के भाईजान की हो तो बाप्पा की भक्ति के साथ साथ फैंस का क्रेज भी देखने को मिलता है। सलमान खान भी गणपति बाप्पा की भक्ति में लीन नजर आए। वो मुंबई में अपने भाई सोहेल खान के घर पहुंचे और गणेश पूजा में शामिल हुए। सलमान खान के आने की खबर मिलते ही फैंस की भीड़ जुट गई। हर कोई अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। सलमान ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया। बाप्पा की भक्ति में गोविंदा का घर भी रंगा नजर आया। यहाँ बेहद खूबसूरत दरबार सजाया गया है। फूलों से सजे इस दरबार में बाप्पा की भव्य झलक ने हर किसी का ध्यान खींचा। गोविंदा ने अपने परिवार के साथ पूरे भक्ति भाव से गणपति पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया।
1: गणपति बाप्पा के शुभ अवसर पे प्रार्थना करता हूँ, शुभता प्रदान करे, रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, किसी प्रकार का क्लेश कष्ट बाधा ना आए। ये हमारे घर में प्रथा मम्मी के आशीर्वाद से ये शुरू हुई थी। वर्षानुवर्ष में करता आया, अब यश कर रहे हैं और यश के लिए बहुत शुभेच्छा शुभता प्रदान करें ऐसी पापा से प्रार्थना है। डीना के लिए बहुत ही अच्छा वर मिल जाए ऐसी प्रार्थना करता हूँ।
0: अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले राजपाल यादव के घर भी बाप्पा विराज चुके हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सजा ये दरबार भक्ति में माहौल को और खास बना रहा है। राजपाल यादव ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर बाप्पा की आरती की और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। बाप्पा के पधारने पर अर्जुन बिजलानी के घर भी भक्ति और उत्साह की सुंदर महफिल सजी। गणपति उत्सव के खास मौके पर टीवी जगत के कई सितारे उनके घर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी बाप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए। आरती के दौरान तो पूरा माहौल भक्तिमय हुआ।

0: आरती के बाद भक्ति के इस खूबसूरत पल को सभी ने कैमरे में भी कैद किया। बापा की प्रतिमा के आगे सितारों ने जमकर फोटो शूट करवाया और इस खास मौके की यादें सजोई।
1: हर शुभ काम के पहले जो है गणेश पूजा की जाती है, उसका एक कारण है। तो हम तो हर साल, अब मुझे 23 साल हो गए खुद लाते हुए गणपति, और हर बार जब मैं कोई भी काम करता हूँ, इनफैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं मंगलवार के दिन ही करता हूँ। और हर सुबह मैं गणेश आरती जो है वो तो सुनता ही हूँ।
0: वहीं अभिनेता तुषार कपूर ने भी हर साल की तरह इस साल भी अपने घर पर बापा का स्वागत किया, विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना की और सभी के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
2: हर साल की तरह बापा आ गए, वही खास बात है। और थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। बस मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ, आप लोग आ गए हैं। हर साल की तरह शहर का माहौल बदल गया है, बारिश भी हो रही है, जो एक गर्मी का मौसम, गर्मी का महीना था, अगस्त का महीना, एक बूंद बारिश नहीं गिरी। आज और कल में गणपति पापा के आने से बारिश शुरू हो गई है। दैट इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग, जहाँ होनी चाहिए आई होप वहाँ भी हो रही हो। एंड यस, यही खास बात है।
0: गणपति बापा के स्वागत का ये सिलसिला कहीं भव्य दरबार के साथ दिखा तो कहीं आरती और भक्ति के रंग में नजर आया। हर किसी ने बापा के चरणों में शीश झुकाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसी आस्था के साथ हर तरफ गूंजता रहा एक ही जयकारा, गणपति बापा मोरिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, हर तरफ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जीएनटी में कैसा जोश है वो बताइए।
4: जैसा जोश कल आपने देखा, जैसे स्वैग के साथ हम बप्पा को लेकर आए हैं, वैसी एक्साइटमेंट आज भी है ना लड़की, और ये कल तक रहने वाली है।
5: नहीं, और मुझे वही कहते हैं कि जब आपके यहाँ बप्पा आते हैं तो सुबह शाम आप बस वहीं लगे रहते हैं, तो हमारे बुलेटिन भी चल रहे हैं और हम ये भी चिंता कर रहे हैं, देखो उसमें घी कम ना हो जाए, बारी बारी से आके घी डालते रहे,
4: मोदक ले आए, मोदक प्रसाद में दे दे, सारी जिम्मेदारियां बटी हुई।
6: सबसे बड़ी जिम्मेदारी लड़कियों की है कि हम पहन के क्या आएंगे।
4: किसका क्या कलर होगा, किसने कल क्या पहनना है, एडवांस में तैयारी है,
6: साड़ी पहननी है, सूट पहनना है, कौन से इयररिंग्स
3: किससे मैच हो रहे हैं, क्या पहनना है,
6: किसकी इयररिंग्स रिपीट करने हैं।
3: बिल्कुल, देखिए हमारी तैयारी तो फुल ऑन चल रही है, लेकिन बॉलीवुड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि बॉलीवुड में आखिर क्या चल रहा है, बप्पा की कैसे वो लोग स्वागत करें। तो शिल्पा शेट्टी ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है जिसमें वो डांस करती हुई नजर आ रही है, बप्पा का स्वागत करती नजर आ रही है।
5: तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिल्पा शेट्टी को, बिल्कुल, और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं रामचरण को। रामचरण ने सोशल मीडिया पर गणेशोत्सव का वीडियो शेयर कर फैंस को भी इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। एक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी के जीवन से बाधाएं दूर करें और सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें।
6: और अब ये तस्वीरें देखिए 90s की बेहतरीन अदाकारा सोनाली बेंद्रे, जो कि पूरे भक्ति भाव के साथ बप्पा का स्वागत करती, पूजा अर्चना करती, भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रही हैं। बप्पा की आराधना करते हुए सोनाली ने भी वीडियो साझा किया है और तस्वीरें भी साथ ही साथ साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, गणपति बप्पा मौर्या।
4: और चलिए ये तस्वीरें भी देख लीजिए, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने भी किस तरह से गणेशोत्सव का ये उत्सव मनाया है वो तस्वीरें आई हैं। रश्मिका ने भी सोशल मीडिया पर गणपति के आगमन की तस्वीरें शेयर की। सोशल मीडिया पर रश्मिका के फैंस तस्वीरों की खूब तारीफ कर रहे हैं।
7: तो देखिए, एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी बड़े खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया। उन्होंने अपनी मां के साथ मुंबई के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर साझा की हैं। देखिए, अभिनेत्री ने बताया है कि ये तस्वीरें उनकी पिछली मंदिर यात्रा की हैं और मां के साथ वहां पहुंचना उनके लिए बेहद खास और डिवाइन अनुभव था। पोस्ट में उन्होंने उस शख्स का भी मजेदार अंदाज में शुक्रिया अदा किया जिसने उनकी और उनकी माँ की तस्वीरें खींची और तुरंत उनकी माँ के फोन पर एयर ड्रॉप कर दी। अभिनेत्री ने लिखा कि शायद ये तस्वीरें आज के दिन पोस्ट करने के लिए ही थी।
3: और देखिए इसी कड़ी में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी बप्पा के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने

0: वक्त इंग्लैंड में हैं, फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन विदेश में रहते हुए भी उनका बप्पा से जुड़ाव कम नहीं हुआ है। कार्तिक ने गणपति बप्पा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है और लिखा कि घर से मीलों दूर हूं लेकिन बप्पा से कभी दूर नहीं। ये तस्वीर और पोस्ट दिखाती है कि बप्पा के लिए आस्था की कोई सीमा नहीं, चाहे देश हो या विदेश, हर जगह गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरिया।
1: और देखिए एक और खूबसूरत एक्ट्रेस हैं सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी, जिनके घर पर बप्पा बिराजे हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बप्पा की तस्वीरें शेयर की, गणपति को उनके प्रिय मोदक का भोग भी लगाया। और ये तस्वीरें एक्टर आयुष शर्मा के घर की, जहां पर बप्पा पधारे हैं, आगमन हुआ बप्पा का। आयुष ने भी बप्पा के साथ तस्वीर शेयर की है सोशल मीडिया पर और लिखा है बप्पा आ गए हैं। और इसी के साथ उन्होंने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरें फैंस का भी दिल जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर तरफ बस एक ही जयकारा है, गणपति बप्पा मौर्या। वैसे ये सब तो एक तरफ है, आप लोगों ने एंटीलिया की तस्वीरें देखी?
0: मैंने नीता अंबानी को देखा और उन्होंने जो बहुत अच्छा सा हेडपीस पहना है, दैट इज अमेजिंग।
2: 5 किलो सोने का है।
3: परफॉर्मेंस देखी ना आपने उनकी बहू की?
2: राधिका,
3: क्या प्रिटी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है।
4: देखिए अंबानी परिवार में कुछ प्रिटी ना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो तो हो ही नहीं सकता,
3: एक्स्ट्रा वैगेंट ना हो कैसे हो सकता
2: है। मैं ये बोलूं पूरे फीड पे ना बस एंटीलिया की फोटोज हैं, कियारा आडवाणी, कैटरीना कैफ,
3: नहीं ये सबसे आगे हैं मिसेज अंबानी, जिनके नेकलेस पे हम सबकी और जिसके ब्लाउज पे हम सबकी नजरें हैं।
2: तो देखिए अंबानी के घर पर हर साल ही गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी उनके घर पर गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए तमाम नामी चेहरे जुटे। रितेश, उनकी पत्नी जेनेलिया, उसके साथ कटरीना और विकी कौशल भी इस पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे।
3: बिल्कुल, देखिए वरुण, नताशा, जानवी कपूर भी इस पूजा के लिए एंटीलिया में पहुंचे। कृति और नुपुर सैनन भी इस पूजा में शामिल हुई। गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए रेखा भी एंटीलिया में मौजूद थी।

पर सितारों की धूम, अंबानी परिवार के घर पहुंचा बॉलीवुड का कुटुंब। बाप्पा के दर्शन के लिए लगा सितारों का मेला। सालों से अंबानी परिवार गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाता हुआ आ रहा है और इस बार भी इसमें लग गए हैं चार चांद और सभी दिग्गज कलाकार पहुंच गए हैं अंबानी परिवार के बाप्पा के दर्शन के लिए। तो भाई आइए सबसे पहले बात करते हैं जोड़ियों की, जहां नजर आ रही हैं रणबीर और आलिया, विक्की कैटरीना, रितेश जेनिलिया, सिद्धार्थ कियारा, माधुरी नेने, बमन ईरानी जो पहुंचे अपनी वाइफ संग, जैकी श्रॉफ नजर आए अपनी पत्नी संग। इसके अलावा एटली और प्रिया भी पापा के दर्शन के लिए पहुंचे। ऐसे में कई सारे बॉलीवुड के परिवार भी यहां पर एक साथ नजर आए, जैसे कि सैफ करीना पहुंचे तैमूर और जहांगीर संग, तो वहीं सचिन तेंदुलकर भी अपने कुटुंब संग नजर आए। इसके अलावा हरभजन सिंह और गीता बसरा भी अपनी बिटिया रानी संग पहुंचे, तो वहीं जितेंद्र नजर आए एकता के साथ। इसके अलावा काजल भी न्यासा युग के साथ पहुंची। इसके अलावा बात करें हसीनाओं की, तो यहां सज धज कर पहुंच गई है जानवी कपूर, कृति नुपुर, वेदिका पिंटो, दिशा पटानी, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, राशा थदानी, उसके अलावा किरण राव, रेखा, करिश्मा कपूर, नीति मोहन, सभी के सभी देसी अंदाज में यहाँ पर बापा का आशीर्वाद लेने पहुँचे। भाई अगर हसीन आए हैं तो मुंडे कैसे पीछे रहेंगे, तो यहाँ पर नजर आए रणवीर सिंह, सलमान खान, चंकी पांडे, संजय दत्त भी बने खास मेहमान। इसके अलावा रामदेव बाबा और बागेश्वर बाबा भी यहाँ खास

मेहमान बनकर पहुँचे, यानी कि बापा के दर्शन के लिए सज गया है बापा का दरबार। ऐसे में हम भी यही कहेंगे, भाई बापा के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं गणपति बापा यूं ही पूरी करें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: देखिए, गणेश उत्सव के रंग हर जगह से ही सामने आ रहे हैं, चाहे देश हो या विदेश। तो मुंबई में गणेश उत्सव की सजावट में भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक देखने को मिल रही है। सजावट के जरिए ब्रिक्स सम्मेलन और उससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को बेहद रचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।
1: बिल्कुल, देखिए, शुभम वनमाला की थीम आधारित सजावट में ब्रिक्स समिट से जुड़े दृश्य और प्रतीकों को इस तरह प्रस्तुत किया गया है कि ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। उनके इस अनोखी पहल में गणेश उत्सव की भव्यता के साथ देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है।
2: महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से शुरू हो चुका है और इसी तरीके से अपने विचार जो हैं या क्या इस समाज में चल रहा है गणपति बप्पा के माध्यम से दिखाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त मुंबई में हैं जहां पर गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहां पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहां पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। हमारे साथ हैं शुभम वनमाला जो हर साल इसी तरीके से जो करंट अफेयर होता है या जो दुनिया में जो कुछ चल रहा होता है उसको लेकर जो डेकोरेशन करते हैं और इस साल इन्होंने ब्रिक्स किया है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों इनके दिमाग में ये ब्रिक्स डेकोरेशन का ख्याल है, उन्हीं से जानेंगे। शुभम, पहले तो आपने ब्रिक्स का डेकोरेशन किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों दिमाग में है ब्रिक्स ही क्यों?
3: एक्चुअली ब्रिक्स समिट जो 2026 ये इंडिया होस्ट करने वाली थी ये मुझे 1.5 महीने पहले ही पता चल गया था। तो मैंने बोला कि ये यूनिक कंसेप्ट हो सकती है जहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी कैसे एक साथ जाती है।
2: और कितने सालों से आप कर रहे हैं, मतलब इस बार ब्रिक्स है लेकिन हर साल आप कुछ अलग अलग थीम लेकर आते हैं, कितने सालों से हो रहा है और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कहाँ से दिमाग में ख्याल आते हैं?
3: ऑलमोस्ट 8 ईयर्स पहले से ही मैं डेकोरेशन कर रहा था ये थीम पर। तो हर ईयर मैं रिसर्च करता हूँ कि कौन से टॉपिक्स वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे या फिर इंडिया में जो घटित होते हैं घटना उनके ऊपर ही बनाता हूँ ताकि मतलब लोगों को मतलब जानकारी हो सके, मतलब जो भी इंडिया में जो भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं या फिर जो भी घटना है उसके बारे में जो भी मतलब डिवोटीज आएंगे उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले इसके रिगार्डिंग।
2: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में जो भारत में चल रहा है उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम वनमाला कर रहे हैं और इस साल जो है ब्रिक्स समिट यहाँ पर बनाया गया था। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
0: तो मुंबई से आपने ये खूबसूरत तस्वीरें देखी और अब आपको लिए चलते हैं वडोदरा। वहां के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में गणपति स्थापना की 200 साल पुरानी शाही परंपरा पूरी श्रद्धा और धूमधाम से निभाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दांडिया बाजार से भगवान गणेश की प्रतिमा को पालकी में विराजमान कर लक्ष्मी विलास पैलेस लाया गया। ये भव्य यात्रा कीर्ति स्तंभ और राजमहल गेट से होते हुए पैलेस पहुंची
4: और पैलेस के उसी भव्य दरबार हॉल में गणपति की स्थापना की गई जहां बड़ौदा राज्य के फैसले और दरबार लगते थे। और इस मौके पर राज पुरोहित ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। सयाजीराव गायकवाड़ के समय से ये परंपरा यूं ही चली आ रही है।
1: चलिए, अनोखे गणपति पंडालों की तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए लंबी लाइन लगी है और इसी फहरिस्त में अगला नंबर जो आता है वो है हैदराबाद के एक सुंदर से पंडाल का। वैसे तो हमारा पंडाल भी किसी से कम नहीं है जो हमने बड़ी मेहनत से सजाया है, लेकिन ये पंडाल आकर्षण का केंद्र है। इस पंडाल में मिट्टी की बनी बप्पा की कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई बल्कि कैंडी यानी टॉफी से विघ्नहर्ता की तमाम मूर्तियां तैयार की गई हैं।
0: और देखिए, आयोजकों का कहना है कि इस प्रतिमा में कई तरह के टॉफीज और चॉकलेट का इस्तेमाल किया गया है ताकि मूर्ति को आकर्षक बनाया जा सके। मूर्ति की तरह ही पूरे पंडाल को भी बच्चों की थीम पर सजाया गया है। आयोजकों ने बताया है कि उनका 19वां साल है और हर साल वो एक नई थीम पर गणेश पंडाल बनाते हैं। इसी कड़ी में इस साल उन्होंने गणेश जी के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की है।
1: तो देखिए, गुजरात के राजकोट से आस्था की अद्भुत तस्वीर सामने आई है, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे त्रिकोण बाग राजा पंडाल में गणपति के आगमन के साथ बारिश शुरू हो गई लेकिन बप्पा का दर्शन और पूजन लगातार वहीं चलता रहा। आरती में भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शामिल हुए
5: मौसम खराब होने के बावजूद बुजुर्ग और बच्चे आरती में पहुंचे। पंडाल में कई श्रद्धालु छाता लिए नजर आए। इस तस्वीर ने बता दिया कि मौसम चाहे जैसा भी रहे, गणपति उत्सव को लेकर लोगों का उत्साह कभी कम होने नहीं वाला है।
6: ये वो गणपति है, राजकोट का सबसे पहला सार्वजनिक गणपति है जो एक मन्नत पूरी करने के बाद यहाँ बिठाया गया था। आज 28 साल इस गणपति को हो गए। आज सुबह बराबर 10:30 बजे तिकोण बाग का राजा गणपति का विधिवत स्थापना हुई और स्थापना होते ही बारिश चालू हो गई। आपको मालूम है थोड़े दिनों से सौराष्ट्र में और राजकोट में बारिश की बहुत जरूरत है, खेडूत लोगों चिंता में है, जगत का ताज चिंता में, तो भगवान ने कृपा दृष्टि की ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं चाहता हूं कि कोई जिस पूरे जग में पूरे समाज में कहीं भी कोई की दिक्कत न हो और ये दादा जो है जिसको विघ्नहर्ता देव कहा जाता है वो सबकी मन्नत पूरी करे।
7: त्रिकोण बाग के राजा का दर्शन करने आए, हम हर साल इधर आते हैं और आज की महाआरती लिए हमने बहुत आनंद आया। इधर सब लोग आ रहे हैं, मैं बस यही दुआ करती हूँ कि गणपति बापा सबकी मनोकामना पूरी करे। श्री गणेश।
4: तो अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति के रूप में पहचान रखने वाले पुणे के ओझर के श्री विघ्नहर गणपति का बेहद अलौकिक और राजशाही रूप भक्तों के सामने आया है। विघ्नहर्ता बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक पहनाई गई और 200 साल पुराने करोड़ों रुपए के मूल्यों के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया।
1: और देखिए बप्पा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और साथ ही चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वस्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करतोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर गणपति का ये शाही रूप देखते ही बन रहा है।
0: श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र और महाराष्ट्र के अष्टविनायक गणपतियों में चौथे स्थान पर विराजमान पुणे के श्री क्षेत्र राजुन गांव के महागणपति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां 12 से 15 सितंबर तक लगातार 4 दिनों तक भक्तों को महागणपति के दर्शन का लाभ मिल रहा है। इन 4 दिनों के दौरान श्रद्धालुओं को सीधे गणपति की मूर्ति को हाथ लगाकर दर्शन करने का अवसर मिलता है। साल भर में केवल इन्हीं 4 दिनों में ये विशेष दर्शन होते हैं और यही वजह है कि महागणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजुन गांव पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं दगडू सेठ की पुणे में। हालांकि आपको बता दें गणेश नाम का जयकारा हो रहा है, हजारों महिलाओं की भीड़ का रिकॉर्ड यहां देखने को मिल रहा है। करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। गणेश नाम के जय घोष, अथर्वशीर्ष पाठ और महाआरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यह आयोजन ऋषि पंचमी के अवसर पर श्रीमंत दगडू सेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्ण युग तरुण मंडल की ओर से आयोजित किया गया।
1: और देखिए इसी बीच जीएनटी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको बस करना सिर्फ इतना सा है कि आप अपने घर में पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोज भी भेज रहे हैं। इंदौर से 2 बच्चों ने अपने हाथ से गणपति बनाकर हमें भेजा है। अंजलि और अनिकेत ने ये वीडियो बनाया है। इन्होंने मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा बनाने की कार्यशाला में हिस्सा लिया था और गणपति की मूर्ति बनाई थी। बनाई गई मूर्ति को बाद में इन्होंने अपने घर लाकर स्थापित किया। इनकी बनाई गई गणपति की मूर्ति बेहद सुंदर और मनमोहक लग रही है।
4: ये चेन्नई की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
5: बिल्कुल, तो चेन्नई से अपर्णा ओझा ने अपने घर स्थापित गणपति की तस्वीर शेयर की है। इसमें वो गणपति की पूजा कर रही हैं। पूरा परिवार गणपति की आराधना में डूबा हुआ है। जब से इनके घर बप्पा का आगमन हुआ है पूरे घर में खुशियां ही खुशियां हैं।
0: और बिल्कुल देखिए बेंगलुरु से जेएनटी दर्शक ने भी गणपति उत्सव की खुशियां हमारे साथ साझा की है। अनिल कुमार शुक्ला और नंदनी ने जो तस्वीरें भेजी है उनमें वो बप्पा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। घर में उत्सव की रौनक है और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। पापा आते हैं और अपने साथ ढेरों खुशियां लाते हैं। ये तस्वीर इसी की गवाह है। देखिए गणपति जीएनटी पर पधार चुके हैं जैसा कि आपको पता है, और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा का जरूर वो विराजमान हो चुके होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति के उत्सव में हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोज स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
4: बिल्कुल, नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो या फिर तस्वीर भेजने के लिए है। और जब भी आप अपना वीडियो या फिर फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम, शहर का नाम, गांव या फिर कस्बे का नाम जरूर लिखें।
0: और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों 5,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक को सड़कों पर मांगनी पड़ गई भीख।
8: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुननी।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: क्या सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: मुंबई समेत देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के डगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष का पाठ, भगवान गजानन की महाआरती में देखे भक्ति के रंग। इंदौर में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं का अनोखा संग्रह, भक्त ने बनाया 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय, विदेशों से भी जुटाई गजानन की मूर्ति। भोले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा के दर्शन, शेर वाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना जारी। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से पवित्र चारधाम यात्रा जारी, बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब में भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मौसम की चुनौतियों के बीच में चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर, आज से फिर से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, 30 सितंबर तक करीब 9,000 टिकट बुक। लंदन में दिखी वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी के किनारे भव्य आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
4: देखिए हम बैठे हुए हैं गणपति के सामने, लेकिन बात करेंगे हनुमान अंश की। तो कम बजट में हालांकि ये मूवी बनाई गई, लेकिन कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जिसने फिल्मी दुनिया के जानकारों को हैरान कर दिया है। तो अब हनुमान अंश की कामयाबी के बाद इसके मेकर्स ने जिस अगली फिल्म का ऐलान किया है उसके नाम ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।
5: नाम है रामबोला। नाम सामने आते ही कहानी में ट्विस्ट आ गया और इसकी वजह है इसी नाम से एक और फिल्मकार ने भी अपनी फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया है, यानी एक ही टाइटल और दो दावेदार। अब सवाल यहाँ पर यह है कि रामबोला टाइटल किसका है और इस नाम के पीछे छिपी कहानी क्या है।
6: हनुमान अंश पर कृपा थमने का नाम नहीं ले रही। फिल्म कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बना चुकी है जिसने बड़े बड़े फिल्मी पंडितों को दंग कर दिया है। 2 करोड़ के बजट से बनी फिल्म अब तक 223 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर चुकी है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 277.80 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। छठे सोमवार यानी रिलीज के 39वें दिन भी फिल्म में करीब 8.25 करोड़ रुपए का कारोबार किया। हनुमान अंश की इसी कामयाबी से उत्साहित होकर फिल्म के लेखक और निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। प्रोड्यूसर महावीर जैन के साथ मिलकर बनने वाली इस फिल्म का नाम है रामबोला। लेकिन इस नाम के सामने आते ही कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ महावीर जैन फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर रामबोला फिल्म की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ फिल्मकार डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने भी इसी नाम से अपनी फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया और इसी के साथ रामबोला टाइटल को लेकर जंग छिड़ गई है। दरअसल रामबोला टाइटल के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास का शुरुआती नाम रामबोला था, वही तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। मान्यता है कि तुलसीदास को प्रभु हनुमान के दर्शन हुए थे और उन्हीं के आदेश के बाद रामबोला ने भगवान राम की कथा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। यानी रामबोला सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि तुलसीदास के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहचान है। फिलहाल विवाद इस बात को लेकर है कि आखिर रामबोला टाइटल पर पहला हक किसका है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का कहना है कि ये टाइटल उनके पास रजिस्टर्ड है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस फिल्म को लेकर महावीर जैन से पहले भी बातचीत होती रही है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी के मुताबिक उन्होंने मार्च में ईमेल के जरिए फिल्म से जुड़ी जानकारी भी भेजी थी, जिसमें करीब 8 मिनट का ऑडियो वीडियो भी शामिल था। रामबोला का नाम आते ही फिलहाल तो एक नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी महावीर जैन की ओर से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: दौलत, रसूख और करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। घाटकोपर ईस्ट के विधायक पराग शाह की पहचान कुछ ऐसी ही है, लेकिन एक दिन यही शख्स ना विधायक था ना करोड़ों का मालिक, ना साथ में सुरक्षा कर्मियों का घेरा हुआ करता था। मुंबई की सड़कों पर ये विधायक हाथ फैलाए दिखे।
7: देखिए, ये कोई फिल्मी दृश्य, चुनावी स्टंट नहीं था। ये अहंकार को शून्य करने की एक सच्ची आध्यात्मिक साधना थी। इस प्रयोग से संदेश मिला कि पद और संपत्ति केवल बाहरी आवरण है, सच्चा इंसान वही है जो जमीन की हकीकत को महसूस करे और अपने भीतर के अहंकार को विसर्जित कर सके।
8: जिस शख्स के पास करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति हो, जिसके आगे पीछे सुरक्षा का घेरा हो, वही शख्स अगर एक दिन सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आए तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह ने ये किया, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने के लिए। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के आध्यात्मिक गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें एक अनोखी सीख दी। गुरु ने कहा कि एक दिन अपना पद, पैसा और पहचान सब छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जी कर देखिए। पराग शाह ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की। महंगी गाड़ियां, घड़ी, सुरक्षा और विधायक का रुतबा सब पीछे छूट गया। मेकअप के जरिए बदला हुलिया और फिर वही विधायक घाटकोपर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। घंटों तक सड़क पर रहने के दौरान पराग शाह ने उस जिंदगी को महसूस किया जिसे समाज का गरीब तबका रोज जीता है। भूख, इंतजार, लोगों की बेरुखी और कभी कभार किसी अनजान शख्स की मदद।
9: ओ, रिक्शा 8 मिनट देवाना, नजर ट्रैफिक करता है।
8: किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने खाने का टुकड़ा, तो किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
9: अरे वाह।
8: लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था, जिस पहचान के दम पर दुनिया आपको सम्मान देती है, वही पहचान छिन जाए तो इंसान के पास बचता क्या है।
9: देवा, देवा।

0: शाम को मेकअप उतरा, पहचान वापस आई, लेकिन शायद नजरिया बदल चुका था। पराग शाह दोबारा उन्हीं लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन की इस फकीरी ने उन्हें एहसास कराया कि दौलत और पद इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अहंकार छोटा ही करता है। इस अनोखे प्रयोग की सबसे बड़ी सीख है इंसान की असली पहचान। उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है इससे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए बात मौसम की करते हैं। मॉनसून जाते जाते उत्तर भारत को एक और खूबसूरत सौगात देने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक झमाझम बारिश होने वाली है। यानी दिल्ली NCR सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड का मौसम सुहाना होने वाला है।

0: सितंबर का आधा महीना बीत चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे चुभती और जलती गर्मी का दौर भी खत्म होने वाला है। हवाओं में हल्की गुलाबी ठंडी की आहट है और मानसून की विदाई का वक्त आ गया है। लेकिन जाते जाते मानसून उत्तर भारत को अपनी एक और खूबसूरत सौगात देने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पर सितंबर का मध्य आते आते मानसून अलविदा कहने लगता है, लेकिन इस बार मानसून जाते जाते भी माहौल को पूरी तरह खुशनुमा बनाने के मूड में है। IMD यानी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बदरा जमकर बरसने वाले हैं। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 16 से 18 सितंबर के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। इनमें दिल्ली NCR, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक शामिल हैं। मौजूदा समय में भी दिल्ली NCR के मौसम का मिजाज कुछ मिला जुला सा है। कभी हल्की धूप है तो कभी हल्की बारिश के फुहारों ने मौसम का पारा गिरा दिया है। अब 16 और 17 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में झमाझम बारिश की संभावना है। हालांकि पहाड़ों में बारिश के बाद नदियों में पानी तेज बहाव से बह रहा है, ऐसे में किनारे और पहाड़ी रास्तों पर सुरक्षा के लिहाज से थोड़ी सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। बारिश का ये खुशनुमा दौर मानसून का सबसे हसीन विदाई गिफ्ट साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात बिहार के कटिहार जिले के 7 प्रखंड की, जो कि बाढ़ से इस वक्त प्रभावित है। प्रभावित गांवों में चारों तरफ पानी है, घर, रास्ते, स्कूल सभी पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई जारी है। रघुनाथपुर में प्राइवेट कोचिंग चलाने वाले शिक्षक मोहम्मद साहब नाव पर ही बच्चों की पाठशाला चलाते हैं। पहले वे बच्चों को उनके घर से लेते हैं और पढ़ाई के बाद सभी को सुरक्षित उनके घर पहुंचा देते हैं। टीचर की इस पहल से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी खुश हैं। तो चलिए अब तक ये छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसा नजर आया आसमान जब चांद के करीब आया शुक्र।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: क्या सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: ब्रिक्स समिट के मंच पर दुनिया के बड़े नेता जुटे, लेकिन समिट हॉल के बाहर निकले तो भारत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कूटनीति से कहीं आगे है। ब्रिक्स देशों और पार्टनर देशों से आए कंटेंट क्रिएटर्स ने केरलम का रुख किया, जहां कैमरों में कैद हुई भारत की संस्कृति, रंग, स्वाद और मेहमान नवाजी की एक अलग कहानी।
8: इस दौरे में करीब
4: 35 कंटेंट क्रिएटर्स ने केरलम को करीब से जाना और अपने अनुभवों को कैमरे के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। तिरुवनंतपुरम से लेकर कोवलम तक क्रिएटर्स ने केरलम की कला, शिल्प, खानपान और रोजमर्रा की जिंदगी को महसूस किया। कोवलम के केरलम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज में उन्होंने स्थानीय कलाकारों के साथ मुलाकात की। अलग अलग देशों से आए क्रिएटर्स ने केरलम की परंपरा और संस्कृति की जमकर तारीफ की। कल आसमान में एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। पतले से अर्धचंद्र के बिल्कुल पास चमकता हुआ शुक्र ग्रह नजर आया। आसमान में चांद और शुक्र की ये जोड़ी लोगों का ध्यान खींचती रही।
1: बिल्कुल, देखिए खगोल विज्ञान के मुताबिक ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक खास खगोलीय घटना थी। इस दौरान धरती से देखने पर चांद और शुक्र एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे थे। इसे चंद्र शुक्र युति कहा जाता है। शुक्र ग्रह अपनी तेज चमक की वजह से रात के आसमान में आसानी से नजर आता है और यही वजह है कि पतले चांद के पास चमकता शुक्र किसी चमकते तारे जैसा दिखाई दिया। लोगों ने इस खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में भी कैद किया।
4: फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मार इसके ऊपर।
2: अब आपको एक अद्भुत तस्वीर हम दिखाते हैं जो कि 7 समंदर पार से आई है। जी हाँ, आस्था की अनोखी तस्वीरों का दीदार आपको करा रहे हैं। लंदन में वाराणसी की तर्ज पर टेम्स नदी के किनारे गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस आरती में हजारों लोग शामिल हुए। भजन और मंत्रों के जाप के साथ हुई आरती ने टेम्स के किनारे वाराणसी के घाटों जैसी झलक पेश की। भव्य आरती के जरिए नदी, प्रकृति और जीवन के लिए आभार जताया गया। कार्यक्रम में भजन, मंत्रोच्चार और संगीत प्रस्तुतियां हुई। बड़ी संख्या में लोगों ने आरती में हिस्सा लिया और दिए जलाकर नदी के लिए सम्मान जताया।

0: देखिए जीएनटी पर लगातार हम आपको बप्पा के दर्शन करा रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में उत्सव का माहौल है, लेकिन जो रंग आस्था के रंग जीएनटी पर है वो शायद कहीं है नहीं।
1: बिल्कुल, चलिए जाते जाते एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं। गणपति बप्पा
2: मोरया,
1: मंगल मूर्ति
2: मोरया।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है वायरल तस्वीरें आप सबके सामने रखने का, क्योंकि इनमें ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको हंसाएंगी और गुदगुदाएंगी। इतने प्यारे बाल गणेश, जिसने भी देखा बप्पा का ये रूप देखता ही रह गया। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन मेकअप और रूप ऐसा कि मानो खुद बाल गणेश सामने आ गए हों। चेहरे की मासूमियत और बप्पा वाला रूप देखते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इस नन्हे से बच्चे का ये अद्भुत रूप लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जिसने भी देखा बस यही कहा, गणपति बप्पा मोरिया। कठपुतली का खेल आपने अक्सर देखा और सुना होगा, लेकिन इस कलाकार की कलाकारी जरा देखिए। गाने की धुन बजती है और उसके साथ ही कठपुतली ऐसे थिरकने लगती है जैसे उसे हर सुर का पता हो। कलाकार अपने हुनर से कठपुतली के हर कदम को इतनी खूबसूरती से कंट्रोल कर रहा है कि देखने वाले बस देखते रह गए। आसपास मौजूद लोग भी इस अनोखी कला को देखकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। जंपी हो रही है और हो भी क्यों ना, काम का प्रेशर जो इतना रहता है। अब देखिए इस प्यारे बच्चे को आराम से बैठकर बिना किसी चिंता के अपने सिर की मालिश का पूरा आनंद ले रहा है। जैसे जैसे जंपी हो रही है, बच्चे के चेहरे पर सुकून और खुशी भी बढ़ती जा रही है। ना कोई टेंशन, ना कोई जल्दबाजी, बस आराम ही आराम। बच्चे के इस अंदाज को देख कर शायद आपका भी मन करेगा कि एक जंपी तो बनती है। मौसम चाहे जैसा हो, बस निकल पड़ो अपने रास्ते पर। अब इन आंटी को ही देख लीजिए, अपने स्कूटर पर सवार होकर बड़े आराम से निकल पड़ी हैं। मौसम भी सुहाना है और रास्ता भी इतना खूबसूरत कि सफर का मजा दोगुना हो जाए। आंटी भी बिना किसी चिंता के अपनी स्कूटर राइड का जमकर आनंद ले रही हैं। चेहरे पर खुशी, रास्ते पर मस्ती और मौसम का साथ, यानी सफर छोटा हो या बड़ा, एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए। लद्दाख का ये वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे और उनका इतना प्यारा डांस की नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। डांस के हर स्टेप में क्यूटनेस है, चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में मासूमियत। इन नन्हे बच्चों की खुशी देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे ये बच्चे जब साथ में थिरकते हैं तो पूरा माहौल ही खूबसूरत हो जाता है। सच में ये नन्हे सितारे किसी परी की कहानी से कम नहीं लग रहे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: मुंबई समेत देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला। जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। पुणे के डगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्व शीर्ष का पाठ। भगवान गजानन की महाआरती में दिखे भक्ति के रंग। इंदौर में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं का अनोखा संग्रह, भक्त ने बनाया 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय। विदेशों से भी जुटाई गजानन की मूर्ति।
5: भोले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा के दर्शन, शेर वाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना भी जारी। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से पवित्र चारधाम यात्रा जारी, बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब में भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मौसम की चुनौतियों के बीच में चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर, आज से फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, 30 सितंबर तक करीब 9,000 टिकट बुक। लंदन में दिखी वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी के किनारे भव्य आरती हुई, बड़ी संख्या में शामिल हुए इसमें।
0: गुड़ नीच चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर

0: तो चलिए आप भी सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मैं हूं शगुप्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के तमाम रंगों की। आज गणेशोत्सव का दूसरा दिन है, शहर शहर गजानन की आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। देश भर में गणपति पंडाल सज गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात उत्तर की हो, चाहे बात दक्षिण की हो, या फिर आपको साउथ की तरफ लेकर चलें, किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे आपको ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि गणपति उत्सव अपने चरम पर है। तो बप्पा को सजा दिया गया है, पंडाल भी बिल्कुल तैयार है। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप और स्वरूप हमें नजर आ रहे हैं। कहीं विघ्नहर्ता का खंडोबा अवतार दिखाई दे रहा है, तो कहीं गणपति धनपति रूप में विराजे हैं। एक पंडाल में तो बप्पा बच्चों के मनपसंद कैंडी रूप में ढले नजर आ रहे हैं, तो कहीं मां भवानी के लाडले पिता भोलेनाथ के साथ दिव्य दर्शन दे रहे हैं। अलग अलग रूपों के साथ गणपति बप्पा सोशल मैसेजिंग के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सूरत के साइबर थाने में बप्पा साइबर विघ्न हर कर डिजिटल सुरक्षा का आशीर्वाद देने पहुंचे। पुणे में तो भक्तों ने बप्पा की प्रतिमा को करोड़ों रुपयों के ऐतिहासिक स्वर्ण आभूषणों से सजा दिया। अब यूं समझिए कि गणपति उत्सव ने देश के अलग अलग हिस्सों को भक्ति, उत्साह और उमंग के एक रंग में रंग दिया हो। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सजे भारत के सबसे भव्य गणेश पंडालों की यात्रा पर। और शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां साकीनाका के राजा का भव्य दरबार सजा है और 43 फीट के बप्पा खंडोबा रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के उपनगर के नगरी में और यहां के सबसे बड़े बप्पा का आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैं इस समय मौजूद हूं साकीनाका के महाराजा के दरबार में और उपनगर मुंबई से सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हें मानी जा रही है। और जो जानकारी है और जो देख हम पा रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के खंडोबा जो सबसे बहुत ज्यादा माने जाते हैं, चर्चित हैं, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, उनके अवतार में गणपति बप्पा यहां पर विराजमान किए गए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, देखिए उनका जो ये पैर है ना, ये पैर आप देख रहे हैं, पैर उसके ठीक मैं नीचे हूं, मेरी हाइट उनके पैर तक भी नहीं पहुंच पा रही है। और फिर से मैं वीडियो जल्दी स्वागत से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कितने ऊंचे हैं बप्पा। 43 फीट ऐसे ही नहीं होता, सोचिए जब आगमन हुआ होगा तो कितने ख्याल रखने के साथ साथ और कितनी व्यवस्था के साथ बप्पा को यहाँ पर लाया गया होगा। हालांकि बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, फिर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, लेकिन अब यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और साकीनाका के महाराजा का ये दरबार है, खंडोबा के अवतार में पहुंचे हुए शिवलिंग के साथ में विराजमान है। महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति दिखाते हुए उनकी ये उनके सर पे आप देख रहे हैं पगड़ी है बकायदा, और इसके अलावा त्रिशूल है, डमरू है, तलवार है। साथ ही साथ ये जो आसपास का परिसर है, जो डेकोरेशन है, चलचित्र जिसे यहां कहते हैं, वो भी उन्हीं पर आधारित है। उनकी ही मंदिर की तस्वीरें जो है यहां पर लगा रखी है। और थोड़ा सा अब देखें, और वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी उस मूर्तिकार की जिन्होंने इतना भव्य ये मूर्ति बनाया है। सोचिए किस विशेष व्यवस्था के साथ यहाँ पर लाया गया होगा। 12वें दिन इनका विसर्जन होने वाला है और देखिए तमाम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। जहां अभी आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ भक्त हैं। थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्पेशली ये जो गणेश उत्सव होता है वो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो जाते हैं, देखते हैं। ये देखिए तमाम लोग, गणपति बप्पा, आवाज नहीं आई, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, कैसे लगे बेटा पप्पा?
2: बहुत अच्छे।
0: चलिए अब आपको मुंबई से लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां भक्तों के प्यारे बप्पा कैंडी वेश में पधारे हैं। हैदराबाद में कैंडीज, टॉफी और चॉकलेट से बप्पा का यह अनोखा स्वरूप तैयार किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं मोदक प्रिय का कैंडी अवतार कैसा है।
3: ये मोदक प्रिय का कैंडी स्वरूप है। हैदराबाद से आई तस्वीर में आपको शहर के सबसे अनोखे गणपति के दर्शन होंगे। हैदराबाद के भक्तों ने हजारों कैंडी और टॉफियों को जोड़कर बप्पा का ये अद्भुत स्वरूप तैयार किया है। न केवल बप्पा कैंडी अवतार में विराजे हैं, बल्कि पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडी की थीम पर ही की गई है। ऐसा लगता है बप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष पंडाल में उतर आया हो।
4: साल गणेश जी का थीम आके कैंडी गणेश का लगा है, साल पूरा पूरा टोटल थीम आके कैंडीज, वेरायटी वेरायटी कैंडीज लगा है पूरा। हम लोग डेकोरेशन भी टोटल देख लेते, देखे तो पूरा कैंडीज दिखेंगे आपको, पूरा पूरा बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए और बच्चे भगवान के समान बोलते ना, वो हिसाब से हम लोग बच्चे के हिसाब से देख लेके वो थीम के हिसाब से हम लोग गणेश जी को डेकोरेट करें पूरे साल।
3: हैदराबाद का ये मंडल पिछले 18 सालों से गणपति स्थापना कर रहा है। हर बार पंडाल की थीम कुछ अलग कुछ खास होती है, लेकिन इस बार की थीम ने तो बप्पा के जूनियर भक्तों का दिल ही जीत लिया है। वैसे ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चे युवा बुजुर्ग सभी के मन को भा रहा है। कैंडी वाले बप्पा के पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं है, जहां आस्था के साथ साथ बप्पा के आशीष की छाव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बप्पा के अनोखे पंडालों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वरूप बहुत निराले हैं और पंडालों की इस यात्रा में अब आपको लेकर चलते हैं हम विशाखापट्टनम, जहां महाशिव गणपति पूरी भव्यता के साथ विराजे हैं। ये देखिए बप्पा का ये स्वरूप हजारों छोटे बड़े जीवित पौधों से तैयार किया गया है। बप्पा की यह अनोखी प्रतिमा लगभग 18 फीट की है। विशाखापट्टनम के अनकापल्ली में प्रकृति और भक्ति का ये अद्भुत मेल दिखाई दे रहा है। इस सुंदर मेल के कारण ही इन्हें सस्य गणपति नाम दिया गया है। सस्य का अर्थ होता है वनस्पति या फसल। अनकापल्ली के श्री चिंतामणि गणपति दत्त क्षेत्र में बप्पा का ये भव्य रूप विराजित किया गया। बप्पा तो पौधों से बनाए ही गए हैं, साथ ही पंडाल के वातावरण को भी पूरी तरह से प्राकृतिक स्वरूप दिया गया, जिसमें पानी के सुंदर फव्वारे, पक्षियों की चहचहाट की आवाजें शामिल हैं। इस उत्सव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि त्योहार की समाप्ति के बाद मूर्ति में उपयोग किए गए सभी पौधों को भक्तों के बीच मुफ्त में वितरित कर दिया जाएगा, ताकि लोग उन्हें अपने घरों में लगा सके। इस पहल में न केवल आस्था शामिल है, बल्कि ये समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता का संदेश भी देती है। बप्पा के ये स्वरूप पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के विघ्न को हरने वाला स्वरूप है। देखिए विघ्नहर्ता के जितने नाम उतने ही स्वरूप। विघ्नहर्ता का ये स्वरूप जहां फिजिकल वर्ल्ड के विघ्नों को हरने वाला है, तो वहीं सूरत में बप्पा के ऐसे स्वरूप की स्थापना हुई जो हमारी डिजिटल लाइफ के विघ्नों को हरने का आशीर्वाद दे रहा है। सूरत के साइबर क्राइम थाने में साइबर विघ्नहर्ता बप्पा दर्शन दे रहे हैं।

0: की पार्वती पितामह।
1: नाम जिनका विघ्नहर्ता है वो अब जीवन के तमाम विघ्नों के साथ साथ आपकी डिजिटल लाइफ के विघ्न हरने का भरोसा भी दे रहे हैं। सुमुख जब स्वयं साइबर सेल प्रमुख की भूमिका में हो तो फिर साइबर सुरक्षा का आशीर्वाद कैसे नहीं मिलेगा। बापा का ये पंडाल सजा है डायमंड सिटी सूरत शहर के साइबर क्राइम पुलिस थाने में, जहां अनोखे अंदाज में भगवान गणेश की स्थापना साइबर विघ्नहर्ता के रूप में की गई है। इस अनोखे पंडाल में न सिर्फ संदेशों और प्रतीकों के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने का संदेश दिया जा रहा है, बल्कि अनोखे स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
2: जिस तरह के फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उस फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम की हमारी टीम ने एक साइबर गणपति, साइबर विघ्नहर्ता की स्थापना 5 दिन के लिए करी है। गणपति बापा खुद आपको साइबर क्राइम से कैसे बचना है उसके लिए जानकारी दे रहे हैं, और गणपति बापा अगर खुद आपको बताएंगे तो लोगों में ये मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा कि हमें साइबर क्राइम से कैसे बचना चाहिए। पूरा एक पंडाल साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर बनाया गया है और गणपति बापा खुद यहाँ पे सभी भक्तों को उनके जो प्रश्न है साइबर क्राइम के बारे में उनका खुद आंसर भी बता रहे हैं, और जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे साइबर क्राइम से कैसे बचना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वो सीख भी रहे, और जब वो यहाँ से आरती करके दर्शन करके निकलेंगे तो यहाँ पे साइबर क्राइम से बचने के लिए और क्या करना चाहिए उसका संकल्प भी लेके जा रहे हैं।
1: सूरत शहर के इस साइबर क्राइम पुलिस थाने में भगवान गणेश को साइबर विघ्नहर्ता के रूप में 5 दिनों के लिए विराजमान किया गया है। अपने अलग अलग अवतारों में गजानन ने क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर जैसे जाने कितने ही दानवों का संहार किया, और अब साइबर विघ्नहर्ता के रूप में वे डिजिटल बुराइयों का नाश करने उतरे हैं। सूरत पुलिस की ये पहल धार्मिक आयोजन के साथ साथ जन जागरूकता को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए गुजरात के बाद रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की तस्वीरें भी भव्यता के साथ भरपूर हैं। वो तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई, जहां मोगरेश्वर गणपति का दरबार सज चुका है। ये तस्वीरें आई हैं अंधेरे में मौजूद मोगरेश्वर के राजा की। इस पंडाल में गणपति बेहद भव्य और दिव्य स्वरूप में स्थापित किए गए हैं। खास बात यह है कि इस पंडाल में गणपति से जुड़ी पौराणिक कहानियों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शाया जा रहा है। महादेव के विवाह की कथा, गणपति के जन्म की कहानी जैसे कितने ही पौराणिक प्रसंग आपको यहाँ वीडियो, फिल्म और झांकी के रूप में दिख जाएंगे। दरअसल वैदिक आदर्शों और पीढ़ियों से चली आ रही इन पौराणिक कहानियों में बप्पा के जीवन से जुड़ी जितनी ही कहानियां हमारे लोक जीवन में उतरी हैं। समय के साथ विकसित होती धार्मिक कथाओं, वैदिक प्रतीकवाद के बीच में गौरी नंदन के आदर्श भक्तों के बीच प्रचलित होते चले गए। आज आप गणेशोत्सव पर सजे पंडालों में इन्हें जीवंत स्वरूप में देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मुंबई से सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली के महाराज का भव्य दरबार आपको दिखाते हैं, जहां गणपति के साथ उनके पिता महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन हो रहे हैं।

0: धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई तो शहर शहर बाप्पा के भव्य और अनोखे पूजा पंडाल सज गए, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और भव्यता की वजह से लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं, बल्कि अपनी अनोखी थीम की वजह से आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। ऐसा ही एक गणेश पंडाल राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सजा है, जहां लोगों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका भी एक छत के नीचे देखने को मिल रही है।
1: इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में हैं और एक बहुत ही शानदार पंडाल में आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी तैयार किए गए हैं। मैं आपको तस्वीर उसी की दिखा रहा हूँ और किस तरह से हम पंडाल के अंदर मौजूद हैं। और जब आप अंदर आएंगे तो सामने आपको न सिर्फ बप्पा के दर्शन होंगे बल्कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। अभी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भीमा शंकर की, और नीचे इस तरह से जो शिवलिंग है उसको रखा गया है। ऐसे ही आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग क्या है, कहाँ पर है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें ज़्यादा पता नहीं है, वो यहाँ पर आकर ना सिर्फ देखेंगे बल्कि जानकारियाँ पढ़कर बहुत कुछ धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में वो जान भी पाएंगे। ये हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ पर, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरह का शिवलिंग है, ठीक उसी तरह का शिवलिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको तमाम दूसरे शिवलिंग यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। ये त्र्यंबकेश्वर है, वो बैद्यनाथ मंदिर का है, उस तरफ महाकालेश्वर है। ऐसे ही तमाम सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उन सब के दर्शन आपको यहाँ पर होने वाले हैं।
0: राजधानी के इस गणेश पंडाल में भक्ति भाव के साथ साथ भारत की विकास यात्रा और 2047 के भारत की झांकी को भी दिखाया गया है। दरअसल दिल्ली के लक्ष्मी नगर का श्री गणेश सेवा मंडल इस साल अपना 25वां गणेशोत्सव मना रहा है, इसलिए आयोजकों ने कुछ अनोखा करने की ठानी और इस बार महोत्सव की थीम विघ्नहर्ता से विकासकर्ता रखी गई। इस थीम के तहत यहां आपको भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के संवाहक भी दिखेंगे, तो वहीं नई तकनीक और वैज्ञानिक दक्षता का झरोखा भी यहां ब्रह्मोस, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप के रूप में दिखेगा। गांव के विकास की झांकी से लेकर AI रोबोट्स तक और बुलेट ट्रेन से लेकर इसरो के चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान तक यहाँ हर दृश्य जीवंत है। यानी एक तरफ महादेव और गौरी नंदन तो दूसरी ओर देश के विकास का वंदन। बाप्पा के इस पंडाल में आपको सब कुछ एक साथ नजर आएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो गणपति के पंडालों में समृद्ध होते भारत की झांकी आपने देखी। अब आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां ऐतिहासिक आभूषणों से सजी गौरी नंदन की झांकी आपको इस शहर की समृद्ध विरासत की कहानी सुनाएगी। अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति के रूप में पहचान रखने वाले पुणे के ओझर के श्री विघ्नहर गणपति का बेहद अलौकिक और राजशाही रूप गणेशोत्सव के दौरान भक्तों के सामने आया है। विघ्नहर बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक पहनाई गई और करीब 200 साल पुराने करोड़ों रुपए मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बप्पा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वस्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर गणपति का ये शाही रूप देखते ही बन रहा है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको मुंबई के साकी नाका में गणपति के खंडोबा स्वरूप के दर्शन करवाए। साकी नाका में ही बप्पा

0: इंतजार के बाद आता है गणपति उत्सव, वो समय जब गजानन अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। भक्तों के मन के साथ साथ शहर शहर पंडालों, मंदिरों और घरों में विराजते हैं। भक्तों की भावना के आधार पर अनगिनत रूपों में ढल जाते हैं। इस बार भी बप्पा के भक्तों ने उन्हें अलग अलग रूपों में स्थापित किया है। बप्पा का एक ऐसा ही भव्य रूप सजा है मुंबई के साकीनाका में। साकीनाकायचा विघ्नहर्ता अब की बार विठल रूप में पधारे हैं। मानव शरीर वाले गरुड़ के ऊपर बप्पा के चरण टिके हैं। स्वरूप भले ही जो हो, लेकिन साकीनाका के विघ्नहर्ता को मुंबई प्यार से गोड बप्पा के नाम से बुलाती है। गोड बप्पा यानी प्यारे या मीठे। दरअसल साकीनाका के विघ्नहर्ता की प्यारी और निश्चल मुस्कान के चलते उन्हें भक्तों ने प्यार से गोड बप्पा नाम दिया है।
1: आपको बताएं कि मैं जिस जगह मौजूद हूं, साकीनाका का विघ्नहर्ता के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। पहले आप सीधे गणपति बप्पा का दर्शन ही कर लें। देखिए, ये उपनगर मुंबई की एक बहुत ही ज्यादा उन लिस्ट में नाम शामिल हैं जो बड़े प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं, और कितने सुंदर तरीके से इस समय यहाँ पर विराजमान की गई है। खास बात यह है कि मानव गरुड़ पर बप्पा विराजे हैं, विट्ठल के अवतार में हैं, और हाइट देख के लग रहा है कि लगभग 33 फीट होगी। बैलेंस का पूरा ये मामला है, और सोचिए मूर्तिकार कितने ज़्यादा सीरियस होंगे और कितना मेहनत उन्हें की होगी और कितने एक्सपीरियंस हैं वो कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है बप्पा की, इतना बड़ा आकार उन्होंने दे दिया है। विट्ठल का अवतार है और एक पैर पर गरुड़ पर खड़े हुए हैं, बेहद सुंदर लग रहे हैं, और तमाम जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बप्पा का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह से मुंबई के कई पंडालों में बड़ी बड़ी जो गणपतियां होती हैं विराजमान की जाती है, बहुत मेहनत इस पर हुई है।
0: साकीनाका के विघ्नहर्ता की ये प्रतिमा हर किसी का मन मोह रही है। करीब 33 फीट के बप्पा की ये प्रतिमा हफ्तों की मेहनत से तैयार हुई है।
1: गोड़ गणपति के नाम से प्रसिद्ध है
2: जी, जरूर। गोड़ गणपति, आप इनकी खूबसूरती देख सकते हैं, जिस तरह से अंदाज में जो खड़े हैं, और जिनकी जो खूबसूरती की जो सीधे दिवाली, जो सबसे मुंबई के लगभग सबसे बड़े मूर्तिकार है, उन्होंने अपनी पूरी जी जान से इस मूर्ति को गढ़ाने में कोशिश की है। जिस तरह से आप इनकी सुंदरता के लिए लोग दीवाने हो गए, जब आगमन की जिस दिन हमारा आगमन हुआ, उस दिन लाखों लोगों का सैलाब इस रास्ते पे बह रहा था कि लोग सोच नहीं पाए कि इतनी खूबसूरत मूर्ति, क्योंकि बेसिकली ये मूर्ति ये हाइट और इनकी खूबसूरती परेल दादर की एक नहीं पहचान थी, लेकिन अभी साकीनाका में भी इस मूर्ति के माध्यम से हमने दिखा दिया है कि साकीनाका भी आने वाले वक्त में लालबाग परेल से भी आगे चला जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे कि इस मंडल की खासियत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम एकजुट रह के इस मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्यार का, भाईचारे का एक प्रतीक भी इसी मंडल के माध्यम से जाएगा।
0: पिछले 42 सालों से साकीनाका के विघ्नहर्ता हर गणेशोत्सव पर यूं ही अपनी अलौकिक छटा के साथ विराजते आ रहे हैं। अब की बार भी साकीनाका के इन गणपति को तैयार करने में हर समाज, हर तबके से जुड़े लोगों की भागीदारी रही है। वास्तव में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का मतलब सिर्फ बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना भर नहीं, बल्कि ये पर्व आस्था, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव का भी उत्सव है। साकीनाकाच्य विघ्नहर्ता यही संदेश देते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, गणपति की भक्ति का रंग पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, वो तस्वीरें तो आपको दिखाई रहे हैं। गणेशोत्सव के दूसरे दिन गजानन से जुड़ी हुई एक तस्वीर आई है पुणे से सामने, जो आपके सामने रखते हैं। पुणे में गणेश नाम का जय घोष सुनाई दिया। पुणे में आयोजित समारोह में ऊर्जा से भरे माहौल के बीच में हजारों महिलाओं ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। पुणे में करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। गणेश नाम के जय घोष, अथर्वशीर्ष पाठ और महाआरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यह आयोजन ऋषि पंचमी के अवसर पर श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्ण युग तरुण मंडल की ओर से किया गया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: क्या सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, GNT पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्व शीश पाठ, भगवान गजानन की महाआरती में देखे भक्ति के रंग। इंदौर में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं का अनोखा संग्रह, भक्त ने बनाया 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय, विदेशों से भी जुटाई गजानन की मूर्ति। बोले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा के दर्शन, शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से पवित्र चारधाम यात्रा जारी, बद्रीनाथ में करीब 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, हेमकुंड साहिब में भी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मौसम की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर, आज से फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, 30 सितंबर तक करीब 9,000 टिकट बुक। लंदन में देखिए वाराणसी की झलक, गंगा आरती की तर्ज पर टेम्स नदी के किनारे भव्य आरती, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: धर्मनगरी काशी में भी स्थापित की गई लालबाग के राजा की रेप्लिका, बप्पा के दर्शन को बढ़ रहे भक्त। मुंबई में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर ने ही बनाई है ये 6 फीट भव्य प्रतिमा। पंडा नोही बप्पा का पांच दिन की स्थापना, पांच दिन तक होगा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। लालबाग के राजा के दरबार की तर्ज पर ही सजा है वाराणसी का पंडाल, स्कूली बच्चे भी बप्पा के दर्शन को मर रहे हैं। बप्पा की विसर्जन यात्रा में ढोल ताशा मंडली भी मुंबई से ही बुलाई गई। पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई या गणपति के दरबार में देखा भक्ति का अनूठा संगम, 35,000 महिलाओं ने सामूहिक रूप से किया अथर्वशीर्ष का पाठ। गणेश नाम के जयघोष, अथर्वशीर्ष पाठ और भारती से पूरा वातावरण हुआ भक्तिमय। इंदौर में विघ्नहर्ता का अनूठा भक्त, 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय। देश से ही नहीं विदेश से भी जुटाई बप्पा की मूर्तियां, 23 साल की मेहनत से बनकर तैयार हुआ संग्रहालय। बप्पा के अलग अलग रूप वाली प्रतिमाओं को देखने दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं और प्रशंसा करते हैं। मुंबई में गणपति उत्सव पर दिख रहे हैं अलग अलग थीम वाले गणपति के सुंदर रंग, इसी कड़ी में ब्रिक्स समिट की थीम पर सजा बप्पा का दरबार। गणेश उत्सव की भव्यता के साथ देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि का भी किया गया है सुंदर प्रदर्शन, लोगों के लिए बन रहा आकर्षण का केंद्र। इस थीम आधारित सजावट में ब्रिक्स समिट से जुड़े दृश्य और प्रतीकों को भी दिखाया गया है बप्पा के, लगाया गया है उनको ब्रिक्स पर आधारित केक का भोग। गुजरात के राजकोट में देखिए आस्था की अद्भुत तस्वीरें, बारिश के बावजूद भारी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त। भारी संख्या में बप्पा के दर्शन और पंडाल की सुंदरता को निहारने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे बप्पा के भक्त। पुणे में गणेशोत्सव के दौरान विघ्नहर्ता बप्पा का हुआ अलौकिक श्रृंगार, करोड़ों रुपए के सोने के गहनों से सजे विघ्नहर्ता। बप्पा का ये दिव्य और भव्य रूप भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र, 200 साल से भी ज्यादा पुराने पारंपरिक और ऐतिहासिक गहनों से होता है श्रृंगार। बप्पा के सिर पर सजा भव्य नकाशी वाले सोने का मुकुट, माथे पर हीरा और चंद्रकूट की सजावट, सिर पर छत्र के साथ दिखते ही बन रहे हैं विघ्नहर्ता बप्पा की ये शाही रूप। गणपति बप्पा के पांच दिवसीय जन्मोत्सव के अवसर पर बप्पा को पहनाई गई पेशवा कालीन पोशाक, साल में सिर्फ 2 बार भक्तों को देखने को मिलता है बप्पा के ये अद्भुत रूप। इस मौके पर पूरे मंदिर परिसर की हुई भव्य सजावट, फूलों और रोशनी से जगमगा नजर आया गणपति का दरबार। बप्पा के रंग में रंगा पुणे, महागणपति के मुक्त द्वार दर्शन उत्सव की भव्य शुरुआत। महागणपति के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में राजण गांव पहुंच रहे श्रद्धालु, विघ्नहर्ता के अलौकिक का स्वरूप के हो रहे हैं दर्शन। चार दिनों तक चलेगा यह खास उत्सव, श्रद्धालु सीधे गणपति की मूर्ति को हाथ लगाकर कर सकेंगे दर्शन। दरवाजा है मुक्त द्वार का शाब्दिक अर्थ, इस उत्सव के दौरान भक्तों के लिए पूरी तरह खोल दिए जाते हैं मंदिर के दरवाजे। साल भद्रभद्र गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है उत्सव, भद्रभद्र द्वार यात्रा के नाम से मशहूर। गणेश चतुर्थी पर उज्जैन के प्राचीन चिंतामन गणेश मंदिर में गणेश उत्सव की रौनक जबरदस्त, भगवान को लगाया गया 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग। विनायकता के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे बड़ी संख्या में भक्त। सुबह पंचामृत अभिषेक के साथ बप्पा का मनमोहक श्रृंगार। अपने तीनों स्वरूप चिंतामन इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में विराजमान हैं। गणपति मान्यता है कि श्री राम लक्ष्मण और माता सीता ने की थी इस मंदिर की स्थापना। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में स्थापित की गई गणेश प्रतिमा 200 साल से जारी है शाही परंपरा। ढोल नगाड़े के बीच राजमहल पहुंची बप्पा की मूर्ति। राजमहल के भव्य दरबार हॉल में राजवी परिवार की मौजूदगी में राज पुरोहितों ने पूजा अर्चना की। राजगढ़ में 15 फीट ऊंचे चिंतामण गणेश मंदिर में आस्था का जनसैलाब। गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ढोल नगाड़ों के बीच हुई महाआरती। बप्पा को लगाया गया लड्डुओं का भोग। गणेशोत्सव के लिए मंदिर में की गई आकर्षक लाइटिंग। मध्य प्रदेश और राजस्थान के भक्तों की आस्था का केंद्र 164 साल पुराना मंदिर। हिमाचल प्रदेश गवर्नर कविंदर गुप्ता ने गणेश चतुर्थी पर की पूजा अर्चना, सुख समृद्धि की प्रार्थना। लालबाग चौराहे के दर्शन करने के लिए पहुंची भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की प्रार्थना के कमत था। हैदराबाद का एकर गणेश पंडाल बना। बच्चों की पहली पसंद टॉफी से तैयार की गई विघ्नहर्ता की प्रतिमा। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा की तर्ज पर किया गया यह प्रयोग। प्रतिमा में कई तरह की टॉफी और चॉकलेट्स का इस्तेमाल। मूर्ति की तरह ही पूरे पंडाल को भी बच्चों की यह थीम पर ही सजाया गया है। हर साल नई थीम पर सजाया जाता है गणेश पंडाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी अलग अलग थीम पर सजे गणेश पंडाल। दर्शन करने के लिए भक्तों की लगातार कतारें। बप्पा बैठाने के लिए बाजारों में भी गणेश प्रतिमाएं में लगातार डिमांड देखने को मिल रही है। हर तरफ के आकार और स्वरूप में नजर आ रहे हैं बप्पा। देशभर में गणेशोत्सव की रौनक। लालबाग चौराहा के दर्शन करने के लिए उमड़ रही है भीड़। बप्पा के भव्य स्वरूप और मुख दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें। मुंबई पुलिस और मंडल कार्यकर्ता संभाल रहे हैं व्यवस्था। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए चिंचपोकली चौराहा गणपति पंडाल में इकट्ठा हुए भक्त। 107 साल पुराना चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव में मंडल। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी मनाया जा रहा गणेशोत्सव। गुवाहाटी के फतालिस अंबारी में देखे बप्पा की भक्ति के रंग। गुवाहाटी के फतासिल अंबारी में गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन पूजा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुंबई में अंबानी परिवार में भी हुई बप्पा की स्थापना। फिल्मी हस्तियों समेत सियासी हस्तियों ने शिरकत की। राधिका मर्चेंट ने भगवान गजानन का स्वागत सम्मान एक सांस्कृतिक नृत्य के साथ किया। सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है वीडियो। नीता अंबानी ने किया मेहमानों का स्वागत। ऑरेंज साड़ी में सुंदर नजर आई नीता। अंबानी परिवार के गणपति उत्सव में कई संत भी मौजूद रहे और कैलाशानंद गिरी जी महाराज समेत कई संतों ने शिरकत की। बाबा नागेश्वर और बाबा रामदेव ने भी बढ़ाई गणेश उत्सव की शोभा इंटीरियर पहुंचे साथ। सैफ अली खान और करीना कपूर भी बप्पा के दर्शन करने के लिए परिवार संग एंटीलिया पहुंचे। करिश्मा कपूर भी नजर आए। अंबानी के घर पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी गणेश उत्सव में शामिल हुए। रितेश देशमुख भी पत्नी जनेलिया के साथ अंबानी के घर पहुंचे। अनिल कपूर भी अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में शामिल हुए। पत्नी के साथ सुनील शेट्टी भी नजर आए। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल भी पहुंचे अंबानी हाउस, गणेश उत्सव में शामिल हुए। बीजेपी नेता और अभिनेता रवि किशन ने भी अपने घर बप्पा का स्वागत किया। मारती की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने भी अपने फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने फैंस को गणेश चतुर्थी पर बधाई दी। अभिनेत्री मिनी माथुर के घर भी हुई बापा की स्थापना स्थल पर तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने फैंस को पर्व की बधाई दी। अभिनेत्री जानवी कपूर ने भी अपने फैंस के साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां शेयर की, सभी को बधाई दी। एंडीज की बेहतरीन अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने भी पूरे भक्ति भाव के साथ गणेश उत्सव मनाया। सोशल मीडिया पर लिखा गणपति बप्पा मोरिया। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया। अपनी मां के साथ मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में तस्वीरें शेयर की। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी बप्पा के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा गणपति बप्पा मोरया। एक्टर कार्तिक आर्यन ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा घर से दूर हूं लेकिन बप्पा से नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी के घर भी विघ्नहर्ता का आगमन हुआ। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बप्पा की तस्वीरें शेयर की।

0: शारदा में यात्रा का दूसरा चरण शुरू। बद्रीनाथ धाम में रोजाना पहुंच रहे 4,000 से ज्यादा श्रद्धालु। अब तक 17,36,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। मौसम साफ होने के चलते संख्या में इजाफा होने की उम्मीद। मौसम साफ और सुहाना होने के चलते सैलानियों की भी बढ़ रही है भीड़। बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ। श्रद्धालुओं और सैलानियों की बड़ी संख्या में आने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। हेमकुंड साहिब में भी बढ़ रही भक्तों की संख्या। हर रोज बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 3,22,000 से ज्यादा भक्तों ने टेका मत्था। दिल्ली में छात्रों के लिए 10,000 बेड वाले हॉस्टल बनाने की तैयारी में सरकार। छात्रों की सुरक्षित और बेहतर व्यवस्था करने की उम्मीद। तेलंगाना लिबरेशन डे के अवसर पर हैदराबाद में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटी और बाइक रैली। महिलाओं ने भगवा पगड़ी पहनकर रैली में सरिया और नारी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। विनायक चतुर्थी के अवसर पर परमी नाक्षी अम्मन मंदिर में लगाई गई दुर्गा नाम की 5 वर्षीय माता। अम्मन मंदिर में दुर्गा है सबसे नई सदस्य। पार्वती नाम की एक मादा हाथी पहले से ही मौजूद है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक का नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में मंथन हुआ। राम मंदिर निर्माण की प्रगति, संग्रहालय के विकास और पुरातत्व अवशेषों पर होगी चर्चा। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने बनाया नुआखाई जुहार सैंड एनिमेशन। जैसलमेर पहुंची शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। राजस्थानी परंपरा में हुआ देशी विदेशी सैलानियों का भव्य वेलकम। तिलक और फूलमालाओं के साथ सांस्कृतिक नृत्य के बीच हुआ शाही स्वागत। जामनगर के 9 वर्षीय विहान चेतरिया ने रचा इतिहास। 6,111 मीटर ऊंचा माउंट यूनान किया फतह। 6,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए विहान। विहान ने विकाट एडवेंचर द्वारा आयोजित अभियान के तहत माउंट यूनान की चोटी पर फहराया तिरंगा। गोरखपुर की ड्रोन दीदी ने पेश की महिला सशक्तिकरण की मिसाल। कृषि में ड्रोन तकनीक का सहारा लेकर दे रही है पारंपरिक खेती का नई पहचान। खेतों में ड्रोन की मदद से लिक्विड फर्टिलाइजर के अलावा कीटनाशक का छिड़काव। असम में रोयांग नदी के किनारों पर खिले सफेद काश के फूल पतझड़ के आगमन का संकेत। नदी किनारे रुई जैसी सफेद चादर सा बना नजारा। बंगाल असम और झारखंड में दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारी मौसम की आहट माना जाता है फूलों का खिलना। कठुआ में दिखा आत्मनिर्भर भारत की झलक। मशरूम की खेती से सशक्त बन रही ग्रामीण महिलाएं। एम्स के डॉक्टर्स की शानदार पहल। दूर दराज के इलाकों में जरूरतमंद मरीजों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप्स का आयोजन। इस कैंप में दिल्ली के कई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया। लोगों को हर संभव मदद का भरोसा। गणेश चतुर्थी पर राम भक्तों को सौगात। फिल्म रामायण का पहला गाना जय जय राम रिलीज। या रहमान ने दिया है संगीत। डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखे हैं बोल। अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल ने दी अपनी खूबसूरत आवाज। हनुमानंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी अब एक और पौराणिक कहानी को बड़े पर्दे पर लाने की कर रहे हैं तैयारी। महावीर जैन फिल्म्स और विशाल चतुर्वेदी ने किया राम बोला का ऐलान। नए दारा स्टारर मुकुथी अम्मन 2 का टीजर राइज ऑफ महाशक्ति का रिलीज हुआ। बड़े पर्दे पर सुपर हीरो अवतार में नजर आएंगे आमिर खान, निर्माता साजिद नाडियावाला के साथ बातचीत। भारत अफगानिस्तान के बीच दूसरा T20 मैच आज, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। इस मैच में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में एक बदलाव तय है, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण वरुण चक्रवर्ती सीरीज से बाहर। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक अफगानिस्तान से एक भी मैच नहीं हारा है भारत। एशिया कप जीतकर घर लौटी चैंपियन बेटियां, दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। दिल्ली कैपिटल्स ने शुरू की आईपीएल 2027-28 की तैयारी, दिल्ली कैंप में युवराज सिंह, अमित मिश्रा और चामिंडा वास नजर आए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: देखिए, मानसून जाते जाते उत्तर भारत को एक और खूबसूरत सौगात देने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक झमाझम बारिश होने वाली है। यानी दिल्ली NCR सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड का मौसम सुहाना होने वाला है।

0: सितंबर का आधा महीना बीत चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे चुभती और जलती गर्मी का दौर भी खत्म होने वाला है। हवाओं में हल्की गुलाबी ठंडी की आहट है और मानसून की विदाई का वक्त आ गया है। लेकिन जाते जाते मानसून उत्तर भारत को अपनी एक और खूबसूरत सौगात देने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पर सितंबर का मध्य आते आते मानसून अलविदा कहने लगता है, लेकिन इस बार मानसून जाते जाते भी माहौल को पूरी तरह खुशनुमा बनाने के मूड में है। IMD यानी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बदरा जमकर बरसने वाले हैं। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 16 से 18 सितंबर के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। इनमें दिल्ली NCR, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक शामिल हैं। मौजूदा समय में भी दिल्ली NCR के मौसम का मिजाज कुछ मिला जुला सा है। कभी हल्की धूप है तो कभी हल्की बारिश के फुहारों ने मौसम का पारा गिरा दिया है। अब 16 और 17 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में झमाझम बारिश की संभावना है। हालांकि पहाड़ों में बारिश के बाद नदियों में पानी तेज बहाव से बह रहा है, ऐसे में किनारे और पहाड़ी रास्तों पर सुरक्षा के लिहाज से थोड़ी सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। बारिश का ये खुशनुमा दौर मानसून का सबसे हसीन विदाई गिफ्ट साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
2: इतने प्यारे बाल गणेश, जिसने भी देखा बप्पा का ये रूप देखता ही रह गया। एक छोटा सा बच्चा, लेकिन मेकअप और रूप ऐसा कि मानो खुद बाल गणेश सामने आ गए हों। चेहरे की मासूमियत और बप्पा वाला रूप देखते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इस नन्हे से बच्चे का ये अद्भुत रूप लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जिसने भी देखा बस यही कहा, गणपति बप्पा मोरिया। कठपुतली का खेल आपने अक्सर देखा और सुना होगा, लेकिन इस कलाकार की कलाकारी जरा देखिए। गाने की धुन बजती है और उसके साथ ही कठपुतली ऐसे थिरकने लगती है जैसे उसे हर सुर का पता हो। कलाकार अपने हुनर से कठपुतली के हर कदम को इतनी खूबसूरती से कंट्रोल कर रहा है कि देखने वाले बस देखते रह गए। आसपास मौजूद लोग भी इस अनोखी कला को देखकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। जंपी हो रही है और हो भी क्यों ना, काम का प्रेशर जो इतना रहता है। अब देखिए इस प्यारे बच्चे को आराम से बैठकर बिना किसी चिंता के अपने सिर की मालिश का पूरा आनंद ले रहा है। जैसे जैसे जंपी हो रही है, बच्चे के चेहरे पर सुकून और खुशी भी बढ़ती जा रही है। ना कोई टेंशन, ना कोई जल्दबाजी, बस आराम ही आराम। बच्चे के इस अंदाज को देख कर शायद आपका भी मन करेगा कि एक जंपी तो बनती है। मौसम चाहे जैसा हो, बस निकल पड़ो अपने रास्ते पर। अब इन आंटी को ही देख लीजिए, अपने स्कूटर पर सवार होकर बड़े आराम से निकल पड़ी हैं। मौसम भी सुहाना है और रास्ता भी इतना खूबसूरत कि सफर का मजा दोगुना हो जाए। आंटी भी बिना किसी चिंता के अपनी स्कूटर राइड का जमकर आनंद ले रही हैं। चेहरे पर खुशी, रास्ते पर मस्ती और मौसम का साथ, यानी सफर छोटा हो या बड़ा, एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए। लद्दाख का ये वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे और उनका इतना प्यारा डांस की नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। डांस के हर स्टेप में क्यूटनेस है, चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में मासूमियत। इन नन्हे बच्चों की खुशी देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे ये बच्चे जब साथ में थिरकते हैं तो पूरा माहौल ही खूबसूरत हो जाता है। सच में ये नन्हे सितारे किसी परी की कहानी से कम नहीं लग रहे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर

0: क्या सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खोले जा रहे नकदी और आभूषणों से भरे पात्र, भक्त बप्पा से सामने रख रहे मन की मुराद। भोले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के दर्शन, शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना जारी। पुणे के दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष पाठ, भगवान गजानन की महाआरती में दिखे भक्ति के रंग। महाराष्ट्र के जालना में पेड़ पर साकार हुए गजानन, गणेशोत्सव के दौरान स्कूली छात्रों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, फूल पत्तियों से किया बप्पा का श्रृंगार। इंदौर में विघ्नहर्ता की प्रतिमाओं का अनोखा संग्रह, भक्त ने बनाया 5,000 से ज्यादा मूर्तियों का संग्रहालय, विदेशों से भी जुटाई गई गजानन की मूर्ति। मौसम की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर, आज से फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, 3 सितंबर तक करीब 9,000 टिकट बुक।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर में गणेशोत्सव के रंग छाए हैं, अब देश के अलग अलग हिस्सों में गणपति बप्पा के मनमोहक और अलौकिक स्वरूप के दर्शन शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है सोने चांदी के आभूषणों से बप्पा का श्रृंगार। आपको बता दें कि गणेश उत्सव के शुभ मौके पर देश भर में भव्य दिव्य पंडाल सजे हैं, मंदिरों में एक अलग ही रौनक है, कहीं सोने चांदी और हीरों से सजे बप्पा नजर आ रहे हैं तो कहीं बप्पा राजशाही श्रृंगार में नजर आ रहे हैं, लेकिन बप्पा के हर रूप में एक ही भाव, भक्ति, आस्था और विश्वास है।

0: देश भर में गणपति उत्सव की धूम है। गणेश चतुर्थी से आने वाले 10 दिनों तक भव्य तौर पर गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में श्री विघ्नहर गणपति का इस महोत्सव के दौरान दिव्य और राजशाही श्रृंगार होता है और ये श्रृंगार साल में केवल 2 बार किया जाता है। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी और माघ शुद्ध चतुर्थी के पावन मौके पर ही विघ्नहर बप्पा का ये सुवर्ण रूप भक्तों के दर्शन के लिए सामने आता है। गणपति महोत्सव में सोने चांदी से सजे ऐसे ही गणपति बप्पा देखने के लिए मिले, जहां वो सोने चांदी के ऐतिहासिक आभूषणों और पेशवाकालीन पोशाक में विराजे हुए थे। विघ्नहर्ता का यह अलौकिक स्वरूप भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहा है।
1: ये मंदिर 1784-85 को बनाया गया है, तभी से पुराने अलंकार तो है और देवस्थान ट्रस्ट ने नया अलंकार भी बनाया। सब सोने का अलंकार इधर रहते और वो सब पहनाए जाते हैं।
0: 5 दिवसीय गणपति जन्मोत्सव के मौके पर सोमवार रात करीब 11 बजे के बाद बप्पा का विशेष श्रृंगार किया गया। पेशवाकालीन पोशाक पहनाई गई और करीब 200 साल पुराने ऐतिहासिक आभूषणों से गणपति का भव्य श्रृंगार हुआ।
2: कुछ अलंकार जो है पेशवेकालीन है, उसमें कंठी हार है, एक चंद्रकोर है, उसमें पेशवेकालीन हीरा जड़ा हुआ है। बाद में वो जो वस्त्र पहना है वो रेशमी जरी के वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसमें स्वस्तिकार रहता है, बादाम हार रहता है, करगोटा रहता है, वो सब सोने का रहता है। और जो मुकुट रहता है उसमें भी वो पेशवेकालीन हीरा मौजूद है और वो पेशवेकालीन मुकुट पहनाया जाता है।
0: इंदौर के प्रसिद्ध खजुराना गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश का भव्य और मनमोहक श्रृंगार किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत अभिषेक के बाद बप्पा को हीरे जड़ित नेत्र पहनाए गए तो करीब 7 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी और हीरों से बने बेशकीमती आभूषणों से उनका श्रृंगार किया गया। ऐसा ही भव्य श्रृंगार मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा का भी हुआ है। लाल बाग के राजा का सोने का श्रृंगार अत्यंत भव्य और आकर्षक है, जिसमें भारी वजन का सोने का मुकुट, हार, बाजूबंद और सोने के चरण लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
3: जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है, चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में। ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है।
0: आभूषणों की चमक से दमकदार बप्पा का अलौकिक स्वरूप भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हैदराबाद के बेगम बाजार में गणपति बप्पा का ऐसा अद्भुत रूप देखने के लिए मिला जिसे देखकर हर कोई निहारता रह गया। यहाँ 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड गणेश प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ सोने की चमक से दमकते बप्पा का दिव्य स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 48 किलो वजनी पंचधातु से बनी इस प्रतिमा को तैयार करने में पूरे 8 महीने लगे और इसे आकार दिया है 8 कुशल कारीगरों ने। बप्पा की प्रतिमा में दशावतार की झलक है, जिसमें तिरुपति बालाजी की भव्य आकृति भी दिखाई देती है। यानी एक ही प्रतिमा में आस्था, कला और अद्भुत शिल्प का ऐसा संगम जो गणेशोत्सव की भव्यता को और खास बना रहा है। गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर शिरडी के साई बाबा मंदिर में भी एक ऐसी ही अनोखी भेंट अर्पित की गई। यहाँ करीब 1,33,00,000 रुपए की कीमत वाला भव्य छत्र साई बाबा को समर्पित किया गया।
4: इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर बाबा के 2 भक्तों ने जो है डोनेशन जो है यहाँ अर्पण किया है। सुबह जो है वो लगभग 54 kg का सिल्वर का नंदी जो है वो बाबा को भक्तों ने अर्पण किया है।
0: भक्ति और श्रद्धा से अर्पित यह अनमोल भेंट भक्तों के विश्वास की गहराई को बयां करती है। जहाँ भगवान के प्रति आस्था हो वहाँ समर्पण भी अनमोल हो जाता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, पुणे से समिता रायचंद शिंदे और शिरडी से नितिन मिराने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो गणेशोत्सव का शुभारंभ हो गया है, चारों ओर बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं, लोग अपने आराध्य को खास करके मोदक का भोग लगा रहे हैं। इस बीच नासिक में एक मिठाई की दुकान पर एक अनोखा मोदक पेश किया गया है जिसकी कीमत 27,000 रुपए प्रति किलो है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है बप्पा के लिए बना 24 कैरेट का गोल्डन मोदक। जी हाँ, नासिक के एक मिठाई दुकान में गोल्डन मोदक तैयार किया गया जो कि ग्राहकों का खूब ध्यान खींच रहा है। इस मोदक की कीमत 27,000 रुपए प्रति किलोग्राम रखी गई है।
6: रंग बिरंगी स्वादिष्ट मोदकों का ये संसार बसा है नासिक की एक दुकान पर, जहां इन मोदकों में एक खास मोदक गणेशोत्सव का लग्जरी अंदाज भी पेश कर रहा है। दरअसल इस मिठाई की दुकान चलाने वालों ने गणेश चतुर्थी पर्व के उत्साह में लग्जरी का तड़का लगाते हुए 24 कैरेट सोने की परत वाले मोदक पेश किए हैं, जिसे भक्त अनोखे भोग के तौर पर पसंद भी कर रहे हैं। इन खास मोदकों को देखने पर इनकी सतह पर सोने जैसी चमक नजर आती है और इनका यही शाही अंदाज इन्हें सामान्य मोदकों से अलग बना रहा है। अपनी सुनहरी चमक और खास सामग्री से तैयार इस प्रीमियम मोदक की कीमत 27,000 रुपए किलो है, जबकि काजू मोदक 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ 24 कैरेट वाले इस गोल्डन मोदक की चर्चा सबसे ज्यादा है। दूसरी वेराइटीज में ड्राई फ्रूट्स, ऑरेंज और मलाई मोदक भी शामिल है।
7: कारण पिछले साल जो हमारा मोदक 20,000 रुपए किलो था, इस साल वो 27,000 रुपए किलो रखा है हमने। और अगर जैसे गणेश भक्त को पीस पे भी चाहिए तो वो पर पीस हम 540 रुपए में दे रहे हैं। हमने बहुत सारे प्रकार के मोदक भी बनाए, जैसे ब्लूबेरी मोदक बनाया हमने, पान फ्लेवर्ड मोदक बनाया है, ड्राई फ्रूट केसर मोदक बनाए, सिल्वर का मोदक बनाया है, तो कस्टमर का बहुत अच्छा डिमांड है।
6: जाहिर है गणेशोत्सव में भक्त अपने आराध्य विघ्नहर्ता के लिए खास से खास चीज तैयार करने की कोशिश करते रहे हैं। ऐसे में जब कोई मिठाई अपने स्वाद के साथ साथ दिखने में भी बेहद आकर्षक हो तो उसका लोगों का ध्यान खींचना तय है।
8: लेने की इच्छा बनाया हूँ और भगवान को प्रसाद चढ़ाने का महत्व रखता हूँ, ऐसे ही भगवान हमेशा बरकत देते रहे।
9: पिछले साल तो हमने भी ये गोल्ड के मोदक खरीदे थे, लेकिन 15,000 रुपए किलो के थे। इस साल थोड़ा भाव बढ़ गया है तो हम थोड़े से लेने वाले हैं, लेकिन लेने वाले।
6: हालांकि यहाँ एक बात साफ है कि 27,000 रुपए किलो की कीमत का मतलब ये नहीं है कि पूरा मोदक ही शुद्ध सोने से बना है। दरअसल इसकी सुनहरी फिनिश और प्रीमियम पेशकश ही इसे गोल्डन मिठाई का खास रूप देती है। जहाँ मोदक का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों पुराना रहा है, तो समय के साथ इसके लुक में भी बदलाव आता रहा है। आज बाजार में चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, मावा, केसर और कई दूसरे फ्लेवर के मोदक मिल जाएंगे। ऐसे में ये गोल्डन मोदक इसी बदलती मिठाई संस्कृति की एक नई मिसाल मानी जा सकती है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और अभी दिल्ली में आपको बता दें कि ब्रिक्स समिट संपन्न हुआ है और अब उस समिट की थीम गणेशोत्सव में भी देखने को मिल रही है। सजावट के माध्यम से ब्रिक्स सम्मेलन और उससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को बेहद रचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है गणेशोत्सव में ब्रिक्स समिट की थीम पर सजावट। आपको बता दें कि शुभम वनमाला की इस थीम आधारित सजावट में ब्रिक्स समिट से जुड़े दृश्य और प्रतीकों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। उनकी इस अनोखी पहल में गणेश उत्सव की भव्यता के साथ देश की महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि को भी दर्शाया गया है। देखिए हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी की ये रिपोर्ट।
10: महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से शुरू हो चुका है और इसी तरीके से अपने विचार जो है या क्या इस समाज में चल रहा है गणपति बप्पा के माध्यम से दिखाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम इस वक्त मुंबई में हैं जहां पर गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहां पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहां पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहां पर तैयार किया गया है। हमारे साथ हैं शुभम वनमाला जो हर साल इसी तरीके से जो करंट अफेयर होता है या जो दुनिया में जो कुछ चल रहा होता है उसको लेकर जो डेकोरेशन करते हैं और इस साल इन्होंने ब्रिक्स किया है। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों इनके दिमाग में ये ब्रिक्स डेकोरेशन का ख्याल है, उन्हीं से जानेंगे। शुभम, पहले तो आपने ब्रिक्स का डेकोरेशन किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों दिमाग में है ब्रिक्स ही क्यों?
11: एक्चुअली ब्रिक्स समिट जो 2026 ये इंडिया होस्ट करने वाली थी ये मुझे 1.5 महीने पहले ही पता चल गया था, तो तो मैंने बोला कि ये यूनिक कंसेप्ट हो सकती है जहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी कैसे एक साथ जाती है।
10: और कितने सालों से आप कर रहे हैं, मतलब इस बार ब्रिक्स है लेकिन हर साल आप कुछ अलग अलग थीम लेकर आते हैं, कितने सालों से हो रहा है और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कहाँ से दिमाग में ख्याल आते हैं?
11: ऑलमोस्ट 8 ईयर्स पहले से ही मैं डेकोरेशन कर रहा था ये थीम पर, तो हर ईयर मैं रिसर्च करता हूँ कि कौन से टॉपिक्स वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे या फिर इंडिया में जो घटित होते हैं घटना उनके ऊपर ही बनाता हूँ, ताकि मतलब लोगों को मतलब जानकारी हो सके, मतलब जो भी इंडिया में जो भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं या फिर जो भी घटना है उसके बारे में जो भी मतलब डिवोटीज आएंगे उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले इसके रिगार्डिंग।
10: बिल्कुल, तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम अनवाला कर रहे हैं। और इस साल जो है ब्रिक्स समिट यहाँ पर बनाया गया था। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
5: गणेशोत्सव के दौरान लोगों का उत्साह देखने लायक होता है, ऐसे में जामनगर में इस उत्सव के दौरान आयोजित एक अनोखी प्रतियोगिता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहां पर एक ग्रुप के द्वारा लड्डू खाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें चुनौती थी कि निर्धारित समय में कौन सबसे अधिक लड्डू खा सकता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है 15 मिनट में 15 लड्डू खाने का महिलाओं का रिकॉर्ड। जी हां, आपको बता दें कि जामनगर में ब्रह्म समाज युवा ग्रुप द्वारा लगातार 18वें वर्ष लड्डू खाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों के सामने चुनौती थी कि निर्धारित समय में कौन सबसे अधिक लड्डू खा सकता है। इस प्रतियोगिता में महिलाओं की श्रेणी में पद्मिनी बेन और प्रमिला बेन ने 15-15 लड्डू खाकर प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि पुरुषों की श्रेणी में विजेता गंभीर सेवाला ने 12 लड्डू खाकर बाजी मारी, जबकि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों की श्रेणी में व्योम व्यास ने 7 लड्डू खाकर प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतिभागियों को शुद्ध घी और ड्राई फ्रूट से तैयार किए गए लगभग 100 ग्राम वजन के लड्डू परोसे गए थे और लड्डुओं के साथ दाल भी परोसी गई थी। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में हर समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता शुरू होते ही एक ओर लड्डुओं से सजी थालियां नजर आई तो दूसरी ओर अधिक से अधिक लड्डू खाने के लिए तैयार प्रतिभागियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। निर्धारित समय में अधिक से अधिक लड्डू खाने के लिए प्रतिभागियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। कोई तेजी से लड्डू खाता नजर आया तो किसी ने धीरे धीरे लेकिन लगातार लड्डू खाकर अपनी दावेदारी मजबूत की। और राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार ड्रोनाथॉन का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित मिशन आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के तहत इस कार्यक्रम का उद्घाटन 14 से 16 सितंबर तक किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है पोखरण में ड्रोनाथॉन दिखा स्वदेशी तकनीक का दम। जी हाँ, आपको बता दें कि ड्रोनाथॉन में ड्रोन से जुड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया और ड्रोन तकनीक से जुड़े नए इनोवेशन को ये प्रदर्शित कर रहे हैं।

0: सेना की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां अपने मानव रहित विमान प्रणाली यानी UAS का प्रदर्शन कर रही हैं। यह आयोजन भारत की स्वदेशी तकनीक और रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही क्षमताओं को सामने लाने का एक बड़ा मंच है। ड्रोनाथॉन 2026 में तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों और उसके अंतिम इस्तेमाल करने वालों के बीच एक अहम सेतु बनाने की कोशिश है। इसके साथ इस आयोजन में ड्रोन से जुड़ी उभरती रक्षा चुनौतियों के लिए स्वदेशी समाधानों के विकल्प का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
1: ये ड्रोन बहुत ही काबिल ड्रोन है, ये पूरा ही मेड इन इंडिया है और इसमें 90% से ज्यादा हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज हैं। एंड ये जो ड्रोन है ये किसी भी क्लास ऑफ ड्रोन लाइक अपने प्रीडेटर उस टाइप के ड्रोन से के कंपैरिजन में काम करता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पेलोड कैरी करता है। ये हमारा सबसे बेस्ट अब ड्रोन है और किसी भी विश्व के ड्रोन में से अगर हम कंपेयर करते हैं ये एक बहुत ही अच्छा ड्रोन है।
0: ड्रोनाथॉन में काउंटर ड्रोन तकनीक और समाधान का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणालियां, स्वतंत्र नेविगेशन, रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और उन्नत पेलोड प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इन सभी तकनीकों को लाइव और स्टैटिक दोनों तरह के प्रदर्शनों के जरिए दिखाया जा रहा है।
1: अभी इसका ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड हमने इसको 1 किलोमीटर हाइट पे बनाया है और ये 100 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी ड्रोन को जाने के लिए विद कैमरास के साथ कर सकता है। और हमारा मेन स्पेशलिटी है कि हम ड्रोन नहीं बनाते, हम ड्रोन के लिए एक मॉड्यूल बनाते हैं जो किसी भी ड्रोन, जैसे अभी मिलिट्री में हजारों ड्रोन खरीद रहे हैं, बट ड्रोन को जब वॉर जैसा सिचुएशन हो जाएगा तब बिना GPS और जैमर के एनवायरमेंट में जाके फाइट करना पड़ेगा, तो वो फाइटिंग को हम केपेबल बना रहे गरुड़ा नैव नेविगेशन मॉड्यूल के।
0: ड्रोनाथॉन में बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय युवा शामिल हो रहे हैं और उन्हें अत्याधुनिक तकनीक और इनोवेशन से परिचित कराने के लिए लाइव और स्टैटिक डिस्प्ले लगाए गए हैं। इसके साथ ही युवाओं को इनोवेशन से जुड़ी अलग अलग गतिविधियों में भी शामिल किया जा रहा है जिससे वे नई तकनीक को आसानी से समझ सकें।
1: इसको ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पोखरण फायरिंग रेंज में या फिर मल्टीपल अदर हाई अल्टीट्यूड एरियाज में टेस्ट भी किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट उतने केजी के साथ उतना डिस्टेंस ट्रैवल करके उतने एग्जैक्ट टारगेट को हिट करता है कि नहीं करता है। एडिशनली इसको 5000 मीटर एल्टीट्यूड पे भी प्रैक्टिकली टेस्ट किया हुआ है और मल्टीपल प्रोडक्ट हमने इंडियन आर्मी को ऑलरेडी दिए हुए हैं।
0: 14 से 16 सितंबर तक चलने वाले ड्रोनाथॉन में रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पहचान मजबूत की जा रही है। इसका उद्देश्य ऐसे स्वदेशी और बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल है जो बदलती जरूरतों को पूरा कर सकें। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे।
2: दिल्ली के क्राफ्ट म्यूजियम में लगे ब्रिक्स बाजार में अलग अलग देशों की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिल रही है। यहां हर स्टॉल अपने देश की अलग और अनोखी कला को दर्शा रहा है जिसका आनंद यहां आने वाले लोग उठा रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, ब्रिक्स बाजार में शिल्प और संस्कृति की झलक। जी हाँ, ब्रिक्स बाजार में सिर्फ अलग अलग देशों के उत्पादों का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा बल्कि हर स्टॉल के जरिए यहां की पारंपरिक कला, कारीगरों की मेहनत और सदियों पुरानी शिल्प विरासत की कहानी भी सामने लाई जा रही है। चाहे वो इंडोनेशिया की बाटिक कला हो या फिर भारत के कश्मीर में बनने वाली पश्मीना शॉल हो। दरअसल इंडोनेशिया का बाटिक अपने पारंपरिक डिजाइन और बारीक काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी पारंपरिक बाटिक तकनीक और डिजाइन का इस्तेमाल करते हुए यहां अलग अलग तरह के क्राफ्ट और उपयोगी सामान तैयार किए गए हैं। वहीं कश्मीर के स्टॉल पर मौजूद पश्मीना शॉल अपनी बारीक कारीगरी और महीन काम के लिए खास पहचान रखती है। एक पश्मीना शॉल को तैयार करने में करीब 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है और उसकी कीमत शॉल पर किए गए काम की बारीकी पर निर्भर करती है। पश्मीना शॉल 5 लाख रुपए तक का हो सकता है।
3: इस पूरे बाजार में ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ साथ जो साझेदार देश हैं उनके भी कारीगर अपनी कला दिखाते हुए नजर आएंगे। मैं एक बार अपने कैमरामैन शैलेंद्र को बोलूंगी कि पीछे दिखाए कि किस किस तरीके की कौन कौन सी जो कंट्रीज है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। सबसे पहले तो आपको इंडिया ही जो है वो नजर आ जाएगा, उसके साथ देखेंगे तो आपको वियतनाम जो है वो नजर आएगा और उसके साथ ही इंडोनेशिया और ऐसी करीब 18 देशों से 40 से ज्यादा कारीगर और डिजाइनर अपनी जो कला है और अपने देश की जो पारंपरिक विरासत है वो लोगों के सामने

0: यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ स्टॉल देखेंगे तो हर दूसरे स्टॉल की तरफ आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको लोगों की अच्छी खासी एक तो भीड़ है वो नजर आ जाएगी, और हर जगह आपको कुछ ना कुछ अलग जो है वो देखने को मिलेगा। कहीं आपको पारंपरिक कपड़े जो है वो दिख जाएंगे, कहीं कोई डिकोर आइटम्स है वो दिख जाएगा, और इसी तरीके से जो है कई ऐसे पारंपरिक डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें जो है इस बार इस ब्रिक्स बाजार में देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत से ऐसे बाजार जो है देश की राजधानी दिल्ली में जो है वो सस्ते हैं, लेकिन देश में किन किन जगह से जो अलग अलग राज्यों से चीज़ें लाई जाती है वो कला जो है कारीगर अपनी दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया के अलग अलग देश के जो कारीगर है वो यहाँ पर इस सम्मेलन में पहुंचे ताकि वो अपनी कला जो है दिल्ली वालों के साथ भी जो है साझा कर सके।
1: सिक्के जिन्हें हम अक्सर सिर्फ रुपए पैसे के लेन देन का जरिया समझते हैं, लेकिन यही सिक्के जब सदियों पुराने हो तो ये इतिहास के वो पन्ने बन जाते हैं जिन्हें हाथ में लेकर गुजरे दौर को महसूस किया जा सकता है। बंगाल के बर्धमान में कॉइन एग्जीबिशन 2026 लगी है, जहां कई साल पुराने सिक्कों से लेकर अखबार और यादगार चीजें मौजूद हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है सिक्कों की प्रदर्शनी में आजादी का इतिहास। बर्धमान में लगे क्वाइन एग्जीबिशन 2026 में 1600 साल पुराने सिक्कों से लेकर ब्रिटिश काल की मुद्रा तक, आजाद हिंद फौज के मेडल से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ से लिखे पत्र तक, इतिहास के अनमोल दस्तावेज एक ही छत के नीचे सजे हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं।

0: ये ऐसे सिक्कों का कलेक्शन है जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के बर्धमान की इस प्रदर्शनी में वही सिक्के आज आंखों के सामने हैं, हाथों में हैं और इतिहास को करीब से महसूस कराने का मौका बन रहे हैं। सैकड़ों साल पुराने ये सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि अपने दौर की कहानी, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और बदलते हिंदुस्तान के गवाह हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के संगम हॉल में लगी इस खास प्रदर्शनी की थीम बंगाल की आजादी का इतिहास है, जिसे .com यानी डॉक्टर ऑफ कॉइन्स एंड मनी की ओर से आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शनी में 30 कैबिनेट में दुर्लभ सिक्कों और ऐतिहासिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है।
1: एक कॉइन हॉबी सब मिला जुला एक्सपो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को यहाँ पर, माने स्कूल स्टूडेंट्स भी आए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आए। स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों की एंट्री पूरी फ्री है। यहाँ पर आके लोग अपना वैल्यूएशन करा रहे हैं, कुछ अपना बेच के भी जा रहे हैं और इस तरह से बहुत खुश भी हो रहे हैं।
0: यहाँ सिक्कों का सफर करीब 1600 साल पुराना है। प्राचीन बंगाल की मुद्रा से लेकर ब्रिटिश दौर के सिक्के और आधुनिक समय की करेंसी तक, हर सिक्का अपने दौर की सामाजिक और आर्थिक कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। खास बात ये है कि जो लोग इस प्रदर्शनी में शामिल हो रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों की ये हॉबी है।
2: सबसे पहले ये मेरा हॉबी है, हम 2005 से कर रहे हैं, लगभग ये 20 साल मेरा हो गया हॉबी का। अभी ये फैशन बन गया है, कुछ डील भी करते हैं और अलग अलग एग्जीबिशन जाते हैं, विजिट करते हैं, बहुत लोग से मिलना होता है, बहुत सारा रेयर कॉइन भी आता है, आदमी को बताते हैं। ये कुनिंदा डायनेस्टी का कॉइन है, ये कुनिंदा डायनेस्टी कॉइन, इसमें देखिएगा विष्णु भगवान का शंख बना हुआ है। ये लगभग 2500 साल पुराना है। ये सब रेयर है, ये सब जल्दी मिलता नहीं, ये साउथ से नदी से निकालना पड़ता है।
0: वैसे ये सिर्फ सिक्कों की प्रदर्शनी नहीं, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौर की डाक टिकट, अखबार, बैच, मेडल, चिट्ठियाँ और आजाद हिंद फौज के दौर से जुड़ी ऐतिहासिक चीजें भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ से लिखा पत्र और उनके हस्ताक्षर वाले दस्तावेज भी प्रदर्शनी का खास आकर्षण है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े कई अनजाने पहलुओं की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। ये एग्जीबिशन किसी के लिए दुर्लभ सिक्कों को करीब से देखने का मौका है, तो किसी के लिए इतिहास को महसूस करने का। आलम ये है कि करीब 3000 लोग रोजाना इस प्रदर्शनी को देखने पहुंच रहे हैं। आयोजकों का मकसद लोगों को पुराने सिक्कों के साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचाना भी है। इस प्रदर्शनी के जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली सिक्कों और फर्जी ऑफर्स के जरिए होने वाली ठगी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये एग्जीबिशन नई पीढ़ी के लिए इतिहास से रूबरू होने का मौका है, इसलिए यहाँ माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर पहुँच रहे हैं, ताकि किताबों में पढ़ा इतिहास सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि बच्चे उसे अपनी आंखों से देखें और समझें। पूर्वी वर्धमान से सुजाता मेहरा, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
5: दिल्ली विश्वविद्यालय में UGC के खिलाफ प्रदर्शन, सेमिनार के दौरान छात्रों ने लगाया गो बैक का नारा, नेपाल बाढ़ में मां बेटी के बह जाने की वीडियो का सच, छोटा बच्चा मरा दे। देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, जयंती पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खुल जा रहे नकदी और आभूषणों से भरे पात्र, भक्त बप्पा के सामने रख रहे अपने मन की मुराद। मोले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन, शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना जारी। पुणे के दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष का पाठ, भगवान गजानन की महाआरती में दिखे भक्ति के रंग।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है, और यही तेजी सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें शेयर कर देते हैं, और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी 2 खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाया उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जहां पर कुछ छात्रों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल में आए हालिया बाढ़ का वीडियो है, जहां पर एक माँ बेटी बह गई। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है, और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जहां पर कुछ छात्रों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
8: एक शख्स को घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा है, कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे हुए इस नजारे को देख रहे हैं, तो कुछ लोग ये देखने के लिए खड़े हो गए हैं कि अचानक ही क्या हो गया। इस माहौल के बीच कुछ लोग गो बैक का नारा भी लगाने लग गए। किसी ऑडिटोरियम में आई इन तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी हिला दी, शाबाश मिले शेरों, अगर आप भी इससे सहमत है तो इसे आगे बढ़ाएं, #UGCRollback। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। वीडियो में किसी ऑडिटोरियम के अंदर से कुछ लोग एक शख्स को घसीटते हुए बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। कई लोग गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है कितना गलत है जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक शख्स को पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। इस दौरान गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं और ऐसे में सबसे पहले हमने नारे को ध्यान से सुना। अब ये तो सामने आ गया कि हॉल में मौजूद कुछ लोग वीसी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। वीसी मतलब कि वाइस चांसलर, जो विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को संभालता है। यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण फैसले, नीतियां, नियुक्तियां वीसी के नेतृत्व में होती हैं। इससे हमें ये तो इशारा मिल गया कि ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है जहां पर कुछ लोग जमा होकर कुलपति का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा है। इस दौरान हमें स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा हुआ नजर आया। इस समय ये लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम हो सकता है। वीडियो में एक जगह वंदे मातरम ऑडिटोरियम शब्द भी देखने को मिला। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि वंदे मातरम ऑडिटोरियम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थित है। यहां से ये साफ हो गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यक्रम ही है और ये उसी का वीडियो है। फैक्चर टीम ने यह भी जानने की कोशिश की कि हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वंदे मातरम ऑडिटोरियम में यूजीसी के नियमों के खिलाफ क्या कोई प्रदर्शन या फिर हंगामा हुआ है, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था, अगर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है तो फिर सत्यनिकेतन हादसे के जवाब दो के नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं। स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में दूसरा सवाल ये कि कहीं कुलपति योगेश सिंह के खिलाफ किसी प्रदर्शन के वीडियो को यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 8 सितंबर के एक्सपोस्ट पर मिला। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहां सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद कुछ छात्रों ने कुलपति पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी 9 सितंबर की रिपोर्ट मिली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 8 सितंबर की है, जब कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सत्य निकेतन में हुए हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पीसी योगेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी की थी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में NSUI कार्यकर्ता और कैंपस लॉ सेंटर के छात्र राम निवास बिश्नोई भी शामिल थे। हिंदी विभाग की ओर से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स स्थित वंदे मातरम ऑडिटोरियम में विकसित भारत हिंदी भाषा और साहित्य विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुलपति योगेश सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान बिश्नोई समेत कुछ छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बिश्नोई कुलपति से सवाल कर रहे थे, इसके बाद उन्हें ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान DU VC गो बैक, VC शर्म करो, PG हॉस्टल दो और अकाउंटेबिलिटी तय करो जैसे नारे लगाए गए थे। इसके बाद हमने राम निवास बिश्नोई का इंस्टाग्राम हैंडल भी देखा। यहाँ इसी घटना का एक दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी मौजूद है। इस वीडियो में बिश्नोई को ऑडिटोरियम से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में वो कुलपति के सामने सत्य निकेतन हादसे को लेकर सवाल उठाते नजर आते हैं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि इस वीडियो का UGC नियमों की वापसी की मांग से कोई लेना देना नहीं है। असल में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI समेत कुछ छात्रों ने सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की थी। फिर जुष दत्ता के साथ इंफैक्ट चेक को न्यूज़ टुडे।
0: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो लड़कियां बाढ़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं। तभी अचानक से तेज बहाव से पानी आता है, दोनों को बहा ले जाता है। इस वीडियो को हाल फिलहाल आई नेपाल की बाढ़ से जोड़कर देखते हुए वायरल किया जा रहा है। सच्चाई क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए।
9: चारों तरफ सैलाब, पानी पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच दो लड़कियां बाढ़ के तेज बहाव के बीच एक दूसरे को पकड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। पानी के वेग के आगे इन दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती है और दोनों लड़कियां उसमें बह जाती हैं। इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का वीडियो मानकर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक माँ और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, आखिर हार गई माँ और बेटी, इकलौती बेटी के साथ माँ बाढ़ में फंस गई। देखने वाले वीडियो बनाते रहे लेकिन अंत में बाढ़ की जीत हुई। नेपाल बाढ़ के बाद यह सबसे दर्दनाक वीडियो आया सामने। इस वीडियो को लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
0: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि एक माँ और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ तो आई है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें, कई तरह के झूठे वीडियोज भी वायरल किए जा रहे हैं। फैक्ट चेक टीम लगातार इन दावों की पड़ताल भी कर रही है, लिहाजा अब इस वीडियो और इसके दावे की सच्चाई को भी सामने लाना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो को देखने से ऐसा तो लग रहा है कि पानी के तेज फ्लो में ये दोनों फंस गई हैं। इसके बारे में जब हमने फ्रेम को जूम करके और हाईलाइट करके देखा तो फिर ये सामने आया कि ये दोनों स्कूली ड्रेस में हैं और इनके कंधे पर स्कूल बैग भी है। इससे हमें ये इशारा मिला कि ये दोनों स्कूल के बच्चे हो सकते हैं और अचानक पानी के तेज बहाव में ये दोनों फंस गए। इसके अलावा वीडियो में एक बात और देखने को मिली, ये दोनों पानी में फंसी हुई हैं और सामने से इस घटना को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि कैमरे का फ्रेम पल पल हिल रहा है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों फंसी हैं, जिंदगी बचेगी या फिर नहीं, ये सवाल सामने खड़ा होता है। ऐसे में ये भी सामने आया कि वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था लेकिन बचाने के लिए कोई भी कवायद नहीं की जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? आवाज सुनकर आसपास जो भी लोग होंगे वो भी बिना सोचे समझे बचाने की जद्दोजहद जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। पूरे वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये काफी हद तक फिलीपींस जैसी लगी। फिलिपिनो फिलीपींस की आधिकारिक भाषा है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था, अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें नेपाली क्यों नहीं सुनाई दे रही है? हमारा दूसरा सवाल यह कि हाल ही में फिलीपींस में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट ये था कि फिलीपींस बाढ़ से जुड़े वीडियो को कहीं जानबूझकर नेपाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा? सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
9: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। वायरल वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 सितंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना फिलीपींस के नेग्रोस ओरिएंटल प्रांत के गुइहुलंगन शहर के बारांगे बालोगो की थी। रिपोर्ट के अनुसार 4 सितंबर 2025 को स्कूल से घर लौटते समय दो बहनें कंसलाकन नदी के तेज बहाव के बीच फंस गई थी। भारी बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस दौरान दोनों बहनें तेज बहाव में बहने लगी लेकिन आगे जाकर पेड़ की जड़ों को पकड़ने में कामयाब रही। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना की पुष्टि 8 सितंबर 2025 की रिपोर्ट से भी होती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि गुइहुलंगन सिटी के बारांगे बालोगो में स्कूल से लौट रही दो छात्राएं अचानक आई बाढ़ में फंस गई। वे पेड़ों की जड़ों को पकड़ने में सफल रहीं और स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी के तेज बहाव से बाहर निकाल लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल बाढ़ में माँ बेटी के बह जाने के दावे से वायरल हो रहा वीडियो करीब 1 साल पुराना है और फिलीपींस का है, जहां बाढ़ के पानी में फंसी दो बहनों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: अटूट आस्था प्रेम और भक्ति का जीवंत उत्सव। पेशवा काल के राजसी पोशाक में बप्पा, लाखों दीपों से जगमगाएगी अवधपुरी। लद्दाख बना पर्यटकों का ड्रीम डेस्टिनेशन। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर प्रातः 8 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का। आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: हेलो दोस्तों, तो आज की पार्टी हम लोग कनाडा से केसा दीदी की तरफ से मिलाया। तो आज हम लोग अपने पार्टी में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। तो इसके अलावा भी हम लोग 6 आइटम शामिल किए हैं जो हम लोग।
4: इस बच्चे ने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल सूरज को कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला ने कुछ पैसे मदद के तौर पर भेजे थे। आमतौर पर ऐसी मदद मिलने पर कोई अपने लिए जरूरत का सामान खरीद सकता है, लेकिन सूरज ने जो काम किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। बच्चे ने इन पैसों से अपने दोस्तों के लिए खाने की शानदार दावत तैयार कर दी।
3: इधर मोहित मिरिंडा निकाल ले रहा है, आज हम लोग कोल्ड ड्रिंक मिरिंडा के साथ खाने वाले हैं। इधर मोहित ना सूरज इधर निकाल रहा है कपकेक, उसके बाद फिर इधर हम लोग गोजा और क्रीम रोल और जैम और काला जामुन के साथ खाने वाले हैं, जो कि हम लोग लगभग 7 आइटम शामिल हो गया है।
4: उसने खुद खाना बनाया और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसका मजा लिया। लोगों ने बच्चों के इस अंदाज की तारीफ की कि उसने मिली मदद को अपने दोस्तों के साथ बांटा। कई लोगों ने कनाडा में रहने वाली केशा की भी तारीफ की। लोगों का कहना है कि हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी उन्होंने बच्चों के लिए मदद भेजी और इस छोटी सी मदद से कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
3: उसके बाद इधर मेरा छोटा भाई ये भी खा के दिखा रहा है, तो ये डायरेक्ट केके के साथ शुरू किया है।
4: हौसले के आगे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकल आता है। इस वीडियो में दो छोटे भाइयों का ऐसा ही प्यार और जज्बा दिखाई दे रहा है। एक भाई चलने में थोड़ा कमजोर है, लेकिन लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा है। वही छोटा भाई उसके साथ खड़ा है और लगातार उसका हौसला बढ़ा रहा है। फिर जब वो फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है तो भाई का उत्साह देखते ही बनता है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत रही है।

0: पार्वती समझो।
1: एक छोटी सी बच्ची पीले रंग की फूलों वाली चुनरी सिर पर ओढ़े नजर आ रही है। उसके माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी है और वो कैमरे के सामने बेहद मासूम अंदाज में देख रही है। कभी उसकी नजर कैमरे पर टिकती है तो कभी वो इधर उधर देखने लगती है। कुछ ही पलों में उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो प्यारी सी मुस्कान देने लगती है। बच्ची के साथ एक महिला भी दिखाई दे रही है जो उसे संभालती है और उसके साथ मस्ती करती नजर आती है। बच्ची भी कैमरे के सामने बिल्कुल सहज दिखाई देती है। उसके चेहरे पर ना तो किसी तरह की झिझक नजर आती है और ना ही बनावटीपन। यही मासूम अंदाज इस वीडियो की सबसे प्यारी बात है और लोग इस वीडियो को खूब प्यार दे रहे हैं। साइकिल पर सफर का ऐसा अनोखा जुगाड़ आपने शायद ही पहले देखा होगा। आगे साइकिल चल रही है और दोनों तरफ झोलों में बैठी हैं नन्ही बच्चियां। इस अनोखे अंदाज को देखकर कोई भी मुस्कुरा दे। खास बात यह है कि झोले में बैठी बच्चियां भी इस सफर का खूब आनंद ले रही है। इनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उन्हें ये अंदाज कितना पसंद आ रहा है। अब यही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है।
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: क्लास में जब टीचर्स कोई सवाल पूछते हैं तो आमतौर पर बच्चे जवाब देने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार टीचर ने सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि पूरी क्लास का माहौल मजेदार हो गया। सवाल था, आपकी क्लास में सबसे हैंडसम लड़का कौन है?
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: इसके बाद क्लास की सभी लड़कियों ने एक ही लड़के का नाम लिया और जब इसकी वजह सामने आई तो लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल सभी छात्राओं ने एक ही लड़के अर्जुन का नाम लिया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है कि आखिर अर्जुन ऐसा क्या करता है कि क्लास की हर लड़की उसी का नाम ले रही है। लोगों को लगने लगा कि शायद अर्जुन अपनी स्मार्टनेस, पढ़ाई या फिर किसी खास अंदाज की वजह से लड़कियों का फेवरेट है। आखिर में टीचर सीधे सवाल कर देती है, अर्जुन क्यों? इसके बाद जो जवाब मिलता है वो पूरी वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है।
2: ओके हेलो गाइस, हु इज द अर्जुन? व्हाई?
1: अट्ठाईस लड़कियां एक साथ बताती हैं कि अर्जुन ही उनकी क्लास में इकलौता लड़का है। यानी अर्जुन को सबसे हैंडसम चुनने की वजह उसकी कोई खास खूबी नहीं बल्कि ये है कि पूरी क्लास में वही अकेला लड़का है। इसके बाद कैमरा अर्जुन की तरफ घूमता है। कैमरे के सामने उसकी मासूमियत और शर्माने वाला अंदाज देखकर लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इंडियन आर्मी बॉर्डर पर बहादुरी का खूब उदाहरण पेश करती है, लेकिन लंबे चौड़े और हिम्मती जवानों के दिल में एक छोटा सा दिल कहीं छुपा बैठा होता है। इसीलिए जब उन्हें पार्क के झूले मिले तो ये मस्ती करने से खुद को नहीं रोक पाए। सबने मिलकर खूब इंजॉय किया। वीडियो देखकर लोग अपना बचपन याद कर रहे हैं। एक लड़की का शानदार ट्रांजिशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। शुरुआत बेहद सिंपल अंदाज में होती है। लड़की कैमरे के सामने दिखाई देती है और फिर शानदार ट्रांजिशन के जरिए अचानक उनका लुक पूरी तरह से बदल जाता है। इसके बाद वो खूबसूरत साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। मराठी स्टाइल में तैयार होकर उनका लुक काफी आकर्षक नजर आता है। साड़ी के साथ पारंपरिक ज्वेलरी और ट्रेडिशनल अंदाज उनके पूरे लुक को और खास बना देता है। सड़क किनारे फुटपाथ पर दो बिजली के खंभों के बीच चादर बांधकर एक झूला बनाया गया है। इस झूले पर एक छोटा सा पपी आराम से लेटा हुआ है। पास ही खड़ी एक लड़की बेहद प्यार से उस पपी को दुलारते हुए झूम रही है। लड़की का अंदाज इतना प्यारा है कि वो पपी के गाल को छूकर अपने माथे को उसके सिर से सटा लेती है। पपी भी इस बेइंतहा मोहब्बत का पूरा आनंद ले रहा है। कुछ ही पलों में लड़की उसे हल्के हाथों से झूला झुलाकर अपनी गोद में उठा लेती है। इस दृश्य को देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरी लड़की आकर इसको प्यार करने लगती है। इस वीडियो को करोड़ों लोग देख चुके हैं और इस पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। इन इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता जब प्यार और भरोसे से जुड़ जाए तो वो बेहद खूबसूरत बन जाता है। ऐसा ही दिल छू लेने वाला पल इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। एक शख्स साइकिल से कहीं जा रहा है, तभी हाथी उसे बड़े प्यार से रोक लेता है, मानो अपने खास साथी को कुछ पल और अपने पास ही रखना चाहता हो। दोनों के बीच नजर आ रहा अपनापन और तालमेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यही रिश्ता इस वीडियो को खास बना रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला

0: क्या सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अटूट आस्था, प्रेम और भक्ति का जीवंत उत्सव गणेशोत्सव के लिए 7 करोड़ के आभूषण से खजराना गणेश का श्रृंगार। 7 नवम्बर को लाखों दीपों से जगमगाएगी अवधपुरी, दीपोत्सव का भव्य और दिव्य नजारा दिखाने की तैयारी। और लद्दाख बना पर्यटकों का ड्रीम डेस्टिनेशन, थारदुंगला टॉप पर पैर रखने का रोमांच। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, जयंती पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन।

मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चा राजा के चढ़ावे की गिनती शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच खोले जा रहे नकदी और आभूषणों से भरे पात्र। भक्त बप्पा के सामने रख रहे अपने मन की मुराद। मोहल्ले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चा राजा के दर्शन। शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान। आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना जारी। पुणे के दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष का पाठ। भगवान गजानन की महाआरती में दिखे भक्ति के रंग। महाराष्ट्र के जालना में पेड़ पर सर साकार हुए गजानन। गणेशोत्सव के दौरान स्कूली छात्रों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। फूल पत्तियों से किया बप्पा का श्रृंगार। मौसम की चुनौतियों के बीच चारधाम यात्रियों के लिए राहत की खबर। आज से फिर शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। 30 सितंबर तक करीब 9,000 टिकट बुक। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात गणेशोत्सव की। पूरा देश इस वक्त बप्पा के जय घोष से गूंज रहा है। मंदिर से लेकर पंडाल तक गजब रूप से चमक रहे हैं। विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जो प्रतिमाओं की सजावट और श्रृंगार को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। देश के बाकी हिस्सों में भी धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जा रहा है।

0: बाधाओं को दूर करने वाले प्रथम पूज्य देव हैं विघ्नहर्ता। सभी संकटों को हर कर जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। कुछ ऐसे ही मनोभाव के साथ भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों से लेकर पंडालों तक पहुंच रहे हैं। मुंबई में गणेश उत्सव की दिव्य और भव्य तस्वीर के बीच भक्त पंडालों में पहुंचकर बापा के दर्शन कर रहे हैं। चाहे वो लालबाग के राजा का दिव्य दरबार हो या फिर चिंचपोकली के चिंतामणि का भव्य पंडाल, हर जगह भक्तों का तांता लग रहा है। अंधेरी इलाके में स्थित मोहरेश्वर का राजा गणेश जी के दरबार में 3 अलग अलग प्रकार के चलचित्र बनाए गए हैं, जिनमें शंकर भगवान और गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं चलचित्र के माध्यम से बताई जा रही हैं। मुंबई में आम से लेकर खास तक सब बप्पा की भक्ति के रंग में डूबे हैं। अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में भी गणपति विराजे हुए हैं। वहाँ उनके दर्शन से पुण्य कमाने के लिए बॉलीवुड टीवी और खेल जगत के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है।
1: गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहाँ पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार, उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
2: इस ईयर की थीम थी जो मेन पिलर्स थे, तो वो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन और रेसिलेंस पे था। तो वही मैंने 4 पिलर्स यहाँ पे दर्शाए हैं ये गणेश उत्सव में।
1: तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है, उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम वनवाला कर रहे हैं। और इस साल जो है ब्रिक्स समिट यहाँ पर बनाया गया था।
0: मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में भी जगह जगह गणेश उत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दरबार में भक्तों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने यहां एक साथ अर्थवशीष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। इसके अलावा भगवान गणेश की आस्था से जुड़े ऐसे कई मंदिर हैं जहां गणेशोत्सव के दिव्य रंग छाए हुए हैं। जुनर इलाके के इस ओझर के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर की दिव्य सजावट के साथ ही यहाँ मंगल मूर्ति का भी दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहाँ विघ्नहर बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक से सुसज्जित किया गया और करीब 200 वर्ष पुराने करोड़ों रुपए मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार भी किया। बप्पा की आँखों में जड़े मणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वस्तिक हार, सिर पर छत्र, कटिहार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर बप्पा का ये शाही रूप के दर्शन का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
3: अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति जो है महाराष्ट्र का, उसका नाम है विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर, जो पुणे जिले में जुन्नर में है। हम वही मंदिर में है।
4: कुछ अलंकार जो है पेशवेकालीन है, उसमें कंटिहार है, एक चंद्रकोर है, उसमें पेशवेकालीन हीरा जड़ा हुआ है। बाद में वो जो वस्त्र पहना है वो रेशमी जरी के वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसमें स्वस्तिकार रहता है, बादाम हार रहता है, करगोटा रहता है, वो सब सोने का रहता है। और जो मुकुट रहता है उसमें भी वो पेशवेकालीन हीरा मौजूद है और वो पेशवेकालीन मुकुट पहनाए जाता है।
0: विशेष बात यह है कि आभूषणों से सजा बप्पा का ये अद्भुत रूप साल में केवल 2 बार भाद्रपद और माघ शुद्ध चतुर्थी के अवसर पर भक्तों को देखने को मिलता है। देश में कई ऐसे गणेश मंदिर हैं जहां गणेश उत्सव के दौरान मंदिर के साथ ही बप्पा को विशेष रूप से सजाया सवारा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी विघ्नहर्ता के अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। यहाँ हीरे जड़ित नेत्र और लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी और हीरे से बने आभूषणों से भगवान गणेश का दिव्य श्रृंगार किया गया और उसके बाद यहाँ 10 दिवसीय उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं।
5: भजन संध्या होगी भगवान गणेश जी महाराज के, यहाँ पर अलग अलग तरह के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, ड्राई फ्रूट के लड्डू, सौंठ के लड्डू, उड़द के लड्डू। और 18 तारीख के दिन बम्बई की प्रसिद्ध कलाकार प्रियाणी वाणी पंडित द्वारा यहाँ पर भजन संध्या प्रस्तुत की जाएगी। यह असाटी ग्रुप द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है मंदिर प्रबंध समिति के तत्वाधान में और ऐसे 10 दिन तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। स्कूल के बच्चों के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
0: महाकाल के दरबार स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर का दर्शन भी दिव्य और भव्य है। गणेश उत्सव के लिए इस मंदिर की स्वर्ण मंदिर की थीम पर साज सज्जा की गई है। यहाँ गणपति के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुँच रही है। गणेश चतुर्थी पर यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई और भगवान को 5,51,000 मोदकों का भी भोग लगाया गया था। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। यहाँ गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में पहुँच रहे भक्तों के बीच भगवान गणेश को 1,25,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। देश की राजधानी दिल्ली हो या उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, पूरे देश में गणेश उत्सव की दिव्य छटा देखने को मिल रही है। अलग अलग थीम पर सजे दिव्य पंडाल और बप्पा की भव्य प्रतिमाएं भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं। अब हैदराबाद की इस विशेष गणपति प्रतिमा को ही देख लीजिए, जिसे कैंडी यानी टॉफी से तैयार किया गया है। साथ ही पूरे पंडाल को ही बच्चों की थीम पर सजाया गया है। बप्पा के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई ये इको फ्रेंडली प्रतिमा बच्चों को खूब आकर्षित कर रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, दीपेश त्रिपाठी, पुणे से स्मिता रायचंद शिंदे, इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और उज्जैन से संदीप पुरश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुल न्यूज़ टुडे।
6: और अब बात करते हैं अवधपुरी की, जिसे और भव्य और दिव्य रूप देने का काम चल रहा है। दिवाली से एक दिन पहले यहाँ दीपोत्सव की दिव्य छटा दिखने वाली है और इस वर्ष दीपोत्सव को और ज्यादा अधिक भव्य रूप में मनाने की तैयारी है। यहाँ अब एक नया शानदार पथ भी देखने को मिलेगा और इस पथ पर लगे स्तंभ भी विशेष हैं। इसके अलावा सरयू घाटों का सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है।

0: रामनगरी अयोध्या लगातार सजती सवरती जा रही है। यहाँ लगातार विकास के काम चल रहे हैं। धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का कायाकल्प होता जा रहा है। अब यहाँ करीब 15.5 किलोमीटर लंबा भव्य 4-लेन मार्ग विकसित हो रहा है। इस मार्ग को त्रेता युग के भावुक अध्याय से जोड़ा जा रहा है, जहाँ भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की स्मृतियाँ बसी हुई हैं। धर्म पथ से महाराज दशरथ के समाधि स्थल तक पहुँचने वाला ये मार्ग अयोध्या की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ ही श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के बीच त्रेता युग की अनुभूति कराने वाला होगा। इस दशरथ पथ पर 30 मुद्रा स्तंभ स्थापित किए गए हैं। करीब हर 500 मीटर की दूरी पर एक स्तंभ लगाया गया है, जिनमें 15 स्तंभों पर योग मुद्रा और 15 पर शस्त्र मुद्रा प्रदर्शित की गई है। हर स्तंभ करीब 6 फीट ऊंचा है। इस मार्ग पर आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी और करीब 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ और बीच में डिवाइडर भी होगा। करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पथ को दीपोत्सव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से और अयोध्या नगरी को सीधे जोड़ने वाला एकदम निपट सरजू के माझे में ये बनाया गया यह पथ है, जिसपे विभिन्न धार्मिक आकृतियां अनुकृतियां बनाई गई हैं, जिससे लोगों को एक एक धार्मिक वातावरण वहां प्राप्त होगा। बहुत सुंदर पथ बन रहा है। आज के पहले वो अयोध्या का माझा क्षेत्र था।
0: अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी के साथ साथ धार्मिक स्थलों के साथ साथ सरयू घाटों का स्वरूप भी लगातार निखारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या का आरती घाट इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाट पर तैयार की गई मंदिर नुमा अनोखी संरचना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
2: अयोध्या में सरयू माँ की जो आरती होती थी वो इन्हीं तख्तों से होती थी और यहीं पे लोग खड़े होते थे, यहीं पे आरती स्थल है। ये जो पूरा एंगल लगा है यही वो स्थल हुआ करता था। जो आकृति बनाई गई है वो आरती स्थल की है और वहीं से माँ सरयू की जो आरती है वो यहीं से होगी। ये वो स्थल है जहाँ पे अब खड़े होके वो आरती होगी, जो बारिश से बचाएगा। रात के अंधेरे में ठंड है तो ठंड से बचेंगे लोग, तो यही वो स्थल है जहाँ पे मंदिर की आकृति दी गई है। खास आकृति के द्वारा जो है पूरा आरती स्थल जो है मंदिर में भी नजर आएगा। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको खड़े होने में खास दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता था वो नहीं होगा।
0: आरती घाट का बदलता स्वरूप इस बात की तस्वीर पेश करता है कि अयोध्या में धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन सुविधाओं और सौंदर्यकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे आकर्षण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए रामनगरी की यात्रा को और यादगार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रामनगरी में इस वर्ष 7 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के माध्यम से विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है और विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के पुल से लेकर लक्ष्मण घाट तक करीब 1 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूलों की विशेष सजावट की जाएगी। शाम ढलते ही दीपों की लौ और रंगीन रोशनी से सरयू तट का नजारा अलौकिक दिखाई देगा।
2: यही वो स्थल है जिसको राम की पैड़ी कहते हैं और जहाँ पे एक भव्य नजारा होता है उस वक्त का, जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे। तो वो समय था दीपावली का, तो उसके हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का खास आयोजन होता चला आ रहा है। इस बार उस दीपोत्सव को और भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को खास रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
0: सरयू घाटों पर भव्य महाआरती का आयोजन भी प्रस्तावित है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और दीपों की रोशनी के बीच होने वाली महाआरती में अवध की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। सरयू की लहरों के बीच हजारों दीपों की जगमगाहट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी।
1: घाट के रेनोवेशन का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य लगातार चल रहा था, जिसको यूपीपीसीएल कर रहा था, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्य हो रहा था, तो वो भी लगभग कम्प्लीशन पे है। वो कार्य हो जाएगा तो हमारा दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो साफ सफाई के कार्य हैं, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, जितने भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा रिनोवेट किया जा रहा है।
0: प्रशासनिक स्तर पर दीपोत्सव की छटा को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। योजना के अनुसार सभी काम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का दीपोत्सव और आकर्षक और यादगार होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए बात करते हैं लद्दाख के खारदुंगला दर्रे की। समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह पर पहुंचना पहले आसान काम नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ों के बीच उबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से पर्यटकों की संख्या कम रहती थी, जबकि यहां हर मोड़ हर कदम पर रोमांच है। इस बीच बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक संकल्प ने लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों की तस्वीर बदल दी है। देश के सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की जिम्मेदारी निभाने वाली बीआरओ ने सड़कों का ऐसा जाल बिछाया कि लद्दाख के कई इलाकों में पहुंचना आसान हो गया, जिसकी वजह से लद्दाख में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है।

0: दुंगला टॉप तक पहुंचना कुछ साल पहले मुश्किल रोड ट्रिप मानी जाती थी। वजह साफ है, ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर मार्गों में शुमार है। यहाँ ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है, ज्यादातर समय मौसम खराब रहता है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह तक पहुंचाने वाली सड़क से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन पहले की तुलना में उबड़ खाबड़ रास्तों की जगह अब बेहतरीन सड़कें बन चुकी हैं, जिसकी वजह से बाइकर्स, एडवेंचर के शौकीनों के अलावा आम पर्यटकों के लिए ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है।
1: इस वक्त हम पहुंचे हैं खरदुंगला टॉप पे, जो कि दुनिया का सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट है। 17,982 फीट है और बहुत कुछ यहां बदला है पिछले 20 साल और खासकर पिछले 5 से 8 साल में। हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट और ऐसा आपको लगता है कि जैसे लिटरली आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, बादलों के बीच में हैं आप। और ये जो है चैलेंजेस से भी भरा है ये इलाका, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं बहुत कम हैं और यहाँ एडवाइजरी ये है कि 5 मिनट से ज्यादा आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, जो यहाँ कमी है ऑक्सीजन की, वो आपके हेल्थ जो है खराब कर सकती है। लेकिन यहाँ की तरफ अगर आपको व्यू दिखाएंगे तो स्पेक्टेक्युलर है, अद्भुत है, क्योंकि यहाँ आते आते भी धीरे धीरे जो आप ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं और जो आसपास नजारे हैं वो जो है ऐसी मेमोरीज हैं जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगी। यहाँ की तरह अगर आप देखेंगे बिल्कुल पैरेलल हैं आप जो पहाड़ की श्रृंखला है, अलग अलग पहाड़ यहाँ पे हैं, कुछ नो कवर्ड भी हैं और उन्हीं के बीच आप जो हैं पहुंच जाते हैं, तो बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन 20 साल में जैसे बात कर रहा था कि बहुत कुछ बदला है, 20 साल पहले जब मैं आया था इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं था, उसके साथ साथ जो है रोड्स भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन सड़कें बहुत अच्छी बनी है।
0: खारदुंगला पार करने के बाद खूबसूरत नुब्रा घाटी शुरू होती है, जो अपनी हरियाली और नजारों के लिए जानी जाती है। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बसी इस घाटी को लद्दाख की फूलों की घाटी कहा जाता है। खारदुंगला टॉप से 150 किलोमीटर दूर है नुब्रा वैली, जो अपने अनोखे ठंडे रेगिस्तान, दो कुबड़ वाले ऊँटों और प्राचीन बौद्ध मठों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। खारदुंगला तक पहुंचने वाला हर पर्यटक ये नज़ारे देखकर ही लौटना चाहता है।
1: ऑपरेशन विजय के तहत यहाँ तक जब हम आए तो बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया सड़कें हैं और उसी वजह से जो आसपास आप देख रहे हैं उस तरफ भी आपको दिखाऊंगा कि टूरिज्म भी यहाँ बड़ा है, लोग बहुत ज्यादा यहाँ आ रहे हैं और ये एक सर्किट है, क्योंकि अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो नीचे खरदुंग और उसके आगे फिर नुब्रा वैली है जो काफी ज्यादा फेमस है। नुब्रा वैली के जो है पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहां आप पेंगोंग सो भी पहुंच सकते हैं, तुरतुक भी जा सकते हैं, तो एक पूरा सर्किट बन गया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो है फोटोग्राफ्स उठा रहे हैं और उसके साथ साथ काफी ज्यादा रश है। विंटर्स में यहाँ आना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सड़कें जो हैं बहुत अच्छी बनी हैं।
0: बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में ऑल वेदर रूट यानी ऐसी सड़कें तैयार कर दी गई हैं जो साल के 12 महीने और हर मौसम में दुर्गम जगहों को आपस में जोड़ती है। दुर्गम पहाड़ियों से होकर गुजरने वाला ये मार्ग दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर और नुब्रा घाटी तक भारतीय सेना के लिए हथियार, राशन और जरूरी रसद पहुंचाने का काम आसान करता है।
1: डिफेंस के हिसाब से भी जो पिछले 6-7 साल से जो चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ बढ़ा है ईस्टर्न लद्दाख में, गलवान में जो हुआ, उसके बाद से एक पूरा फोकस है सरकार का कि सड़कें जो हैं ऐसी बनी कि पूरे साल की कनेक्टिविटी रहे, पूरे साल तक जो है एलएसी के अलग अलग इलाके डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कनेक्टेड रहे और वो मिशन जो है अभी चल रहा है। लेकिन उसके तहत लद्दाख आप कहीं भी जाएं सड़कें बहुत अच्छी बनी है, कनेक्टिविटी जो है बहुत बेहतर हुई है। इसके आगे जैसे खलसर और जैसे मैंने कहा नुब्रा, फिर आगे अगर आप 150 किलोमीटर आगे की बात करें तो सियाचिन बेस कैंप भी है, तो अद्भुत नजारे। 18,000 से ज्यादा फीट अबाउ सी लेवल हम है इस वक्त खरदुंगला और बहुत खूबसूरत नजारे, लेकिन एक चैलेंजिंग सफर जो आपको यहाँ तक लाता है।
0: हाल ही में लेह में लद्दाख मैराथन का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे कठिन मैराथन प्रतियोगिताओं में 8,000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया, जिसके समापन के बाद पूरे उत्साह से कई धावक अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए

0: खारदुंगला टॉप तक भी पहुंची।
1: रोड वगैरह बहुत अच्छा हो गया है, आने के लिए बहुत फैसिलिटीज हो गई है पहले के कंपैरिजन में।
2: यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा ऑक्सीजन लेवल कम है, लेकिन लोग फिटनेस रखेंगे तो यहाँ आ सकते हैं। रोड बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा माहौल बनाया है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है।
0: साफ है कि लद्दाख में सीमा सड़क संगठन भारत की सुरक्षा, सामरिक मजबूती और दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीमा सड़क संगठन के संकल्प, बेमिसाल इंजीनियरिंग और कठिन परिश्रम की वजह से लद्दाख में बुनियादी ढांचे का लगातार कायाकल्प हो रहा है, जिसकी वजह से लद्दाख की दुर्गम भौगोलिक जगह पर शून्य से नीचे के तापमान में पर्यटन को भी नई ऊंचाई मिल रही है, जिसकी वजह से इस साल लद्दाख में पर्यटकों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो लद्दाख के विकास और स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी जरिया है। लद्दाख के खारदुंगला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: क्या सड़क चलते रास्ते में रुमाल मिलना शुभ शकुन है? क्या यात्रा पर जाते समय दूध का दिखना शुभ होता है? क्या यात्रा पर जाते समय मछली देखना अशुभ होता है? क्या होते हैं शकुन अपशकुन और क्या होता है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे शकुन और अपशकुन के बारे में, अलग अलग तरह के शकुन अपशकुन क्या होते हैं और इनका प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:59 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र शाम के 5:22 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में, बुध कन्या राशि में, चंद्रमा और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल मिथुन राशि में और बृहस्पति फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शकुन और अपशकुन के बारे में, क्या होते हैं ये। देखिए, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के संकेत लगातार हमको किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। अगर ये संकेत शुभ हैं, सकारात्मक हैं, तो इसको लोग शकुन कहते हैं और अगर नकारात्मक है तो इसको अपशकुन माना जाता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी शकुन अपशकुन का उल्लेख पाया जाता है। शकुन और अपशकुन कोई शुभ या अशुभ प्रभाव पैदा नहीं करते, ये केवल इस बात की सूचना देते हैं कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें भाग्य आपकी कितनी सहायता करेगा या भविष्य में जो होने वाला है उसका संकेत क्या है। शकुन अपशकुन कभी कभी सीधी तरह से घटनाओं के बारे में बताते हैं और कभी कभी शकुन और अपशकुन को समझना पड़ता है कि वो दरअसल क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। शकुन अपशकुन पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, करियर में अभी रुकावट रहेगी, पारिवारिक समस्या का ध्यान दें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि शकुन अपशकुन के लक्षण क्या हैं। देखिए, कोई भी संकेत अगर अचानक घटे, आकस्मिक रूप से घटे, तो उसको शकुन या अपशकुन समझना चाहिए। अगर कोई संकेत आपको बार बार मिल रहा है तो समझना चाहिए कि ये सत्य के ज्यादा निकट है, ये घटना के बारे में पूरी तरह बता रहा है। कभी कभी कुछ चीजों को हम शकुन या अपशकुन के लक्षण समझ लेते हैं, लेकिन हर बार हर संकेत शकुन अपशकुन नहीं होता, आम तौर पर हर बार ऐसा नहीं होता। ईश्वर या देवी देवताओं से संबंधित संकेत ज्यादातर शकुन अपशकुन नहीं होते। आपको स्वप्न में देवी देवता दिख गए, आप मंदिर में पहुंचे, फूल आपके हाथ में गिर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शकुन अपशकुन है, ये आपकी भावना है, आपका इमोशन है, जिसकी वजह से आप ऐसा समझ लेते हैं। अलग अलग शकुन और अपशकुन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। फल सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको अलग अलग शकुन और अपशकुन के अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। अचानक अगर आईना टूट जाए, दर्पण टूट जाए, गिर जाए, या कांच का कोई बर्तन या कांच टूट जाए, तो इसका मतलब जिस काम से जा रहे हैं उस काम में बाधा आएगी। अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, यात्रा के समय शव दिखना, मछली दिखना या पान का पत्ता दिखाई देना यात्रा की सफलता बताता है, ये शकुन है, बड़ा शुभ माना जाता है। यात्रा के समय अगर आपको दूध दिखाई दे जाए या खाली बर्तन, खाली बाल्टी दिखाई दे, तो ये यात्रा रद्द होने की या बाधा आने की सूचना देता है। आप सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रहे हैं और आपने शर्ट के गलत बटन लगा लिए, उल्टे बटन लगा लिए, तो ये लापरवाही की वजह से असफलता की सूचना देता है। राह चलते हुए, सड़क चलते हुए आपको हेयर पिन मिले, बटन मिले, रुमाल मिल जाए, तो ये किसी नए संबंध की शुरुआत की सूचना देता है। ऐसा होने पर विवाह की, प्रेम की या नए मित्रता की संभावना जीवन में बनती है। आप कोई बात कर रहे हैं, उस समय अगर घंटी बजे या शंख की ध्वनि सुनाई दे तो काम जरूर बन जाता है। आपके बात करते समय मंदिर से या कहीं से भी शंख की आवाज आए, घंटी की आवाज आए, तो जिस काम की बात कर रहे हैं वो काम आपका बन जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर पर विशेष ध्यान दें, पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, शकुन अपशकुन का जो नाम आया वो दरअसल शकुन नाम का एक पक्षी होता है। उस पक्षी के गति को देखकर यात्रा के समय, काम के समय, उस पक्षी की पोजीशन को देख करके भी गणनाएं शुरुआत में की जाती थी और दरअसल वही वास्तव में शकुन अपशकुन होता था। आपने कथा पढ़ी होगी ना कि शकुंतला को शकुन नाम के पक्षियों ने पाला था, इसीलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा, क्योंकि शकुन पक्षियों ने उसका पालन पोषण किया था। तो मुख्य बात यह है कि पहले के समय में शकुन पक्षी की चाल को देखकर शुभता और अशुभता को जानते थे और इसको शकुन अपशकुन कहा जाता था। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। शादी विवाह के या वैसे भी निमंत्रण पत्र जो होते हैं, जिन पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उनको इधर उधर मत फेंकिए, अन्यथा आपके जीवन से शुभता कम होनी शुरू हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: तो चलिए आपको दिखाते हैं तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
8: इतने प्यारे बाल गणेश, जिसने भी देखा बप्पा का ये रूप देखता ही रह गया। एक छोटा सा बच्चा लेकिन मेकअप और रूप ऐसा कि मानो खुद बाल गणेश सामने आ गए हों। चेहरे की मासूमियत और बप्पा वाला रूप देखते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। इस नन्हे से बच्चे का ये अद्भुत रूप लोगों को खूब पसंद आ रहा है, जिसने भी देखा बस यही कहा, गणपति बप्पा मोरिया। कठपुतली का खेल आपने अक्सर देखा और सुना होगा, लेकिन इस कलाकार की कलाकारी जरा देखिए, गाने की धुन बजती है और उसके साथ ही कठपुतली ऐसे थिरकने लगती है जैसे उसे हर सुर का पता हो। कलाकार अपने हुनर से कठपुतली के हर कदम को इतनी खूबसूरती से कंट्रोल कर रहा है कि देखने वाले बस देखते रह गए। आसपास मौजूद लोग भी इस अनोखी कला को देखकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। चंपी हो रही है और हो भी क्यों ना, काम का प्रेशर जो इतना रहता है। अब देखिए इस प्यारे बच्चे को आराम से बैठकर बिना किसी चिंता के अपने सिर की मालिश का पूरा आनंद ले रहा है। जैसे जैसे चंपी हो रही है बच्चे के चेहरे पर सुकून और खुशी भी बढ़ती जा रही है। ना कोई टेंशन, ना कोई जल्दबाजी, बस आराम ही आराम। बच्चे के इस अंदाज को देखकर शायद आपका भी मन करेगा कि एक चंपी तो बनती है। मौसम चाहे जैसा हो बस निकल पड़ो अपने रास्ते पर। अब इन आंटी को ही देख लीजिए, अपने स्कूटर पर सवार होकर बड़े आराम से निकल पड़ी हैं। मौसम भी सुहाना है और रास्ता भी इतना खूबसूरत कि सफर का मजा दोगुना हो जाए। आंटी भी बिना किसी चिंता के अपनी स्कूटर राइड का जमकर आनंद ले रही हैं। चेहरे पर खुशी, रास्ते पर मस्ती और मौसम का साथ, यानी सफर छोटा हो या बड़ा, एंजॉयमेंट पूरा होना चाहिए। लद्दाख का ये वीडियो देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे और उनका इतना प्यारा डांस की नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। डांस के हर स्टेप में क्यूटनेस है, चेहरे पर मुस्कान है और आंखों में मासूमियत। इन नन्हे बच्चों की खुशी देखकर वहां मौजूद लोग भी खुश हो रहे हैं। रंग बिरंगे कपड़ों से सजे ये बच्चे जब साथ में थिरकते हैं तो पूरा माहौल ही खूबसूरत हो जाता है। सच में ये नन्हे सितारे किसी परी की कहानी से कम नहीं लग रहे।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
9: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला। जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा के चढ़ावे की गिनती शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच खोले जा रहे नगदी और आभूषणों से भरे पात्र। भक्त बप्पा के सामने रख रहे मन की मुराद। भोले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा के दर्शन। शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान। आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना जारी। महाराष्ट्र के जालना में पेड़ पर साकार हुए गजानन। गणेशोत्सव के दौरान स्कूली छात्रों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, फूल पत्तियों से किया बप्पा का श्रृंगार। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनवाएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को संजोने की तैयारी। एरिए को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा। 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय। कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी।

0: शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक अनूठे गणेश भक्त की भी है जिन्होंने घर में सजाई गणपति की 5000 मूर्तियां।
1: पुराने जमाने में राजाओं के वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने की कहानियां खूब सुनी होगी आपने, लेकिन उस पर आज भी कोई अमल कर रहा है ये सुनकर आपको यकीनन हैरानी होगी। तभी तो ये वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है। इस वीडियो में जो भिखारी नजर आ रहा है वो असल में महाराष्ट्र के सबसे अमीर विधायकों में शुमार पराग शाह हैं। ये मुंबई के घाटकोपर से विधायक हैं। इनकी संपत्ति करीब 3300 करोड़ बताई जा रही है। अब सवाल यही है कि जब इनके पास पैसा भी है और पावर भी, तो फिर ये भिखारी बनकर क्यों घूम रहे हैं? पराग शाह के मुताबिक उनके गुरु नम्र मुनि ने उन्हें एक दिन भिखारी बनकर जीवन का अनुभव लेने की सलाह दी थी, जिस पर अमल करते हुए वो कुछ घंटों के लिए उस जिंदगी का हिस्सा बने। खास बात ये रही कि जिन जिन जगहों पर पराग शाह भिखारी बनकर गए थे, वहां से लौटने के बाद उन्होंने अपना मेकअप उतारा और दोबारा उन्हीं जगहों पर पहुंचे, सबको समझने की कोशिश की और अभाव में भी इंसानियत की मिसाल कायम करने वाले दो लोगों बबलू और मोहम्मद समद को सम्मानित किया। पराग शाह के मुताबिक इस अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया है। ये तस्वीरें लेह के एसएनएम अस्पताल की हैं, जहां लगा है एक खास मेडिकल कैंप। 17 सितंबर तक चलने वाले इस मेडिकल कैंप की खासियत ये है कि यहां दूर दराज के दुर्गम इलाकों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों का इलाज करने के लिए एम्स दिल्ली के काबिल डॉक्टर्स पहुंचे हैं, वो भी मुफ्त इलाज के लिए। मकसद यह है कि जो लोग भौगोलिक और आर्थिक मजबूरी के कारण इलाज के लिए लद्दाख से बाहर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं जा पाते हैं, उन तक वो खुद पहुंच सकें और उन्हें विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा सकें। इस मेडिकल कैंप में एम्स दिल्ली के 33 से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स और सर्जन हृदय रोग, कैंसर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेत्र रोग, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जटिल सर्जरी भी मुफ्त में की जा रही है। ये मेडिकल कैंप अशोका मिशन और लद्दाख प्रशासन के सहयोग से आयोजित की गई है। पहाड़ों पर चढ़ाई करते ये 9 साल के विहान चेतरिया हैं। गुजरात के जामनगर से आते हैं। उम्र कम है लेकिन हौसला देखिए इनका। हिमालय की 6,111 मीटर ऊंची माउंट यूनाम चोटी फतह कर ली और इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले ये दुनिया के दूसरे यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं और अब इनके हौसले की खूब चर्चा है। माउंट यूनाम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक मशहूर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण शिखर है।
2: फ्यूचर गोल से 7 समिट करना और माउंट एवरेस्ट।
3: अरे वाह।
1: भगवान गणेश के प्रति ऐसी दीवानगी, उनके रूप का ऐसा सम्मोहन कि एक शख्स ने अपने घर को गणेश प्रतिमाओं का संग्रहालय ही बना डाला। ये शख्स है मध्य प्रदेश में इंदौर के रहने वाले राजकुमार शाह। ये पिछले 23 साल से गणपति की प्रतिमाएं जुटा रहे हैं और अब तक 5000 से ज्यादा प्रतिमाएं जमा कर चुके हैं। इनमें देश के अलग अलग हिस्सों से लाई गई प्रतिमाएं ही नहीं बल्कि विदेशों से लाई गई प्रतिमाएं भी शामिल हैं। राजकुमार के मुताबिक बचपन में वो गणेश जी के कार्ड इकट्ठा किया करते थे। जब वे कार्ड खराब हो गए तो उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया और फिर उन्होंने गणेश प्रतिमाओं के संग्रह का ये तरीका ढूंढा जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। गणेशोत्सव पर भगवान गणेश के अलग अलग भाव भंगिमाओं और थीम वाली मूर्तियां न सिर्फ लोगों को आकर्षित कर रही हैं बल्कि कुछ मूर्तियों की सजावट खास संदेश भी दे रही है। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बापा की ये सुंदर मूर्ति, जो परंपरा के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है। विघ्नहर्ता की ये सुंदर मूर्ति वन विभाग के BRTC यानी बांस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के विद्यार्थियों ने तैयार की है। बैम्बू टू बापा पहल के तहत तैयार इस आकर्षक प्रतिमा को BRTC परिसर में विधि विधान के साथ स्थापना की गई। इस दौरान पूरा परिसर गणपति बापा मौर्य के जय घोष से गूंज उठा।
0: और अब बात करते हैं रेगिस्तान में ड्रोन की उड़ान की। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन का आयोजन हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश की रक्षा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी 20 से अधिक कंपनियां अत्याधुनिक मानव रहित ड्रोन सिस्टम और एंटी ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन कर रही है। पोखरण के रेगिस्तानी इलाके में हो रहा ये आयोजन रक्षा क्षेत्र में तेजी से बदलती तकनीक, स्वदेशी क्षमता और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

0: राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की तपती रेत पर भारतीय वायुसेना ने भविष्य के आधुनिक युद्ध की एक ऐसी खौफनाक और अत्याधुनिक तस्वीर पेश की है जिसने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन में भविष्य के युद्ध की नई तकनीकों की झलक देखने को मिल रही है। ये आयोजन सिर्फ ड्रोन की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है बल्कि कंपनियों और स्टार्टअप्स की मानव रहित तकनीकों यानी अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज को वास्तविक परिस्थितियों में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए परखा जा रहा है। ये आयोजन किसी सामान्य डिफेंस एक्सपो जैसा नहीं है जहां सिर्फ हथियारों के मॉडल दिखाए जाते हैं। पोखरण की भीषण गर्मी, धूल, लंबी दूरी, कमजोर नेविगेशन और सिग्नल जामिंग जैसी वास्तविक परिस्थितियों में भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों के ड्रोन्स का लाइव टेस्ट लिया गया। इसके जरिए भारतीय वायुसेना ये देखना चाहती है कि लैब में पास होने वाले ये स्वदेशी ड्रोन वास्तविक युद्ध क्षेत्र के रेगिस्तानी माहौल में कितनी सटीकता से दुश्मन पर कहर बरपा सकते हैं। इस ड्रोनाथॉन में ड्रोन, काउंटर ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी तकनीकों पर फोकस किया गया है। इसका मकसद मानव रहित क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मजबूत करना और उद्योग जगत को इस क्षेत्र से जोड़ना है।
1: इस इवेंट में 20 से ज्यादा ड्रोन कंपनीज ने शामिल हुई हैं और हम भी एज JSW डिफेंस शामिल हुए हैं। हमारा प्रोडक्ट है VBAT। ये एक पूरी तरह से भारत में निर्मित 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक ड्रोन है और ये ड्रोन बहुत ही काबिल ड्रोन है। ये पूरा ही मेड इन इंडिया है और इसमें 90% से ज्यादा हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज हैं। एंड ये जो ड्रोन है ये किसी भी क्लास ऑफ ड्रोन लाइक अपना प्रीडेटर उस टाइप के ड्रोन से के कंपैरिजन में काम करता है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पेलोड्स अब कैरी करता है। ये हमारा सबसे बेस्ट अब ड्रोन है और किसी भी विश्व के ड्रोन में से अगर हम कंपेयर करते हैं ये एक बहुत ही अच्छा ड्रोन है। इस टेक्नोलॉजी से हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके कारण भारत आत्मनिर्भर होगा।
0: जैसलमेर में चल रहे ड्रोनाथॉन में देश की 20 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये कंपनियां 3 दिवसीय आयोजन के दौरान जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपने उत्पादों और प्रणालियों का लाइव प्रदर्शन कर रही हैं। ये आयोजन भारत की स्वदेशी तकनीक और रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही क्षमताओं को सामने लाने का भी एक बड़ा मंच है। इसमें तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच एक तालमेल बनाने की कोशिश है, साथ ही उभरती रक्षा चुनौतियों के लिए परिचालन जरूरतों को व्यवहारिक और स्वदेशी समाधानों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है।
2: हमने यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ ड्रोनाथॉन 2026 में पार्टिसिपेट किया है राजस्थान जैसलमेर में। हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं हमारा गरुड़ा नेविगेशन मॉड्यूल जो कोई किसी भी ड्रोन को GPS के बगैर कैमरा यूज करते हुए नेविगेट करने का कैपेबिलिटी देता है। अभी इसका ऑपरेटिंग एटीट्यूड हमने इसको 1 किलोमीटर हाइट पे बनाया है और ये 100 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी ड्रोन को जाने के लिए विद कैमरास के साथ कर सकता है। और हमारा मेन स्पेशलिटी है कि हम ड्रोन नहीं बनाते, हम ड्रोन के लिए एक मॉड्यूल बनाते हैं जो किसी भी ड्रोन, जैसे अभी मिलिट्री में हजारों ड्रोन खरीद रहे हैं, बट ड्रोन को जब वॉर जैसा सिचुएशन हो जाएगा तब बिना GPS और जैमर के एनवायरमेंट में जाके फाइट करना पड़ेगा। ये पूरा इंडिया में बना हुआ है, इसका पूरा सॉफ्टवेयर हमने इंडिया में बनाया है लोकली हैदराबाद में हमारा पूरा टेस्टिंग फैसिलिटी है जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। ये मॉड्यूल आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा हिस्सा बनने का हम होप कर रहे हैं।
0: ड्रोनाथॉन में काउंटर ड्रोन यानी NTUS तकनीक पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रणालियों का उद्देश्य संभावित खतरा पैदा करने वाले ड्रोन की पहचान, निगरानी और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता पर जोर देना है, क्योंकि बदलती सुरक्षा परिस्थितियों में ड्रोन के साथ साथ उनसे बचाव की तकनीक विकसित करना भी जरूरी हो गया है। ऐसे में पोखरण में अलग अलग तकनीकों का एक साथ प्रदर्शन रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ड्रोनाथॉन रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य ऐसे स्वदेशी और बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले समाधानों की पहचान करना है जो बदलती परिचालन जरूरतों को पूरा कर सके। इस पहल के जरिए भारतीय वायुसेना की मानव रहित क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ देश के स्वदेशी रक्षा तकनीकी इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये आयोजन मानव रहित तकनीक के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: हम सब ने यहाँ ड्रोनाथॉन 2026 में की प्रतियोगिता में हमने पार्टिसिपेट किया और हमें यहाँ पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। इस ड्रोन की प्रतियोगिता में आज 23 से ज्यादा कंपनियों ने अपने अपने ड्रोन को उड़ाकर भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाया है। इसमें हमारा ड्रोन जो कि आर्गस X1 है, जो कि निभे कंपनी जो पुणे में स्थित है उसके द्वारा निर्मित है, और इस ड्रोन ने आज यहाँ पे फ्लाई किया और यहाँ पर उसने अपनी सैन्य क्षमताओं को दिखाया। और इसमें हमने देखा कि हमारा जो ड्रोन है वो EW वॉरफेयर के लिए रेजिलिएंट है और इसमें EO पॉड लगे हुए हैं और हाई एडवांस टेक्नोलॉजी से ये ग्रसित है। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि अब ये जो हमारा भारत है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चुका है और मेक इन इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न था वो भी हम अब पूरा करने की ओर बढ़ चुके हैं।
0: ड्रोनाथॉन में इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस ड्रोन्स के साथ साथ लॉयटरिंग म्यूनिशन की क्षमताओं को भी परखा गया। इसके साथ ही दुश्मन के ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए एडवांस्ड काउंटर US तकनीकों का भी प्रदर्शन हुआ। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का रेगिस्तानी भूगोल, गर्म मौसम, तेज हवाएं और खुला इलाका मानव रहित प्रणालियों के प्रदर्शन के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता है। ऐसे में माहौल में ड्रोन की उड़ान नियंत्रण, संचार, नेविगेशन और निगरानी क्षमता का प्रदर्शन तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उद्योग जगत की तकनीकों को वायुसेना की परिचालन जरूरतों से जोड़ना और स्वदेशी समाधानों के विकास को बढ़ावा देना है।
4: यहाँ पे हम ड्रोनाथॉन कंडक्टेड बाय एयरफोर्स पार्टिसिपेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने एक टेक्नोलॉजी शो करी है विच इज VTOL ड्रोन। तो यहाँ पे मैक्सिमम आज की ड्रोन इंडस्ट्री चाइनीज या फिर नेबर कंट्रीज के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और कहाँ ना कहाँ हम वो डिपेंडेंसी की वजह से इंडियन आर्मी को मजबूत नहीं कह सकते। और वही मजबूती लाने के लिए हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि 100% इंडिजिनियस प्रोडक्ट बनाया जाए और अब तक हमने 97% इंडिजिनियस प्रोडक्ट का अचीवमेंट किया हुआ है। जहाँ पे आप एक देख सकते हो प्रोडक्ट कॉल शौर्या जो कम्प्लीटली इन हाउस बनाया हुआ है सारे एरोस्पेस की तरफ से, जहाँ पे इसका पेलोड कैपेसिटी अराउंड 5 kg तक का है एंड ये 5 kg के पेलोड के साथ 200 km तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। एडिशनली ये एक मल्टी मिशन ड्रोन हमने बनाया हुआ है जिस कारण ये ड्रोन हम सर्वेलेंस, मैपिंग, इंस्पेक्शन, डिलीवरी, कामाकाजी, डू ऑफ ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए हमारे डिफेंस फोर्सेस को यूज कर सकते हैं।
0: दरअसल 14 से 16 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे भारतीय वायुसेना के पहले ड्रोनाथॉन में ये साफ हो गया कि आने वाले समय में आसमान की जंग सिर्फ पायलट वाले फाइटर जेट और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब ऑटोनॉमस ड्रोन, काउंटर ड्रोन शील्ड, लॉयटरिंग म्यूनिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम युद्ध के मैदान में जीत और हार तय करेंगे। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज ट्विटर।
5: और UPI से 2,000 रूपए तक पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: UPI से 2,000 रूपए तक पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि 2,000 रूपए तक के UPI पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं लगाएंगे। रुपए डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस छूट में शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी है। अगस्त में संसद से टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2026 पास होने के बाद UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। आशंका थी कि 2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जा सकता है। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट और जनपद न्यायालय के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने वकीलों को 5 लाख रुपए कैशलेस इलाज की सुविधा का ऐलान किया है। साथ ही अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख और अधिवक्ता की मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की आयु सीमा 60 साल से बढ़ाकर 70 साल करने की बात भी कही है। दिल्ली के सत्यनिकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनाएगी ताकि उनकी सुरक्षा और किफायती आवास की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
6: मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम ऐसे हॉस्टल्स बनाएंगे कि जहाँ देश भर से अलग अलग राज्यों से आने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को निश्चिंत होकर के यहाँ पर छोड़ सके।
0: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का दूसरा चरण आज से यानी 15 सितंबर से शुरू हो गया है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वहीं यात्रा शुरू होने के साथ ही हेलीकॉप्टर सेवाएं भी बहाल कर दी गई हैं। चमोली में यात्रा को लेकर सड़क मरम्मत और बुनियादी ढांचे को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए चरबासा में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मानसून सीजन के दौरान चारधाम यात्रा रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन बारिश कम होने के बाद यात्रा फिर से नियमित रूप से शुरू हो गई है। भारत अमेरिका का 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2026 उत्तराखंड के औली में शुरू हो गया है। 1200 सैन्यकर्मी ड्रोन और आधुनिक तकनीक के साथ दोनों सेनाएं संयुक्त युद्ध क्षमता और तालमेल बढ़ाने पर अभ्यास करेंगे। इसका उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों की ओर से करीब 600 सैन्यकर्मी अभ्यास में शामिल हो रहे हैं।
5: और अब बात गणेश उत्सव की। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है और गणपति पंडालों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं मंदिरों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। कहीं सोने चांदी और हीरो से सजे बप्पा नजर आ रहे हैं, तो कहीं बप्पा को राजशाही श्रृंगार की तरह सजाया गया है। वहीं अभी हाल ही में दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ था और अब उस समिट की थीम गणेशोत्सव में देखने को मिल रही है। इसमें ब्रिक्स समिट से जुड़े दृश्य और प्रतीकों को प्रस्तुत किया गया है और ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
0: गणपति उत्सव के रंग हर तरफ बिखरे हुए हैं, क्या आम और क्या खास। हर कोई बापा की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। गणपति बापा के स्वागत में कहीं आरती तो कहीं भजन हो रहा है। पुणे के उझर में श्री विघ्नहर गणपति का शाही अंदाज देखिए। यहां 200 साल पुराने करोड़ों के गहनों से विघ्नेश्वर का श्रृंगार किया गया है। पेशवाकालीन ठाट बाट में बापा के स्वर्ण रूप की झलक पाने के लिए यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। माथे पर

0: में जुन्नर में है, हम वही मंदिर में है, देख सकते हैं पीछे अभी गणेश जी का गणेश उत्सव शुरू है और इस उत्सव के दरम्यान बाप्पा को विभिन्न जो अलंकार है जो उसे सजाया जा रहा है और पीछे भी देख सकते हैं जितने भी भाविकाए आते हैं आज रात भर ये मंदिर खुला रहेगा और उनको बाप्पा का दर्शन मिलेगा। क्या है अलगपन इस भगवान का, इस मूर्ति का, और ये 5 दिनों का जो जन्मोत्सव शुरू है उसका क्या अलग सा माहौल है, हम पूछेंगे। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष है, हमें बताइए कितने दिन का ये उत्सव रहता है और ये 5 दिनों में क्या क्या होता है यहाँ?
1: ये गणेश उत्सव 4 दिन का रहता है। गणेश भगवान के जो बहन रहती है उसको लाने के लिए इधर से द्वार यात्रा निकलती है। पहली द्वार यात्रा उम्रत से चालू होते, दूसरी द्वार यात्रा धनेगांव, तीसरा सिरोली और चौथी है द्वार यात्रा आमराई। अपने बहन के उधर जाके उसके लेके आने के बाद इधर जन्मोत्सव उत्सव मनाया जाता है।
2: विघ्नहर गणपति का ये श्रृंगार साल में केवल 2 बार किया जाता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और माघ शुक्ल चतुर्थी के पावन मौके पर ही विघ्नहर बाप्पा का ये सुवर्ण रूप भक्तों के दर्शन के लिए सामने आता है।
1: ये मंदिर 1784-85 को बनाया गया है, तभी से पुराने अलंकार तो है और देवस्थान ट्रस्ट ने नया अलंकार भी बनाया, सब सोने का अलंकार इधर रहते हैं और वो सब पहनाए जाते हैं।
0: फिर एक बार मैं इधर देख कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो काका है आगे उनके हाथ में सबसे बड़ा वाला ये गहना है, उसका नाम क्या है, कौन से आभूषण बापा को पहने जाने वाले हैं अभी, ये सब पूछेंगे। हमारे साथ काका है, काका आपका नाम बताइए और ये कितना साल पुराना महोत्सव है जिसमें ये पूरे अलंकार पहनाए जाते हैं बापा को, कौन से है जो हम आरती होती है या भगवान के कुछ गीत होते हैं उनमें भी उन अलंकार का नाम लेते?
3: कुछ अलंकार जो है पेशवेकालीन है, उसमें कंटीहार है, एक चंद्रकोर है, उसमें पेशवेकालीन हीरा जड़ा हुआ है, बाद में वो जो वस्त्र पहना है वो रेशमी जरी के वस्त्र पहनाए जाते हैं, और उसमें स्वस्तिकार रहता है, बादाम हार रहता है, करगोटा रहता है, वो सब सोने का रहता है, और जो मुकुट रहता है उस पर भी वो पेशवेकालीन हीरा मौजूद है और वो पेशवेकालीन मुकुट पहनाया जाता है।
2: मान्यता है कि बाप्पा के स्वर्ण दर्शन से सारे विघ्न दूर होते हैं। ओझर के विघ्नहर गणपति का ये स्वर्ण रूप सिर्फ दर्शन नहीं, पेशवाई वैभव की जीवंत झलक है। ऐसा लग रहा है बाप्पा जैसे खुद राजा बनकर बैठे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर भगवान श्री गणेश का भव्य और मनमोहक श्रृंगार किया गया। यहां हीरे जड़ित नेत्र और लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी और हीरे से बने आभूषणों से भगवान गणेश का दिव्य श्रृंगार किया गया और भक्तों को विघ्नहर्ता के अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर यहां भगवान गणेश को 1,25,000 मोदक का भोग लगाया गया और उसके बाद यहां 10 दिवसीय उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं।
4: अभी नेत्र भी जो लगने से ऐसा लग रहा है कि सभी भक्तों को ऐसा लग रहा है कि भगवान गणेश जी महाराज उनकी तरफ देख रहे हैं और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं।
5: पंडित जी, 10 दिवसीय उत्सव के अंतर्गत क्या क्या उत्सव मनाए जाएंगे?
4: 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव के अंतर्गत रोजाना यहाँ पर भजन संध्या होगी, भगवान गणेश जी महाराज के यहाँ पर अलग अलग तरह के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, ड्राई फ्रूट के लड्डू, सौंठ के लड्डू, उड़द के लड्डू, और 18 तारीख के दिन बम्बई की प्रसिद्ध कलाकार प्रियाणी वाणी पंडित द्वारा यहाँ पर भजन संध्या प्रस्तुत की जाएगी। यह असाटी ग्रुप द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है मंदिर प्रबंध समिति के तत्वाधान में, और ऐसे 10 दिन तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, स्कूल के बच्चों के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
2: हैदराबाद के बेगम बाजार में गणपति बाप्पा का 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा का अनावरण किया गया। 48 किलो वजनी पंचधातु से बनी इस प्रतिमा को तैयार करने में 8 महीने का वक्त लगा और इसे 8 कुशल कारीगरों की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद बनाई है। सोने की चमक से दमकते बाप्पा का दिव्य स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
6: We have made this 24 carat gold plated Ganesha idol this year. We have been installing Ganesha from the past 2 years. This is our 3rd year. But this year, we thought of doing something special. So with the blessings of Ganesha, we have got this beautiful idol done. So this particular idol, it is made up of brass. This is brass metal. एंड वी हैव यूज्ड 5 डिफरेंट मेटल्स पंच धातु।

0: so that the idol gets more powers.
1: ऐसा ही भव्य श्रृंगार मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा का भी किया गया है। लालबाग के राजा का सोने का श्रृंगार अत्यंत भव्य और आकर्षक है, जिसमें सोने का मुकुट, हार, बाजूबंद और सोने के चरण भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं।
2: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, इस तरह की गूंज यहाँ पर गूंज रही है और सीधे अब लालबाग के राजा का आप दर्शन करें, बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहे हैं हर साल की तरह। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी खासियत इस बात को लेकर के है क्योंकि रामेश्वर की थीम दी गई है। आप बप्पा के पीछे का जो चलचित्र देखें वो भी रामेश्वर की तरह ही दिख रहा है, साथ ही साथ जिस मंदिर में वो इस समय विराजमान है चांदी से पूरी तरह से बनाया गया है। अब आप थोड़ा सा देखें कि इस बार शंकर भगवान को जोड़ा गया है इस थीम में, ऊपर बहुत ही ज्यादा मंदिर के सबसे ऊपर आप देख रहे हैं त्रिशूल रखा हुआ है और डमरू है और डायमंड से सजाया गया है।
1: आभूषणों की चमक से दमकता बाप्पा का ये अलौकिक स्वरूप भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान हर साल अलग अलग गणेश मंडलों में अनोखी थीम, भव्य झांकियां और कलात्मक सजावट देखने को मिलती है। इसी कड़ी में भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है।
3: गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहाँ पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
4: इस ईयर की थीम थी जो मेन पिलर्स थे तो वो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन और रेसिलेंस पे था, तो वही मैंने फोर पिलर्स यहाँ पे दर्शाए हैं ये गणेश उत्सव में।
3: पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम अनवाला कर रहे हैं और इस साल जो है ब्रिक्स समिट यहाँ पर बनाया गया।
1: देश की राजधानी दिल्ली हो या पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण हो, पूरे देश में गणेश उत्सव की दिव्य छटा देखने को मिल रही है। अलग अलग थीम पर सजे दिव्य पंडाल और बाप्पा की भव्य प्रतिमाएं भक्तों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। अब हैदराबाद के इस विशेष गणपति प्रतिमा को ही देख लीजिए जिसे कैंडी यानी टॉफी से तैयार किया गया है, साथ ही पूरे पंडाल को ही बच्चों की थीम पर सजाया गया है। बाप्पा के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई ये इको फ्रेंडली प्रतिमा बच्चों को खूब आकर्षित कर रही है। हर कोई बाप्पा के चरणों में शीश झुकाकर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहा है। इसी आस्था और भक्ति के बीच श्रद्धा की डोर बनकर हर तरफ गणपति बाप्पा मोरिया का जयकारा गूंज रहा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, पुणे से समिता रायचंद शिंदे और मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे।
5: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
1: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 778 अंक लुढ़ककर 74,004 पर बंद हुआ। वही निफ्टी भी 279 अंक फिसला, ये गिरकर 23,119 पर आ गया। सोने की कीमतों में गिरावट आई। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,000 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,54,400 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। 1 किलो चांदी की कीमत लगातार दूसरे दिन 2,34,600 रुपए पर स्थिर रही। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 42 पैसे की गिरावट आई। इससे है 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95 रुपए 96 पैसे हो गई।
5: फिल्म दारा का नया प्रोमो हुआ रिलीज, इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
1: विनायक चतुर्थी के मौके पर तमिल स्टार विक्रम की अगली फिल्म का चर्चा सामने आ गया है। मेकर्स ने टीजर जारी कर फिल्म का नाम पावर हाउस अनाउंस किया है। इससे पहले फिल्म को चियान 63 कहा जा रहा था। टीजर में विक्रम एक ऐसे शख्स के किरदार में नजर आ रहे हैं जो अपने परिवार के साथ नल्ला थम्बी कैटरिंग सर्विस चलाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो एक अंधेरे स्टोर रूम में पहुँचता है जहाँ दो लोगों को बंधक बनाया गया है। फिल्म 2027 में रिलीज होगी।
6: एटीट्यूड कैसे चेंज करोगे?
7: लड़की घर नहीं आई तो गलती लड़की की ही है।
6: पार्टी करती होगी, शराब तो पक्का पीती होगी,
7: क्या पता शायद बिजनेस भी करती हो।
1: करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म दायरा रिलीज की बेहद करीब पहुंच चुकी है। फिल्म का नया प्रोमो सामने आया है और सिनेमाघरों में दस्तक देने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। खास बात यह है कि दायरा में करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजी और तलवार जैसी दमदार फिल्में दे चुकी डायरेक्टर मेघना गुलजार और जंगली पिक्चर्स की तीसरी साझेदारी है। फिल्म को जंगली पिक्चर्स और पेन स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। छठे सोमवार को भी फिल्म मजबूती से सिनेमाघरों में टिकी हुई है और शानदार प्रदर्शन जारी रखे हुए है। गणेश चतुर्थी की आंशिक छुट्टी का भी फिल्म को फायदा मिला है। अब आज टिकट की कम कीमतों से फिल्म को एक और बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में माना जा रहा है कि दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी के बीच फिल्म के बिजनेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी पकड़ और मजबूत हो सकती है।
5: न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला। जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच खोले जा रहे नगदी और आभूषणों से भरे पात्र, भक्त बप्पा के सामने रख रहे मन की मुराद। भोले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के दर्शन। शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान। आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना जारी। महाराष्ट्र के जालना में पेड़ पर साकार हुए गजानन। गणेशोत्सव के दौरान स्कूली छात्रों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, फूल पत्तियों से किया बप्पा का श्रृंगार। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनवाएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को संजोने की तैयारी। एडीए को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा। 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय। कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। सरकार ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का किया ऐलान। 2,000 से ज्यादा यूपीआई लेनदेन पर देना होगा 0.4% चार्ज। आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए फ्री सुविधा। और चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: उम्र में भले ही बच्चा छोटा हो लेकिन टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाथ में पेन थामे ये बच्चा जिस बारीकी और सफाई से ओम नमः शिवाय लिख रहा है उसे देखकर हर कोई हैरान है। एक एक अक्षर को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि लिखावट में कहीं से भी बच्चे की उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बच्चे के हुनर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में कोई भी सीमा तय नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों और हौसला बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है। अब हौसले की इस खूबसूरत मिसाल को ही देख लीजिए। इस शख्स के हाथ नहीं है लेकिन इसके हौसले में जरा भी कमी नहीं है। जिस आत्मविश्वास के साथ ही अपने काम को अंजाम दे रहा है वो हर किसी के लिए प्रेरणा है। वीडियो देखकर लोग भी हौसले को सलाम कर रहे हैं। बचपन का नाम सुनते ही चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है क्योंकि बचपन में की गई शरारतें और मस्ती हमेशा याद रहती हैं। ऐसा ही कुछ इन बच्चों के साथ भी देखने को मिला। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे बारिश में घर लौट रहे थे। रास्ते के किनारे पानी बह रहा था तो बच्चों ने अपनी चप्पलों को पानी में तैराना शुरू कर दिया। चप्पल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बच्चे भी उसी के साथ चलते जा रहे थे। नजारा देख कर बचपन की यादें ताजा हो गयी। हमारे देश में टैलेंट और जुगाड़ की कोई कमी नहीं है और इसका एक शानदार उदाहरण इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक शख्स ने बाइक की मदद से खास तरह का रिक्शा तैयार कर दिया है। देखने में ये रिक्शा बिल्कुल बग्घी जैसा नजर आता है जिसमें लोग बैठकर सवारी कर सकते हैं, लेकिन इस रिक्शे की सबसे खास बात यह है कि इसे खींचने के लिए घोड़े की जगह बाइक का इस्तेमाल किया गया है। देसी जुगाड़ का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। लोग जहां आज भी पुराने जमाने की चीजों की बातें कर रहे हैं, वहीं इस महिला ने मानो भविष्य की तैयारियां भी से कर ली है। वीडियो में महिला कपड़े धोने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ करती नजर आ रही है जिसे देखकर लोग भी हैरान हैं। उनका ये तरीका देखकर सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि अब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। महिला किसानों के आइडिया और जुगाड़ की सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
5: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महानगरों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रशासन की अनदेखी की। बेंगलुरु जैसे सुख सुविधाओं वाले हाईटेक शहर में भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए नगर निगम से कई बार गुहार लगानी पड़ती, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी काम नहीं करते। बेंगलुरु में रहने वाले एक कंपनी के सीईओ ने फुटपाथ समस्या को लेकर अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया। भारत एग्री नाम की कंपनी के फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ दियालानी ने कोरमंगला इलाके में अपनी सोसाइटी के पास टूटे फुटपाथ को ठीक कराने के लिए नगर निगम से गुहार लगाई थी। आईटी से पढ़ाई करने वाले सिद्धार्थ का दावा है कि ईमेल व्हाट्सएप के जरिए कई बार शिकायत करने पर भी नगर निगम के अधिकारियों ने टूटे फुटपाथ को लंबे समय तक सही नहीं कराया। इसके बाद उन्होंने खुद ही पहल की और अपने खर्च पर सोसाइटी के बाहर टूटे हुए फुटपाथ की मरम्मत करवाई। सिद्धार्थ ने बताया कि इस काम को करवाने में उनके 2,700 रुपए खर्च हुए। इन पैसों से उन्होंने एक रैंप बनवाया जिससे कि व्हीलचेयर और स्ट्रोलर ले जाना और लाना आसान हो जाए। सिद्धार्थ ने अपनी पोस्ट में निखिल कामत और किरण मजुमदार शॉ जैसी हस्तियों को टैग करते हुए लिखा कि नागरिकों को मिलकर बेंगलुरु के दूसरे इलाकों में भी ऐसा बदलाव करना चाहिए। सिद्धार्थ के इस पोस्ट के बाद ऑनलाइन यूजर्स के बीच चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने सीईओ के काम की तारीफ की, साथ ही इससे जुड़ी कानूनी अड़चनों का भी हवाला दिया। एक यूजर ने कहा कि ये काम करने में बेंगलुरु के नगर निगम के 5 लाख रुपए खर्च होते। नगर निगम के अधिकारी पब्लिक प्रॉपर्टी में बदलाव करने के लिए आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। एक दूसरे यूजर ने सवाल किया कि हम भारी टैक्स क्यों देते हैं जब हमें फुटपाथ भी खुद ही ठीक करना पड़ रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बेंगलुरु प्रशासन की काफी आलोचना हो रही है और लोग शहर के बुनियादी ढांचे को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बेंगलुरु की तरह ही दूसरे शहरों में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती। इस मुद्दे पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
9: बनवाना देखो, आम बंदा जो मिडिल क्लास है वो तो बनवा नहीं पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो पहले अपना परिवार चलाएगा या ये सब चीज़ें करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज की डेट में हाल है मार्केट में जॉब्स का या किसी तरह भी कह लो, तो उसके लिए फैमिली पहली प्रायोरिटी, बाद में वो सब चीज़ों को देखेगा।
10: एक तरह से देखा जाए तो जनता तो मतलब काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो रही है और वो खुद काम करने की कोशिश कर रही है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। पर दूसरी तरफ देखिए तो गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें करनी चाहिए, और बहुत सारे माध्यम हैं जैसे रील्स के माध्यम से भी आजकल लोग चीज़ें कर ही रहे होते हैं, तो वैसे भी गवर्नमेंट तक बात पहुँचाई जा सकती है मुझे लगता है। तो दोनों ही तरफ से चीज़ें ठीक है, बट टैक्स का पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यहाँ वो लैग कर रही है।
11: लोग तो करवा ही रहे हैं ना, कर ही रहे हैं, करवा तो नहीं पा रहे हैं तो कर ही रहे हैं, वो लोग खुद ही से बनवा रहे हैं। और जैसे हम बहुत चीज़ें खुद से कर रहे हैं, जैसे पानी भी हम खुद ही से आर ओ प्योरीफायर लगा लेते हैं, पर हमें टैक्स भर रहे हैं तो हमें तो पानी मिलना चाहिए साफ।
12: आपका फुटपाथ के ऊपर क्या है कि फुटपाथ अगर ऐसे है तो क्या आप अपनी जेब से खर्च करना चाहेंगी?
11: नहीं, करना तो नहीं चाहूँगी, पर फिर मेरे ही घर के सामने इट विल नॉट लुक गुड। तो
13: मतलब लगता है कि बहुत ज़्यादा अनफेयर ही है, मतलब वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, दे आर लाइक कि ओके वी आर अर्निंग दिस मच तो हम लोग रहेंगे अच्छा, खाएंगे अच्छा, होता ही है सबका, लेकिन उनके घर के ही सामने ऐसा रोड ही खराब है जहाँ से वो रोज की आवाजाही करता है, तो इट्स समथिंग लाइक अनफेयर टू देम, मतलब टैक्स भी पे कर रहे हैं वो, तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू एनी वन, लाइक नॉट इवन जस्ट द वंस हु आर अर्निंग गुड, बेचारे जो नहीं, जो आवाज़ भी नहीं उठा सकते, कई लोग होते हैं जो गरीब गरीब है, जो दो वो कुछ बोल भी नहीं सकते, तो आई थिंक उनके साथ भी खराब है।
5: बल्कि ये अहंकार को शून्य करने की एक सच्ची आध्यात्मिक साधना थी।
14: 5,000 करोड़ की संपत्ति हो, जिसके आगे पीछे सुरक्षा का घेरा हो, वही शख्स अगर एक दिन सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आए तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह ने ये किया, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने के लिए। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के आध्यात्मिक गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें एक अनोखी सीख दी। गुरु ने कहा कि एक दिन अपना पद

0: पैसा और पहचान सब छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जी कर देखिए। पराग शाह ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की, महंगी गाड़ियां, घड़ी, सुरक्षा और विधायक का रुतबा सब पीछे छूट गया। मेकअप के जरिए बदला हुलिया और फिर वही विधायक घाटकोपर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। घंटों तक सड़क पर रहने के दौरान पराग शाह ने उस जिंदगी को महसूस किया जिसे समाज का गरीब तबका रोज जीता है। भूख, इंतजार, लोगों की बेरुखी और कभी कभार किसी अनजान शख्स की मदद।
1: ओ, रिक्शा 8 मिनट देवा ना, जरा ट्रैफिक करता है।
0: किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने खाने का टुकड़ा, तो किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
1: अरे वाह।
0: लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था, जिस पहचान के दम पर दुनिया आपको सम्मान देती है, वही पहचान छिन जाए तो इंसान के पास बचता क्या है।
1: ये

0: शाम को मेकअप उतरा, पहचान वापस आई, लेकिन शायद नजरिया बदल चुका था। पराग शाह दोबारा उन्हीं लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन की इस फकीरी ने उन्हें एहसास कराया कि दौलत और पद इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अहंकार छोटा ही करता है। इस अनोखे प्रयोग की सबसे बड़ी सीख है इंसान की असली पहचान। उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है इससे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: शंघाई में 17 सितंबर से होगा शंघाई इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल का आयोजन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
2: समुद्र की लहरों के बीच डॉल्फिन का झुंड और साथ साथ चलती मछली पकड़ने वाली नावें, ये नजारा किसी खूबसूरत फिल्मी सीन से कम नहीं है। दक्षिण पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत में लियानजियांग के पास समुद्र में डॉल्फिन का झुंड नावों के पीछे तैरता दिखाई दिया। कभी डॉल्फिन पानी में गोता लगाती तो कभी उछलकर बाहर आती और पानी की बौछारें छोड़ती। मछुआरों ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लिया। ये नजारा इंसान और समुद्री जीवों के बीच खूबसूरत सह अस्तित्व की तस्वीर पेश करता है। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के यान शहर के बाओक्सिंग काउंटी में यांग फुलियांग अपने मवेशियों को देखने पहाड़ पर गए थे। तभी उन्हें फिर एक जंगली पांडा दिखाई दिया। पहाड़ों के बीच अचानक जंगली विशाल पांडा नजर आया तो हर किसी की नजर उसी पर टिक गई। खास बात यह रही कि लोगों को देखकर पांडा बिल्कुल घबराया नहीं, बल्कि शांति से उनके पास से गुजरा और कुछ पल लोगों से नजरें भी मिलाई। इसके बाद पांडा धीरे धीरे सड़क किनारे जंगल में चला गया। न्यूयॉर्क फैशन वीक में सोमवार को कुछ ऐसा नजारा दिखा मानो पूरा रनवे फूलों के बगीचे में बदल गया हो। कैरोलिना हेरेरा के 45वीं सालगिरह के रनवे शो में चारों तरफ पीले ट्यूलिप फूलों की सजावट नजर आई। क्रिएटिव डायरेक्टर वेस गॉर्डन ने इस रंग को टैक्सी कैब येलो बताया। शो की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट डे लुक से हुई, जिसमें पीले रंग की झलक दिखी। इसके बाद बोल्ड हेरेरा रेड और पिस्ता रंग के ड्रेस और गाउन ने रनवे की रौनक बढ़ा दी। शंघाई अब रोशनी के रंगों में सराबोर होने के लिए तैयार है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक तीसरा शंघाई इंटरनेशनल लाइट फेस्टिवल आयोजित होगा। शहर के एक मुख्य वेन्यू और 16 सब वेन्यू में कुल 158 थीम वाले इवेंट्स होंगे। यानझोंग ग्रीन स्पेस में शहर का पहला अर्बन फॉरेस्ट लाइट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। वहीं अलग अलग इलाकों में लाइट इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्शन शो, ड्रोन डिस्प्ले और वाटर स्क्रीन शो आकर्षण का केंद्र होंगे। दुनिया के 16 देशों के लाइट आर्टिस्ट भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।
1: सिक्के, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ रुपए पैसे के लेन देन के जरिए समझते हैं, लेकिन यही सिक्के जब सदियों पुराने हों तो ये इतिहास के वो पन्ने बन जाते हैं जिन्हें हाथ में लेकर गुजरे दौर को महसूस किया जा सकता है। इन दिनों बंगाल के बर्धमान में कॉइन एग्जीबिशन 2026 लगी है, जहां सदियों पुराने सिक्के मौजूद हैं।

ये ऐसे सिक्कों का कलेक्शन है जिन्हें आज की पीढ़ी ने शायद सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के बर्धमान की इस प्रदर्शनी में वही सिक्के आज आंखों के सामने हैं।

0: हाथों में है और इतिहास को करीब से महसूस कराने का मौका बन रहे हैं। सैकड़ों साल पुराने ये सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं बल्कि अपने दौर की कहानी, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और बदलते हिंदुस्तान के गवाह हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के संगम हॉल में लगी इस खास प्रदर्शनी की थीम बंगाल की आजादी का इतिहास है, जिसे .com यानी डॉक्टर ऑफ कॉइन्स एंड मनी की ओर से आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शनी में 30 कैबिनेट में दुर्लभ सिक्कों और ऐतिहासिक वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है।
1: एक कॉइन हॉबी सब मिला जुला एक्सपो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हम लोगों को यहाँ पर, माने स्कूल स्टूडेंट्स भी आए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आए। स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों की एंट्री पूरी फ्री है। यहाँ पर आके लोग अपना वैल्यूएशन करा रहे हैं, कुछ अपना बेच के भी जा रहे हैं और इस तरह से बहुत खुश भी हो रहे हैं।
0: यहाँ सिक्कों का सफर करीब 1600 साल पुराना है। प्राचीन बंगाल की मुद्रा से लेकर ब्रिटिश दौर के सिक्के और आधुनिक समय की करेंसी तक, हर सिक्का अपने दौर की सामाजिक और आर्थिक कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। खास बात ये है कि जो लोग इस प्रदर्शनी में शामिल हो रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की ये हॉबी है।
2: सबसे पहले ये मेरा हॉबी है, हम 2005 से कर रहे हैं, लगभग ये 20 साल मेरा हो गया हॉबी का। अभी ये पैशन बन गया है, कुछ डील भी करते हैं और अलग अलग एग्जीबिशन जाते हैं, विजिट करते हैं, बहुत लोग से मिलना होता है, बहुत सारा रेयर कॉइन भी आता है, आदमी को बताते हैं। ये कुनिंदा डायनेस्टी का कॉइन है, ये कुनिंदा डायनेस्टी कॉइन है। इसमें देखिएगा विष्णु भगवान का शंख बना हुआ है, ये लगभग 2500 साल पुराना है। ये सब रेयर है, ये सब जल्दी मिलता नहीं, ये साउथ से नदी से निकालना पड़ता है।
0: वैसे ये सिर्फ सिक्कों की प्रदर्शनी नहीं, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौर की डाक टिकट, अखबार, बैच, मेडल, चिट्ठियाँ और आजाद हिंद फौज के दौर से जुड़ी ऐतिहासिक चीजें भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ से लिखा पत्र और उनके हस्ताक्षर वाले दस्तावेज भी प्रदर्शनी का खास आकर्षण है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े कई अनजाने पहलुओं की जानकारी भी लोगों को दी जा रही है। ये एग्जीबिशन किसी के लिए दुर्लभ सिक्कों को करीब से देखने का मौका है तो किसी के लिए इतिहास को महसूस करने का। आलम ये है कि करीब 3000 लोग रोजाना इस प्रदर्शनी को देखने पहुंच रहे हैं।
3: तो कॉइन की एग्जीबिशन है, वहाँ पे आए हैं, हमारे घर में जो पुराने कॉइन्स थे वो लेके। और देखिए ये जो पुराने कॉइन्स थे ये वैसे तो किसी काम में नहीं आते, तो अगर इनको एक्सचेंज करके कुछ पैसा मिलता है तो हमारा भी काम आएगा और जो लोग इनको जमा करते हैं तो उनके लिए भी ये अच्छा होगा। और मतलब अगर रख पाए वो लोग तो ये हिस्टोरिकल चीजें भी हैं इनमें, तो ये अच्छी बात है।
0: आयोजकों का मकसद लोगों को पुराने सिक्कों के साथ होने वाली धोखाधड़ी से बचाना भी है। इस प्रदर्शनी के जरिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली सिक्कों और फर्जी ऑफर्स के जरिए होने वाली ठगी को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
4: सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे दुष्ट लोग भी हैं जो फॉल्स प्रचार कर रहे हैं उनके खुद के फायदे के लिए। जैसे 5 रुपए का नोट दिखा करके बोल रहे हैं इसका 5 लाख रुपए दाम है, आप हमें भेजो तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। ऐसे ही उसके नाम से भी रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, फिर उनका फोन नंबर ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो आदमी बहुत परेशान है, बहुत। अभी हम लोग के यहाँ पे बहुत जन आए हैं जो उन्होंने बोला है कि सर मेरे साथ 1000 की ठगी हो गई है, 2000 की ठगी हो गई रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे। तो वो आकर के अपने कॉइन्स दिखाए हैं मुझे स्टॉलर को, तो उन्होंने बताया कि इसकी ओरिजिनल आज की न्यूमिस्मेटिक फील्ड में इतनी वैल्यू होती है। तब उनको भी अवेयरनेस हुआ कि नहीं, मैं किसी और फ्रॉड के चक्कर में और नहीं फंसूंगा, इसका ओरिजिनल वैल्यू इतना है। तो अवेयरनेस बहुत बढ़ रहा है।
0: ये एग्जीबिशन नई पीढ़ी के लिए इतिहास से रूबरू होने का मौका है, इसलिए यहाँ माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर पहुँच रहे हैं ताकि किताबों में पढ़ा इतिहास सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रहे बल्कि बच्चे उसे अपनी आंखों से देखें और समझें। पूर्वी बर्धमान से सुजाता मेहरा, गुड न्यूज टुडे।
5: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच की।
3: सरकार ने देश में फॉर्मूला 1 रेस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर।
5: रफ्तार के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने देश में फॉर्मूला 1 रेस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और F1 को दोबारा भारत लाने के लिए नीति आयोग की अध्यक्षता में करीब 10 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाया है। युगल किशोर जोशी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस कमेटी का काम भारत में मोटर स्पोर्ट्स के टिकाऊ विकास के लिए व्यापक तरीके सुझाना और फार्मूला 1 को फिर से शुरू करने के लिए एक समग्र और समन्वित रोड मैप तैयार करना है, ताकि हम 2028 में रेस की मेजबानी कर सकें। भारतीय गेंदबाज श्री चरनी 800 से ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। विमेंस एशिया कप फाइनल के बाद ICC ने आज ताजा रैंकिंग जारी की। एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। दीप्ति 4 पायदानों पर चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने एशियाई खेलों में एथलीटों और अधिकारियों के लिए सेफ गार्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नागोया में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए इस आचार संहिता को पढ़ना और इस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। यदि कोई भी एथलीट या अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे खेलों से सस्पेंड किया जा सकता है और उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
6: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
6: और जीएनटी में भी गणपति पधारे हैं और हम लोग श्योर हैं कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियोस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303-409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या फिर तस्वीरें भेजने के लिए। जब भी आप अपना वीडियो या फिर फोटो हमें भेजें तो साथ में अपना नाम, अपने शहर, गांव या फिर कस्बे का नाम जरूर लिखें।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: मुंबई सहित देश भर में गणेश उत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला। जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खोले जा रहे हैं नगदी और आभूषणों से भरे पात्र। भक्त बप्पा के सामने रख रहे हैं मन की मुराद। होली की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के दर्शन। शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना जारी।
2: एवरेस्ट शुद्ध केसर।
3: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की, जिनकी पूजा अर्चना और आराधना में पूरा देश लीन है। खासकर मुंबई में गणपति बप्पा मौर्या का जयकारा इस वक्त गूंज रहा है। आज आपको देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर बप्पा की पूजा अर्चना की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर फिल्म बिजनेस और पॉलिटिक्स से जुड़ी हस्तियां तमाम देखने को मिल रही हैं। आयोजन में मुकेश अंबानी की छोटी बहू राधिका अंबानी की नृत्य की प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंबानी ही नहीं बल्कि मुंबई में बॉलीवुड के कई सितारों के घर बप्पा की पूजा हो रही है। आज आपको बड़े सितारों के घर पधारे गणपति के दर्शन कराएंगे और इसके बाद लिए चलेंगे आपको पुणे, जहां पर दगडूशेठ मंदिर के सामने 35,000 महिलाओं ने एक साथ गणेश स्तुति की। इस भव्य आयोजन को दिखाने के साथ ही आपको दगडूशेठ मंदिर और उसका इतिहास भी आज हम बताने जा रहे हैं।

भाई शुरुआत करते हैं एंटीलिया यानी मुकेश अंबानी के घर में बप्पा की आराधना के साथ। अंबानी परिवार भी हर साल बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाता है। इस बार भी एंटीलिया में गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए नामचीन लोग जुटे और फिल्म और बिजनेस के अलावा राजनीति जगत के लोग भी यहां पर शामिल हुए। साथ ही साथ बाबा रामदेव और बाबा बागेश्वर भी बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन इस आयोजन में सबसे खास रहा अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका अंबानी का क्लासिकल नृत्य। बप्पा की स्तुति पर राधिका के भावमय नृत्य की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। रिपोर्ट देखिए।

भाव भावना भक्ति। और भरतनाट्यम के जरिए उसकी प्रस्तुति। अभिनंदन गौरी नंदन का है और उनके समक्ष नृत्य सेवा अंबानी परिवार की छोटी बहू यानी राधिका अंबानी।

0: हर साल की तरह इस साल भी एंटीलिया में गणेशोत्सव का भव्य आयोजन है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री, बिजनेस और राजनीति से जुड़ी दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की और नेता अभिनेताओं के साथ संत समाज भी पहुंचा।
1: गजतंत्र के राजे बप्पा मोरया, मूसक पे भी राजे बप्पा मोरया।
0: लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राधिका की है, जिन्होंने भगवान गणेश की स्तुति पर भावुक और भक्तिमय क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस दी।

0: एंटीलिया में बाप्पा के दर्शन के लिए बॉलीवुड के तमाम सितारे पहुंचे। सलमान खान, संजय दत्त, विकी कौशल, कैटरीना कैफ, आलिया और रणबीर कपूर, अनिल कपूर, करीना कपूर और सैफ अली खान और ऐसे तमाम स्टार्स। सचिन भी आए और भज्जी भी, बाबा रामदेव भी पहुंचे और बाबा बागेश्वर भी। इतना ही नहीं, इस आयोजन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी टिफनी और दामाद माइकल भी शामिल हुए। इनके साथ ही भारत में अमेरिका के राजदूत भी गणपति के दर्शन के लिए पहुंचे। अंबानी परिवार के साथ सभी गणपति की पूजा अर्चना में शामिल हुए और बप्पा का आशीर्वाद लिया। बप्पा की भक्ति में पूरी मुंबई मगन नजर आई और फिल्मी सितारों के घर में धूमधाम से गणपति की पूजा की गई। बप्पा की भक्ति में पूरी मुंबई मगन है और फिल्मी सितारों के घर भी धूमधाम से बप्पा की पूजा हो रही है। क्या आम क्या खास, हर कोई बप्पा की भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। और जब बात बॉलीवुड के भाईजान की हो तो बप्पा की भक्ति के साथ साथ फैंस का क्रेज भी देखने को मिलता है। सलमान खान मुंबई में अपने भाई सोहेल खान के घर पहुंचे और गणेश पूजा में शामिल हुए तो उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस जुट गए। बप्पा की भक्ति में गोविंदा का घर भी रंगा नजर आया। यहाँ बेहद खूबसूरत दरबार सजाया गया। फूलों से सजे इस दरबार में बप्पा की भव्य झलक ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। गोविंदा ने अपने परिवार के साथ पूरे भक्ति भाव से गणपति पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया।
1: गणपति बप्पा के शुभ अवसर पे प्रार्थना करता हूँ, शुभता प्रदान करे, रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, किसी प्रकार का क्लेश कष्ट बाधा ना आए। ये हमारे घर में प्रथा मम्मी के आशीर्वाद से ये शुरू हुई थी। वर्षानुवर्ष में करता आया, अब यश कर रहे हैं और यश के लिए बहुत शुभेच्छा शुभता प्रदान करें ऐसी पापा से प्रार्थना है। टीना के लिए बहुत ही अच्छा वर मिल जाए ऐसी प्रार्थना करता हूँ।
0: अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले राजपाल यादव के घर भी बप्पा विराजमान हो चुके हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सजा ये दरबार भक्तिमय माहौल को और खास बना रहा है। राजपाल यादव ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर बप्पा की आरती की और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। बप्पा के पधारने पर अर्जुन बिजलानी के घर भी सितारों का जमावड़ा हुआ। टीवी जगत के कई सितारे आए और झूम झूम कर बप्पा की वंदना की।
2: हर शुभ काम के पहले जो है गणेश पूजा की जाती है, उसका एक कारण है। तो हम तो हर साल, अब मुझे 23 साल हो गए खुद लाते हुए गणपति, और हर बार जब मैं कोई भी काम करता हूँ, इनफैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मैं मंगलवार के दिन ही करता हूँ और हर सुबह मैं गणेश आरती जो है वो तो सुनता ही।
0: वही अभिनेता तुषार कपूर ने भी हर साल की तरह इस साल अपने घर पर बप्पा का स्वागत किया। विधि विधान से गणपति की पूजा अर्चना की और सभी के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
3: हर साल की तरह बप्पा आ गए, वही खास बात है। और थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। बस मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ, आप लोग आ गए हैं। हर साल की तरह शहर का माहौल बदल गया है, बारिश भी हो रही है, जो एक गर्मी का महीना था, अगस्त का महीना, एक बूंद बारिश नहीं गिरी। आज और कल में गणपति पापा के आने से बारिश शुरू हो गई है। दैट इज़ द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग, जहाँ होनी चाहिए आई होप वहाँ भी हो रही हो। एंड यस, यही खास बात है।
0: शिल्पा शेट्टी के घर भी बप्पा विराजमान हैं। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ गणपति पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। और इसी तरह सुपरस्टार रामचरण ने सोशल मीडिया पर गणेशोत्सव का वीडियो शेयर कर फैंस को भी इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। एक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी के जीवन से बाधाएं दूर करें और सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। सोनाली बेंद्रे भी पूरे भक्तिभाव के साथ गणेशोत्सव मना रही हैं। बप्पा की आराधना करते सोनाली ने वीडियो भी साझा किया है। इसी तरह एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी गणेशोत्सव के रंग में रंगी नजर आई। रश्मिका ने सोशल मीडिया पर गणपति के आगमन की तस्वीरें साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और अब आपको दिखाते हैं मुंबई के गणेश पंडालों की रौनक, लालबाग चौराहा हो या फिर

पोकली के चिंतामणि गणपति के दर्शन करने के लिए आज भी लाखों की तादाद में भक्त पहुंचे और अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। इसी तरह साकिनाका के महाराजा का दर्शन करने के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। इस प्रतिमा को मुंबई की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जा रहा है। चलिए आपको खंडूबा के अवतार में आए बप्पा के दर्शन करवाते हैं।

0: मैं उपनगर मुंबई के उस पंडाल में मौजूद हूँ, उस मंडल में मौजूद हूँ जिन्हें कई अवार्ड मिल गए हैं इस वजह से कि सबसे ज्यादा जो ऊंची प्रतिमाएं हैं वो रखते हैं। 43 फीट के बप्पा इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। साकी नाका के महाराजा के नाम से ये पंडाल बहुत ज्यादा सुप्रख्यात है और आप देखें किस तरीके से उनके बप्पा के जो पैर है वहां तक हम लोगों की हाइट पहुंच पा रही है। किस तरीके से मूर्तिकार ने बहुत ही सुंदर प्रतिमा जो है बप्पा की यहाँ बनाई हुई है। आपको बताएं कि खंडोबा के अवतार में महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर है खंडोबा जो शिव जी पर आधारित है और उन्हें लेकर के ये पूरा का पूरा थीम जो है पंडाल का बनाया हुआ है। उपनगर मुंबई में ये मौजूद है। इस समय 42 फीट के बप्पा हैं और 42वां ही साल बप्पा का ये सफल साल मंडल मना रहा है। थोड़ा सा देखें किस तरीके से मूर्तिकार ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गढ़न किया है, आकार दिया है गणपति बप्पा को। यही वजह है कि न केवल मुंबई बल्कि महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से बप्पा का दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु एक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तमाम श्रद्धालु जो हैं एक के बाद एक बप्पा के समक्ष पहुंच रहे हैं और उनका दर्शन ले रहे हैं। खास बात यह है कि यहां पर आने के बाद में बकायदा आपको बप्पा के जो चरण हैं उन्हें छूने का मौका मिलता है, साथ ही साथ उनके साथ तस्वीरें खींचने का मौका मिलता है। फैमिली के साथ लोग आकर के आज का जो क्वालिटी टाइम है वो अपने सेल्फीज में भी लेते हैं। ये तो बप्पा की बात हुई, लेकिन बप्पा की जो थीम है, आसपास जो चलचित्र बनाया हुआ है उस पर भी लेकर के हम बात करें तो देखिए आसपास बकायदा खंडोबा के जो मंदिर हैं, जो बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध मंदिर है, उनकी तस्वीरें यहाँ पर आसपास लगाई गई हैं। तो मेरे ऊपर अब देखिए कितनी बड़ी हाइट के पप्पा हैं, 43 फीट। मतलब सोचिए जब आगमन हुआ होगा तो तमाम लोग यहाँ पर आए थे और वाकई में वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल। लेकिन आज बहुत ज्यादा खास दिन है,
1: कई सालों से 42 साल से कर रहे हैं तो नियोजन तो पहले से बहुत अच्छा सा होता रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है। बहुत सुंदर और सफल कार्यक्रम।
0: 43 फीट के पप्पा अब यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ा सा बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर के भी, और स्पेशली खंडोबा का ही अवतार इस बार क्यों?
1: खंडोबा जी का अवतार के लिए तो ये कहेंगे कि आज तक हमारे गणपति जितने भी रूप आए हुए बप्पा के, तो उसमें खंडोबा जी के रूप में कभी आए नहीं थे। तो पहले कुणाल दादा के माध्यम से हमको वो सजेस्ट किया गया, महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार है। और उसके बाद श्रद्धालुओं की बात की तो बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थापन होता है। सभी श्रद्धालुओं के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था फ्री में की जाती है।
2: मैं 184 वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाला पहला भारतीय हूँ और मैं विनर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और आज हमारे साथ मिस इंडिया डॉक्टर ईशा अग्रवाल है, वो हमारे विनर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के चेयरमैन हैं। और आज हमने सारे तथ्यों को देखने के बाद यहाँ पर हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे कि इस 42 फीट के सबसे ऊंचे मुंबई के गणपति को विनर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज शामिल किया जा रहा है।
0: बहुत बड़ा सम्मान। गणपति बप्पा, आवाज नहीं आ रही है। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, क्या कहेंगी आकर के? आज बहुत बड़ा सम्मान आप इस मंडल को दे रही हैं, क्या कहेंगी? तमाम दूसरे भी मंडल हैं, गणेश उत्सव स्पेशली कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या कहेंगी?
3: नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ईशा अग्रवाल। मैंने जब सुना कि यहाँ पे 42 फीट का सबसे ऊंचा गणपति है मुंबई का, तो मैंने कहा मुझे तो जाना है, और क्यों ना इसे हम हमारे विनर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका इसको नोंद किया जाए, तो हम यहाँ आए हैं। और जब मैं इनसे बात कर रही थी, जीतू जी से, मैंने मूर्ति की डिटेलिंग देखी। इतनी सुंदर मूर्ति मैंने नहीं देखी, क्योंकि हर एक डिटेल सर से लेके पांव तक भगवान जी के सब इतनी बारीकी से डिटेलिंग किए। जो मूर्तिकार है इन्होंने बताया, उनसे जरूर मिलना चाहिए, बहुत ही सुंदर मूर्ति है।
1: साकीना क्या महाराजा चा
0: ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका में गणेश उत्सव मंडलों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और खास तौर से साउथ मुंबई में लालबाग के राजा, चिंतामणि के राजा, तेजुका के राजा, मुंबई गणेश गली, तमाम वो मंडल हैं जहां पर श्रद्धालु निकल रहे हैं और बड़ी तादाद में पहुंच भी रहे हैं। इस समय मैं जहां मौजूद हूं, ये मुंबई का उपनगर मुंबई है, साकी नाका नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। यहां पर बहुत सारे

0: कुछ होता है, मतलब किस तरीके से मूर्तिकार ने बैलेंस देखा होगा, किस तरीके से मूर्तिकार ने वो सारी व्यवस्थाएं देखी होंगी, सुविधाएं देखी होंगी कि कहीं परेशानी ना हो। और साफ तौर से मुंबई पुलिस बेएमसी इसके अलावा दूसरे भी इनके मंडल के ही कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना होगा और वाकई में उनकी तारीफ भी करनी होगी।
1: और अब चलते हैं पुणे, जहां पर ऋषि पंचमी पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ बप्पा के लिए अथर्वशीर्ष का पाठ किया। शंखनाद, ओंकार और गणेश गीत से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। दगड़ूशेठ मंदिर से नानावाड़ा तक भक्ति की लहर दिखाई दी। इसी तरह ऊझर के गणपति का राजसी श्रृंगार भी आकर्षण का केंद्र बना। देखिए रिपोर्ट।

एक लय, एक धुन, एक मंत्र और एक दंत की आराधना। भव्य दृश्य है ये। मंदिर परिसर के सामने की सड़क, सड़क पर दूर तक एक ही रंग, करीब 35,000 महिलाएं और मंत्र का समवेत पाठ। ऐसी तस्वीर सिर्फ साल में एक बार नजर आती है और वो भी पुणे के दगड़ूशेठ मंदिर में। महिलाओं ने एक साथ बैठकर अपने बप्पा का स्मरण किया, एक स्वर एक आस्था और गणराय के चरणों में समर्पण।

नमस्ते गणपते, मोरिया मोरिया, ओम गंग गणपते नमः। इस जयघोष से पूरा पुणे भक्तिमय हो उठा। जब हजारों महिलाओं ने सामूहिक अथर्व शीर्ष पाठ किया तो शंखनाद, ओंकार जाप और गणेश गीत से वातावरण में ऐसी दिव्यता घुली कि हर तरफ सिर्फ गणपति नाम सुनाई देने लगा। बारिश भी इस श्रद्धा को रोक नहीं पाई। रात 2 बजे से ही महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में आयोजन स्थल पहुंचने लगी थीं। दगड़ूशेठ से नानावाड़ा तक आस्था का सैलाब नजर आया और महाआरती के साथ ये भव्य आयोजन संपन्न हुआ। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्ण युग तरुण मंडल की ओर से यह आयोजन किया गया। ट्रस्ट के 134वें गणेशोत्सव के तहत उत्सव मंडप के सामने प्रेम मंदिर की प्रतिकृति के पास 35,000 से अधिक महिलाओं ने एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ किया। ये लगातार 41वां साल था जब ऋषि पंचमी के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनी। शंखनाद के बाद ओंकार जाप हुआ, गणेश गीत गूंजा और फिर हजारों कंठों से एक साथ मंत्रोच्चार शुरू हुआ। गणेश नाम के जयघोष और महाआरती के साथ परिसर में श्रद्धा की ऐसी ऊर्जा दिखाई दी जिसने इस आयोजन को यादगार बना दिया। लेकिन जिस दरबार में आज हजारों भक्त सिर झुकाते हैं उसकी कहानी भी आस्था और संघर्ष से जुड़ी है। पुणे के मशहूर हलवाई दगड़ूशेठ गाड़वे मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे। महाराष्ट्र आकर उन्होंने मिठाई का कारोबार शुरू किया। फिर साल 1896 में पुणे में प्लेग की महामारी फैली। इस मुश्किल दौर में दगड़ूशेठ ने अपने बेटे को खो दिया। दुख की इस घड़ी में परिवार के आध्यात्मिक गुरु श्री माधवनाथ महाराज ने दगड़ूशेठ के नाम पर श्री दत्त मंदिर बनवाने की सलाह दी। गुरु के मार्गदर्शन में पत्नी ने मंदिर निर्माण का फैसला किया और भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई। शिल्पकार श्री नाइक ने इस प्रतिमा को आकार दिया। खास बात ये थी कि दगड़ूशेठ हलवाई ने पारंपरिक योद्धा गणेश के स्वरूप से अलग पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा स्थापित की। समाज को आशीर्वाद और सुरक्षा का संदेश देने वाली यही प्रतिमा आगे चलकर दगड़ूशेठ गणपति की पहचान बन गई। साल 1897 में गणेश उत्सव शुरू करने के लिए ये प्रतिमा युवाओं को सौंप दी गई। इसके बाद व्यापारी और युवा मिलकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। वक्त आगे बढ़ता गया लेकिन गणपति की परंपरा कायम रही। पुरानी प्रतिमा के आधार पर आगे चलकर नए स्वरूप को तैयार करने की जरूरत महसूस हुई और 27 अगस्त 1968 को प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद दगड़ूशेठ गणपति का दरबार लगातार भव्य होता गया। 1984 में

0: बुधवार पीठ के पास पहला मंदिर बनाया गया। 2005 में इसी क्षेत्र में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आज ये स्थान पुणे ही नहीं बल्कि देश दुनिया में गणपति भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बाप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और इसी महाराष्ट्र में गणपति भक्ति का एक और राजसी रूप देखने को मिला है। ओझर के अष्ट विनायक श्री विघ्नहर गणपति का अलौकिक श्रृंगार भक्तों के सामने आया। 5 दिवसीय जन्मोत्सव के दौरान सोमवार रात करीब 11 बजे के बाद बप्पा को पेशवा कालीन पोशाक पहनाई गई। इसके बाद करीब 200 साल पुराने ऐतिहासिक आभूषणों से उनका श्रृंगार हुआ। करोड़ों रुपए मूल्य के इन गहनों ने विघ्नहर के स्वरूप को राजसी भव्यता दे दी। आंखों में जड़े माणिक, माथे पर चमकता हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वास्तिक हार, सिर पर सजा छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, हर आभूषण बप्पा के शाही स्वरूप में एक अलग चमक जोड़ रहा था। पेशवाकालीन पोशाक में सजे विघ्नहर को देखकर ऐसा लगा मानो इतिहास का कोई सुनहरा अध्याय भक्तों के सामने जीवंत हो गया हो। लेकिन इस श्रृंगार की सबसे खास बात यह है कि बाप्पा का ये दुर्लभ रूप हर दिन देखने को नहीं मिलता। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी और माघ शुद्ध चतुर्थी, साल में सिर्फ इन दो अवसरों पर विघ्नहर गणपति को इन ऐतिहासिक आभूषणों से सजाया जाता है। इसी वजह से इस सुवर्ण स्वरूप के दर्शन भक्तों के लिए किसी पर्वणी से कम नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Scented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, GNT पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खोले जा रहे हैं नकदी और आभूषणों से भरे पात्र, भक्त बप्पा के सामने रख रहे हैं मन की मुराद। होली की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के दर्शन, शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के जालना में पेड़ पर साकार हुए गजानन, गणेशोत्सव के दौरान स्कूली छात्रों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, फूल पत्तियों से किया बप्पा का श्रृंगार। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनाएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, पिता डॉक्टर हरिवंश बच्चन की स्मृति को संजोने की तैयारी, ADA को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा, 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय, कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। सरकार ने UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट्स रेट लागू करने का किया ऐलान, 2,000 से ज्यादा UPI लेनदेन पर देना होगा 0.4% चार्ज, आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए भी फ्री सुविधा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
7: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चिंतामण हरण गणेश मंदिर का हुआ भव्य श्रृंगार, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया मंदिर, प्राचीन मंदिर की सजावट भी अद्भुत, राजसी ठाट के साथ सजाया बप्पा का दरबार। बप्पा के भक्तों ने अपने आराध्य का भी किया अद्भुत श्रृंगार, महाआरती में शामिल हुए बप्पा के भक्त, दो लंगड़ों के साथ हुआ बप्पा का भव्य स्वागत, विघ्नहर्ता की भक्ति में झूमते हुए नजर आए भक्त। मान्यता है इस प्राचीन मंदिर में बप्पा के दर्शन भर से ही मुरादें पूरी हो जाती हैं। 455 साल पहले हुई थी यहां स्थापना। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बांस अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र हुआ भक्तिमय। विद्यार्थियों ने बांस से बनाई बप्पा की अद्भुत प्रतिमा। बैम्बू टू बप्पा नामक पहल के तहत बांस से बने बप्पा की छात्रों ने विधि विधान के साथ स्थापना और महाआरती की। गणपति बप्पा की आरती, पूजा अर्चना और जयघोष के बीच प्रतिमा की स्थापना होती। पूरा परिवार गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गुंजायमान उठा। छात्रों ने बांस से ही सजा विघ्नहर्ता का दरबार। मां से बप्पा की प्रतिमा बनाकर छात्रों ने दिया परंपरा के साथ पर्यावरण का संदेश। हरिद्वार के कुंभ मेला 2027 की थीम पर सजा बप्पा का पंडाल। पंडाल में भगवान गणेश को समुद्र मंथन के रूप में निकलते हुए दिखाया गया। भगवान गणेश की सवारी मूषक को समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया। पंडाल देखने दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। गणेश चतुर्थी पर आगरमालवा में मोती सागर तालाब के किनारे बने प्राचीन मंदिर की अद्भुत छटा। फूलों से किया गया बप्पा का भव्य श्रृंगार। बप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। रंग बिरंगी रोशनी और फूलों की सुगंध के साथ महक रहा है बप्पा का दरबार। मुंबई के उपनगर में स्थापित की गई है बप्पा की 43 फीट ऊंची प्रतिमा। यहां गणपति महाराज के प्रसिद्ध मंदिर खंडूबा के अवतार में है और ऐसे साकिनाका के महाराजा का अवतार माना जाता है। बप्पा की इस विशाल मूर्ति के साथ ही छोटी प्रतिमा भी की गई स्थापित। प्रयागराज में एक ही पंडाल में हो रहे बप्पा के साथ तीन देवताओं के दर्शन। गणपति का बाल रूप भी बच्चों को आ रहा है खूब पसंद। बप्पा के जयकारों की गूंज। सूरत में गणेशोत्सव के दौरान तापी नदी के बीचों बीच तैरते हुए मंडप में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। करीब 350 से 400 किलो वजन उठाने वाली एयरटाइल फाइबर शीट पर तैयार हुआ है। स्थानीय मछुआरा समाज और युवाओं ने 2006 में यह परंपरा विनाशकारी बाढ़ के बाद शुरू की। सिर्फ मंदिर के पुजारी और सेवक ही ताप्ती नदी में आकर करते हैं बप्पा की आरती। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा की कामना के साथ यहां अनूठे अंदाज में होती है बप्पा की भक्ति। जैसलमेर के 1500 साल पुराने चूंधी गणेश मंदिर में उत्सव की धूम। घर के देने वाले गणेश जी के नाम से मशहूर है यह मंदिर। गणेश चतुर्थी पर पूरे मंदिर परिसर को अद्भुत रोशनी और फूलों से सजाया गया। दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते बप्पा के भक्त। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। मंदिर परिसर में बप्पा के भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन। मंदिर परिसर के पास ही मेले का भी हुआ आयोजन। बप्पा के दर्शन करने के बाद लोग मेले का भी ले रहे हैं आनंद। धर्मनगरी काशी में भी स्थापित की गई लालबाग चौराजा की रेप्लिका। बप्पा के दर्शन को मढ़ रहे हैं भक्त। मुंबई में लालबाग के राजा की प्रतिमा बनाने वाले कारीगर ने ही बनाई है प्रतिमा। पंडाल में हुई बप्पा के 5 दिन की स्थापना। 5 दिन तक होगा धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। लालबाग चौराजा के दरबार की तर्ज पर ही सजा है वाराणसी का पंडाल। बप्पा की विसर्जन यात्रा में ढोल ताश मंडली भी मुंबई से ही पहुंची। पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दरबार में देखा भक्ति का अनूठा संगम। 35,000 महिलाओं ने सामूहिक रूप से अथर्वशीष का पाठ किया। गणेश नाम के जयघोष, अथर्वशीष पाठ और महाआरती। इंदौर में विघ्नहर्ता का अनूठा भक्त। 5,000 से ज्यादा प्रतिमाएं कम से संग्रहालय। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी जुटाई हैं बप्पा की मूर्तियां। बप्पा के अलग अलग रूप वाली प्रतिमाओं को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बीजेपी नेता और अभिनेता रवि किशन ने भी अपने घर बप्पा का स्वागत किया। महाआरती की तस्वीरें शेयर की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने भी अपने फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपने फैंस को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। अभिनेत्री मिनी माथुर के घर हुई बप्पा की स्थापना इंस्टा पर तस्वीरों को शेयर किया। अभिनेत्री जानवी कपूर ने भी अपने फैंस के साथ गणेश चतुर्थी की खुशियां साझा की। 90s की बेहतरीन अदाकारा सोनाली बेंद्रे ने भी पूरे भक्ति भाव के साथ गणेश उत्सव मनाया। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने खास अंदाज में गणपति उत्सव मनाया। अपनी मां के साथ मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने भी बप्पा के साथ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दूर हूं लेकिन बप्पा से नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुनील शेट्टी की बेटी आतिया शेट्टी के घर भी विघ्नहर्ता का आगमन हुआ। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण शुरू, बद्रीनाथ धाम में रोजाना पहुंच रहे हैं 4,000 से ज्यादा श्रद्धालु। अब तक 17,36,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। मौसम साफ और सुहाना होने के चलते सैलानियों की बढ़ रही आमद, बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंच रहे हैं बद्रीधाम। श्रद्धालुओं और सैलानियों की बड़ी संख्या में आने से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खिले। हेमकुंड साहिब में भी बढ़ रही है भक्तों की संख्या, हर रोज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। दिल्ली में छात्रों के लिए 10,000 बेड वाले हॉस्टल बनाने की तैयारी में है सरकार। तेलंगाना लिबरेशन डे के अवसर पर हैदराबाद में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटी और बाइक रैली। महिलाओं ने भगवा पगड़ी पहनकर रैली में हिस्सा लिया और नारी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। विनायक चतुर्थी के अवसर पर परमीनाक्षी अम्मन मंदिर में लगाई गई दुर्गा नाम की 5 वर्षीय मादा हाथी। अम्मन मंदिर में दुर्गा है सबसे नई सदस्य, पार्वती नाम की एक और मादा हाथी पहले से मौजूद। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे महिला से खरीदा मिट्टी का दिया। सीएम ने महिला को 1,000 रुपए देकर किया महिला श्रम का सम्मान। दिल्ली कैबिनेट ने एएसएचए आशा वर्कर्स के मासिक इंसेंटिव दोगुना करने का फैसला ले लिया। 3,000 की जगह अब 6,000 प्रति मिलेंगे माह। यूपीआई से 2,000 रुपए तक का पेमेंट रहेगा फ्री, लेकिन 2,000 से ज्यादा पर यूपीआई पेमेंट पर लगेगा 0.4% चार्ज। रेलवे टेलीकॉम सर्विस इंश्योरेंस और ईंधन जैसी चुनिंदा कैटेगरी में 2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपए का फ्लैट चार्ज। हाल ही में शुरू हुआ भारत और अमेरिका के बीच 22वें संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026, दोनों देशों के 600-600 सैनिक शामिल। युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता बढ़ाना। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार करेंगे। भारत में नेपाल के नए राजदूत हो सकते हैं निश्चलनंद पांडे। प्रयागराज में डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए अस्पताल की किए जा रहे हैं तैयार। शिमला में हुई जबरदस्त बारिश, तापमान में गिरावट, सैलानियों की हुई मौज। योगी कैबिनेट में 23 अहम प्रस्तावों पर लग गई मोहर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा और रोजगार तक बड़े फैसले। प्रदेश में आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। यूपी में 14,429 पर्षदीय प्राथमिक विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी 4 दिसंबर को लखनऊ के रमाडा होटल में होगी। चीन के 63 वर्षीय एक शख्स ने पानी पर रखे स्टील के बेसन के साथ कोर वर्कआउट करके बनाया रिकॉर्ड। इस बुजुर्ग शख्स के वर्कआउट का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। शख्स का कहना है कि वो पिछले कई वर्षों से इस वर्कआउट की प्रैक्टिस कर रहा है। वेनिस फिल्म महोत्सव में वुमेन अननोन के लिए निर्माता मे एल टोकी को मिला स्वर्ण लायन। दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता ली चांग डोंग को पॉसिबल लव के लिए मिला रजत लायन। शंघाई में तीसरे लाइट फेस्टिवल की तैयारियां शुरू। शहर भर में एक मुख्य स्थल और 16 उपस्थल होंगे और कुल 158 थीम आधारित कार्यक्रम होंगे। तीसरा शंघाई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश महोत्सव का 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा आयोजन। शंघाई कॉन्सर्ट हॉल के बाहर चौक में 10 दिन तक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें दर्शकों को अद्भुत ऑडियो विजुअल का अनुभव दिखाया जाएगा। बाओशान में चांगतान आई मैक्ट डूम वाटर स्क्रीन लाइट शो का भी शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में सभी उम्र और वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाना। अमेरिका की मशहूर फैशन डिजाइनर कैरोलिना ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में अपने फैशन हाउस की 45वीं वर्षगांठ के लिए शानदार प्रस्तुति दी। न्यूयॉर्क स्थित इस फैशन हाउस ने अपने स्प्रिंग 2025 कलेक्शन को चमकीले रंग में रंगा। रनवे शो की शुरुआत काले और सफेद रंग के डेयर लुक्स के साथ हुई। फिर शो बोल्ड हेरेरा के लाल और पिस्ता रंग में मिनी ड्रेसेस नजर आई। इस खास कलेक्शन में एंडी वारहोल के बनाए गए हेरेरा चित्र को पहली बार लाइसेंस के तहत बैग और ड्रेस पर इस्तेमाल किया गया। चीन के फुजियान द्वीप समूह के तट से दूर समुद्र में देखा अद्भुत नजारा। समुद्र की लहरों के बीच डॉल्फिन का झुंड मछली पकड़ने वाली नाव के साथ रेस लगाता हुआ नजर आया। डॉल्फिन कभी पानी में गोता लगाती तो कभी पर उछलती हुई नजर आई। दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के यान शहर में पहाड़ों पर दिखा जंगली पांडा। म्यूनिका अलियांस अरेना और बार्सिलोना का कैंप नौ 2028-2029 में होने वाली चैंपियनशिप लीग के लिए तैयार। यूरोप का सबसे बड़ा क्लब फाइनल कैंप नौ में तीसरी बार आयोजित होगा। विनायक चतुर्थी के मौके पर तमिल स्टार विक्रम की अगली फिल्म का टाइटल निकलकर सामने आया। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन की मच अवेटेड फिल्म दायरा का नया प्रोमो आउट। दायरा में करीना और पृथ्वीराज पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। तारा स्टारर मधु मुकुथी अमन 2 का टीजर राइस ऑफ महाशक्ति रिलीज। उत्तराखंड में फिल्म हनुमानंश को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
7: सत्ता दौलत रसूख और करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, घाटकोपर ईस्ट के विधायक का पराग शाह की पहचान कुछ ऐसी ही है। लेकिन एक दिन एक शख्स न विधायक था, न करोड़ों का मालिक, न साथ में सुरक्षा कर्मियों का घेरा था, मुंबई की सड़कों पर यह विधायक हाथ फैलाए दिखे। ये कोई फिल्मी दृश्य या चुनावी स्टंट नहीं था, ये अहंकार को शून्य करने की एक सच्ची आध्यात्मिक साधना थी।
8: जिस शख्स के पास करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति हो, जिसके आगे पीछे सुरक्षा का घेरा हो, वही शख्स अगर एक दिन सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आए तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह ने ये किया, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने के लिए। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के आध्यात्मिक गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें एक अनोखी सीख दी। गुरु ने कहा कि एक दिन अपना पद पैसा और पहचान सब छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जी कर देखिए। पराग शाह ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की, महंगी गाड़ियां, घड़ी, सुरक्षा और विधायक का रुतबा सब पीछे छूट गया। मेकअप के जरिए बदला हुलिया और फिर वही विधायक घाटकोपर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। घंटों तक सड़क पर रहने के दौरान पराग शाह ने उस जिंदगी को महसूस किया जिसे समाज का गरीब तबका रोज जीता है। भूख, इंतजार, लोगों की बेरुखी और कभी कभार किसी अनजान शख्स की मदद।
9: ओ, रिक्शा 8 मिनट देवा ना, जरा ट्रैफिक करता है।
8: किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने खाने का टुकड़ा, तो किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
9: अरे वाह।
8: लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था, जिस पहचान के दम पर दुनिया आपको सम्मान देती है, वही पहचान छिन जाए तो इंसान के पास बचता क्या है।
9: देवा, देवा।

0: शाम को मेकअप उतरा, पहचान वापस आई, लेकिन शायद नजरिया बदल चुका था। पराग शाह दोबारा उन्हीं लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन की इस फकीरी ने उन्हें एहसास कराया कि दौलत और पद इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अहंकार छोटा ही करता है। इस अनोखे प्रयोग की सबसे बड़ी सीख है इंसान की असली पहचान। उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है इससे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खुले जा रहे हैं नकदी और आभूषणों से भरे पात्र, भक्त बप्पा के सामने रख रहे हैं मन की बुरात। होली की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के दर्शन, शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के गुडलक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सप्ताह में आने वाले दिनों के बारे में। जी हाँ, किस दिन कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए, उस पर विस्तार से हम लेंगे पंडित जी से जानकारी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुडलक मंत्र।
1: देखिए, बजरंग बाण का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो बजरंग बाण का पाठ अत्यंत कठिनाई होने पर, जीवन मरण का प्रश्न होने पर ही करिएगा। सामान्य रूप से रेगुलर लाइफ में बजरंग बाण का पाठ करने से बचना चाहिए।
0: और आइए अब जान लेते हैं 16 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:59 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम के 5:22 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:49 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जानेंगे पंडित जी से क्या है अलग अलग दिनों का महत्व और क्यों होता है ये महत्व।
1: जी देखिए, आज के कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें। पहले ये जानते हैं कि अलग अलग दिनों का महत्व क्या है और क्यों है। देखिए, हर दिन का संबंध एक ग्रह से होता है। किस दिन का स्वामी कौन सा ग्रह है वो उस दिन की होरा से डिसाइड किया गया है। तो हर दिन का संबंध एक ग्रह से है। सोमवार का चंद्रमा, मंगलवार का मंगल, बुधवार का बुध, बृहस्पतिवार का गुरु, तो अलग अलग दिनों के अलग अलग स्वामी हैं। उस ग्रह के विशेष गुण उस दिन के अंदर पाए जाते हैं। अगर हर दिन के गुण को जानकर आप काम करें तो आप अपने काफी काम निपटा सकते हैं और तमाम छोटी छोटी चीजों में बड़ी सफलता पा सकते हैं। अगर दिन के स्वामी ग्रह के विपरीत काम किया जाए तो आपको असफलता मिलेगी, तब आप जीवन में सफल नहीं होंगे। इसीलिए आचार्यों ने, ज्योतिषियों ने एक तरीका बताया कि किस दिन कौन सा काम करें और कौन सा काम ना करें।
0: तो चलिए जान लेते हैं कि सोमवार के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए।
1: देखिए, अगर सोमवार के दिन की बात करें कि सोमवार के दिन क्या करें क्या ना करें, देखिए सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का दिन है, चंद्रमा का दिन है और सोमवार के दिन काम के परिणाम बड़ी तेजी से मिलते हैं। इस दिन वो काम करने चाहिए जिनको आप जल्दी निपटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस काम में गति बनी रहे, उस काम में स्पीड रहे। सोमवार के दिन वाहन खरीदना, नए वस्त्र खरीदना, यात्रा करना, सफेदी करवाना, भोज का, पार्टी का आयोजन करवाना शुभ होता है। और सोमवार के दिन शिव जी की उपासना करने से विशेष लाभ होता है। सोमवार के दिन सामान्यतः नौकरी या कारोबार की शुरुआत ना करें, पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें और काले वस्त्र धारण ना करें। अगर आप जल्दी जल्दी होने वाले काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो काम आप करें वो बड़ी स्पीड से हो जाए, तो सोमवार के दिन जल्दी पूरे होने वाले काम करने चाहिए।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफलों के बारे में जानने का, तो आइए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपके लिए बनी रहेगी, करियर में अभी रुकावट रहेगी, पारिवारिक समस्या का ध्यान दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और सोमवार के बाद अब बारी है मंगलवार की, तो आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन हमें कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए।
1: अब जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या करें क्या ना करें। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह का दिन माना जाता है और तीक्ष्ण स्वभाव का सामान्यतः 50% निगेटिव और 50% पॉजिटिव दिन है। मध्यम गति से परिणाम देता है। मंगलवार के दिन तकनीकी काम करना, टेक्निकल काम करना, भूमि यानी जमीन के काम करना, चिकित्सा की शुरुआत करना और सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना अच्छा होता है। मंगलवार के दिन ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से विशेष लाभ होता है। मंगलवार के दिन सामान्यतः शिक्षा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और मुकदमेबाजी करना भी मंगलवार के दिन अच्छा नहीं होता। मुकदमा और विवाद गंभीर हो जाता है। इस दिन नीले रंग का प्रयोग करना और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना अशुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि विवाह हो जाने के बाद मंगलवार के दिन बालिका की विदाई नहीं कर सकते।
0: और अब बात करेंगे बुधवार के दिन के बारे में, तो चलिए जानते हैं बुधवार के दिन कौन से कार्य हम करें और कौन से कार्य हैं जो हम ना करें।
1: अब बात करते हैं बुधवार की। बुधवार का जो दिन है ये बुध ग्रह का दिन है। सरल, मनोरंजक और धन के कामों के लिए बड़ा अच्छा दिन माना जाता है, बड़ा शुभ दिन है। बुधवार के दिन छोटी यात्राएं करना, संगीत और कला संबंधी काम करना, धन का निवेश करना, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, लोहा खरीदना अच्छा है। प्रोफेशनल शिक्षा, लॉ है, मैनेजमेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसकी शुरुआत भी बुधवार से करना अच्छा होता है। अगर आप नए कपड़े खरीद कर ले आएं और बुधवार से उसे पहनना शुरू करें तो आपको नए कपड़े बड़ी आसानी से मिलते रहेंगे। बुधवार के दिन भी चिकित्सा संबंधी काम किए जा सकते हैं। बुधवार के दिन नौकरी की शुरुआत ना करें, कर्ज मत बांटें, हालांकि धन का लेन देन कर सकते हैं, पैसा मिले तो ले सकते हैं, और भूमि संबंधी काम ना करें। उत्तर दिशा की तरफ बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए, वार दोष है। उत्तर की यात्रा बुधवार के दिन अशुभ होती है।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: गुड लक में अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न अभय जी ने हमें लिखा है और अभय जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर 2002। जन्म का समय सुबह के 8:10। जन्म का स्थान है दिल्ली। अभय जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा? क्या गवर्नमेंट जॉब में जाने की मेरी संभावना बनती है? अभय जी, आपको मैं सलाह दूंगा, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो कम से कम अब आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें या कंप्यूटर संबंधी कोई अकाउंटिंग आदि की पढ़ाई कर लें। इस क्षेत्र में मैनेजमेंट, कंप्यूटर, अकाउंटिंग, इसमें अच्छा करियर बना सकेंगे। गवर्नमेंट जॉब की संभावना उतनी प्रबल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपका करियर बहुत अच्छा है और अगर आप अभी से प्रयत्न करें तो 2028 से आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
1: जी अगला प्रश्न रीता ने हमें लिखा है और रीता जी हमें अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखती हैं, अपने पतिदेव के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पतिदेव की जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1974। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे। जन्म का स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मेरे पतिदेव काफी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो उनकी नौकरी कब तक बदलेगी और उनका भविष्य कैसा रहेगा? रीता जी, आपके पतिदेव की कुंडली के हिसाब से अभी मैं इनको नौकरी बदलने की कोई सलाह नहीं दूंगा। जहां पर हैं वहीं पर स्थितियां आने वाले समय में बेहतर होंगी और जून 2027 के बाद काफी अच्छा समय आ जाएगा, तो नौकरी में परिवर्तन का प्रयास ना करें, आने वाले समय में उन्नति की संभावनाएं अच्छी हैं। आप अपने पतिदेव के स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य आने वाले समय में बेहतर हो

0: नैश्चराय नमः और शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब बारी है बृहस्पतिवार के बारे में जानने की, तो आइए जानते हैं उस दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए।
0: अब बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी थर्सडे की। देव गुरु बृहस्पति का दिन है और सामान्य मान्यता ये है कि ये दिन बहुत शुभ है, बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है। बृहस्पतिवार के दिन सात्विकता और पवित्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। इस दिन मूल्यवान धातुएं खरीदना, पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, संतान की समस्याओं को दूर करना, पढ़ाई की शुरुआत करना और पितरों को, पूर्वजों को याद करना, उनका आभार करना उत्तम होता है। बृहस्पतिवार के दिन से पढ़ाई की भी और वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है। बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, वैसे तो कभी भी ना करें, और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने से बचिएगा।
1: तो सप्ताह के अलग अलग दिनों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के बारे में हमने बात की, अब बारी शुक्रवार की। तो चलिए जानते हैं उस दिन कौन से कार्य हैं जो हमें करने होंगे और कौन से कार्य हैं जो हमने नहीं करने होंगे।
0: बात करते हैं शुक्रवार यानी फ्राइडे की। शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का दिन है, स्वभावतः कोमल और आनंददायक दिन माना जाता है। शुक्रवार के दिन पारिवारिक जीवन की शुरुआत, प्रेम की शुरुआत, हर तरह का क्रय विक्रय, खरीदना बेचना कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन लगभग सारे शुभ काम किए जा सकते हैं। इस दिन पैसा इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। विवाह के मामले में और प्रेम के मामले में विवाद नहीं करना चाहिए, वरना मामला सुलझता नहीं है। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए।
1: और इसी के साथ जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है।

0: भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर पर विशेष ध्यान दें। पारिवारिक समस्या हो सकती है, चोट चपेट से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और चलिए जान लेते हैं शनिवार का दिन कैसा होता है, हमें उस दिन कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए।
0: अब बात करते हैं शनिवार की। शनिवार के दिन के स्वामी शनिदेव हैं, शनि ग्रह है। ये तेज स्वभाव का और धीमी गति का दिन माना जाता है। शनिवार के दिन किए गए काम बहुत धीमे धीमे लंबे समय तक चलते हैं और अगर शुभ काम है तो शीघ्र फल देंगे, अगर अशुभ काम है तो लंबे समय तक परेशान करेंगे। शनिवार के दिन नौकरी की शुरुआत करना, विवाह करना, गृह प्रवेश करना और दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। शनिवार के दिन मुकदमा शुरू मत करिए, चिकित्सा की शुरुआत मत करिए। मजबूरी है तो बात दूसरी है कि जीने मरने का प्रश्न है, लेकिन सामान्य जीवन में चिकित्सा की शुरुआत ना करें और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन लोहा खरीदने और बेचने से बचना चाहिए।
1: और अब बारी है रविवार की, तो चलिए जान लेते हैं कि रविवार के दिन हम कौन से कार्य करें और कौन से कार्य हैं जो ना करें।
0: रविवार सूर्य ग्रह इस दिन के स्वामी हैं। तीव्र स्वभाव वाला लेकिन शुभ परिणाम वाला दिन माना जाता है। रविवार के दिन गवर्नमेंट से संबंधित काम की शुरुआत करनी चाहिए, चिकित्सा की शुरुआत करनी चाहिए, लकड़ी खरीदना बेचना, फर्नीचर बनाना, लकड़ी के काम उत्तम होंगे। शिक्षा की शुरुआत करना रविवार के दिन काफी शुभ होता है। रविवार के दिन लोहा खरीदना और लोहा बेचना भी अच्छा होता है। रविवार के दिन वैवाहिक जीवन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए प्रयास ना करें, रिश्ते बिगड़ेंगे। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा भी ना करें और विवाह के बाद रविवार के दिन लड़की की विदाई नहीं की जाती, इसीलिए लोग शनिवार की रात में ही सूर्योदय के पहले विदाई कर देते हैं।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का। आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सफलता मिलेगी, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और आइए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: अगला प्रश्न नम्रता जी ने हमें लिखा है और नम्रता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 19 जनवरी 1994। जन्म का समय सुबह के 10:25। जन्म का स्थान है संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि 2 साल पहले मेरा विवाह हुआ है, लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या मेरा विवाह चल पाएगा और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नम्रता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका सेपरेशन नहीं होगा, आपकी शादी चलेगी और आने वाले समय में जीवन आपका बेहतर होगा, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए और एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में अगर धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: का जन्मदिन 16 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा, शुरुआत में करियर में थोड़ी समस्याएं रहेंगी, लेकिन धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष में हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा ये है कि कहा जाता है कि सोमवार को नौकरी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, नौकरी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, सोमवार के दिन जो भी काम आप शुरू करेंगे वो काम जल्दी समाप्त होंगे, स्पीड वाला दिन है। अगर नौकरी इस दिन शुरू करेंगे तो नौकरी में स्थिरता नहीं आएगी, बार बार नौकरी बदलनी पड़ेगी। इलाज की शुरुआत सोमवार को करिए, बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और बहुत जल्दी इलाज आपका समाप्त होगा।
1: तो चलिए जानते हैं 16 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। ऐसा करने से आपका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 16 सितंबर शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो आइए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु सूटेबल होती है, लाभकारी होती है। आज की गुडलक राशि है मीन। आपको चांदी अवश्य धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है।
0: गणपति महोत्सव के पावन दिन चल रहे हैं, रोज आपको वरदान मिल सकता है। अगर आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या करेंगे? पीले रंग के गणपति की मूर्ति या पीले रंग के गणपति का चित्र स्थापित करें। रोज सवेरे उनको पीले फूल अर्पित करिएगा और रोज शाम को उनकी आरती करिएगा, लगातार 3 दिनों तक। और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपका विवाह जल्दी होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करेंगे गणेशोत्सव की। पूरा देश बप्पा के जयघोष से गूंज रहा है। मंदिर से लेकर पंडाल तक गजब रूप से चमक रहे हैं बप्पा, और विघ्नहर्ता के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो प्रतिमाओं की सजावट और श्रृंगार को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह तो दिख ही रहा है। देश के बाकी हिस्सों में भी धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जा रहा है।

0: बाधाओं को दूर करने वाले प्रथम पूज्य देव हैं विघ्नहर्ता। सभी संकटों को हर कर जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। कुछ ऐसे ही मनोभाव के साथ भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए मंदिरों से लेकर पंडालों तक पहुंच रहे हैं। मुंबई में गणेशोत्सव की दिव्य और भव्य तस्वीर के बीच भक्त पंडालों में पहुंचकर बापा के दर्शन कर रहे हैं। चाहे वो लालबाग के राजा का दिव्य दरबार हो या फिर चिंचपोकली के चिंतामणि का भव्य पंडाल, हर जगह भक्तों का तांता लग रहा है। अंधेरी इलाके में स्थित मोरेश्वर का राजा गणेश जी के दरबार में 3 अलग अलग प्रकार के चलचित्र बनाए गए हैं, जिनमें शंकर भगवान और गणेश जी से जुड़ी पौराणिक कथाएं चलचित्र के माध्यम से बताई जा रही हैं। मुंबई में आम से लेकर खास तक सब बप्पा की भक्ति के रंग में डूबे हैं। अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में भी गणपति विराजे हुए हैं। वहां उनके दर्शन से पुण्य कमाने के लिए बॉलीवुड टीवी और खेल जगत के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। भारत में आयोजित ब्रिक्स समिट की झलक भी देखने को मिल रही है।
1: गणपति जी विराजमान हुए हैं और यहाँ पर ब्रिक्स का जो डेकोरेशन है वो यहाँ पर किया गया है। ब्रिक्स समिट जो दिल्ली में हुआ था इस बार, उसका एक तरीके से डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है।
2: इस ईयर की थीम थी जो मेन पिलर्स थे, तो वो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन और रेजिलेंस पे था। तो वही मैंने 4 पिलर्स यहाँ पे दर्शाए हैं ये गणेश उत्सव में।
1: तो पिछले कई सालों से ये सिलसिला बदस्तूर कायम है, जिसमें जो है अलग अलग तरीके से जो दुनिया में, जो भारत में चल रहा है, उसको गणपति जी के माध्यम से दिखाने का काम जो है वो शुभम अनवाला कर रहे हैं। और इस साल जो है ब्रिक्स समिट यहाँ पर बनाया गया था।
0: मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में भी जगह जगह गणेश उत्सव के दिव्य रंग देखने को मिल रहे हैं। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दरबार में भक्तों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। करीब 35,000 से अधिक महिलाओं ने यहां एक साथ अर्थवशीष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। इसके अलावा भगवान गणेश की आस्था से जुड़े ऐसे कई मंदिर हैं जहां गणेशोत्सव के दिव्य रंग छाए हुए हैं। जुन्नर इलाके के इस ओझर के श्री विघ्नहर गणपति मंदिर की दिव्य सजावट के साथ ही यहाँ मंगल मूर्ति का भी दिव्य श्रृंगार किया गया है। यहाँ विघ्नहर बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक से सुसज्जित किया गया और करीब 200 वर्ष पुराने करोड़ों रुपए मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार भी किया। बप्पा की आँखों में जड़े मणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वस्तिक हार, सिर पर छत्र, कटिहार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर बप्पा का ये शाही रूप के दर्शन का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
3: अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति जो है महाराष्ट्र का, उसका नाम है विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर, जो पुणे जिले में जुन्नर में है। हम वही मंदिर में है।
4: कुछ अलंकार जो है पेशवेकालीन है, उसमें कंटिहार है, एक चंद्रकोर है, उसमें पेशवेकालीन हीरा जड़ा हुआ है। बाद में वो जो वस्त्र पहना है वो रेशमी जरी के वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसमें स्वस्तिकार रहता है, बादाम हार रहता है, करगोटा रहता है, वो सब सोने का रहता है। और जो मुकुट रहता है उस पर भी वो पेशवेकालीन हीरा मौजूद है और वो पेशवेकालीन मुकुट पहनाया जाता है।
0: विशेष बात यह है कि आभूषणों से सजा बप्पा का यह अद्भुत रूप साल में केवल 2 बार भाद्रपद और माघ शुद्ध चतुर्थी के अवसर पर भक्तों को देखने को मिलता है। देश में कई ऐसे गणेश मंदिर हैं जहां गणेशोत्सव के दौरान मंदिर के साथ ही बप्पा को विशेष रूप से सजाया सवारा जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भी विघ्नहर्ता के अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। यहाँ हीरे जड़ित नेत्र और लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य के सोने चांदी और हीरे से बने आभूषणों से भगवान गणेश का दिव्य श्रृंगार किया गया और उसके बाद यहाँ 10 दिवसीय उत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं।
5: भजन संध्या होगी भगवान गणेश जी महाराज के, यहाँ पर अलग अलग तरह के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, ड्राई फ्रूट के लड्डू, सौंठ के लड्डू, उड़द के लड्डू। और 18 तारीख के दिन बंबई की प्रसिद्ध कलाकार प्रियाणी वाणी पंडित द्वारा यहाँ पर भजन संध्या प्रस्तुत की जाएगी। यह असाटी ग्रुप द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है मंदिर प्रबंध समिति के तत्वाधान में और ऐसे 10 दिन तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। स्कूल के बच्चों के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
0: के दरबार स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर का दर्शन भी दिव्य और भव्य है। गणेश उत्सव के लिए इस मंदिर की स्वर्ण मंदिर की थीम पर साज सज्जा की गई है। यहाँ गणपति के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। गणेश चतुर्थी पर यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई और भगवान को 5,51,000 मोदकों का भी भोग लगाया गया था। उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। यहाँ गणेश उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में पहुँच रहे भक्तों के बीच भगवान गणेश को 1,25,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। देश की राजधानी दिल्ली हो या उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, पूरे देश में गणेश उत्सव की दिव्य छटा देखने को मिल रही है। अलग अलग थीम पर सजे दिव्य पंडाल और बप्पा की भव्य प्रतिमाएं भक्तों को खूब आकर्षित कर रही हैं। अब हैदराबाद की इस विशेष गणपति प्रतिमा को ही देख लीजिए, जिसे कैंडी यानी टॉफी से तैयार किया गया है। साथ ही पूरे पंडाल को ही बच्चों की थीम पर सजाया गया है। बप्पा के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई ये इको फ्रेंडली प्रतिमा बच्चों को खूब आकर्षित कर रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, दीपेश त्रिपाठी, पुणे से स्मिता राय चंद शिंदे, इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुल न्यूज टुडे।
6: बात करेंगे अवधपुरी की, जिसे और भव्य और दिव्य रूप देने का काम चल रहा है। दिवाली से एक दिन पहले यहाँ दीपोत्सव की दिव्य छटा देखने को मिलेगी। इस वर्ष दीपोत्सव को और अधिक भव्य रूप से मनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ अब तक एक नया शानदार पथ भी देखने को आपको मिलेगा। इस पथ पर लगे स्तंभ भी विशेष हैं। इसके अलावा सरयू घाटों का सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है।

0: रामनगरी अयोध्या लगातार सजती सवरती जा रही है। यहाँ लगातार विकास के काम चल रहे हैं। धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का कायाकल्प होता जा रहा है। अब यहाँ करीब 15.5 किलोमीटर लंबा भव्य 4-लेन मार्ग विकसित हो रहा है। इस मार्ग को त्रेता युग के भावुक अध्याय से जोड़ा जा रहा है, जहां भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की स्मृतियां बसी हुई हैं। धर्म पथ से महाराज दशरथ के समाधि स्थल तक पहुंचने वाला ये मार्ग अयोध्या की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ ही श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के बीच त्रेता युग की अनुभूति कराने वाला होगा। इस दशरथ पथ पर 30 मुद्रा स्तंभ स्थापित किए गए हैं। करीब हर 500 मीटर की दूरी पर एक स्तंभ लगाया गया है, जिनमें 15 स्तंभों पर योग मुद्रा और 15 पर शस्त्र मुद्रा प्रदर्शित की गई है। हर स्तंभ करीब 6 फीट ऊंचा है। इस मार्ग पर आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी और करीब 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ और बीच में डिवाइडर भी होगा। करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पथ को दीपोत्सव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: राजा दशरथ को का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से और अयोध्या नगरी को सीधे जोड़ने वाला एकदम निपट सरजू के माझे में यह बनाया गया यह पथ है, जिसपे विभिन्न धार्मिक आकृतियां अनुकृतियां बनाई गई हैं, जिससे लोगों को एक एक धार्मिक वातावरण वहां प्राप्त होगा। बहुत सुंदर पथ बन रहा है। आज के पहले वो अयोध्या का माझा क्षेत्र था।
0: अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी के साथ साथ धार्मिक स्थलों के साथ साथ सरयू घाटों का स्वरूप भी लगातार निखारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या का आरती घाट इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाट पर तैयार की गई मंदिर नुमा अनोखी संरचना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
2: अयोध्या में सरयू माँ की जो आरती होती थी वो इन्हीं तख्तों से होती थी और यहीं पे लोग खड़े होते थे, यहीं पे आरती स्थल है। ये जो पूरा एंगल लगा है यही वो स्थल हुआ करता था। जो आकृति बनाई गई है वो आरती स्थल की है और वहीं से माँ सरयू की जो आरती है वो यहीं से होगी। ये वो स्थल है जहाँ पे अब खड़े होके वो आरती होगी, जो बारिश से बचाएगा। रात के अंधेरे में ठंड है तो ठंड से बचेंगे लोग, तो यही वो स्थल है जहाँ पे मंदिर की आकृति दी गई है। खास आकृति के द्वारा जो है पूरा आरती स्थल जो है मंदिर में भी नजर आएगा। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको खड़े होने में खास दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता तो वो नहीं होगा।
0: आरती घाट का बदलता स्वरूप इस बात की तस्वीर पेश करता है कि अयोध्या में धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन सुविधाओं और सौंदर्यकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे आकर्षण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए रामनगरी की यात्रा को और यादगार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रामनगरी में इस वर्ष 7 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के माध्यम से विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है और विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के पुल से लेकर लक्ष्मण घाट तक करीब 1 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूलों की विशेष सजावट की जाएगी। शाम ढलते ही दीपों की लौ और रंगीन रोशनी से सरयू तट का नजारा अलौकिक दिखाई देगा।
2: यही वो स्थल है जिसको राम की पैड़ी कहते हैं और जहाँ पे एक भव्य नजारा होता है उस वक्त का, जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे। तो वो समय था दीपावली का, तो उसके हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का खास आयोजन होता चला आ रहा है। इस बार उस दीपोत्सव को और भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को खास रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
0: सरयू घाटों पर भव्य महाआरती का आयोजन भी प्रस्तावित है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और दीपों की रोशनी के बीच होने वाली महाआरती में अवध की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। सरयू की लहरों के बीच हजारों दीपों की जगमगाहट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी।
1: घाट के रेनोवेशन का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य लगातार चल रहा था, जिसको UPPCL कर रहा था, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्य हो रहा था, तो वो भी लगभग कम्प्लीशन पे है। वो कार्य हो जाएगा तो हमारा दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो साफ सफाई के कार्य हैं, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, जितने भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा रिनोवेट किया जा रहा है।
0: प्रशासनिक स्तर पर दीपोत्सव की छटा को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। योजना के अनुसार सभी काम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का दीपोत्सव और आकर्षक और यादगार होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मॉनसून जाते जाते उत्तर भारत को एक और खूबसूरत सौगात देने के लिए तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक झमाझम बारिश होने वाली है। यानी दिल्ली NCR सहित अगर हम देखें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड का मौसम सुहाना होने वाला है।

0: सितंबर का आधा महीना बीत चुका है और ऐसा लग रहा है कि जैसे चुभती और जलती गर्मी का दौर भी खत्म होने वाला है। हवाओं में हल्की गुलाबी ठंडी की आहट है और मानसून की विदाई का वक्त आ गया है। लेकिन जाते जाते मानसून उत्तर भारत को अपनी एक और खूबसूरत सौगात देने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पर सितंबर का मध्य आते आते मानसून अलविदा कहने लगता है, लेकिन इस बार मानसून जाते जाते भी माहौल को पूरी तरह खुशनुमा बनाने के मूड में है। IMD यानी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक बदरा जमकर बरसने वाले हैं। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक 16 से 18 सितंबर के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। इनमें दिल्ली NCR, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक शामिल हैं। मौजूदा समय में भी दिल्ली NCR के मौसम का मिजाज कुछ मिला जुला सा है। कभी हल्की धूप है तो कभी हल्की बारिश के फुहारों ने मौसम का पारा गिरा दिया है। अब 16 और 17 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में झमाझम बारिश की संभावना है। हालांकि पहाड़ों में बारिश के बाद नदियों में पानी तेज बहाव से बह रहा है, ऐसे में किनारे और पहाड़ी रास्तों पर सुरक्षा के लिहाज से थोड़ी सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। बारिश का ये खुशनुमा दौर मानसून का सबसे हसीन विदाई गिफ्ट साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे।

0: तो चलिए आप भी सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता, साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के तमाम रंगों की। आज गणेशोत्सव का दूसरा दिन है, शहर शहर गजानन की आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। देश भर में गणपति पंडाल सज गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात उत्तर की हो, चाहे बात दक्षिण की हो, या फिर आपको साउथ की तरफ लेकर चले, किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे आपको ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि गणपति उत्सव अपने चरम पर है। तो बप्पा को सजा दिया गया है, पंडाल भी बिल्कुल तैयार है। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप और स्वरूप हमें नजर आ रहे हैं। कहीं विघ्नहर्ता का खंडोबा अवतार दिखाई दे रहा है, तो कहीं गणपति धनपति रूप में विराजे हैं। एक पंडाल में तो बप्पा बच्चों के मनपसंद कैंडी रूप में ढले नजर आ रहे हैं, तो कहीं माँ भवानी के लाडले पिता भोलेनाथ के साथ दिव्य दर्शन दे रहे हैं। अलग अलग रूपों के साथ गणपति बप्पा सोशल मैसेजिंग के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सूरत के साइबर थाने में बप्पा साइबर विघ्न हर कर डिजिटल सुरक्षा का आशीर्वाद देने पहुंचे। पुणे में तो भक्तों ने बप्पा की प्रतिमा को करोड़ों रुपयों के ऐतिहासिक स्वर्ण आभूषणों से सजा दिया। अब यूं समझिए कि गणपति उत्सव ने देश के अलग अलग हिस्सों को भक्ति, उत्साह और उमंग के एक रंग में रंग दिया हो। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सजे भारत के सबसे भव्य गणेश पंडालों की यात्रा पर। और शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां साकीनाका के राजा का भव्य दरबार सजा है और 43 फीट के बप्पा खंडोबा रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के उपनगर के नगरी में और यहाँ के सबसे बड़े बप्पा का आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैं इस समय मौजूद हूँ साकीनाका के महाराजा के दरबार में और उपनगर मुंबई से सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हें मानी जा रही है। और जो जानकारी है और जो देख हम पा रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के खंडोबा जो सबसे बहुत ज्यादा माने जाते हैं, चर्चित हैं, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, उनके अवतार में गणपति बप्पा यहां पर विराजमान किए गए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, देखिए उनका जो ये पैर है ना, ये पैर आप देख रहे हैं, पैर उसके ठीक मैं नीचे हूं, मेरी हाइट उनके पैर तक भी नहीं पहुंच पा रही है। और फिर से मैं वीडियो जल्दी स्वागत से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कितने ऊंचे हैं बप्पा। 43 फीट ऐसे ही नहीं होता, सोचिए जब आगमन हुआ होगा तो कितने ख्याल रखने के साथ साथ और कितनी व्यवस्था के साथ बप्पा को यहाँ पर लाया गया होगा। हालांकि बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, फिर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, लेकिन अब यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और साकीनाका के महाराजा का ये दरबार है, खंडोबा के अवतार में पहुंचे हुए शिवलिंग के साथ में विराजमान है। महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति दिखाते हुए उनकी ये उनके सर पे आप देख रहे हैं पगड़ी है बकायदा, और इसके अलावा त्रिशूल है, डमरू है, तलवार है। साथ ही साथ ये जो आसपास का परिसर है, जो डेकोरेशन है, चलचित्र जिसे यहां कहते हैं, वो भी उन्हीं पर आधारित है। उनकी ही मंदिर की तस्वीरें जो है यहां पर लगा रखी है। और थोड़ा सा अब देखें, और वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी उस मूर्तिकार की जिन्होंने इतना भव्य ये मूर्ति बनाया है। सोचिए किस विशेष व्यवस्था के साथ यहाँ पर लाया गया होगा। 12वें दिन इनका विसर्जन होने वाला है और देखिए तमाम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। जहां अभी आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ भक्त है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्पेशली ये जो गणेश उत्सव होता है वो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो जाते हैं, देखते हैं। ये देखिए तमाम लोग, गणपति बप्पा, आवाज नहीं आई, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, कैसे लगे बेटा पप्पा?
2: बहुत अच्छे।
0: चलिए अब आपको मुंबई से लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां भक्तों के प्यारे बप्पा कैंडी वेश में पधारे हैं। हैदराबाद में कैंडीज, टॉफी और चॉकलेट से बप्पा का यह अनोखा स्वरूप तैयार किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं मोदक प्रिय का कैंडी अवतार कैसा है।
3: ये मोदक प्रिय का कैंडी स्वरूप है। हैदराबाद से आई इस तस्वीर में आपको शहर के सबसे अनोखे गणपति के दर्शन होंगे। हैदराबाद के भक्तों ने हजारों कैंडी और टॉफियों को जोड़कर बप्पा का ये अद्भुत स्वरूप तैयार किया है। न केवल बप्पा कैंडी अवतार में विराजे हैं, बल्कि पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडी की थीम पर ही की गई है। ऐसा लगता है बप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष पंडाल में उतर आया हो।
4: इस साल गणेश जी का थीम आके है, कैंडी गणेश का लगा है साल, पूरा टोटल थीम आके कैंडीज, वेरायटी कैंडीज लगा है पूरा हम लोग का। डेकोरेशन भी टोटल देख ले, देखे तो पूरा कैंडीज दिखेंगे आपको, पूरा पूरा बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए और बच्चे भगवान के समान बोलते ना, वो हिसाब से हम लोग बच्चे के हिसाब से देख लेके वो थीम के हिसाब से हम लोग गणेश जी को डेकोरेट करें पूरे साल।
3: हैदराबाद का ये मंडल पिछले 18 सालों से गणपति स्थापना कर रहा है। हर बार पंडाल की थीम कुछ अलग कुछ खास होती है, लेकिन इस बार की थीम ने तो बप्पा के जूनियर भक्तों का दिल ही जीत लिया है। वैसे ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चे युवा बुजुर्ग सभी के मन को भा रहा है। कैंडी वाले बप्पा के पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं है, जहां आस्था के साथ साथ बप्पा के आशीष की छाव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बप्पा के अनोखे पंडालों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्वरूप बहुत निराले हैं। और पंडालों की इस यात्रा में अब आपको लेकर चलते हैं हम विशाखापट्टनम, जहां महाशिव गणपति पूरी भव्यता के साथ विराजे हैं। ये देखिए बप्पा का ये स्वरूप हजारों छोटे बड़े जीवित पौधों से तैयार किया गया है। बप्पा की अनोखी प्रतिमा लगभग 18 फीट की है। विशाखापट्टनम के अनकापल्ली में प्रकृति और भक्ति का ये अद्भुत मेल दिखाई दे रहा है। इस सुंदर मेल के कारण ही इन्हें सस्य गणपति नाम दिया गया है। सस्य का अर्थ होता है वनस्पति या फसल। अनकापल्ली के श्री चिंतामणि गणपति दत्त क्षेत्र में बप्पा का ये भव्य रूप विराजित किया गया। बप्पा तो पौधों से बनाए ही गए हैं, साथ ही पंडाल के वातावरण को भी पूरी तरह से प्राकृतिक स्वरूप दिया गया, जिसमें पानी के सुंदर फव्वारे, पक्षियों की चहचहाट की आवाजें शामिल हैं। इस उत्सव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि त्योहार की समाप्ति के बाद मूर्ति में उपयोग किए गए सभी पौधों को भक्तों के बीच मुफ्त में वितरित कर दिया जाएगा, ताकि लोग उन्हें अपने घरों में लगा सके। इस पहल में न केवल आस्था शामिल है, बल्कि ये समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता का संदेश भी देती है। बप्पा के ये स्वरूप पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के विघ्न को हरने वाला स्वरूप है। देखिए विघ्नहर्ता के जितने नाम उतने ही स्वरूप। विघ्नहर्ता का ये स्वरूप जहां फिजिकल वर्ल्ड के विघ्नों को हरने वाला है, तो वहीं सूरत में बप्पा के ऐसे स्वरूप की स्थापना हुई जो हमारी डिजिटल लाइफ के विघ्नों को हरने का आशीर्वाद दे रहा है। सूरत के साइबर क्राइम थाने में साइबर विघ्नहर्ता बप्पा दर्शन दे रहे हैं।

0: की पार्वती पिता महादेव।
1: नाम जिनका विघ्नहर्ता है वो अब जीवन के तमाम विघ्नों के साथ साथ आपकी डिजिटल लाइफ के विघ्न हरने का भरोसा भी दे रहे हैं। सुमुख जब स्वयं साइबर सेल प्रमुख की भूमिका में हो तो फिर साइबर सुरक्षा का आशीर्वाद कैसे नहीं मिलेगा। बापा का ये पंडाल सजा है डायमंड सिटी सूरत शहर के साइबर क्राइम पुलिस थाने में, जहां अनोखे अंदाज में भगवान गणेश की स्थापना साइबर विघ्नहर्ता के रूप में की गई है। इस अनोखे पंडाल में न सिर्फ संदेशों और प्रतीकों के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने का संदेश दिया जा रहा है, बल्कि अनोखे स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
2: जिस तरह के फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उस फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम की हमारी टीम ने एक साइबर गणपति, साइबर विघ्नहर्ता की स्थापना 5 दिन के लिए करी है। गणपति बापा खुद आपको साइबर क्राइम से कैसे बचना है उसके लिए जानकारी दे रहे हैं, और गणपति बापा अगर खुद आपको बताएंगे तो लोगों में ये मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा कि हमें साइबर क्राइम से कैसे बचना चाहिए। पूरा एक पंडाल साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर बनाया गया है और गणपति बापा खुद यहाँ पे सभी भक्तों को उनके जो प्रश्न है साइबर क्राइम के बारे में उनका खुद आंसर भी बता रहे हैं, और जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे साइबर क्राइम से कैसे बचना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वो सीख भी रहे, और जब वो यहाँ से आरती करके दर्शन करके निकलेंगे तो यहाँ पे साइबर क्राइम से बचने के लिए और क्या करना चाहिए उसका संकल्प भी लेके जा रहे हैं।
1: सूरत शहर के इस साइबर क्राइम पुलिस थाने में भगवान गणेश को साइबर विघ्नहर्ता के रूप में 5 दिनों के लिए विराजमान किया गया है। अपने अलग अलग अवतारों में गजानन ने क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर जैसे जाने कितने ही दानवों का संहार किया, और अब साइबर विघ्नहर्ता के रूप में वे डिजिटल बुराइयों का नाश करने उतरे हैं। सूरत पुलिस की ये पहल धार्मिक आयोजन के साथ साथ जन जागरूकता को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए गुजरात के बाद रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की तस्वीरें भी भव्यता के साथ भरपूर हैं। वो तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई, जहां मोगरेश्वर गणपति का दरबार सज चुका है। ये तस्वीरें आई हैं अंधेरी में मौजूद मोगरेश्वर के राजा की। इस पंडाल में गणपति बेहद भव्य और दिव्य स्वरूप में स्थापित किए गए हैं। खास बात यह है कि इस पंडाल में गणपति से जुड़ी पौराणिक कहानियों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शाया जा रहा है। महादेव के विवाह की कथा, गणपति के जन्म की कहानी जैसे कितने ही पौराणिक प्रसंग आपको यहाँ वीडियो, फिल्म और झांकी के रूप में दिख जाएंगे। दरअसल वैदिक आदर्शों और पीढ़ियों से चली आ रही इन पौराणिक कहानियों में बप्पा के जीवन से जुड़ी जितनी ही कहानियां हमारे लोक जीवन में उतरी हैं, समय के साथ विकसित होती धार्मिक कथाओं, वैदिक प्रतीकवाद के बीच में गौरी नंदन के आदर्श भक्तों के बीच प्रचलित होते चले गए। आज आप गणेशोत्सव पर सजे पंडालों में इन्हें जीवंत स्वरूप में देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मुंबई से सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली के महाराज का भव्य दरबार आपको दिखाते हैं, जहां गणपति के साथ उनके पिता महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन हो रहे हैं।

0: धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई तो शहर शहर बाप्पा के भव्य और अनोखे पूजा पंडाल सज गए, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और भव्यता की वजह से लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं, बल्कि अपनी अनोखी थीम की वजह से आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। ऐसा ही एक गणेश पंडाल राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सजा है, जहां लोगों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका भी एक छत के नीचे देखने को मिल रही है।
1: इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में हैं और एक बहुत ही शानदार पंडाल में आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी तैयार किए गए हैं। मैं आपको तस्वीर उसी की दिखा रहा हूँ और किस तरह से हम पंडाल के अंदर मौजूद हैं। और जब आप अंदर आएंगे तो सामने आपको न सिर्फ बप्पा के दर्शन होंगे, बल्कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। अभी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भीमा शंकर की, और नीचे इस तरह से जो शिवलिंग है उसको रखा गया है। ऐसे ही आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग क्या है, कहां पर है, उसके बारे में आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें ज़्यादा पता नहीं है, वो यहां पर आकर ना सिर्फ देखेंगे बल्कि जानकारियां पढ़कर बहुत कुछ धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में वो जान भी पाएंगे। ये हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ पर, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरह का शिवलिंग है, ठीक उसी तरह का शिवलिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको तमाम दूसरे शिवलिंग यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। ये त्र्यंबकेश्वर है, वो बैद्यनाथ मंदिर का है, उस तरफ महाकालेश्वर है, ऐसे ही तमाम सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उन सब के दर्शन आपको यहाँ पर होने वाले हैं।
0: राजधानी के इस गणेश पंडाल में भक्ति भाव के साथ साथ भारत की विकास यात्रा और 2047 के भारत की झांकी को भी दिखाया गया है। दरअसल दिल्ली के लक्ष्मी नगर का श्री गणेश सेवा मंडल इस साल अपना 25वां गणेशोत्सव मना रहा है, इसलिए आयोजकों ने कुछ अनोखा करने की ठानी और इस बार महोत्सव की थीम विघ्नहर्ता से विकास करता रखी गयी। इस थीम के तहत यहाँ आपको भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के संवाहक भी दिखेंगे, तो वहीं नई तकनीक और वैज्ञानिक दक्षता का झरोखा भी यहाँ ब्रह्मोस, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप के रूप में दिखेगा। गांव के विकास की झांकी से लेकर एआई रोबोट्स तक और बुलेट ट्रेन से लेकर इसरो के चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान तक, यहाँ हर दृश्य जीवंत है। यानी एक तरफ महादेव और गौरी नंदन तो दूसरी ओर देश के विकास का वंदन। बाप्पा के इस पंडाल में आपको सब कुछ एक साथ नजर आएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो गणपति के पंडालों में समृद्ध होते भारत की झांकी आपने देखी, अब आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां ऐतिहासिक आभूषणों से सजी गौरी नंदन की झांकी आपको इस शहर की समृद्ध विरासत की कहानी सुनाएगी। अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति के रूप में पहचान रखने वाले पुणे के ओझर के श्री विघ्नहर गणपति का बेहद अलौकिक और राजशाही रूप गणेशोत्सव के दौरान भक्तों के सामने आया है। विघ्नहर बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक पहनाई गई और करीब 200 साल पुराने करोड़ों रुपए मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बप्पा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वस्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर गणपति का ये शाही रूप देखते ही बन रहा है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको मुंबई के साकीनाका में गणपति के खंडोबा स्वरूप के दर्शन करवाए। साकीनाका में ही बप्पा का एक और भव्य पंडाल सजा है, जहां गणपति विठ्ठल स्वरूप में विराजे हैं। बप्पा का विठ्ठल अवतार गरुड़ पर सवार है, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं साकीनाका के विघ्नहर्ता गणेश जी के।

0: इंतजार के बाद आता है गणपति उत्सव, वो समय जब गजानन अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। भक्तों के मन के साथ साथ शहर शहर पंडालों, मंदिरों और घरों में विराजते हैं। भक्तों की भावना के आधार पर अनगिनत रूपों में ढल जाते हैं। इस बार भी बप्पा के भक्तों ने उन्हें अलग अलग रूपों में स्थापित किया है। बप्पा का एक ऐसा ही भव्य रूप सजा है मुंबई के साकीनाका में। साकीनाकायचा विघ्नहर्ता अब की बार विठल रूप में पधारे हैं। मानव शरीर वाले गरुड़ के ऊपर बप्पा के चरण टिके हैं। स्वरूप भले ही जो हो, लेकिन साकीनाका के विघ्नहर्ता को मुंबई प्यार से गोड बप्पा के नाम से बुलाती है। गोड बप्पा यानी प्यारे या मीठे। दरअसल साकीनाका के विघ्नहर्ता की प्यारी और निश्चल मुस्कान के चलते उन्हें भक्तों ने प्यार से गोड बप्पा नाम दिया है।
1: आपको बताया कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ साकीनाका का विघ्नहर्ता के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। पहले आप सीधे गणपति बप्पा का दर्शन ही कर लें। देखिए, ये उपनगर मुंबई की एक बहुत ही ज्यादा उन लिस्ट में नाम शामिल हैं जो बड़े प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं और कितने सुंदर तरीके से इस समय यहाँ पर विराजमान की गई हैं। खास बात ये है कि मानव गरुण पर बप्पा विराजे हैं, विट्ठल के अवतार में हैं और हाइट देख के लग रहा है कि लगभग 33 फीट होगी। बैलेंस का पूरा ये मामला है और सोचिए मूर्तिकार कितने ज़्यादा सीरियस होंगे और कितना मेहनत उन्हें की होगी और कितने एक्सपीरियंस हैं वो कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है बप्पा की इतना बड़ा आकार उन्होंने दे दिया है। विट्ठल का अवतार है और एक पैर पर गरुण पर खड़े हुए हैं, बेहद सुंदर लग रहे हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बप्पा का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह से मुंबई के कई पंडालों में बड़ी बड़ी जो गणपतियां होती हैं विराजमान की जाती है, बहुत मेहनत इस पर हुई है।
0: साकीनाका के विघ्नहर्ता की ये प्रतिमा हर किसी का मन मोह रही है। करीब 33 फीट के बप्पा की ये प्रतिमा हफ्तों की मेहनत से तैयार हुई है।
1: गोड़ गणपति के नाम से प्रसिद्ध है
2: जी, जरूर गोड़ गणपति। आप इनकी खूबसूरती देख सकते हैं, जिस तरह से अंदाज में जो खड़े हैं और जिनकी जो खूबसूरती की जो सिद्धेश दिगोली जो सबसे मुंबई के लगभग सबसे बड़े मूर्तिकार है, उन्होंने अपनी पूरी जी जान से इस मूर्ति को गढ़ाने में कोशिश की है। जिस तरह से आप इनकी सुंदरता के लिए लोग दीवाने हो गए, जब आगमन की जिस दिन हमारा आगमन हुआ उस दिन लाखों लोगों का सैलाब इस रास्ते पे बह रहा था कि लोग सोच नहीं पाए कि इतनी खूबसूरत मूर्ति, क्योंकि बेसिकली ये मूर्ति ये हाइट और इनकी खूबसूरती परेल दादर की एक नहीं पहचान थी, लेकिन अभी साकीनाका में भी इस मूर्ति के माध्यम से हमने दिखा दिया है कि साकीनाका भी आने वाले वक्त में लालबाग परेल से भी आगे चला जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे कि इस मंडल की खासियत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एकजुट रह के इस मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्यार का, भाईचारे का एक प्रतीक भी इसी मंडल के माध्यम से जाएगा।
0: पिछले 42 सालों से साकीनाका के विघ्नहर्ता हर गणेशोत्सव पर यूं ही अपनी अलौकिक छटा के साथ विराजते आ रहे हैं। अब की बार भी साकीनाका के इन गणपति को तैयार करने में हर समाज, हर तबके से जुड़े लोगों की भागीदारी रही है। वास्तव में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का मतलब सिर्फ बापा की स्थापना और पूजा अर्चना भर नहीं, बल्कि ये पर्व आस्था, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव का भी उत्सव है। साकीनाकाच्य विघ्नहर्ता यही संदेश देते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, गणपति की भक्ति का रंग पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, वो तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। गणेशोत्सव के दूसरे दिन गजानन से जुड़ी हुई एक तस्वीर आई है पुणे से सामने, जो आपके सामने रखते हैं। पुणे में गणेश नाम का जय घोष सुनाई दिया। पुणे में आयोजित समारोह में ऊर्जा से भरे माहौल के बीच में हजार

तो चलिए गणपति बप्पा के ऐसे ही अलग अलग रूपों और स्वरूपों के दर्शन जीएनटी पर लगातार आपको करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें दिन भर जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सत्ता, दौलत, रसूख और करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। घाटकोपर ईस्ट के विधायक का पराग शाह की पहचान कुछ ऐसी ही है। लेकिन एक दिन एक शख्स न विधायक था, न करोड़ों का मालिक, न साथ में सुरक्षा कर्मियों का घेरा था, मुंबई की सड़कों पर यह विधायक हाथ फैलाए दिखे। ये कोई फिल्मी दृश्य या चुनावी स्टंट नहीं था, ये अहंकार को शून्य करने की एक सच्ची आध्यात्मिक साधना थी।
2: जिस शख्स के पास करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति हो, जिसके आगे पीछे सुरक्षा का घेरा हो, वही शख्स अगर एक दिन सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आए तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह ने ये किया, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने के लिए। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के आध्यात्मिक गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें एक अनोखी सीख दी। गुरु ने कहा कि एक दिन अपना पद, पैसा और पहचान सब छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जी कर देखिए। पराग शाह ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की, महंगी गाड़ियां, घड़ी, सुरक्षा और विधायक का रुतबा सब पीछे छूट गया। मेकअप के जरिए बदला हुलिया और फिर वही विधायक घाटकोपर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। घंटों तक सड़क पर रहने के दौरान पराग शाह ने उस जिंदगी को महसूस किया जिसे समाज का गरीब तबका रोज जीता है। भूख, इंतजार, लोगों की बेरुखी और कभी कभार किसी अनजान शख्स की मदद।
3: ओ, रिक्शा 8 मिनट देवाना, नजर ट्रैफिक करो जाए।
2: किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने खाने का टुकड़ा, तो किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
3: अरे वाह।
2: लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था, जिस पहचान के दम पर दुनिया आपको सम्मान देती है, वही पहचान छिन जाए तो इंसान के पास बचता क्या है।
3: देवा, देवा।

0: जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन की इस फकीरी ने उन्हें एहसास कराया कि दौलत और पद इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अहंकार छोटा ही करता है। इस अनोखे प्रयोग की सबसे बड़ी सीख है इंसान की असली पहचान। उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है इससे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला। जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खुले जा रहे हैं नकदी और आभूषणों से भरे पात्र। भक्त बप्पा के सामने रख रहे हैं मन की बुराई। होली की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के दर्शन। शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान। आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनाएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को सजोने की तैयारी। एडीए को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा, 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय। कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। सरकार ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का किया ऐलान। 2,000 से ज्यादा यूपीआई लेन देन पर देना होगा 0.4% चार्ज। आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए फ्री सुविधा। अफगानिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर भारत ने सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। 15वें ओवर में ही टीम इंडिया ने हासिल किया 160 रनों का लक्ष्य। संजू ने 22 गेंदों में बनाए 57 रन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती। कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से उसे दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जहां पर कुछ छात्रों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। क्या है इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल में आए हालिया बाढ़ का वीडियो है, जहां पर एक माँ बेटी बह गई। क्या है इसकी सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जहां पर कुछ छात्रों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
4: एक शख्स को घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा है। कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे हुए इस नजारे को देख रहे हैं तो कुछ लोग ये देखने के लिए खड़े हो गए हैं कि अचानक ही क्या हो गया। इस माहौल के बीच कुछ लोग गो बैक का नारा भी लगाने लग गए। किसी ऑडिटोरियम में आई इन तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी हिला दी, शाबाश मिली शेरो, अगर आप भी इससे सहमत है तो इसे आगे बढ़ाए #UGCRollback। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
3: दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। वीडियो में किसी ऑडिटोरियम के अंदर से कुछ लोग एक शख्स को घसीटते हुए बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। कई लोग गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है कितना गलत है जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक शख्स को पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। इस दौरान गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं और ऐसे में सबसे पहले हमने नारे को ध्यान से सुना। अब ये तो सामने आ गया कि हॉल में मौजूद कुछ लोग वीसी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। वीसी मतलब कि वाइस चांसलर, जो विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को संभालता है। यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण फैसले, नीतियां, नियुक्तियां वीसी के नेतृत्व में होती हैं। इससे हमें ये तो इशारा मिल गया कि ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है जहां पर कुछ लोग जमा होकर कुलपति का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा हुआ नजर आया। इस समय ये लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम हो सकता है। वीडियो में एक जगह वंदे मातरम ऑडिटोरियम शब्द भी देखने को मिला। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि वंदे मातरम ऑडिटोरियम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थित है। यहां से ये साफ हो गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यक्रम ही है और ये उसी का वीडियो है। फैक्ट चेक टीम ने यह भी जानने की कोशिश की कि हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वंदे मातरम ऑडिटोरियम में यूजीसी के नियमों के खिलाफ क्या कोई प्रदर्शन या फिर हंगामा हुआ है, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था, अगर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है तो फिर सत्यनिकेतन हादसे के जवाब दो के नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं। स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में दूसरा सवाल ये कि कहीं कुलपति योगेश सिंह के खिलाफ किसी प्रदर्शन के वीडियो को यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 8 सितंबर के एक्सपोज पर मिला। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहां सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद कुछ छात्रों ने कुलपति पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी 9 सितंबर की रिपोर्ट मिली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 8 सितंबर की है, जब कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सत्य निकेतन में हुए हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पीसी योगेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी की थी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में NSUI कार्यकर्ता और कैंपस लॉ सेंटर के छात्र राम निवास बिश्नोई भी शामिल थे। हिंदी विभाग की ओर से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स स्थित वंदे मातरम ऑडिटोरियम में विकसित भारत हिंदी भाषा और साहित्य विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुलपति योगेश सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान बिश्नोई समेत कुछ छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बिश्नोई कुलपति से सवाल कर रहे थे, इसके बाद उन्हें ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान DU VC गो बैक, VC शर्म करो, PG हॉस्टल दो और अकाउंटेबिलिटी तय करो जैसे नारे लगाए गए थे। इसके बाद हमने राम निवास बिश्नोई का इंस्टाग्राम हैंडल भी देखा। यहाँ इसी घटना का एक दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी मौजूद है। इस वीडियो में बिश्नोई को ऑडिटोरियम से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में वो कुलपति के सामने सत्य निकेतन हादसे को लेकर सवाल उठाते नजर आते हैं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें पकड़ कर बाहर ले जाते हैं। इस तरह हमारे जांच पड़ताल से साफ हो गया कि इस वीडियो का यूजीसी नियमों की वापसी की मांग से कोई लेना देना नहीं है। असल में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI समेत कुछ छात्रों ने सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की थी। दत्ता के साथ तीन तक चैक गुड न्यूज टुडे।
3: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो लड़कियां बाढ़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं। तभी अचानक से तेज बहाव से पानी आता है, दोनों को बहा ले जाता है। इस वीडियो को हाल फिलहाल आई नेपाल की बाढ़ से जोड़कर देखते हुए वायरल किया जा रहा है। सच्चाई क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए।
5: चारों तरफ सैलाब, पानी पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच दो लड़कियां बाढ़ के तेज बहाव के बीच एक दूसरे को पकड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। पानी के वेग के आगे इन दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती है और दोनों लड़कियां उसमें बह जाती हैं। इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का वीडियो मानकर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक माँ और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, आखिर हार गई माँ और बेटी, इकलौती बेटी के साथ माँ बाढ़ में फंस गई। देखने वाले वीडियो बनाते रहे लेकिन अंत में बाढ़ की जीत हुई। नेपाल बाढ़ के बाद यह सबसे दर्दनाक वीडियो आया सामने। इस वीडियो को लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
3: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि एक माँ और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ तो आई है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें, कई तरह के झूठे वीडियोज भी वायरल किए जा रहे हैं। फैक्ट चेक टीम लगातार इन दावों की पड़ताल भी कर रही है, लिहाजा अब इस वीडियो और इसके दावे की सच्चाई को भी सामने लाना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो को देखने से ऐसा तो लग रहा है कि पानी के तेज फ्लो में ये दोनों फंस गई हैं। इसके बारे में जब हमने फ्रेम को जूम करके और हाईलाइट करके देखा तो फिर ये सामने आया कि ये दोनों स्कूली ड्रेस में हैं और इनके कंधे पर स्कूल बैग भी है। इससे हमें ये इशारा मिला कि ये दोनों स्कूल के बच्चे हो सकते हैं और अचानक पानी के तेज बहाव में ये दोनों फंस गए। इसके अलावा वीडियो में एक बात और देखने को मिली, ये दोनों पानी में फंसी हुई हैं और सामने से इस घटना को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि कैमरे का फ्रेम पल पल हिल रहा है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह कि अगर ये दोनों फंसी हैं, जिंदगी बचेगी या फिर नहीं, ये सवाल सामने खड़ा होता है। ऐसे में ये भी सामने आया कि वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था लेकिन बचाने के लिए कोई भी कवायद नहीं की जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? आवाज सुनकर आसपास जो भी लोग होंगे वो भी बिना सोचे समझे बचाने की जद्दोजहद जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर नजर नहीं आ रहा है। पूरे वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये काफी हद तक फिलीपीन जैसी लगी। फिलीपींस की आधिकारिक भाषा है। ऐसे में हमारा पहला सवाल ही था, अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें नेपाली क्यों नहीं सुनाई दे रही है। हमारा दूसरा सवाल यह कि हाल ही में फिलीपींस में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट ये था कि फिलीपींस बाढ़ से जुड़े वीडियो को कहीं जानबूझकर नेपाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
5: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। वायरल वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 सितंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना फिलीपींस के नेग्रोस ओरिएंटल प्रांत के गुइहुलंगन शहर के बारांगे बालोगो की थी। रिपोर्ट के अनुसार 4 सितंबर 2025 को स्कूल से घर लौटते समय दो बहनें कंसलाकन नदी के तेज बहाव के बीच फंस गई थी। भारी बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस दौरान दोनों बहनें तेज बहाव में बहने लगी लेकिन आगे जाकर पेड़ की जड़ों को पकड़ने में कामयाब रही। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना की पुष्टि 8 सितंबर 2025 की रिपोर्ट से भी होती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि गुइहुलंगन सिटी के बारांगे बालोगो में स्कूल से लौट रही दो छात्राएं अचानक आई बाढ़ में फंस गई। वे पेड़ों की जड़ों को पकड़ने में सफल रहीं और स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी के तेज बहाव से बाहर निकाल लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल बाढ़ में माँ बेटी के बह जाने के दावे से वायरल हो रहा वीडियो करीब 1 साल पुराना है और फिलीपींस का है, जहां बाढ़ के पानी में फंसी दो बहनों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया था। गुड न्यूज टुडे।
3: में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
3: है। फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: हेलो दोस्तों, तो आज की पार्टी हम लोग कनाडा से केसा दीदी की तरफ से मिलाया, तो आज हम लोग अपने पार्टी में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, तो इसके अलावा भी हम लोग 6 आइटम शामिल किए हैं जो हम लोग।
7: इस बच्चे ने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल सूरज को कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला ने कुछ पैसे मदद के तौर पर भेजे थे। आमतौर पर ऐसी मदद मिलने पर कोई अपने लिए जरूरत का सामान खरीद सकता है, लेकिन सूरज ने जो काम किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। बच्चे ने इन पैसों से अपने दोस्तों के लिए खाने की शानदार दावत तैयार कर दी।
6: मोहित मिरिंडा निकाल ले रहा है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक मिरिंडा के साथ खाने वाले हैं।

0: शाम को मेकअप उतरा, पहचान वापस आई, लेकिन शायद नजरिया बदल चुका था। पराग शाह दोबारा उन्हीं लोगों के पास पहुंचे,
1: जन्म आया था,
0: जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था। उन्होंने हाथ

0: सात आइटम शामिल हो गया।
1: उसने खुद खाना बनाया और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसका मजा लिया। लोगों ने बच्चों के इस अंदाज की तारीफ की कि उसने मिली मदद को अपने दोस्तों के साथ बांटा। कई लोगों ने कनाडा में रहने वाली केशा की भी तारीफ की। लोगों का कहना है कि हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी उन्होंने बच्चों के लिए मदद भेजी और इस छोटी सी मदद से कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
0: उसके बाद इधर मेरा छोटा भाई ये भी खा के दिखा रहा है, तो ये डायरेक्ट केके के साथ शुरू किया है।
1: हौसले के आगे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकल आता है। इस वीडियो में दो छोटे भाइयों का ऐसा ही प्यार और जज्बा दिखाई दे रहा है। एक भाई चलने में थोड़ा कमजोर है लेकिन लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा है, वही छोटा भाई उसके साथ खड़ा है और लगातार उसका हौसला बढ़ा रहा है। फिर जब वो फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है तो भाई का उत्साह देखते ही बनता है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत रही है।

0: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती समझो।
1: एक छोटी सी बच्ची पीले रंग की फूलों वाली चुनरी सिर पर ओढ़े नजर आ रही है। उसके माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी है और वो कैमरे के सामने बेहद मासूम अंदाज में देख रही है। कभी उसकी नजर कैमरे पर टिकती है तो कभी वो इधर उधर देखने लगती है। कुछ ही पलों में उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो प्यारी सी मुस्कान देने लगती है। बच्ची के साथ एक महिला भी दिखाई दे रही है जो उसे संभालती है और उसके साथ मस्ती करती नजर आती है। बच्ची भी कैमरे के सामने बिल्कुल सहज दिखाई देती है। उसके चेहरे पर ना तो किसी तरह की झिझक नजर आती है और ना ही बनावटीपन। यही मासूम अंदाज इस वीडियो की सबसे प्यारी बात है और लोग इस वीडियो को खूब प्यार दे रहे हैं। साइकिल पर सफर का ऐसा अनोखा जुगाड़ आपने शायद ही पहले देखा होगा। आगे साइकिल चल रही है और दोनों तरफ झोलों में बैठी हैं नन्ही बच्चियां। इस अनोखे अंदाज को देखकर कोई भी मुस्कुरा दे। खास बात यह है कि झोले में बैठी बच्चियां भी इस सफर का खूब आनंद ले रही है। इनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उन्हें ये अंदाज कितना पसंद आ रहा है। अब यही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है।
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: क्लास में जब टीचर्स कोई सवाल पूछते हैं तो आमतौर पर बच्चे जवाब देने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार टीचर ने सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि पूरी क्लास का माहौल मजेदार हो गया। सवाल था, आपकी क्लास में सबसे हैंडसम लड़का कौन है?
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: इसके बाद क्लास की सभी लड़कियों ने एक ही लड़के का नाम लिया और जब इसकी वजह सामने आई तो लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल सभी छात्राओं ने एक ही लड़के अर्जुन का नाम लिया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है कि आखिर अर्जुन ऐसा क्या करता है कि क्लास की हर लड़की उसी का नाम ले रही है। लोगों को लगने लगा कि शायद अर्जुन अपनी स्मार्टनेस, पढ़ाई या फिर किसी खास अंदाज की वजह से लड़कियों का फेवरेट है। आखिर में टीचर सीधे सवाल कर देती है, अर्जुन क्यों? इसके बाद जो जवाब मिलता है वो पूरी वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है।
2: ओके हेलो गाइस, हु इज द अर्जुन? व्हाई?
1: अट्ठाईस लड़कियां एक साथ बताती हैं कि अर्जुन ही उनकी क्लास में इकलौता लड़का है। यानी अर्जुन को सबसे हैंडसम चुनने की वजह उसकी कोई खास खूबी नहीं बल्कि ये है कि पूरी क्लास में वही अकेला लड़का है। इसके बाद कैमरा अर्जुन की तरफ घूमता है। कैमरे के सामने उसकी मासूमियत और शर्माने वाला अंदाज देख कर लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इंडियन आर्मी बॉर्डर पर बहादुरी का खूब उदाहरण पेश करती है, लेकिन लंबे चौड़े और हिम्मती जवानों के दिल में एक छोटा सा दिल कहीं छुपा बैठा होता है। इसीलिए जब उन्हें पार्क के झूले मिले तो ये मस्ती करने से खुद को नहीं रोक पाए। सब ने मिलकर खूब इंजॉय किया। वीडियो देखकर लोग अपना बचपन याद कर रहे हैं। एक लड़की का शानदार ट्रांजिशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। शुरुआत बेहद सिंपल अंदाज में होती है। लड़की कैमरे के सामने दिखाई देती है और फिर शानदार ट्रांजिशन के जरिए अचानक उनका लुक पूरी तरह से बदल जाता है। इसके बाद वो खूबसूरत साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। मराठी स्टाइल में तैयार होकर उनका लुक काफी आकर्षक नजर आता है। साड़ी के साथ पारंपरिक ज्वेलरी और ट्रेडिशनल अंदाज उनके पूरे लुक को और खास बना देता है। सड़क किनारे फुटपाथ पर दो बिजली के खंभों के बीच चादर बांधकर एक झूला बनाया गया है। इस झूले पर एक छोटा सा पपी आराम से लेटा हुआ है। पास ही खड़ी एक लड़की बेहद प्यार से उस पपी को दुलारते हुए झूम रही है। लड़की का अंदाज इतना प्यारा है कि वो पपी के गाल को छूकर अपने माथे को उसके सिर से सटा लेती है। पपी भी इस बेइंतहा मोहब्बत का पूरा आनंद ले रहा है। कुछ ही पलों में लड़की उसे हल्के हाथों से झूला झुलाकर अपनी गोद में उठा लेती है। इस दृश्य को देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरी लड़की आकर इसको प्यार करने लगती है। इस वीडियो को करोड़ों लोग देख चुके हैं और इस पर जमकर अपना प्यार लुटा रही है। इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता जब प्यार और भरोसे से जुड़ जाए तो वो बेहद खूबसूरत बन जाता है। ऐसा ही दिल छू लेने वाला पल इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। एक शख्स साइकिल से कहीं जा रहा है, तभी हाथी उसे बड़े प्यार से रोक लेता है, मानो अपने खास साथी को कुछ पल और अपने पास ही रखना चाहता हो। दोनों के बीच नजर आ रहा अपनापन और तालमेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यही रिश्ता इस वीडियो को खास बना रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात करेंगे अवधपुरी की, जिसे और भव्य और दिव्य रूप देने का काम चल रहा है। दिवाली से एक दिन पहले यहाँ दीपोत्सव की दिव्य छटा देखने को मिलेगी। इस वर्ष दीपोत्सव को और अधिक भव्य रूप से मनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ अब तक एक नया शानदार पथ भी देखने को आपको मिलेगा। इस पथ पर लगे स्तंभ भी विशेष हैं। इसके अलावा सरयू घाटों का सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है।

0: रामनगरी अयोध्या लगातार सजती सवरती जा रही है। यहाँ लगातार विकास के काम चल रहे हैं। धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का कायाकल्प होता जा रहा है। अब यहाँ करीब 15.5 किलोमीटर लंबा भव्य 4-लेन मार्ग विकसित हो रहा है। इस मार्ग को त्रेता युग के भावुक अध्याय से जोड़ा जा रहा है, जहां भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की स्मृतियां बसी हुई हैं। धर्म पथ से महाराज दशरथ के समाधि स्थल तक पहुंचने वाला ये मार्ग अयोध्या की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ ही श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के बीच त्रेता युग की अनुभूति कराने वाला होगा। इस दशरथ पथ पर 30 मुद्रा स्तंभ स्थापित किए गए हैं। करीब हर 500 मीटर की दूरी पर एक स्तंभ लगाया गया है, जिनमें 15 स्तंभों पर योग मुद्रा और 15 पर शस्त्र मुद्रा प्रदर्शित की गई है। हर स्तंभ करीब 6 फीट ऊंचा है। इस मार्ग पर आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी और करीब 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ और बीच में डिवाइडर भी होगा। करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पथ को दीपोत्सव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: राजा दशरथ को का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से और अयोध्या नगरी को सीधे जोड़ने वाला एकदम निपट सरजू के माझे में यह बनाया गया यह पथ है, जिसपे विभिन्न धार्मिक आकृतियां अनुकृतियां बनाई गई हैं, जिससे लोगों को एक एक धार्मिक वातावरण वहां प्राप्त होगा। बहुत सुंदर पथ बन रहा है। आज के पहले वो अयोध्या का माझा क्षेत्र था।
0: अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी के साथ साथ धार्मिक स्थलों के साथ साथ सरयू घाटों का स्वरूप भी लगातार निखारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या का आरती घाट इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाट पर तैयार की गई मंदिर नुमा अनोखी संरचना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
2: अयोध्या में सरयू माँ की जो आरती होती थी वो इन्हीं तख्तों से होती थी और यहीं पे लोग खड़े होते थे, यहीं पे आरती स्थल है। ये जो पूरा एंगल लगा है यही वो स्थल हुआ करता था। जो आकृति बनाई गई है वो आरती स्थल की है और वहीं से माँ सरयू की जो आरती है वो यहीं से होगी। ये वो स्थल है जहाँ पे अब खड़े होके वो आरती होगी, जो बारिश से बचाएगा। रात के अंधेरे में ठंड है तो ठंड से बचेंगे लोग, तो यही वो स्थल है जहाँ पे मंदिर की आकृति दी गई है। खास आकृति के द्वारा जो है पूरा आरती स्थल जो है मंदिर में भी नजर आएगा। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको खड़े होने में खास दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता तो वो नहीं होगा।
0: आरती घाट का बदलता स्वरूप इस बात की तस्वीर पेश करता है कि अयोध्या में धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन सुविधाओं और सौंदर्यकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे आकर्षण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए रामनगरी की यात्रा को और यादगार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रामनगरी में इस वर्ष 7 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के माध्यम से विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है और विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के पुल से लेकर लक्ष्मण घाट तक करीब 1 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूलों की विशेष सजावट की जाएगी। शाम ढलते ही दीपों की लौ और रंगीन रोशनी से सरयू तट का नजारा अलौकिक दिखाई देगा।
2: यही वो स्थल है जिसको राम की पैड़ी कहते हैं और जहाँ पे एक भव्य नजारा होता है उस वक्त का, जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे। तो वो समय था दीपावली का, तो उसके हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का खास आयोजन होता चला आ रहा है। इस बार उस दीपोत्सव को और भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को खास रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
0: सरयू घाटों पर भव्य महाआरती का आयोजन भी प्रस्तावित है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और दीपों की रोशनी के बीच होने वाली महाआरती में अवध की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। सरयू की लहरों के बीच हजारों दीपों की जगमगाहट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी।
1: घाट के रेनोवेशन का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य लगातार चल रहा था, जिसको UPPCL कर रहा था, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्य हो रहा था, तो वो भी लगभग कम्प्लीशन पे है। वो कार्य हो जाएगा तो हमारा दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो साफ सफाई के कार्य हैं, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, जितने भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा रिनोवेट किया जा रहा है।
0: प्रशासनिक स्तर पर दीपोत्सव की छठा को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। योजना के अनुसार सभी काम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का दीपोत्सव और आकर्षक और यादगार होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, GNT पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खुले जा रहे हैं नकदी और आभूषणों से भरे पात्र, भक्त बप्पा के सामने रख रहे हैं मन की बुरात। होली की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा के दर्शन, शेरवाली कोठी के पंडाल में पप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनाएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को सजोने की तैयारी, ADA को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा, 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय, कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। सरकार ने UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का किया ऐलान, 2,000 से ज्यादा UPI लेन देन पर देना होगा 0.4% चार्ज, आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए फ्री सुविधा। अफगानिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर भारत ने सीरीज में बनाई अजेय बढ़त, 15वें ओवर में ही टीम इंडिया ने हासिल किया 160 रनों का लक्ष्य, संजू ने 22 गेंदों में बनाए 57 रन।

0: तो चलिए आप भी सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के तमाम रंगों की। आज गणेशोत्सव का दूसरा दिन है, शहर शहर गजानन की आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। देश भर में गणपति पंडाल सज गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात उत्तर की हो, चाहे बात दक्षिण की हो, या फिर आपको साउथ की तरफ लेकर चलें, किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे आपको ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि गणपति उत्सव अपने चरम पर है। तो बप्पा को सजा दिया गया है, पंडाल भी बिल्कुल तैयार है। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप और स्वरूप हमें नजर आ रहे हैं। कहीं विघ्नहर्ता का खंडोबा अवतार दिखाई दे रहा है, तो कहीं गणपति धनपति रूप में विराजे हैं। एक पंडाल में तो बप्पा बच्चों के मनपसंद कैंडी रूप में ढले नजर आ रहे हैं, तो कहीं मां भवानी के लाडले पिता भोलेनाथ के साथ दिव्य दर्शन दे रहे हैं। अलग अलग रूपों के साथ गणपति बप्पा सोशल मैसेजिंग के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सूरत के साइबर थाने में बप्पा साइबर विघ्न हर कर डिजिटल सुरक्षा का आशीर्वाद देने पहुंचे। पुणे में तो भक्तों ने बप्पा की प्रतिमा को करोड़ों रुपयों के ऐतिहासिक स्वर्ण आभूषणों से सजा दिया। अब यूं समझिए कि गणपति उत्सव ने देश के अलग अलग हिस्सों को भक्ति, उत्साह और उमंग के एक रंग में रंग दिया हो। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सजे भारत के सबसे भव्य गणेश पंडालों की यात्रा पर। और शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां साकीनाका के राजा का भव्य दरबार सजा है और 43 फीट के बप्पा खंडोबा रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के उपनगर के नगरी में और यहां के सबसे बड़े बप्पा का आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैं इस समय मौजूद हूं साकीनाका के महाराजा के दरबार में और उपनगर मुंबई से सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हें मानी जा रही है। और जो जानकारी है और जो देख हम पा रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के खंडोबा जो सबसे बहुत ज्यादा माने जाते हैं, चर्चित हैं, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, उनके अवतार में गणपति बप्पा यहां पर विराजमान किए गए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, देखिए उनका जो ये पैर है ना, ये पैर आप देख रहे हैं, पैर उसके ठीक मैं नीचे हूं, मेरी हाइट उनके पैर तक भी नहीं पहुंच पा रही है। और फिर से मैं वीडियो जल्दी स्वागत से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कितने ऊंचे हैं बप्पा, 43 फीट ऐसे ही नहीं होता। सोचिए जब आगमन हुआ होगा तो कितने ख्याल रखने के साथ साथ और कितनी व्यवस्था के साथ बप्पा को यहाँ पर लाया गया होगा। हालांकि बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, फिर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, लेकिन अब यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और साकीनाका के महाराजा का ये दरबार है, खंडोबा के अवतार में पहुंचे हुए शिवलिंग के साथ में विराजमान है। महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति दिखाते हुए उनकी ये उनके सर पे आप देख रहे हैं पगड़ी है बकायदा, और इसके अलावा त्रिशूल है, डमरू है, तलवार है। साथ ही साथ ये जो आसपास का परिसर है, जो डेकोरेशन है, चलचित्र जिसे यहां कहते हैं, वो भी उन्हीं पर आधारित है। उनकी ही मंदिर की तस्वीरें जो है यहां पर लगा रखी है। और थोड़ा सा अब देखें, और वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी उस मूर्तिकार की जिन्होंने इतना भव्य ये मूर्ति बनाया है। सोचिए किस विशेष व्यवस्था के साथ यहाँ पर लाया गया होगा। 12वें दिन इनका विसर्जन होने वाला है और देखिए तमाम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। जहां भी आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ भक्त हैं। थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्पेशली ये जो गणेश उत्सव होता है वो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो जाते हैं देखते हैं। ये देखिए तमाम लोग, गणपति बप्पा, आवाज नहीं आई, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, कैसे लगे बेटा पप्पा?
2: बहुत अच्छे।
0: चलिए अब आपको मुंबई से लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां भक्तों के प्यारे बप्पा कैंडी वेश में पधारे हैं। हैदराबाद में कैंडीज, टॉफी और चॉकलेट से बप्पा का यह अनोखा स्वरूप तैयार किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं मोदक प्रिय का कैंडी अवतार कैसा है।
3: ये मोदक प्रिय का कैंडी स्वरूप है। हैदराबाद से आई तस्वीर में आपको शहर के सबसे अनोखे गणपति के दर्शन होंगे। हैदराबाद के भक्तों ने हजारों कैंडी और टॉफियों को जोड़कर बप्पा का ये अद्भुत स्वरूप तैयार किया है। न केवल बप्पा कैंडी अवतार में विराजे हैं, बल्कि पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडी की थीम पर ही की गई है। ऐसा लगता है बप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष पंडाल में उतर आया हो।
4: साल गणेश जी का थीम आके कैंडी गणेश का लगा है, साल पूरा टोटल थीम आके कैंडीज, वेरायटी कैंडीज लगा है पूरा। हम लोग डेकोरेशन भी टोटल देख ले, देखे तो पूरा कैंडीज दिखेंगे आपको, पूरा पूरा बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए और बच्चे भगवान के समान बोलते ना, वो हिसाब से हम लोग बच्चे के हिसाब से देख लेके वो थीम के हिसाब से हम लोग गणेश जी को डेकोरेट करें पूरे साल।
3: हैदराबाद का ये मंडल पिछले 18 सालों से गणपति स्थापना कर रहा है। हर बार पंडाल की थीम कुछ अलग कुछ खास होती है, लेकिन इस बार की थीम ने तो बप्पा के जूनियर भक्तों का दिल ही जीत लिया है। वैसे ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चे युवा बुजुर्ग सभी के मन को भा रहा है। कैंडी वाले बप्पा के पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं है, जहां आस्था के साथ साथ बप्पा के आशीष की छाव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बप्पा के अनोखे पंडालों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्वरूप बहुत निराले हैं और पंडालों की इस यात्रा में अब आपको लेकर चलते हैं हम विशाखापट्टनम, जहां महाशिव गणपति पूरी भव्यता के साथ विराजे हैं। ये देखिए बप्पा का ये स्वरूप हजारों छोटे बड़े जीवित पौधों से तैयार किया गया है। बप्पा की ये अनोखी प्रतिमा लगभग 18 फीट की है। विशाखापट्टनम के अनकापल्ली में प्रकृति और भक्ति का ये अद्भुत मेल दिखाई दे रहा है। इस सुंदर मेल के कारण ही इन्हें सस्य गणपति नाम दिया गया है। सस्य का अर्थ होता है वनस्पति या फसल। अनकापल्ली के श्री चिंतामणि गणपति दत्त क्षेत्र में बप्पा का ये भव्य रूप विराजित किया गया। बप्पा तो पौधों से बनाए ही गए हैं, साथ ही पंडाल के वातावरण को भी पूरी तरह से प्राकृतिक स्वरूप दिया गया, जिसमें पानी के सुंदर फव्वारे, पक्षियों की चहचहाट की आवाजें शामिल हैं। इस उत्सव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि त्योहार की समाप्ति के बाद मूर्ति में उपयोग किए गए सभी पौधों को भक्तों के बीच मुफ्त में वितरित कर दिया जाएगा, ताकि लोग उन्हें अपने घरों में लगा सके। इस पहल में न केवल आस्था शामिल है, बल्कि ये समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता का संदेश भी देती है। बप्पा के ये स्वरूप पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के विघ्न को हरने वाला स्वरूप है। देखिए विघ्नहर्ता के जितने नाम उतने ही स्वरूप। विघ्नहर्ता का ये स्वरूप जहां फिजिकल वर्ल्ड के विघ्नों को हरने वाला है, तो वहीं सूरत में बप्पा के ऐसे स्वरूप की स्थापना हुई जो हमारी डिजिटल लाइफ के विघ्नों को हरने का आशीर्वाद दे रहा है। सूरत के साइबर क्राइम थाने में साइबर विघ्नहर्ता बप्पा दर्शन दे रहे हैं।

0: की पार्वती पितामह
1: नाम जिनका विघ्नहर्ता है वो अब जीवन के तमाम विघ्नों के साथ साथ आपकी डिजिटल लाइफ के विघ्न हरने का भरोसा भी दे रहे हैं। सुमुख जब स्वयं साइबर सेल प्रमुख की भूमिका में हो तो फिर साइबर सुरक्षा का आशीर्वाद कैसे नहीं मिलेगा। बापा का ये पंडाल सजा है डायमंड सिटी सूरत शहर के साइबर क्राइम पुलिस थाने में, जहां अनोखे अंदाज में भगवान गणेश की स्थापना साइबर विघ्नहर्ता के रूप में की गई है। इस अनोखे पंडाल में न सिर्फ संदेशों और प्रतीकों के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने का संदेश दिया जा रहा है, बल्कि अनोखे स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
2: जिस तरह के फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उस फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम की हमारी टीम ने एक साइबर गणपति, साइबर विघ्नहर्ता की स्थापना 5 दिन के लिए करी है। गणपति बापा खुद आपको साइबर क्राइम से कैसे बचना है उसके लिए जानकारी दे रहे हैं, और गणपति बापा अगर खुद आपको बताएंगे तो लोगों में ये मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा कि हमें साइबर क्राइम से कैसे बचना चाहिए। पूरा एक पंडाल साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर बनाया गया है और गणपति बापा खुद यहाँ पे सभी भक्तों को उनके जो प्रश्न है साइबर क्राइम के बारे में उनका खुद आंसर भी बता रहे हैं, और जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे साइबर क्राइम से कैसे बचना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वो सीख भी रहे, और जब वो यहाँ से आरती करके दर्शन करके निकलेंगे तो यहाँ पे साइबर क्राइम से बचने के लिए और क्या करना चाहिए उसका संकल्प भी लेके जा रहे हैं।
1: सूरत शहर के इस साइबर क्राइम पुलिस थाने में भगवान गणेश को साइबर विघ्नहर्ता के रूप में 5 दिनों के लिए विराजमान किया गया है। अपने अलग अलग अवतारों में गजानन ने क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर जैसे जाने कितने ही दानवों का संहार किया, और अब साइबर विघ्नहर्ता के रूप में वे डिजिटल बुराइयों का नाश करने उतरे हैं। सूरत पुलिस की ये पहल धार्मिक आयोजन के साथ साथ जन जागरूकता को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए गुजरात के बाद रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की तस्वीरें भी भव्यता के साथ भरपूर हैं। वो तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई, जहां मोगरेश्वर गणपति का दरबार सज चुका है। ये तस्वीरें आई हैं अंधेरी में मौजूद मोगरेश्वर के राजा की। इस पंडाल में गणपति बेहद भव्य और दिव्य स्वरूप में स्थापित किए गए हैं। खास बात यह है कि इस पंडाल में गणपति से जुड़ी पौराणिक कहानियों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शाया जा रहा है। महादेव के विवाह की कथा, गणपति के जन्म की कहानी जैसे कितने ही पौराणिक प्रसंग आपको यहाँ वीडियो, फिल्म और झांकी के रूप में दिख जाएंगे। दरअसल वैदिक आदर्शों और पीढ़ियों से चली आ रही इन पौराणिक कहानियों में बप्पा के जीवन से जुड़ी जितनी ही कहानियां हमारे लोक जीवन में उतरी हैं, समय के साथ विकसित होती धार्मिक कथाओं, वैदिक प्रतीकवाद के बीच में गौरी नंदन के आदर्श भक्तों के बीच प्रचलित होते चले गए। आज आप गणेशोत्सव पर सजे पंडालों में इन्हें जीवंत स्वरूप में देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मुंबई से सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली के महाराज का भव्य दरबार आपको दिखाते हैं, जहां गणपति के साथ उनके पिता महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन हो रहे हैं।

0: धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई तो शहर शहर बाप्पा के भव्य और अनोखे पूजा पंडाल सज गए, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और भव्यता की वजह से लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं, बल्कि अपनी अनोखी थीम की वजह से आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। ऐसा ही एक गणेश पंडाल राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सजा है, जहां लोगों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका भी एक छत के नीचे देखने को मिल रही है।
1: इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में हैं और एक बहुत ही शानदार पंडाल में आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी तैयार किए गए हैं। मैं आपको तस्वीर उसी के दिखा रहा हूँ और किस तरह से हम पंडाल के अंदर मौजूद हैं। और जब आप अंदर आएंगे तो सामने आपको न सिर्फ बप्पा के दर्शन होंगे, बल्कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। अभी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भीमा शंकर की, और नीचे इस तरह से जो शिवलिंग है उसको रखा गया है। ऐसे ही आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग क्या है, कहां पर है, उसके बारे में आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें ज़्यादा पता नहीं है, वो यहां पर आकर ना सिर्फ देखेंगे बल्कि जानकारियां पढ़कर बहुत कुछ धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में वो जान भी पाएंगे। ये हम पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ पर, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरह का शिवलिंग है, ठीक उसी तरह का शिवलिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको तमाम दूसरे शिवलिंग यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। ये त्र्यंबकेश्वर है, वो बैद्यनाथ मंदिर का है, उस तरफ महाकालेश्वर है, ऐसे ही तमाम सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उन सब के दर्शन आपको यहाँ पर होने वाले हैं।
0: राजधानी के इस गणेश पंडाल में भक्ति भाव के साथ साथ भारत की विकास यात्रा और 2047 के भारत की झांकी को भी दिखाया गया है। दरअसल दिल्ली के लक्ष्मी नगर का श्री गणेश सेवा मंडल इस साल अपना 25वां गणेशोत्सव मना रहा है, इसलिए आयोजकों ने कुछ अनोखा करने की ठानी और इस बार महोत्सव की थीम विघ्नहर्ता से विकास करता रखी गयी। इस थीम के तहत यहां आपको भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के संवाहक भी दिखेंगे, तो वहीं नई तकनीक और वैज्ञानिक दक्षता का झरोखा भी यहां ब्रह्मोस, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप के रूप में दिखेगा। गांव के विकास की झांकी से लेकर एआई रोबोट्स तक और बुलेट ट्रेन से लेकर इसरो के चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान तक, यहाँ हर दृश्य जीवंत है। यानी एक तरफ महादेव और गौरी नंदन तो दूसरी ओर देश के विकास का वंदन। बाप्पा के इस पंडाल में आपको सब कुछ एक साथ नजर आएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो गणपति के पंडालों में समृद्ध होते भारत की झांकी आपने देखी, अब आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां ऐतिहासिक आभूषणों से सजी गौरी नंदन की झांकी आपको इस शहर की समृद्ध विरासत की कहानी सुनाएगी। अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति के रूप में पहचान रखने वाले पुणे के ओझर के श्री विघ्नहर गणपति का बेहद अलौकिक और राजशाही रूप गणेशोत्सव के दौरान भक्तों के सामने आया है। विघ्नहर बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक पहनाई गई और करीब 200 साल पुराने करोड़ों रुपए मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बप्पा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वस्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर गणपति का ये शाही रूप देखते ही बन रहा है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको मुंबई के साकीनाका में गणपति के खंडोबा स्वरूप के दर्शन करवाए। साकीनाका में ही बप्पा का एक और भव्य पंडाल सजा है, जहां गणपति विट्ठल स्वरूप में विराजे हैं। बप्पा का विट्ठल अवतार गरुड़ पर सवार है, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं साकीनाका के विघ्नहर्ता गणेश जी के।

0: इंतजार के बाद आता है गणपति उत्सव, वो समय जब गजानन अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। भक्तों के मन के साथ साथ शहर शहर पंडालों, मंदिरों और घरों में विराजते हैं। भक्तों की भावना के आधार पर अनगिनत रूपों में ढल जाते हैं। इस बार भी बप्पा के भक्तों ने उन्हें अलग अलग रूपों में स्थापित किया है। बप्पा का एक ऐसा ही भव्य रूप सजा है मुंबई के साकीनाका में। साकीनाकायचा विघ्नहर्ता अब की बार विठल रूप में पधारे हैं। मानव शरीर वाले गरुड़ के ऊपर बप्पा के चरण टिके हैं। स्वरूप भले ही जो हो, लेकिन साकीनाका के विघ्नहर्ता को मुंबई प्यार से गोड बप्पा के नाम से बुलाती है। गोड बप्पा यानी प्यारे या मीठे। दरअसल साकीनाका के विघ्नहर्ता की प्यारी और निश्चल मुस्कान के चलते उन्हें भक्तों ने प्यार से गोड बप्पा नाम दिया है।
1: आपको बताया कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ साकीनाका का विघ्नहर्ता के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। पहले आप सीधे गणपति बप्पा का दर्शन ही कर लें। देखिए, ये उपनगर मुंबई की एक बहुत ही ज्यादा उन लिस्ट में नाम शामिल हैं जो बड़े प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं और कितने सुंदर तरीके से इस समय यहाँ पर विराजमान की गई हैं। खास बात ये है कि मानव गरुण पर बप्पा विराजे हैं, विट्ठल के अवतार में हैं और हाइट देख के लग रहा है कि लगभग 33 फीट होगी। बैलेंस का पूरा ये मामला है और सोचिए मूर्तिकार कितने ज़्यादा सीरियस होंगे और कितना मेहनत उन्हें की होगी और कितने एक्सपीरियंस हैं वो कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है बप्पा की इतना बड़ा आकार उन्होंने दे दिया है। विट्ठल का अवतार है और एक पैर पर गरुण पर खड़े हुए हैं, बेहद सुंदर लग रहे हैं और तमाम जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बप्पा का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह से मुंबई के कई पंडालों में बड़ी बड़ी जो गणपतियां होती हैं विराजमान की जाती है, बहुत मेहनत इस पर हुई है।
0: साकीनाका के विघ्नहर्ता की ये प्रतिमा हर किसी का मन मोह रही है। करीब 33 फीट के बप्पा की ये प्रतिमा हफ्तों की मेहनत से तैयार हुई है।
1: गोड़ गणपति के नाम से प्रसिद्ध है
2: जी, जरूर गोड़ गणपति। आप इनकी खूबसूरती देख सकते हैं, जिस तरह से अंदाज में जो खड़े हैं और जिनकी जो खूबसूरती की जो सीधे दिवाली, जो सबसे मुंबई के लगभग सबसे बड़े मूर्तिकार है, उन्होंने अपनी पूरी जी जान से इस मूर्ति को गढ़ाने में कोशिश की है। जिस तरह से आप इनकी सुंदरता के लिए लोग दीवाने हो गए, जब आगमन की जिस दिन हमारा आगमन हुआ उस दिन लाखों लोगों का सैलाब इस रास्ते पे बह रहा था कि लोग सोच नहीं पाए कि इतनी खूबसूरत मूर्ति, क्योंकि बेसिकली ये मूर्ति ये हाइट और इनकी खूबसूरती परेल दादर की एक नहीं पहचान थी, लेकिन अभी साकीनाका में भी इस मूर्ति के माध्यम से हमने दिखा दिया है कि साकीनाका भी आने वाले वक्त में लालबाग परेल से भी आगे चला जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे। इस मंडल की खासियत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एकजुट रह के इस मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्यार का, भाई का एक प्रतीक भी इसी मंडल के माध्यम से जाएगा।
0: पिछले 42 सालों से साकीनाका के विघ्नहर्ता हर गणेशोत्सव पर यूं ही अपनी अलौकिक छटा के साथ विराजते आ रहे हैं। अब की बार भी साकीनाका के इन गणपति को तैयार करने में हर समाज, हर तबके से जुड़े लोगों की भागीदारी रही है। वास्तव में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का मतलब सिर्फ बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना भर नहीं, बल्कि ये पर्व आस्था, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव का भी उत्सव है। साकीनाकाच्य विघ्नहर्ता यही संदेश देते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, गणपति की भक्ति का रंग पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, वो तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। गणेशोत्सव के दूसरे दिन गजानन से जुड़ी हुई एक तस्वीर आई है पुणे से सामने, जो आपके सामने रखते हैं। पुणे में गणेश नाम का जय घोष सुनाई दिया। पुणे में आयोजित समारोह में ऊर्जा से भरे माहौल के बीच में हजारों महिलाओं ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। पुणे में करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। गणेश नाम के जय घोष, अथर्वशीर्ष पाठ और महाआरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यह आयोजन ऋषि पंचमी के अवसर पर श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्ण युग तरुण मंडल की ओर से किया गया।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सत्ता, दौलत, रसूख और करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। घाटकोपर ईस्ट के विधायक का पराग शाह की पहचान कुछ ऐसी ही है, लेकिन एक दिन एक शख्स न विधायक था, न करोड़ों का मालिक, न साथ में सुरक्षा कर्मियों का घेरा था। मुंबई की सड़कों पर यह विधायक हाथ फैलाए दिखे। ये कोई फिल्मी दृश्य या चुनावी स्टंट नहीं था, ये अहंकार को शून्य करने की एक सच्ची आध्यात्मिक साधना थी।
3: जिस शख्स के पास करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति हो, जिसके आगे पीछे सुरक्षा का घेरा हो, वही शख्स अगर एक दिन सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आए तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह ने ये किया, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने के लिए। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के आध्यात्मिक गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें एक अनोखी सीख दी। गुरु ने कहा कि एक दिन अपना पद, पैसा और पहचान सब छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जी कर देखिए। पराग शाह ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की। महंगी गाड़ियां, घड़ी, सुरक्षा और विधायक का रुतबा सब पीछे छूट गया। मेकअप के जरिए बदला हुलिया और फिर वही विधायक घाटकोपर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। घंटों तक सड़क पर रहने के दौरान पराग शाह ने उस जिंदगी को महसूस किया जिसे समाज का गरीब तबका रोज जीता है। भूख, इंतजार, लोगों की बेरुखी और कभी कभार किसी अनजान शख्स की मदद।
4: ओ, रिक्शा 8 मिनट देवाना, जरा ट्रैफिक करो जाए।
3: किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने खाने का टुकड़ा, तो किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
4: अरे वाह।
3: लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था, जिस पहचान के दम पर दुनिया आपको सम्मान देती है, वही पहचान छिन जाए तो इंसान के पास बचता क्या है।
4: देवा, देवा,

0: शाम को मेकअप उतरा, पहचान वापस आई, लेकिन शायद नजरिया बदल चुका था। पराग शाह दोबारा उन्हीं लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन की इस फकीरी ने उन्हें एहसास कराया कि दौलत और पद इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अहंकार छोटा ही करता है। इस अनोखे प्रयोग की सबसे बड़ी सीख है इंसान की असली पहचान। उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है इससे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला। जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन।

0: मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा के चढ़ावे की गिनती शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच खुले जा रहे हैं नकदी और आभूषणों से भरे पात्र। भक्त भप्पा के सामने रख रहे हैं मन की मुराद। होली की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराजा के दर्शन। शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान। आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनाएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को सजोने की तैयारी। एडीए को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा। 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय। कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। सरकार ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का किया ऐलान। 2,000 से ज्यादा यूपीआई लेन देन पर देना होगा 0.4% चार्ज। आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए फ्री सुविधा। अफगानिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर भारत ने सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। 15वें ओवर में ही टीम इंडिया ने हासिल किया 160 रनों का लक्ष्य। संजू ने 22 गेंदों में बनाए 57 रन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती। कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कुछ दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाया उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, जहां पर कुछ छात्रों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। क्या है इसकी सच्चाई आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल में आए हालिया बाढ़ का वीडियो है जहां पर एक माँ बेटी बह गई। क्या है इसकी सच्चाई आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है जहां पर कुछ छात्रों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
3: एक शख्स को घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा है। कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे हुए इस नजारे को देख रहे हैं तो कुछ लोग ये देखने के लिए खड़े हो गए हैं कि अचानक ही क्या हो गया। इस माहौल के बीच कुछ लोग गो बैक का नारा भी लगाने लग गए। किसी ऑडिटोरियम में आई इन तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी हिला दी, शाबाश मिली शेरो, अगर आप भी इससे सहमत है तो इसे आगे बढ़ाए, #UGCRollback। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। वीडियो में किसी ऑडिटोरियम के अंदर से कुछ लोग एक शख्स को घसीटते हुए बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। कई लोग गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है कितना गलत है जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक शख्स को पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। इस दौरान गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं और ऐसे में सबसे पहले हमने नारे को ध्यान से सुना। अब ये तो सामने आ गया कि हॉल में मौजूद कुछ लोग वीसी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। वीसी मतलब कि वाइस चांसलर, जो विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को संभालता है। यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण फैसले, नीतियां, नियुक्तियां वीसी के नेतृत्व में ही होती हैं। इससे हमें ये तो इशारा मिल गया कि ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है जहां पर कुछ लोग जमा होकर कुलपति का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा है। इस दौरान हमें स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा हुआ नजर आया। इस समय ये लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम हो सकता है। वीडियो में एक जगह वंदे मातरम ऑडिटोरियम शब्द भी देखने को मिला। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि वंदे मातरम ऑडिटोरियम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थित है। यहां से ये साफ हो गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यक्रम ही है और ये उसी का वीडियो है। फैक्ट चेक टीम ने यह भी जानने की कोशिश की कि हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वंदे मातरम ऑडिटोरियम में यूजीसी के नियमों के खिलाफ क्या कोई प्रदर्शन या फिर हंगामा हुआ है, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था, अगर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है तो फिर सत्यनिकेतन हादसे के जवाब दो के नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं। स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में दूसरा सवाल ये कि कहीं कुलपति योगेश सिंह के खिलाफ किसी प्रदर्शन के वीडियो को यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 8 सितंबर के एक्सपोज पे मिला। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहां सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद कुछ छात्रों ने कुलपति पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी 9 सितंबर की रिपोर्ट मिली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 8 सितंबर की है, जब कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सत्य निकेतन में हुए हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पीसी योगेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी की थी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में NSUI कार्यकर्ता और कैंपस लॉ सेंटर के छात्र राम निवास बिश्नोई भी शामिल थे। हिंदी विभाग की ओर से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स स्थित वंदे मातरम ऑडिटोरियम में विकसित भारत हिंदी भाषा और साहित्य विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुलपति योगेश सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान बिश्नोई समेत कुछ छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बिश्नोई कुलपति से सवाल कर रहे थे, इसके बाद उन्हें ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान DU VC गो बैक, VC शन करो, PG हॉस्टल दो और अकाउंटेबिलिटी तय करो जैसे नारे लगाए गए थे। इसके बाद हमने राम निवास बिश्नोई का इंस्टाग्राम हैंडल भी देखा। यहाँ इसी घटना का एक दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी मौजूद है। इस वीडियो में बिश्नोई को ऑडिटोरियम से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में वो कुलपति के सामने सत्य निकेतन हादसे को लेकर सवाल उठाते नजर आते हैं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें पकड़ कर बाहर ले जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि इस वीडियो का UGC नियमों की वापसी की मांग से कोई लेना देना नहीं है। असल में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI समेत कुछ छात्रों ने सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की थी। फिर जिस दत्ता के साथ तीन तक चैक को न्यूज चुने।
2: सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो लड़कियां बाढ़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं। तभी अचानक से तेज बहाव से पानी आता है, दोनों को बाहर ले जाता है। इस वीडियो को हाल फिलहाल आई नेपाल की बाढ़ से जोड़कर देखते हुए वायरल किया जा रहा है। सच्चाई क्या है हमारी इस रिपोर्ट में जानिए।
4: चारों तरफ सैलाब, पानी पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच दो लड़कियां बाढ़ के तेज बहाव के बीच एक दूसरे को पकड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। पानी के वेग के आगे इन दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती है और दोनों लड़कियां उसमें बह जाती है। इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का वीडियो मानकर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक माँ और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, आखिर हार गई माँ और बेटी, इकलौती बेटी के साथ माँ बाढ़ में फंस गई। देखने वाले वीडियो बनाते रहे लेकिन अंत में बाढ़ की जीत हुई। नेपाल बाढ़ के बाद यह सबसे दर्दनाक वीडियो आया सामने। इस वीडियो को लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि एक मां और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ तो आई है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें, कई तरह के झूठे वीडियोज भी वायरल किए जा रहे हैं। फैक्ट चेक टीम लगातार इन दावों की पड़ताल भी कर रही है, लिहाजा अब इस वीडियो और इसके दावे की सच्चाई को भी सामने लाना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो को देखने से ऐसा तो लग रहा है कि पानी के तेज फ्लो में ये दोनों फंस गए हैं। इसके बारे में जब हमने फ्रेम को जूम करके और हाईलाइट करके देखा तो फिर ये सामने आया कि ये दोनों स्कूली ड्रेस में हैं और इनके कंधे पर स्कूल बैग भी है। इससे हमें ये इशारा मिला कि ये दोनों स्कूल के बच्चे हो सकते हैं और अचानक पानी के तेज बहाव में ये दोनों फंस गए। इसके अलावा वीडियो में एक बात और देखने को मिली, ये दोनों पानी में फंसी हुई हैं और सामने से इस घटना को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि कैमरे का फ्रेम पल पल हिल रहा है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों फंसी हैं, जिंदगी बचेगी या फिर नहीं, ये सवाल सामने खड़ा होता है। ऐसे में ये भी सामने आया कि वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था लेकिन बचाने के लिए कोई भी कवायद नहीं की जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? आवाज़ सुनकर आसपास जो भी लोग होंगे वो भी बिना सोचे समझे बचाने की जद्दोजहद जरूर करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। पूरे वीडियो में जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये काफ़ी हद तक फिलीपींस जैसी लगी। फिलिपिनो फिलीपींस की आधिकारिक भाषा है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था, अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें नेपाली क्यों नहीं सुनाई दे रही है। हमारा दूसरा सवाल यह कि हाल ही में फिलीपींस में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट यह था कि फिलीपींस बाढ़ से जुड़े वीडियो को कहीं जानबूझकर नेपाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। वायरल वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 सितंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना फिलीपींस के नेग्रोस ओरिएंटल प्रांत के गुइहुलंगन शहर के बारांगे बालोगों की थी। रिपोर्ट के अनुसार 4 सितंबर 2025 को स्कूल से घर लौटते समय दो बहनें कंसलाकन नदी के तेज बहाव के बीच फंस गई थी। भारी बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस दौरान दोनों बहनें तेज बहाव में बहने लगी लेकिन आगे जाकर पेड़ की जड़ों को पकड़ने में कामयाब रही। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना की पुष्टि 8 सितंबर 2025 की रिपोर्ट से भी होती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि गुइहुलंगन सिटी के बारांगे बालोगों में स्कूल से लौट रही दो छात्राएं अचानक आई बाढ़ में फंस गई। वे पेड़ों की जड़ों को पकड़ने में सफल रहीं और स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी के तेज बहाव से बाहर निकाल लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल बाढ़ में माँ बेटी के बह जाने के दावे से वायरल हो रहा वीडियो करीब 1 साल पुराना है और फिलीपींस का है, जहां बाढ़ के पानी में फंसी दो बहनों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
2: है। फैक्ट चेक के आखिरी सफर का आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: हेलो दोस्तों, तो आज की पार्टी हम लोग कनाडा से केसा दीदी की तरफ से मिलाया। तो आज हम लोग अपने पार्टी में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। तो इसके अलावा भी हम लोग 6 आइटम शामिल किए हैं जो हम लोग।
7: इस बच्चे ने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल सूरज को कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला ने कुछ पैसे मदद के तौर पर भेजे थे। आमतौर पर ऐसी मदद मिलने पर कोई अपने लिए जरूरत का सामान खरीद सकता है, लेकिन सूरज ने जो काम किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। बच्चे ने इन पैसों से अपने दोस्तों के लिए खाने की शानदार दावत तैयार कर दी।
6: इधर मोहित मिरिंडा निकाल ले रहा है, आज हम लोग कोल्ड ड्रिंक मिरिंडा के साथ खाने वाले हैं। इधर मोहित ना सूरज इधर निकाल रहा है कपकेक, उसके बाद फिर इधर हम लोग गोजा और क्रीम रोल और जैम और काला जामुन के साथ खाने वाले हैं, जो कि हम लोग लगभग 7 आइटम शामिल हो गया है।
7: उसने खुद खाना बनाया और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसका मजा लिया। लोगों ने बच्चों के इस अंदाज की तारीफ की कि उसने मिली मदद को अपने दोस्तों के साथ बांटा। कई लोगों ने कनाडा में रहने वाली केशा की भी तारीफ की। लोगों का कहना है कि हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी उन्होंने बच्चों के लिए मदद भेजी और इस छोटी सी मदद से कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
6: उसके बाद इधर मेरा छोटा भाई ये भी खा के दिखा रहा है, डायरेक्ट केके के साथ शुरू किया है।
7: हौसले के आगे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकल आता है। इस वीडियो में दो छोटे भाइयों का ऐसा ही प्यार और जज्बा दिखाई दे रहा है। एक भाई चलने में थोड़ा कमजोर है, लेकिन लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा है। वही छोटा भाई उसके साथ खड़ा है और लगातार उसका हौसला बढ़ा रहा है। फिर जब वो फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है तो भाई का उत्साह देखते ही बनता है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत रही है।

0: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती समझो।
1: एक छोटी सी बच्ची पीले रंग की फूलों वाली चुनरी सिर पर ओढ़े नजर आ रही है। उसके माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी है और वो कैमरे के सामने बेहद मासूम अंदाज में देख रही है। कभी उसकी नजर कैमरे पर टिकती है तो कभी वो इधर उधर देखने लगती है। कुछ ही पलों में उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो प्यारी सी मुस्कान देने लगती है। बच्ची के साथ एक महिला भी दिखाई दे रही है जो उसे संभालती है और उसके साथ मस्ती करती नजर आती है। बच्ची कैमरे के सामने बिल्कुल सहज दिखाई देती है। उसके चेहरे पर ना तो किसी तरह की झिझक नजर आती है और ना ही बनावटीपन। यही मासूम अंदाज इस वीडियो की सबसे प्यारी बात है और लोग इस वीडियो को खूब प्यार दे रहे हैं। साइकिल पर सफर का ऐसा अनोखा जुगाड़ आपने शायद ही पहले देखा होगा। आगे साइकिल चल रही है और दोनों तरफ झोलों में बैठी हैं नन्ही बच्चियां। इस अनोखे अंदाज को देखकर कोई भी मुस्कुरा दे। खास बात यह है कि झोले में बैठी बच्चियां भी इस सफर का खूब आनंद ले रही है। इनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उन्हें ये अंदाज कितना पसंद आ रहा है। अब यही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है।
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: क्लास में जब टीचर्स कोई सवाल पूछते हैं तो आमतौर पर बच्चे जवाब देने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार टीचर ने सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि पूरी क्लास का माहौल मजेदार हो गया। सवाल था, आपकी क्लास में सबसे हैंडसम लड़का कौन है?
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: इसके बाद क्लास की सभी लड़कियों ने एक ही लड़के का नाम लिया और जब इसकी वजह सामने आई तो लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल सभी छात्राओं ने एक ही लड़के अर्जुन का नाम लिया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है कि आखिर अर्जुन ऐसा क्या करता है कि क्लास की हर लड़की उसी का नाम ले रही है। लोगों को लगने लगा कि शायद अर्जुन अपनी स्मार्टनेस, पढ़ाई या फिर किसी खास अंदाज की वजह से लड़कियों का फेवरेट है। आखिर में टीचर सीधे सवाल कर देती है, अर्जुन क्यों? इसके बाद जो जवाब मिलता है वो पूरी वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है।
2: ओके हेलो गाइस, हु इज द अर्जुन? व्हाई?
1: अट्ठाईस लड़कियां एक साथ बताती हैं कि अर्जुन ही उनकी क्लास में इकलौता लड़का है। यानी अर्जुन को सबसे हैंडसम चुनने की वजह उसकी कोई खास खूबी नहीं बल्कि ये है कि पूरी क्लास में वही अकेला लड़का है।
2: ओके हेलो गाइस।
1: इसके बाद कैमरा अर्जुन की तरफ घूमता है। कैमरे के सामने उसकी मासूमियत और शर्माने वाला अंदाज देख कर लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इंडियन आर्मी बॉर्डर पर बहादुरी का खूब उदाहरण पेश करती है, लेकिन लंबे चौड़े और हिम्मती जवानों के दिल में एक छोटा सा दिल कहीं छुपा बैठा होता है। इसीलिए जब उन्हें पार्क के झूले मिले तो ये मस्ती करने से खुद को नहीं रोक पाए। सबने मिलकर खूब इंजॉय किया। वीडियो देखकर लोग अपना बचपन याद कर रहे हैं। एक लड़की का शानदार ट्रांजिशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। शुरुआत बेहद सिंपल अंदाज में होती है। लड़की कैमरे के सामने दिखाई देती है और फिर शानदार ट्रांजिशन के जरिए अचानक उनका लुक पूरी तरह से बदल जाता है। इसके बाद वो खूबसूरत साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। मराठी स्टाइल में तैयार होकर उनका लुक काफी आकर्षक नजर आता है। साड़ी के साथ पारंपरिक ज्वेलरी और ट्रेडिशनल अंदाज उनके पूरे लुक को और खास बना देता है। सड़क किनारे फुटपाथ पर दो बिजली के खंभों के बीच चादर बांधकर एक झूला बनाया गया है। इस झूले पर एक छोटा सा पपी आराम से लेटा हुआ है। पास ही खड़ी एक लड़की बेहद प्यार से उस पपी को दुलारते हुए झूम रही है। लड़की का अंदाज इतना प्यारा है कि वो पपी के गाल को छूकर अपने माथे को उसके सिर से सटा लेती है। पपी भी इस बे इंतहा मोहब्बत का पूरा आनंद ले रहा है। कुछ ही पलों में लड़की उसे हल्के हाथों से झूला झुलाकर अपनी गोद में उठा लेती है। इस दृश्य को देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरी लड़की आकर इसको प्यार करने लगती है। इस वीडियो को करोड़ों लोग देख चुके हैं और इस पर जमकर अपना प्यार लुटा रही है। इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता जब प्यार और भरोसे से जुड़ जाए तो वो बेहद खूबसूरत बन जाता है। ऐसा ही दिल छू लेने वाला पल इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। एक शख्स साइकिल से कहीं जा रहा है, तभी हाथी उसे बड़े प्यार से रोक लेता है, मानो अपने खास साथी को कुछ पल और अपने पास ही रखना चाहता हो। दोनों के बीच नजर आ रहा अपनापन और तालमेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यही रिश्ता इस वीडियो को खास बना रहा है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
5: बात करेंगे अवधपुरी की, जिसे और भव्य और दिव्य रूप देने का काम चल रहा है। दिवाली से एक दिन पहले यहाँ दीपोत्सव की दिव्य छटा देखने को मिलेगी। इस वर्ष दीपोत्सव को और अधिक भव्य रूप से मनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ अब तक एक नया शानदार पथ भी देखने को आपको मिलेगा। इस पथ पर लगे स्तंभ भी विशेष हैं। इसके अलावा सरयू घाटों का सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है।

0: रामनगरी अयोध्या लगातार सजती सवरती जा रही है। यहाँ लगातार विकास के काम चल रहे हैं। धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का कायाकल्प होता जा रहा है। अब यहाँ करीब 15.5 किलोमीटर लंबा भव्य 4-लेन मार्ग विकसित हो रहा है। इस मार्ग को त्रेता युग के भावुक अध्याय से जोड़ा जा रहा है, जहां भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की स्मृतियां बसी हुई हैं। धर्म पथ से महाराज दशरथ के समाधि स्थल तक पहुंचने वाला ये मार्ग अयोध्या की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ ही श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के बीच त्रेता युग की अनुभूति कराने वाला होगा। इस दशरथ पथ पर 30 मुद्रा स्तंभ स्थापित किए गए हैं। करीब हर 500 मीटर की दूरी पर एक स्तंभ लगाया गया है, जिनमें 15 स्तंभों पर योग मुद्रा और 15 पर शस्त्र मुद्रा प्रदर्शित की गई है। हर स्तंभ करीब 6 फीट ऊंचा है। इस मार्ग पर आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी और करीब 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ और बीच में डिवाइडर भी होगा। करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पथ को दीपोत्सव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: राजा दशरथ को का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से और अयोध्या नगरी को सीधे जोड़ने वाला एकदम निपट सरजू के माझे में ये बनाया गया यह पथ है, जिसपे विभिन्न धार्मिक आकृतियां अनुकृतियां बनाई गई हैं, जिससे लोगों को एक एक धार्मिक वातावरण वहां प्राप्त होगा। बहुत सुंदर पथ बन रहा है। आज के पहले वो अयोध्या का माझा क्षेत्र था।
0: अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी के साथ साथ धार्मिक स्थलों के साथ साथ सरयू घाटों का स्वरूप भी लगातार निखारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या का आरती घाट इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाट पर तैयार की गई मंदिर नुमा अनोखी संरचना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
2: अयोध्या में सरयू माँ की जो आरती होती थी वो इन्हीं तख्तों से होती थी और यहीं पे लोग खड़े होते थे, यहीं पे आरती स्थल है। ये जो पूरा एंगल लगा है यही वो स्थल हुआ करता था। जो आकृति बनाई गई है वो आरती स्थल की है और वहीं से माँ सरयू की जो आरती है वो यहीं से होगी। ये वो स्थल है जहाँ पे अब खड़े होके वो आरती होगी, जो बारिश से बचाएगा। रात के अंधेरे में ठंड है तो ठंड से बचेंगे लोग, तो यही वो स्थल है जहाँ पे मंदिर की आकृति दी गई है। खास आकृति के द्वारा जो है पूरा आरती स्थल जो है मंदिर में भी नजर आएगा। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको खड़े होने में खास दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता था वो नहीं होगा।
0: आरती घाट का बदलता स्वरूप इस बात की तस्वीर पेश करता है कि अयोध्या में धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन सुविधाओं और सौंदर्यकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे आकर्षण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए रामनगरी की यात्रा को और यादगार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रामनगरी में इस वर्ष 7 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के माध्यम से विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है और विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के पुल से लेकर लक्ष्मण घाट तक करीब 1 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूलों की विशेष सजावट की जाएगी। शाम ढलते ही दीपों की लौ और रंगीन रोशनी से सरयू तट का नजारा अलौकिक दिखाई देगा।
2: यही वो स्थल है जिसको राम की पैड़ी कहते हैं और जहाँ पे एक भव्य नजारा होता है उस वक्त का, जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे। तो वो समय था दीपावली का, तो उसके हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का खास आयोजन होता चला आ रहा है। इस बार उस दीपोत्सव को और भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को खास रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
0: सरयू घाटों पर भव्य महाआरती का आयोजन भी प्रस्तावित है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और दीपों की रोशनी के बीच होने वाली महाआरती में अवध की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। सरयू की लहरों के बीच हजारों दीपों की जगमगाहट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी।
3: घाट के रेनोवेशन का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य लगातार चल रहा था, जिसको UPPCL कर रहा था, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्य हो रहा था, तो वो भी लगभग कम्प्लीशन पे है। वो कार्य हो जाएगा तो हमारा दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो साफ सफाई के कार्य हैं, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, जितने भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा रिनोवेट किया जा रहा है।
0: प्रशासनिक स्तर पर दीपोत्सव की छठा को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। योजना के अनुसार सभी काम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का दीपोत्सव और आकर्षक और यादगार होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला। जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खुले जा रहे हैं नकदी और आभूषणों से भरे पात्र। भक्त बप्पा के सामने रख रहे हैं मन की बुराद। होली की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के दर्शन। शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनाएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को सजोने की तैयारी, एडीए को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा, 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय। कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। सरकार ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का किया ऐलान, 2,000 से ज्यादा यूपीआई लेन देन पर देना होगा 0.4% चार्ज। आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए फ्री सुविधा। अफगानिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर भारत ने सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। 15वें ओवर में ही टीम इंडिया ने हासिल किया 160 रनों का लक्ष्य। संजू ने 22 गेंदों में बनाए 57 रन।

0: तो चलिए आप भी सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मैं हूं शगुप्ता, साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के तमाम रंगों की। आज गणेशोत्सव का दूसरा दिन है, शहर शहर गजानन की आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। देश भर में गणपति पंडाल सज गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात उत्तर की हो, चाहे बात दक्षिण की हो, या फिर आपको साउथ की तरफ लेकर चले, किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे आपको ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि गणपति उत्सव अपने चरम पर है। तो बप्पा को सजा दिया गया है, पंडाल भी बिल्कुल तैयार है। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप और स्वरूप हमें नजर आ रहे हैं। कहीं विघ्नहर्ता का खंडोबा अवतार दिखाई दे रहा है, तो कहीं गणपति धनपति रूप में विराजे हैं। एक पंडाल में तो बप्पा बच्चों के मनपसंद कैंडी रूप में ढले नजर आ रहे हैं, तो कहीं मां भवानी के लाडले पिता भोलेनाथ के साथ दिव्य दर्शन दे रहे हैं। अलग अलग रूपों के साथ गणपति बप्पा सोशल मैसेजिंग के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सूरत के साइबर थाने में बप्पा साइबर विघ्न हर कर डिजिटल सुरक्षा का आशीर्वाद देने पहुंचे। पुणे में तो भक्तों ने बप्पा की प्रतिमा को करोड़ों रुपयों के ऐतिहासिक स्वर्ण आभूषणों से सजा दिया। अब यूं समझिए कि गणपति उत्सव ने देश के अलग अलग हिस्सों को भक्ति, उत्साह और उमंग के एक रंग में रंग दिया हो। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सजे भारत के सबसे भव्य गणेश पंडालों की यात्रा पर। और शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां साकीनाका के राजा का भव्य दरबार सजा है और 43 फीट के बप्पा खंडोबा रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के उपनगर के नगरी में और यहां के सबसे बड़े बप्पा का आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैं इस समय मौजूद हूं साकीनाका के महाराजा के दरबार में और उपनगर मुंबई से सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हें मानी जा रही है। और जो जानकारी है और जो देख हम पा रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के खंडोबा जो सबसे बहुत ज्यादा माने जाते हैं, चर्चित हैं, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, उनके अवतार में गणपति बप्पा यहां पर विराजमान किए गए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, देखिए उनका जो ये पैर है ना, ये पैर आप देख रहे हैं, पैर उसके ठीक मैं नीचे हूं, मेरी हाइट उनके पैर तक भी नहीं पहुंच पा रही है। और फिर से मैं वीडियो जल्दी स्वागत से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कितने ऊंचे हैं बप्पा। 43 फीट ऐसे ही नहीं होता, सोचिए जब आगमन हुआ होगा तो कितने ख्याल रखने के साथ साथ और कितनी व्यवस्था के साथ बप्पा को यहाँ पर लाया गया होगा। हालांकि बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए, फिर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, लेकिन अब यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और साकीनाका के महाराजा का ये दरबार है, खंडोबा के अवतार में पहुंचे हुए शिवलिंग के साथ में विराजमान है। महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति दिखाते हुए उनकी ये उनके सर पे आप देख रहे हैं पगड़ी है बकायदा, और इसके अलावा त्रिशूल है, डमरू है, तलवार है। साथ ही साथ ये जो आसपास का परिसर है, जो डेकोरेशन है, चलचित्र जिसे यहां कहते हैं, वो भी उन्हीं पर आधारित है। उनकी ही मंदिर की तस्वीरें जो है यहां पर लगा रखी है। और थोड़ा सा अब देखें, और वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी उस मूर्तिकार की जिन्होंने इतना भव्य ये मूर्ति बनाया है। सोचिए किस विशेष व्यवस्था के साथ यहाँ पर लाया गया होगा। 12वें दिन इनका विसर्जन होने वाला है और देखिए तमाम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। जहां भी आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ भक्त हैं। थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्पेशली ये जो गणेश उत्सव होता है वो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो जाते हैं, देखते हैं। ये देखिए तमाम लोग, गणपति बप्पा, आवाज नहीं आई, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, कैसे लगे बेटा पप्पा?
2: बहुत अच्छे।
0: चलिए अब आपको मुंबई से लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां भक्तों के प्यारे बप्पा कैंडी वेश में पधारे हैं। हैदराबाद में कैंडीज, टॉफी और चॉकलेट से बप्पा का यह अनोखा स्वरूप तैयार किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं मोदक प्रिय का कैंडी अवतार कैसा है।
3: ये मोदक प्रिय का कैंडी स्वरूप है। हैदराबाद से आई तस्वीर में आपको शहर के सबसे अनोखे गणपति के दर्शन होंगे। हैदराबाद के भक्तों ने हजारों कैंडी और टॉफियों को जोड़कर बप्पा का ये अद्भुत स्वरूप तैयार किया है। न केवल बप्पा कैंडी अवतार में विराजे हैं, बल्कि पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडी की थीम पर ही की गई है। ऐसा लगता है बप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष पंडाल में उतर आया हो।
4: ये साल गणेश जी का थीम आके गए कैंडी गणेश का लगा है साल, पूरा टोटल थीम आके कैंडीज, वेरायटी कैंडीज लगा है पूरा। हम लोग डेकोरेशन भी टोटल देख लेते, देखे तो पूरा कैंडीज दिखेंगे आपको, पूरा बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए और बच्चे भगवान के समान बोलते ना, वो हिसाब से हम लोग बच्चे के हिसाब से देख लेके वो थीम के हिसाब से हम लोग गणेश जी को डेकोरेट करें पूरे साल।
3: हैदराबाद का ये मंडल पिछले 18 सालों से गणपति स्थापना कर रहा है। हर बार पंडाल की थीम कुछ अलग कुछ खास होती है, लेकिन इस बार की थीम ने तो बप्पा के जूनियर भक्तों का दिल ही जीत लिया है। वैसे ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चे युवा बुजुर्ग सभी के मन को भा रहा है। कैंडी वाले बप्पा के पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं है, जहां आस्था के साथ साथ बप्पा के आशीष की छाव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बप्पा के अनोखे पंडालों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्वरूप बहुत निराले हैं और पंडालों की इस यात्रा में अब आपको लेकर चलते हैं हम विशाखापट्टनम, जहां महाशिव गणपति पूरी भव्यता के साथ विराजे हैं। ये देखिए बप्पा का ये स्वरूप हजारों छोटे बड़े जीवित पौधों से तैयार किया गया है। बप्पा की यह अनोखी प्रतिमा लगभग 18 फीट की है। विशाखापट्टनम के अनकापल्ली में प्रकृति और भक्ति का ये अद्भुत मेल दिखाई दे रहा है। इस सुंदर मेल के कारण ही इन्हें सस्य गणपति नाम दिया गया है। सस्य का अर्थ होता है वनस्पति या फसल। अनकापल्ली के श्री चिंतामणि गणपति दत्त क्षेत्र में बप्पा का ये भव्य रूप विराजित किया गया। बप्पा तो पौधों से बनाए ही गए हैं, साथ ही पंडाल के वातावरण को भी पूरी तरह से प्राकृतिक स्वरूप दिया गया, जिसमें पानी के सुंदर फव्वारे, पक्षियों की चहचहाट की आवाजें शामिल हैं। इस उत्सव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि त्योहार की समाप्ति के बाद मूर्ति में उपयोग किए गए सभी पौधों को भक्तों के बीच मुफ्त में वितरित कर दिया जाएगा, ताकि लोग उन्हें अपने घरों में लगा सके। इस पहल में न केवल आस्था शामिल है, बल्कि ये समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता का संदेश भी देती है। बप्पा के ये स्वरूप पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के विघ्न को हरने वाला स्वरूप है। देखिए विघ्नहर्ता के जितने नाम उतने ही स्वरूप। विघ्नहर्ता का ये स्वरूप जहां फिजिकल वर्ल्ड के विघ्नों को हरने वाला है, तो वहीं सूरत में बप्पा के ऐसे स्वरूप की स्थापना हुई जो हमारी डिजिटल लाइफ के विघ्नों को हरने का आशीर्वाद दे रहा है। सूरत के साइबर क्राइम थाने में साइबर विघ्नहर्ता बप्पा दर्शन दे रहे हैं।

0: की पार्वती पितामह
1: नाम जिनका विघ्नहर्ता है वो अब जीवन के तमाम विघ्नों के साथ साथ आपकी डिजिटल लाइफ के विघ्न हरने का भरोसा भी दे रहे हैं। सुमुख जब स्वयं साइबर सेल प्रमुख की भूमिका में हो तो फिर साइबर सुरक्षा का आशीर्वाद कैसे नहीं मिलेगा। बापा का ये पंडाल सजा है डायमंड सिटी सूरत शहर के साइबर क्राइम पुलिस थाने में, जहां अनोखे अंदाज में भगवान गणेश की स्थापना साइबर विघ्नहर्ता के रूप में की गई है। इस अनोखे पंडाल में न सिर्फ संदेशों और प्रतीकों के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने का संदेश दिया जा रहा है, बल्कि अनोखे स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
2: जिस तरह के फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उस फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम की हमारी टीम ने एक साइबर गणपति, साइबर विघ्नहर्ता की स्थापना 5 दिन के लिए करी है। गणपति बापा खुद आपको साइबर क्राइम से कैसे बचना है उसके लिए जानकारी दे रहे हैं, और गणपति बापा अगर खुद आपको बताएंगे तो लोगों में ये मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा कि हमें साइबर क्राइम से कैसे बचना चाहिए। पूरा एक पंडाल साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर बनाया गया है और गणपति बापा खुद यहाँ पे सभी भक्तों को उनके जो प्रश्न है साइबर क्राइम के बारे में उनका खुद आंसर भी बता रहे हैं, और जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे साइबर क्राइम से कैसे बचना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वो सीख भी रहे, और जब वो यहाँ से आरती करके दर्शन करके निकलेंगे तो यहाँ पे साइबर क्राइम से बचने के लिए और क्या करना चाहिए उसका संकल्प भी लेके जा रहे हैं।
1: सूरत शहर के इस साइबर क्राइम पुलिस थाने में भगवान गणेश को साइबर विघ्नहर्ता के रूप में 5 दिनों के लिए विराजमान किया गया है। अपने अलग अलग अवतारों में गजानन ने क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर जैसे जाने कितने ही दानवों का संहार किया, और अब साइबर विघ्नहर्ता के रूप में वे डिजिटल बुराइयों का नाश करने उतरे हैं। सूरत पुलिस की ये पहल धार्मिक आयोजन के साथ साथ जन जागरूकता को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए गुजरात के बाद रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की तस्वीरें भी भव्यता के साथ भरपूर हैं। वो तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई, जहां मोगरेश्वर गणपति का दरबार सज चुका है। ये तस्वीरें आई हैं अंधेरे में मौजूद मोगरेश्वर के राजा की। इस पंडाल में गणपति बेहद भव्य और दिव्य स्वरूप में स्थापित किए गए हैं। खास बात यह है कि इस पंडाल में गणपति से जुड़ी पौराणिक कहानियों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शाया जा रहा है। महादेव के विवाह की कथा, गणपति के जन्म की कहानी जैसे कितने ही पौराणिक प्रसंग आपको यहाँ वीडियो, फिल्म और झांकी के रूप में दिख जाएंगे। दरअसल वैदिक आदर्शों और पीढ़ियों से चली आ रही इन पौराणिक कहानियों में बप्पा के जीवन से जुड़ी जितनी ही कहानियां हमारे लोक जीवन में उतरी हैं, समय के साथ विकसित होती धार्मिक कथाओं, वैदिक प्रतीकवाद के बीच में गौरी नंदन के आदर्श भक्तों के बीच प्रचलित होते चले गए। आज आप गणेशोत्सव पर सजे पंडालों में इन्हें जीवंत स्वरूप में देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मुंबई से सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली के महाराज का भव्य दरबार आपको दिखाते हैं, जहां गणपति के साथ उनके पिता महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन हो रहे हैं।

0: धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई तो शहर शहर बापा के भव्य और अनोखे पूजा पंडाल सज गए, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और भव्यता की वजह से लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं, बल्कि अपनी अनोखी थीम की वजह से आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। ऐसा ही एक गणेश पंडाल राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सजा है, जहां लोगों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका भी एक छत के नीचे देखने को मिल रही है।
1: इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में हैं और एक बहुत ही शानदार पंडाल में आपको लेकर आए हैं। यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग भी तैयार किए गए हैं, मैं आपको तस्वीर उसी के दिखा रहा हूं और किस तरह से हम पंडाल के अंदर मौजूद हैं। और जब आप अंदर आएंगे तो सामने आपको न सिर्फ बप्पा के दर्शन होंगे बल्कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। अभी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भीमा शंकर की, और नीचे इस तरह से जो शिवलिंग है उसको रखा गया है। ऐसे ही आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग क्या है, कहाँ पर है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें ज़्यादा पता नहीं है, वो यहाँ पर आकर ना सिर्फ देखेंगे बल्कि जानकारियाँ पढ़कर बहुत कुछ धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में वो जान भी पाएंगे। ये हम पहुँच गए हैं काशी विश्वनाथ पर, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरह का शिवलिंग है, ठीक उसी तरह का शिवलिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको तमाम दूसरे शिवलिंग यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। ये त्र्यंबकेश्वर है, वो बैद्यनाथ मंदिर का है, उस तरफ महाकालेश्वर है, ऐसे ही तमाम सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उन सब के दर्शन आपको यहाँ पर होने वाले हैं।
0: राजधानी के इस गणेश पंडाल में भक्ति भाव के साथ साथ भारत की विकास यात्रा और 2047 के भारत की झांकी को भी दिखाया गया है। दरअसल दिल्ली के लक्ष्मी नगर का श्री गणेश सेवा मंडल इस साल अपना 25वां गणेशोत्सव मना रहा है, इसलिए आयोजकों ने कुछ अनोखा करने की ठानी और इस बार महोत्सव की थीम विघ्नहर्ता से विकासकर्ता रखी गई। इस थीम के तहत यहां आपको भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के संवाहक भी दिखेंगे, तो वहीं नई तकनीक और वैज्ञानिक दक्षता का झरोखा भी यहां ब्रह्मोस, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप के रूप में दिखेगा। गांव के विकास की झांकी से लेकर AI रोबोट्स तक और बुलेट ट्रेन से लेकर इसरो के चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान तक यहां हर दृश्य जीवंत है। यानी एक तरफ महादेव और गौरी नंदन तो दूसरी ओर देश के विकास का वंदन। बापा के इस पंडाल में आपको सब कुछ एक साथ नजर आएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो गणपति के पंडालों में समृद्ध होते भारत की झांकी आपने देखी, अब आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां ऐतिहासिक आभूषणों से सजी गौरी नंदन की झांकी आपको इस शहर की समृद्ध विरासत की कहानी सुनाएगी। अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति के रूप में पहचान रखने वाले पुणे के ओझर के श्री विघ्नहर गणपति का बेहद अलौकिक और राजशाही रूप गणेशोत्सव के दौरान भक्तों के सामने आया है। विघ्नहर बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक पहनाई गई और करीब 200 साल पुराने करोड़ों रुपए मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बप्पा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वस्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर गणपति का ये शाही रूप देखते ही बन रहा है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको मुंबई के साकीनाका में गणपति के खंडोबा स्वरूप के दर्शन करवाए। साकीनाका में ही बप्पा का एक और भव्य पंडाल सजा है, जहां गणपति विठल स्वरूप में विराजे हैं। बप्पा का विठल अवतार गरुड़ पर सवार है, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं साकीनाका के विघ्नहर्ता गणेश जी के।

0: के इंतजार के बाद आता है गणपति उत्सव, वो समय जब गजानन अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। भक्तों के मन के साथ साथ शहर शहर पंडालों, मंदिरों और घरों में विराजते हैं। भक्तों की भावना के आधार पर अनगिनत रूपों में ढल जाते हैं। इस बार भी बप्पा के भक्तों ने उन्हें अलग अलग रूपों में स्थापित किया है। बप्पा का एक ऐसा ही भव्य रूप सजा है मुंबई के साकीनाका में। साकीनाकायचा विघ्नहर्ता अब की बार विट्ठल रूप में पधारे हैं। मानव शरीर वाले गरुड़ के ऊपर बप्पा के चरण टिके हैं। स्वरूप भले ही जो हो, लेकिन साकीनाका के विघ्नहर्ता को मुंबई प्यार से गोड बप्पा के नाम से बुलाती है। गोड बप्पा यानी प्यारे या मीठे। दरअसल साकीनाका के विघ्नहर्ता की प्यारी और निश्चल मुस्कान के चलते उन्हें भक्तों ने प्यार से गोड बप्पा नाम दिया है।
1: आपको बताएं कि मैं जिस जगह मौजूद हूं, साकीनाका का विघ्नहर्ता के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। पहले आप सीधे गणपति बप्पा का दर्शन ही कर लें। देखिए, ये उपनगर मुंबई की एक बहुत ही ज्यादा उन लिस्ट में नाम शामिल हैं जो बड़े प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं, और कितने सुंदर तरीके से इस समय यहाँ पर विराजमान की गई है। खास बात यह है कि मानव गरुड़ पर बप्पा विराजे हैं, विट्ठल के अवतार में हैं, और हाइट देख के लग रहा है कि लगभग 33 फीट होगी। बैलेंस का पूरा ये मामला है, और सोचिए मूर्तिकार कितने ज़्यादा सीरियस होंगे और कितना मेहनत उन्हें की होगी और कितने एक्सपीरियंस हैं वो कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है बप्पा की, इतना बड़ा आकार उन्होंने दे दिया है। विट्ठल का अवतार है और एक पैर पर गरुड़ पर खड़े हुए हैं, बेहद सुंदर लग रहे हैं, और तमाम जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बप्पा का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह से मुंबई के कई पंडालों में बड़ी बड़ी जो गणपतियां होती हैं विराजमान की जाती है, बहुत मेहनत इस पर हुई है।
0: साकीनाका के विघ्नहर्ता की ये प्रतिमा हर किसी का मन मोह रही है। करीब 33 फीट के बप्पा की ये प्रतिमा हफ्तों की मेहनत से तैयार हुई है।
1: गोड़ गणपति के नाम से प्रसिद्ध है
2: जी, जरूर गोड़ गणपति। आप इनकी खूबसूरती देख सकते हैं, जिस तरह से अंदाज में जो खड़े हैं, और जिनकी जो खूबसूरती की जो सीधे दिगोली जो सबसे मुंबई के लगभग सबसे बड़े मूर्तिकार है, उन्होंने अपनी पूरी जी जान से इस मूर्ति को गढ़ाने में कोशिश की है। जिस तरह से आप इनकी सुंदरता के लिए लोग दीवाने हो गए, जब आगमन की जिस दिन हमारा आगमन हुआ उस दिन लाखों लोगों का सैलाब इस रास्ते पे बह रहा था कि लोग सोच नहीं पाए कि इतनी खूबसूरत मूर्ति, क्योंकि बेसिकली ये मूर्ति ये हाइट और इनकी खूबसूरती परेल दादर की एक नहीं पहचानती, लेकिन अभी साकीनाका में भी इस मूर्ति के माध्यम से हमने दिखा दिया है कि साकीनाका भी आने वाले वक्त में लालबाग परेल से भी आगे चला जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे कि इस मंडल की खासियत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एकजुट रह के इस मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्यार का, भाईचारे का एक प्रतीक भी इसी मंडल के माध्यम से जाएगा।
0: पिछले 42 सालों से साकीनाका के विघ्नहर्ता हर गणेशोत्सव पर यूं ही अपनी अलौकिक छटा के साथ विराजते आ रहे हैं। अब की बार भी साकीनाका के इन गणपति को तैयार करने में हर समाज, हर तबके से जुड़े लोगों की भागीदारी रही है। वास्तव में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का मतलब सिर्फ बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना भर नहीं, बल्कि ये पर्व आस्था, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव का भी उत्सव है। साकीनाकाच्य विघ्नहर्ता यही संदेश देते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, गणपति की भक्ति का रंग पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, वो तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। गणेशोत्सव के दूसरे दिन गजानन से जुड़ी हुई एक तस्वीर आई है पुणे से सामने, जो आपके सामने रखते हैं। पुणे में गणेश नाम का जय घोष सुनाई दिया। पुणे में आयोजित समारोह में ऊर्जा से भरे माहौल के बीच में हजारों महिलाओं ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। पुणे में करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। गणेश नाम के जय घोष, अथर्वशीर्ष पाठ और महाआरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यह आयोजन ऋषि पंचमी के अवसर पर श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्ण युग तरुण मंडल की ओर से किया गया।

तो चलिए गणपति बप्पा के ऐसे ही अलग अलग रूपों और स्वरूपों के दर्शन जीएनटी पर लगातार आपको करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें दिन भर जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: समय तक चलता है। सप्ताह के किस दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: सत्ता, दौलत, रसूख और करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। घाटकोपर ईस्ट के विधायक का पराग शाह की पहचान कुछ ऐसी ही है। लेकिन एक दिन एक शख्स न विधायक था, न करोड़ों का मालिक, न साथ में सुरक्षा कर्मियों का घेरा था, मुंबई की सड़कों पर यह विधायक हाथ फैलाए दिखे। ये कोई फिल्मी दृश्य या चुनावी स्टंट नहीं था, ये अहंकार को शून्य करने की एक सच्ची आध्यात्मिक साधना थी।
2: जिस शख्स के पास करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति हो, जिसके आगे पीछे सुरक्षा का घेरा हो, वही शख्स अगर एक दिन सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आए तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह ने ये किया, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने के लिए। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के आध्यात्मिक गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें एक अनोखी सीख दी। गुरु ने कहा कि एक दिन अपना पद, पैसा और पहचान सब छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जी कर देखिए। पराग शाह ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की। महंगी गाड़ियां, घड़ी, सुरक्षा और विधायक का रुतबा सब पीछे छूट गया। मेकअप के जरिए बदला हुलिया और फिर वही विधायक घाटकोपर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। घंटों तक सड़क पर रहने के दौरान पराग शाह ने उस जिंदगी को महसूस किया जिसे समाज का गरीब तबका रोज जीता है। भूख, इंतजार, लोगों की बेरुखी और कभी कभार किसी अनजान शख्स की मदद।
3: ओ, रिक्शा 8 मिनट देवा ना, जरा ट्रैफिक करता है।
2: किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने खाने का टुकड़ा, तो किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
3: अरे वाह।
2: लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था, जिस पहचान के दम पर दुनिया आपको सम्मान देती है, वही पहचान छिन जाए तो इंसान के पास बचता क्या है।
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: शाम को मेकअप उतरा, पहचान वापस आई, लेकिन शायद नजरिया बदल चुका था। पराग शाह दोबारा उन्हीं लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन की इस फकीरी ने उन्हें एहसास कराया कि दौलत और पद इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अहंकार छोटा ही करता है। इस अनोखे प्रयोग की सबसे बड़ी सीख है इंसान की असली पहचान। उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है इससे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला। GNT पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खुले जा रहे हैं नकदी और आभूषणों से भरे पात्र। भक्त बप्पा के सामने रख रहे हैं मन की बुराई।

0: बोले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चार राजा के दर्शन। शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान। आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनाएंगे बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को सजोने की तैयारी। एडीए को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा। 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय। कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। सरकार ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का किया ऐलान। 2,000 से ज्यादा यूपीआई लेन देन पर देना होगा 0.4% चार्ज। आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए फ्री सुविधा। अफगानिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर भारत ने सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। 15वें ओवर में ही टीम इंडिया ने हासिल किया 160 रनों का लक्ष्य। संजू ने 22 गेंदों में बनाए 57 रन।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती, कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से उसे दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात होगी सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है जहां पर कुछ छात्रों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। क्या है इसकी सच्चाई आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये नेपाल में आए हालिया बाढ़ का वीडियो है जहां पर एक माँ बेटी बह गई। क्या है इसकी सच्चाई आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुनी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है जहां पर कुछ छात्रों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
3: एक शख्स को घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा है। कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे हुए इस नजारे को देख रहे हैं तो कुछ लोग ये देखने के लिए खड़े हो गए हैं कि अचानक ही क्या हो गया। इस माहौल के बीच कुछ लोग गो बैक का नारा भी लगाने लग गए। किसी ऑडिटोरियम में आई इन तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी हिला दी, शाबाश मिली शेरो, अगर आप भी इससे सहमत है तो इसे आगे बढ़ाए, #UGCRollback। वीडियो का सच छूट जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। वीडियो में किसी ऑडिटोरियम के अंदर से कुछ लोग एक शख्स को घसीटते हुए बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। कई लोग गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है कितना गलत है जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक शख्स को पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। इस दौरान गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं और ऐसे में सबसे पहले हमने नारे को ध्यान से सुना। अब ये तो सामने आ गया कि हॉल में मौजूद कुछ लोग वीसी गो बैक किनारे लगा रहे हैं। वीसी मतलब की वाइस चांसलर, जो विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को संभालता है। यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण फैसले, नीतियां, नियुक्तियां वीसी के नेतृत्व में होती हैं। इससे हमें ये तो इशारा मिल गया कि ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है जहां पर कुछ लोग जमा होकर कुलपति का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा हुआ नजर आया। इस समय ये लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम हो सकता है। वीडियो में एक जगह वंदे मातरम ऑडिटोरियम शब्द भी देखने को मिला। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि वंदे मातरम ऑडिटोरियम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थित है। यहां से ये साफ हो गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यक्रम ही है और ये उसी का वीडियो है। फैक्ट चेक टीम ने यह भी जानने की कोशिश की कि हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वंदे मातरम ऑडिटोरियम में यूजीसी के नियमों के खिलाफ क्या कोई प्रदर्शन या फिर हंगामा हुआ है, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था, अगर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है तो फिर सत्यनिकेतन हादसे के जवाब दो के नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं। स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में दूसरा सवाल ये कि कहीं कुलपति योगेश सिंह के खिलाफ किसी प्रदर्शन के वीडियो को यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 8 सितंबर के एक्सपोज पर मिला। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहां सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद कुछ छात्रों ने कुलपति पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी 9 सितंबर की रिपोर्ट मिली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 8 सितंबर की है, जब कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सत्य निकेतन में हुए हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पीसी योगेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी की थी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में NSUI कार्यकर्ता और कैंपस लॉ सेंटर के छात्र राम निवास बिश्नोई भी शामिल थे। हिंदी विभाग की ओर से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स स्थित वंदे मातरम ऑडिटोरियम में विकसित भारत हिंदी भाषा और साहित्य विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुलपति योगेश सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान बिश्नोई समेत कुछ छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बिश्नोई कुलपति से सवाल कर रहे थे, इसके बाद उन्हें ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान DU VC गो बैक, VC शर्म करो, PG हॉस्टल दो और अकाउंटेबिलिटी तय करो जैसे नारे लगाए गए थे। इसके बाद हमने राम निवास बिश्नोई का इंस्टाग्राम हैंडल भी देखा। यहाँ इसी घटना का एक दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी मौजूद है। इस वीडियो में बिश्नोई को ऑडिटोरियम से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में वो कुलपति के सामने सत्य निकेतन हादसे को लेकर सवाल उठाते नजर आते हैं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें पकड़ कर बाहर ले जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि इस वीडियो का UGC नियमों की वापसी की मांग से कोई लेना देना नहीं है। असल में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI समेत कुछ छात्रों ने सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की थी। तेजेश दत्ता के साथ इंसा चैक को न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो लड़कियां बाढ़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं। तभी अचानक से तेज बहाव से पानी आता है, दोनों को बाहर ले जाता है। इस वीडियो को हाल फिलहाल आई नेपाल की बाढ़ से जोड़कर देखते हुए वायरल किया जा रहा है। सच्चाई क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए।
4: चारों तरफ सैलाब, पानी पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच दो लड़कियां बाढ़ के तेज बहाव के बीच एक दूसरे को पकड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। पानी के वेग के आगे इन दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती है और दोनों लड़कियां उसमें बह जाती हैं। इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का वीडियो मानकर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक माँ और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, आखिर हार गई माँ और बेटी। इकलौती बेटी के साथ माँ बाढ़ में फंस गई। देखने वाले वीडियो बनाते रहे लेकिन अंत में बाढ़ की जीत हुई। नेपाल बाढ़ के बाद यह सबसे दर्दनाक वीडियो आया सामने। इस वीडियो को लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि एक मां और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ तो आई है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें, कई तरह के झूठे वीडियोज भी वायरल किए जा रहे हैं। फैक्ट चेक टीम लगातार इन दावों की पड़ताल भी कर रही है, लिहाजा अब इस वीडियो और इसके दावे की सच्चाई को भी सामने लाना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो को देखने से ऐसा तो लग रहा है कि पानी के तेज फ्लो में ये दोनों फंस गए हैं। इसके बारे में जब हमने फ्रेम को जूम करके और हाईलाइट करके देखा तो फिर ये सामने आया कि ये दोनों स्कूली ड्रेस में हैं और इनके कंधे पर स्कूल बैग भी है। इससे हमें ये इशारा मिला कि ये दोनों स्कूल के बच्चे हो सकते हैं और अचानक पानी के तेज बहाव में ये दोनों फंस गए। इसके अलावा वीडियो में एक बात और देखने को मिली, ये दोनों पानी में फंसी हुई हैं और सामने से इस घटना को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि कैमरे का फ्रेम पल पल हिल रहा है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों फंसी हैं, जिंदगी बचेगी या फिर नहीं, ये सवाल सामने खड़ा होता है। ऐसे में ये भी सामने आया कि वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था लेकिन बचाने के लिए कोई भी कवायद नहीं की जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? आवाज़ सुनकर आसपास जो भी लोग होंगे वो भी बिना सोचे समझे बचाने की जदोजहद जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। पूरे वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये काफी हद तक फिलीपींस जैसी लगी। फिलिपिनो फिलीपींस की आधिकारिक भाषा है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था, अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें नेपाली क्यों नहीं सुनाई दे रही है। हमारा दूसरा सवाल यह कि हाल ही में फिलीपींस में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट ये था कि फिलीपींस बाढ़ से जुड़े वीडियो को कहीं जानबूझकर नेपाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। वायरल वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 सितंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना फिलीपींस के नेग्रोस ओरिएंटल प्रांत के गुइहुलंगन शहर के बारांगे बालोगों की थी। रिपोर्ट के अनुसार 4 सितंबर 2025 को स्कूल से घर लौटते समय दो बहनें कंसलाकन नदी के तेज बहाव के बीच फंस गई थी। भारी बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस दौरान दोनों बहनें तेज बहाव में बहने लगी लेकिन आगे जाकर पेड़ की जड़ों को पकड़ने में कामयाब रही। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना की पुष्टि 8 सितंबर 2025 की रिपोर्ट से भी होती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि गुइहुलंगन सिटी के बारांगे बालोगों में स्कूल से लौट रही दो छात्राएं अचानक आई बाढ़ में फंस गई। वे पेड़ों की जड़ों को पकड़ने में सफल रहीं और स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी के तेज बहाव से बाहर निकाल लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल बाढ़ में माँ बेटी के बह जाने के दावे से वायरल हो रहा वीडियो करीब 1 साल पुराना है और फिलीपींस का है जहाँ बाढ़ के पानी में फंसी दो बहनों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया था। गुड न्यूज टुडे
2: चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: हेलो दोस्तों, तो आज के की पार्टी हम लोग कनाडा से केसा दीदी की तरफ से मिलाया, तो आज हम लोग अपना पार्टी में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं। तो इसके अलावा भी हम लोग 6 आइटम शामिल किए हैं जो हम लोग।
7: इस बच्चे ने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल सूरज को कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला ने कुछ पैसे मदद के तौर पर भेजे थे। आमतौर पर ऐसी मदद मिलने पर कोई अपने लिए जरूरत का सामान खरीद सकता है, लेकिन सूरज ने जो काम किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। बच्चे ने इन पैसों से अपने दोस्तों के लिए खाने की शानदार दावत तैयार कर दी।
6: इधर मोहित मिरिंडा निकाल ले रहा है, आज हम लोग कोल्ड ड्रिंक मिरिंडा के साथ खाने वाले हैं। इधर मोहित ना सूरज इधर निकाल रहा है कपकेक, उसके बाद फिर इधर हम लोग गोजा और क्रीम रोल और जैम और काला जामुन के साथ खाने वाले हैं, जो कि हम लोग लगभग 7 आइटम शामिल हो गया है।
7: उसने खुद खाना बनाया और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसका मजा लिया। लोगों ने बच्चों के इस अंदाज की तारीफ की कि उसने मिली मदद को अपने दोस्तों के साथ बांटा। कई लोगों ने कनाडा में रहने वाली केशा की भी तारीफ की। लोगों का कहना है कि हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी उन्होंने बच्चों के लिए मदद भेजी और इस छोटी सी मदद से कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
6: उसके बाद इधर मेरा छोटा भाई ये भी खा के दिखा रहा है, ये डायरेक्ट केके के साथ शुरू किया है।
7: हौसले के आगे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकल आता है। इस वीडियो में दो छोटे भाइयों का ऐसा ही प्यार और जज्बा दिखाई दे रहा है। एक भाई चलने में थोड़ा कमजोर है, लेकिन लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा है। वही छोटा भाई उसके साथ खड़ा है और लगातार उसका हौसला बढ़ा रहा है। फिर जब वो फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है तो भाई का उत्साह देखते ही बनता है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत रही है।

0: पार्वती समझो।
1: एक छोटी सी बच्ची पीले रंग की फूलों वाली चुनरी सिर पर ओढ़े नजर आ रही है। उसके माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी है और वो कैमरे के सामने बेहद मासूम अंदाज में देख रही है। कभी उसकी नजर कैमरे पर टिकती है तो कभी वो इधर उधर देखने लगती है। कुछ ही पलों में उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो प्यारी सी मुस्कान देने लगती है। बच्ची के साथ एक महिला भी दिखाई दे रही है जो उसे संभालती है और उसके साथ मस्ती करती नजर आती है। बच्ची भी कैमरे के सामने बिल्कुल सहज दिखाई देती है। उसके चेहरे पर ना तो किसी तरह की झिझक नजर आती है और ना ही बनावटीपन। यही मासूम अंदाज इस वीडियो की सबसे प्यारी बात है और लोग इस वीडियो को खूब प्यार दे रहे हैं। साइकिल पर सफर का ऐसा अनोखा जुगाड़ आपने शायद ही पहले देखा होगा। आगे साइकिल चल रही है और दोनों तरफ झोलों में बैठी हैं नन्ही बच्चियां। इस अनोखे अंदाज को देखकर कोई भी मुस्कुरा दे। खास बात यह है कि झोले में बैठी बच्चियां भी इस सफर का खूब आनंद ले रही है। इनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उन्हें ये अंदाज कितना पसंद आ रहा है। अब यही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है।
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: क्लास में जब टीचर्स कोई सवाल पूछते हैं तो आमतौर पर बच्चे जवाब देने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार टीचर ने सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि पूरी क्लास का माहौल मजेदार हो गया। सवाल था, आपकी क्लास में सबसे हैंडसम लड़का कौन है?
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: इसके बाद क्लास की सभी लड़कियों ने एक ही लड़के का नाम लिया और जब इसकी वजह सामने आई तो लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल सभी छात्राओं ने एक ही लड़के अर्जुन का नाम लिया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है कि आखिर अर्जुन ऐसा क्या करता है कि क्लास की हर लड़की उसी का नाम ले रही है। लोगों को लगने लगा कि शायद अर्जुन अपनी स्मार्टनेस, पढ़ाई या फिर किसी खास अंदाज की वजह से लड़कियों का फेवरेट है। आखिर में टीचर सीधे सवाल कर देती है, अर्जुन क्यों? इसके बाद जो जवाब मिलता है वो पूरी वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है।
2: ओके हेलो गाइस, हु इज द अर्जुन? व्हाई?
1: अट्ठाईस लड़कियां एक साथ बताती हैं कि अर्जुन ही उनकी क्लास में इकलौता लड़का है। यानी अर्जुन को सबसे हैंडसम चुनने की वजह उसकी कोई खास खूबी नहीं बल्कि ये है कि पूरी क्लास में वही अकेला लड़का है।
2: ओके हेलो गाइस।
1: इसके बाद कैमरा अर्जुन की तरफ घूमता है। कैमरे के सामने उसकी मासूमियत और शर्माने वाला अंदाज देख कर लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इंडियन आर्मी बॉर्डर पर बहादुरी का खूब उदाहरण पेश करती है, लेकिन लंबे चौड़े और हिम्मती जवानों के दिल में एक छोटा सा दिल कहीं छुपा बैठा होता है। इसके लिए जब उन्हें पार्क के झूले मिले तो ये मस्ती करने से खुद को नहीं रोक पाए। सबने मिलकर खूब इंजॉय किया। वीडियो देखकर लोग अपना बचपन याद कर रहे हैं। एक लड़की का शानदार ट्रांजिशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। शुरुआत बेहद सिंपल अंदाज में होती है। लड़की कैमरे के सामने दिखाई देती है और फिर शानदार ट्रांजिशन के जरिए अचानक उनका लुक पूरी तरह से बदल जाता है। इसके बाद वो खूबसूरत साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। मराठी स्टाइल में तैयार होकर उनका लुक काफी आकर्षक नजर आता है। साड़ी के साथ पारंपरिक ज्वेलरी और ट्रेडिशनल अंदाज उनके पूरे लुक को और खास बना देता है। सड़क किनारे फुटपाथ पर दो बिजली के खंभों के बीच चादर बांधकर एक झूला बनाया गया है। इस झूले पर एक छोटा सा पपी आराम से लेटा हुआ है। पास ही खड़ी एक लड़की बेहद प्यार से उस पपी को दुलारते हुए झूम रही है। लड़की का अंदाज इतना प्यारा है कि वो पपी के गाल को छूकर अपने माथे को उसके सिर से सटा लेती है। पपी भी इस बेइंतहा मोहब्बत का पूरा आनंद ले रहा है। कुछ ही पलों में लड़की उसे हल्के हाथों से झूला झुलाकर अपनी गोद में उठा लेती है। इस दृश्य को देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरी लड़की आकर इसको प्यार करने लगती है। इस वीडियो को करोड़ों लोग देख चुके हैं और इस पर जमकर अपना प्यार लुटा रही है। इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता जब प्यार और भरोसे से जुड़ जाए तो वो बेहद खूबसूरत बन जाता है। ऐसा ही दिल छू लेने वाला पल इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। एक शख्स साइकिल से कहीं जा रहा है, तभी हाथी उसे बड़े प्यार से रोक लेता है, मानो अपने खास साथी को कुछ पल और अपने पास ही रखना चाहता हो। दोनों के बीच नजर आ रहा अपनापन और तालमेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यही रिश्ता इस वीडियो को खास बना रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
4: बात करेंगे अवधपुरी की, जिसे और भव्य और दिव्य रूप देने का काम चल रहा है। दिवाली से एक दिन पहले यहाँ दीपोत्सव की दिव्य छटा देखने को मिलेगी। इस वर्ष दीपोत्सव को और अधिक भव्य रूप से मनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ अब तक एक नया शानदार पथ भी देखने को आपको मिलेगा। इस पथ पर लगे स्तंभ भी विशेष हैं। इसके अलावा सरयू घाटों का सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है।

0: राम नगरी अयोध्या लगातार सजती सवरती जा रही है। यहाँ लगातार विकास के काम चल रहे हैं। धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का कायाकल्प होता जा रहा है। अब यहाँ करीब 15.5 किलोमीटर लंबा भव्य फोरलेन मार्ग विकसित हो रहा है। इस मार्ग को त्रेता युग के भावुक अध्याय से जोड़ा जा रहा है, जहां भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की स्मृतियां बसी हुई हैं। धर्म पथ से महाराज दशरथ के समाधि स्थल तक पहुंचने वाला ये मार्ग अयोध्या की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ ही श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के बीच त्रेता युग की अनुभूति कराने वाला होगा। इस दशरथ पथ पर 30 मुद्रा स्तंभ स्थापित किए गए हैं। करीब हर 500 मीटर की दूरी पर एक स्तंभ लगाया गया है, जिनमें 15 स्तंभों पर योग मुद्रा और 15 पर शस्त्र मुद्रा प्रदर्शित की गई है। हर स्तंभ करीब 6 फीट ऊंचा है। इस मार्ग पर आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी और करीब 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ और बीच में डिवाइडर भी होगा। करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पथ को दीपोत्सव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ था वहां से, और अयोध्या नगरी को सीधे जोड़ने वाला एकदम निपट सरजू के माझे में ये बनाया गया यह पथ है, जिसपे विभिन्न धार्मिक आकृतियां अनुकृतियां बनाई गई हैं, जिससे लोगों को एक एक धार्मिक वातावरण वहां प्राप्त होगा। बहुत सुंदर पथ बन रहा है। आज के पहले वो अयोध्या का माझा क्षेत्र था।
0: अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी के साथ साथ धार्मिक स्थलों के साथ साथ सरयू घाटों का स्वरूप भी लगातार निखारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या का आरती घाट इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाट पर तैयार की गई मंदिर नुमा अनोखी संरचना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
2: अयोध्या में सरयू माँ की जो आरती होती थी वो इन्हीं तख्तों से होती थी और यहीं पे लोग खड़े होते थे, यहीं पे आरती स्थल है। ये जो पूरा एंगल लगा है यही वो स्थल हुआ करता था। जो आकृति बनाई गई है वो आरती स्थल की है और वहीं से माँ सरयू की जो आरती है वो यहीं से होगी। ये वो स्थल है जहाँ पे अब खड़े होके वो आरती होगी, जो बारिश से बचाएगा। रात के अंधेरे में ठंड है तो ठंड से बचेंगे लोग, तो यही वो स्थल है जहाँ पे मंदिर की आकृति दी गई है। खास आकृति के द्वारा जो है पूरा आरती स्थल जो है मंदिर में भी नजर आएगा। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको खड़े होने में खास दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता तो वो नहीं होगा।
0: आरती घाट का बदलता स्वरूप इस बात की तस्वीर पेश करता है कि अयोध्या में धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन सुविधाओं और सौंदर्यकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे आकर्षण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए राम नगरी की यात्रा को और यादगार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रामनगरी में इस वर्ष 7 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के माध्यम से विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है और विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के पुल से लेकर लक्ष्मण घाट तक करीब 1 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूलों की विशेष सजावट की जाएगी। शाम ढलते ही दीपों की लौ और रंगीन रोशनी से सरयू तट का नजारा अलौकिक दिखाई देगा।
2: यही वो स्थल है जिसको राम की पैड़ी कहते हैं और जहाँ पे एक भव्य नजारा होता है उस वक्त का, जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे। तो वो समय था दीपावली का, तो उसके हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का खास आयोजन होता चला आ रहा है। इस बार उस दीपोत्सव को और भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को खास रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
0: सरयू घाटों पर भव्य महाआरती का आयोजन भी प्रस्तावित है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और दीपों की रोशनी के बीच होने वाली महाआरती में अवध की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। सरयू की लहरों के बीच हजारों दीपों की जगमगाहट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी।
1: घाट के रेनोवेशन का कार्य, एक बहुत बड़ा कार्य लगातार चल रहा था जिसको यूपीपीसीएल कर रहा था, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्य हो रहा था, तो वो भी लगभग कम्प्लीशन पे है। वो कार्य हो जाएगा तो हमारा दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो साफ सफाई के कार्य हैं, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, जितने भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा रिनोवेट किया जा रहा है।
0: प्रशासनिक स्तर पर दीपोत्सव की छटा को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। योजना के अनुसार सभी काम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का दीपोत्सव और आकर्षक और यादगार होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला। जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खुले जा रहे हैं नकदी और आभूषणों से भरे पात्र। भक्त बप्पा के सामने रख रहे हैं मन की मुराद। बोले की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के दर्शन। शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान, आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनाएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को सजोने की तैयारी। एडीए को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा, 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय। कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। सरकार ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का किया ऐलान। 2,000 से ज्यादा यूपीआई लेन देन पर देना होगा 0.4% चार्ज। आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए फ्री सुविधा। अफगानिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर भारत ने सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। 15वें ओवर में ही टीम इंडिया ने हासिल किया 160 रनों का लक्ष्य। संजू ने 22 गेंदों में बनाए 57 रन।

0: तो चलिए आप भी सभी मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता, साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव के तमाम रंगों की। आज गणेशोत्सव का दूसरा दिन है, शहर शहर गजानन की आस्था के रंग नजर आ रहे हैं। देश भर में गणपति पंडाल सज गए हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बात उत्तर की हो, चाहे बात दक्षिण की हो, या फिर आपको साउथ की तरफ लेकर चले, किसी भी हिस्से में आप चले जाएंगे आपको ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि गणपति उत्सव अपने चरम पर है। तो बप्पा को सजा दिया गया है, पंडाल भी बिल्कुल तैयार है। बप्पा के एक से बढ़कर एक निराले रूप और स्वरूप हमें नजर आ रहे हैं। कहीं विघ्नहर्ता का खंडोबा अवतार दिखाई दे रहा है, तो कहीं गणपति धनपति रूप में विराजे हैं। एक पंडाल में तो बप्पा बच्चों के मनपसंद कैंडी रूप में ढले नजर आ रहे हैं, तो कहीं मां भवानी के लाडले पिता भोलेनाथ के साथ दिव्य दर्शन दे रहे हैं। अलग अलग रूपों के साथ गणपति बप्पा सोशल मैसेजिंग के मामले में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। सूरत के साइबर थाने में बप्पा साइबर विघ्न हर कर डिजिटल सुरक्षा का आशीर्वाद देने पहुंचे। पुणे में तो भक्तों ने बप्पा की प्रतिमा को करोड़ों रुपयों के ऐतिहासिक स्वर्ण आभूषणों से सजा दिया। अब यूं समझिए कि गणपति उत्सव ने देश के अलग अलग हिस्सों को भक्ति, उत्साह और उमंग के एक रंग में रंग दिया हो। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सजे भारत के सबसे भव्य गणेश पंडालों की यात्रा पर। और शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां साकीनाका के राजा का भव्य दरबार सजा है और 43 फीट के बप्पा खंडोबा रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं।
1: गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के उपनगर के नगरी में और यहाँ के सबसे बड़े बप्पा का आपको दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आप देखें, मैं इस समय मौजूद हूँ साकीनाका के महाराजा के दरबार में और उपनगर मुंबई से सबसे ऊंची प्रतिमा इन्हें मानी जा रही है। और जो जानकारी है और जो देख हम पा रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के खंडोबा जो सबसे बहुत ज्यादा माने जाते हैं, चर्चित हैं, उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, उनके अवतार में गणपति बप्पा यहां पर विराजमान किए गए हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, देखिए उनका जो ये पैर है ना, ये पैर आप देख रहे हैं, पैर उसके ठीक मैं नीचे हूं, मेरी हाइट उनके पैर तक भी नहीं पहुंच पा रही है। और फिर से मैं वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत से कहूंगा कि थोड़ा सा दिखाएं कितने ऊंचे हैं बप्पा। 43 फीट ऐसे ही नहीं होता, सोचिए जब आगमन हुआ होगा तो कितने ख्याल रखने के साथ साथ और कितनी व्यवस्था के साथ बप्पा को यहाँ पर लाया गया होगा। हालांकि बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुए, फिर इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, लेकिन अब यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और साकीनाका के महाराजा का ये दरबार है, खंडोबा के अवतार में पहुंचे हुए शिवलिंग के साथ में विराजमान है। महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति दिखाते हुए उनकी ये उनके सर पे आप देख रहे हैं पगड़ी है बकायदा, और इसके अलावा त्रिशूल है, डमरू है, तलवार है। साथ ही साथ ये जो आसपास का परिसर है, जो डेकोरेशन है, चलचित्र जिसे यहां कहते हैं, वो भी उन्हीं पर आधारित है। उनकी ही मंदिर की तस्वीरें जो है यहां पर लगा रखी है। और थोड़ा सा अब देखें, और वाकई में बहुत ज्यादा तारीफ करनी होगी उस मूर्तिकार की जिन्होंने इतना भव्य ये मूर्ति बनाया है। सोचिए किस विशेष व्यवस्था के साथ यहाँ पर लाया गया होगा। 12वें दिन इनका विसर्जन होने वाला है और देखिए तमाम लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। जहां भी आपकी नजर जाए सिर्फ और सिर्फ भक्त है। थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्पेशली ये जो गणेश उत्सव होता है वो बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि वो जाते हैं, देखते हैं। ये देखिए तमाम लोग गणपति बप्पा, आवाज नहीं आई, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, कैसे लगे बेटा पप्पा?
2: बहुत अच्छे।
0: चलिए अब आपको मुंबई से लेकर चलते हैं हैदराबाद, जहां भक्तों के प्यारे बप्पा कैंडी वेश में पधारे हैं। हैदराबाद में कैंडीज, टॉफी और चॉकलेट से बप्पा का यह अनोखा स्वरूप तैयार किया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं मोदक प्रिय का कैंडी अवतार कैसा है।
3: ये मोदक प्रिय का कैंडी स्वरूप है। हैदराबाद से आई इस तस्वीर में आपको शहर के सबसे अनोखे गणपति के दर्शन होंगे। हैदराबाद के भक्तों ने हजारों कैंडी और टॉफियों को जोड़कर बप्पा का ये अद्भुत स्वरूप तैयार किया है। न केवल बप्पा कैंडी अवतार में विराजे हैं, बल्कि पूरे पंडाल की सजावट बच्चों की मनपसंद रंग बिरंगी कैंडी की थीम पर ही की गई है। ऐसा लगता है बप्पा के स्वागत में मानो पूरा इंद्रधनुष पंडाल में उतर आया हो।
4: इस साल गणेश जी का थीम आके है कैंडी गणेश का लगा है, साल पूरा पूरा टोटल थीम आके कैंडीज, वेरायटी वेरायटी कैंडीज लगा है पूरा हम लोग। डेकोरेशन भी टोटल देख ले, देखे तो पूरा कैंडीज दिखेंगे आपको, पूरा पूरा बच्चों के लिए अट्रैक्ट करने के लिए और बच्चे भगवान के समान बोलते ना, वो हिसाब से हम लोग बच्चे के हिसाब से देख लेके वो थीम के हिसाब से हम लोग गणेश जी को डेकोरेट करें पूरे साल।
3: हैदराबाद का ये मंडल पिछले 18 सालों से गणपति स्थापना कर रहा है। हर बार पंडाल की थीम कुछ अलग कुछ खास होती है, लेकिन इस बार की थीम ने तो बप्पा के जूनियर भक्तों का दिल ही जीत लिया है। वैसे ये पंडाल है ही इतना सुंदर और अनोखा कि बच्चे युवा बुजुर्ग सभी के मन को भा रहा है। कैंडी वाले बप्पा के पंडाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए बप्पा का ये पंडाल किसी वंडरलैंड से कम नहीं है, जहां आस्था के साथ साथ बप्पा के आशीष की छाव तले मस्ती और रोमांच का मजेदार मेल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बप्पा के अनोखे पंडालों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्वरूप बहुत निराले हैं। और पंडालों की इस यात्रा में अब आपको लेकर चलते हैं हम विशाखापट्टनम, जहां महाशिव गणपति पूरी भव्यता के साथ विराजे हैं। ये देखिए बप्पा का ये स्वरूप हजारों छोटे बड़े जीवित पौधों से तैयार किया गया है। बप्पा की अनोखी प्रतिमा लगभग 18 फीट की है। विशाखापट्टनम के अनकापल्ली में प्रकृति और भक्ति का ये अद्भुत मेल दिखाई दे रहा है। इस सुंदर मेल के कारण ही इन्हें सस्य गणपति नाम दिया गया है। सस्य का अर्थ होता है वनस्पति या फसल। अनकापल्ली के श्री चिंतामणि गणपति दत्त क्षेत्र में बप्पा का ये भव्य रूप विराजित किया गया। बप्पा तो पौधों से बनाए ही गए हैं, साथ ही पंडाल के वातावरण को भी पूरी तरह से प्राकृतिक स्वरूप दिया गया, जिसमें पानी के सुंदर फव्वारे, पक्षियों की चहचहाट की आवाजें शामिल हैं। इस उत्सव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि त्योहार की समाप्ति के बाद मूर्ति में उपयोग किए गए सभी पौधों को भक्तों के बीच मुफ्त में वितरित कर दिया जाएगा, ताकि लोग उन्हें अपने घरों में लगा सके। इस पहल में न केवल आस्था शामिल है, बल्कि ये समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता का संदेश भी देती है। बप्पा के ये स्वरूप पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के विघ्न को हरने वाला स्वरूप है। देखिए विघ्नहर्ता के जितने नाम उतने ही स्वरूप। विघ्नहर्ता का ये स्वरूप जहां फिजिकल वर्ल्ड के विघ्नों को हरने वाला है, तो वहीं सूरत में बप्पा के ऐसे स्वरूप की स्थापना हुई जो हमारी डिजिटल लाइफ के विघ्नों को हरने का आशीर्वाद दे रहा है। सूरत के साइबर क्राइम थाने में साइबर विघ्नहर्ता बप्पा दर्शन दे रहे हैं।

0: पार्वती पार्वती पितामह
1: नाम जिनका विघ्नहर्ता है वो अब जीवन के तमाम विघ्नों के साथ साथ आपकी डिजिटल लाइफ के विघ्न हरने का भरोसा भी दे रहे हैं। सुमुख जब स्वयं साइबर सेल प्रमुख की भूमिका में हो तो फिर साइबर सुरक्षा का आशीर्वाद कैसे नहीं मिलेगा। बापा का ये पंडाल सजा है डायमंड सिटी सूरत शहर के साइबर क्राइम पुलिस थाने में, जहां अनोखे अंदाज में भगवान गणेश की स्थापना साइबर विघ्नहर्ता के रूप में की गई है। इस अनोखे पंडाल में न सिर्फ संदेशों और प्रतीकों के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने का संदेश दिया जा रहा है, बल्कि अनोखे स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
2: जिस तरह के फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उस फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम की हमारी टीम ने एक साइबर गणपति, साइबर विघ्नहर्ता की स्थापना 5 दिन के लिए करी है। गणपति बापा खुद आपको साइबर क्राइम से कैसे बचना है उसके लिए जानकारी दे रहे हैं, और गणपति बापा अगर खुद आपको बताएंगे तो लोगों में ये मैसेज भी बहुत अच्छा जाएगा कि हमें साइबर क्राइम से कैसे बचना चाहिए। पूरा एक पंडाल साइबर क्राइम अवेयरनेस के ऊपर बनाया गया है, और गणपति बापा खुद यहाँ पे सभी भक्तों को उनके जो प्रश्न है साइबर क्राइम के बारे में उनका खुद आंसर भी बता रहे हैं, और जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे साइबर क्राइम से कैसे बचना है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप वो सीख भी रहे, और जब वो यहाँ से आरती करके दर्शन करके निकलेंगे तो यहाँ पे साइबर क्राइम से बचने के लिए और क्या करना चाहिए उसका संकल्प भी लेके जा रहे हैं।
1: सूरत शहर के इस साइबर क्राइम पुलिस थाने में भगवान गणेश को साइबर विघ्नहर्ता के रूप में 5 दिनों के लिए विराजमान किया गया है। अपने अलग अलग अवतारों में गजानन ने क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर जैसे जाने कितने ही दानवों का संहार किया, और अब साइबर विघ्नहर्ता के रूप में वे डिजिटल बुराइयों का नाश करने उतरे हैं। सूरत पुलिस की ये पहल धार्मिक आयोजन के साथ साथ जन जागरूकता को जोड़ने का एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए गुजरात के बाद रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की तस्वीरें भी भव्यता के साथ भरपूर हैं। वो तस्वीरें आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई, जहां मोगरेश्वर गणपति का दरबार सज चुका है। ये तस्वीरें आई हैं अंधेरे में मौजूद मोगरेश्वर के राजा की। इस पंडाल में गणपति बेहद भव्य और दिव्य स्वरूप में स्थापित किए गए हैं। खास बात यह है कि इस पंडाल में गणपति से जुड़ी पौराणिक कहानियों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शाया जा रहा है। महादेव के विवाह की कथा, गणपति के जन्म की कहानी जैसे कितने ही पौराणिक प्रसंग आपको यहाँ वीडियो, फिल्म और झांकी के रूप में दिख जाएंगे। दरअसल वैदिक आदर्शों और पीढ़ियों से चली आ रही इन पौराणिक कहानियों में बप्पा के जीवन से जुड़ी जितनी ही कहानियां हमारे लोक जीवन में उतरी हैं। समय के साथ विकसित होती धार्मिक कथाओं, वैदिक प्रतीकवाद के बीच में गौरी नंदन के आदर्श भक्तों के बीच प्रचलित होते चले गए। आज आप गणेशोत्सव पर सजे पंडालों में इन्हें जीवंत स्वरूप में देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मुंबई से सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, और दिल्ली के महाराज का भव्य दरबार आपको दिखाते हैं, जहां गणपति के साथ उनके पिता महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग धामों के दर्शन हो रहे हैं।

0: धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई तो शहर शहर बापा के भव्य और अनोखे पूजा पंडाल सज गए, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और भव्यता की वजह से लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं, बल्कि अपनी अनोखी थीम की वजह से आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। ऐसा ही एक गणेश पंडाल राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सजा है, जहां लोगों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश के साथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका भी एक छत के नीचे देखने को मिल रही है।
1: इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में हैं और एक बहुत ही शानदार पंडाल में आपको लेकर आए हैं। यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग भी तैयार किए गए हैं। मैं आपको तस्वीर उसी की दिखा रहा हूं और किस तरह से हम पंडाल के अंदर मौजूद हैं। और जब आप अंदर आएंगे तो सामने आपको न सिर्फ बप्पा के दर्शन होंगे, बल्कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं। अभी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भीमा शंकर की, और नीचे इस तरह से जो शिवलिंग है उसको रखा गया है। ऐसे ही आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग क्या है, कहाँ पर है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें ज़्यादा पता नहीं है, वो यहाँ पर आकर ना सिर्फ देखेंगे बल्कि जानकारियाँ पढ़कर बहुत कुछ धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में वो जान भी पाएंगे। ये हम पहुँच गए हैं काशी विश्वनाथ पर, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस तरह का शिवलिंग है, ठीक उसी तरह का शिवलिंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, आपको तमाम दूसरे शिवलिंग यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे। ये त्र्यंबकेश्वर है, वो बैद्यनाथ मंदिर का है, उस तरफ महाकालेश्वर है, ऐसे ही तमाम सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, उन सब के दर्शन आपको यहाँ पर होने वाले हैं।
0: राजधानी के इस गणेश पंडाल में भक्ति भाव के साथ साथ भारत की विकास यात्रा और 2047 के भारत की झांकी को भी दिखाया गया है। दरअसल दिल्ली के लक्ष्मी नगर का श्री गणेश सेवा मंडल इस साल अपना 25वां गणेशोत्सव मना रहा है, इसलिए आयोजकों ने कुछ अनोखा करने की ठानी और इस बार महोत्सव की थीम विघ्नहर्ता से विकासकर्ता रखी गई। इस थीम के तहत यहां आपको भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के संवाहक भी दिखेंगे, तो वहीं नई तकनीक और वैज्ञानिक दक्षता का झरोखा भी यहां ब्रह्मोस, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप के रूप में दिखेगा। गांव के विकास की झांकी से लेकर AI रोबोट्स तक और बुलेट ट्रेन से लेकर इसरो के चंद्रयान, आदित्य L1 और गगनयान तक यहां हर दृश्य जीवंत है। यानी एक तरफ महादेव और गौरी नंदन तो दूसरी ओर देश के विकास का वंदन। बापा के इस पंडाल में आपको सब कुछ एक साथ नजर आएगा। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो गणपति के पंडालों में समृद्ध होते भारत की झांकी आपने देखी, अब आपको लिए चलते हैं पुणे, जहां ऐतिहासिक आभूषणों से सजी गौरी नंदन की झांकी आपको इस शहर की समृद्ध विरासत की कहानी सुनाएगी। अष्टविनायक गणपति में सबसे समृद्ध गणपति के रूप में पहचान रखने वाले पुणे के ओझर के श्री विघ्नहर गणपति का बेहद अलौकिक और राजशाही रूप गणेशोत्सव के दौरान भक्तों के सामने आया है। विघ्नहर बप्पा को पेशवाकालीन पोशाक पहनाई गई और करीब 200 साल पुराने करोड़ों रुपए मूल्य के ऐतिहासिक आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया गया। बप्पा की आंखों में जड़े माणिक रत्न, माथे पर हीरा और चंद्रकोर, गले में चंद्रहार और स्वस्तिक हार, सिर पर छत्र, कंठी हार, शिवगंध और कमर में करदोरा, इन पारंपरिक आभूषणों से विघ्नहर गणपति का ये शाही रूप देखते ही बन रहा है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको मुंबई के साकीनाका में गणपति के खंडोबा स्वरूप के दर्शन करवाए। साकीनाका में ही बप्पा का एक और भव्य पंडाल सजा है, जहां गणपति विठ्ठल स्वरूप में विराजे हैं। बप्पा का विठ्ठल अवतार गरुड़ पर सवार है, तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं साकीनाका के विघ्नहर्ता गणेश जी के।

0: के इंतजार के बाद आता है गणपति उत्सव, वो समय जब गजानन अपने भक्तों के बीच पधारते हैं। भक्तों के मन के साथ साथ शहर शहर पंडालों, मंदिरों और घरों में विराजते हैं। भक्तों की भावना के आधार पर अनगिनत रूपों में ढल जाते हैं। इस बार भी बप्पा के भक्तों ने उन्हें अलग अलग रूपों में स्थापित किया है। बप्पा का एक ऐसा ही भव्य रूप सजा है मुंबई के साकीनाका में। साकीनाकायचा विघ्नहर्ता अब की बार विठल रूप में पधारे हैं। मानव शरीर वाले गरुड़ के ऊपर बप्पा के चरण टिके हैं। स्वरूप भले ही जो हो, लेकिन साकीनाका के विघ्नहर्ता को मुंबई प्यार से गोड बप्पा के नाम से बुलाती है। गोड बप्पा यानी प्यारे या मीठे। दरअसल साकीनाका के विघ्नहर्ता की प्यारी और निश्चल मुस्कान के चलते उन्हें भक्तों ने प्यार से गोड बप्पा नाम दिया है।
1: आपको बताएं कि मैं जिस जगह मौजूद हूं, साकीनाका का विघ्नहर्ता के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। पहले आप सीधे गणपति बप्पा का दर्शन ही कर लें। देखिए, ये उपनगर मुंबई की एक बहुत ही ज्यादा उन लिस्ट में नाम शामिल हैं जो बड़े प्रतिमाएं गणेश जी की होती हैं, और कितने सुंदर तरीके से इस समय यहाँ पर विराजमान की गई हैं। खास बात यह है कि मानव गरुड़ पर बप्पा विराजे हैं, विट्ठल के अवतार में हैं, और हाइट देख के लग रहा है कि लगभग 33 फीट होगी। बैलेंस का पूरा ये मामला है, और सोचिए मूर्तिकार कितने ज़्यादा सीरियस होंगे और कितना मेहनत उन्हें की होगी और कितने एक्सपीरियंस हैं वो कि इतनी बड़ी मूर्ति जो है बप्पा की, इतना बड़ा आकार उन्होंने दे दिया है। विट्ठल का अवतार है और एक पैर पर गरुड़ पर खड़े हुए हैं, बेहद सुंदर लग रहे हैं, और तमाम जो श्रद्धालु हैं, गणेश भक्त हैं, बप्पा का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह से मुंबई के कई पंडालों में बड़ी बड़ी जो गणपतियां होती हैं विराजमान की जाती है, बहुत मेहनत इस पर हुई है।
0: साकीनाका के विघ्नहर्ता की ये प्रतिमा हर किसी का मन मोह रही है। करीब 33 फीट के बप्पा की ये प्रतिमा हफ्तों की मेहनत से तैयार हुई है।
1: गोड़ गणपति के नाम से प्रसिद्ध है
2: जी, जरूर। गोड़ गणपति, आप इनकी खूबसूरती देख सकते हैं, जिस तरह से अंदाज में जो खड़े हैं, और जिनकी जो खूबसूरती की जो सीधे दिगोली, जो सबसे मुंबई के लगभग सबसे बड़े मूर्तिकार है, उन्होंने अपनी पूरी जी जान से इस मूर्ति को गढ़ाने में कोशिश की है। जिस तरह से आप इनकी सुंदरता के लिए लोग दीवाने हो गए, जब आगमन की जिस दिन हमारा आगमन हुआ, उस दिन लाखों लोगों का सैलाब इस रास्ते पे बह रहा था कि लोग सोच नहीं पाए कि इतनी खूबसूरत मूर्ति, क्योंकि बेसिकली ये मूर्ति ये हाइट और इनकी खूबसूरती परेल दादर की एक नहीं पहचानती, लेकिन अभी साकीनाका में भी इस मूर्ति के माध्यम से हमने दिखा दिया है कि साकीनाका भी आने वाले वक्त में लालबाग परेल से भी आगे चला जाएगा। ये हम कोशिश करेंगे। इस मंडल की खासियत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम एकजुट रह के इस मंडल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्यार का, भाईचारे का एक प्रतीक भी इसी मंडल के माध्यम से जाएगा।
0: पिछले 42 सालों से साकीनाका के विघ्नहर्ता हर गणेशोत्सव पर यूं ही अपनी अलौकिक छटा के साथ विराजते आ रहे हैं। अब की बार भी साकीनाका के इन गणपति को तैयार करने में हर समाज, हर तबके से जुड़े लोगों की भागीदारी रही है। वास्तव में महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का मतलब सिर्फ बप्पा की स्थापना और पूजा अर्चना भर नहीं, बल्कि ये पर्व आस्था, संस्कृति और सामाजिक सद्भाव का भी उत्सव है। साकीनाकाच्य विघ्नहर्ता यही संदेश देते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: देखिए, गणपति की भक्ति का रंग पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, वो तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। गणेशोत्सव के दूसरे दिन गजानन से जुड़ी हुई एक तस्वीर आई है पुणे से सामने, जो आपके सामने रखते हैं। पुणे में गणेश नाम का जय घोष सुनाई दिया। पुणे में आयोजित समारोह में ऊर्जा से भरे माहौल के बीच में हजारों महिलाओं ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। पुणे में करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ अथर्वशीर्ष का पाठ कर भगवान गणेश को नमन किया। गणेश नाम के जय घोष, अथर्वशीर्ष पाठ और महाआरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यह आयोजन ऋषि पंचमी के अवसर पर श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट और सुवर्ण युग तरुण मंडल की ओर से किया गया।

तो चलिए गणपति बप्पा के ऐसे ही अलग अलग रूपों और स्वरूपों के दर्शन जीएनटी पर लगातार आपको करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अच्छी खबरें दिन भर जारी हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: सत्ता दौलत रसूख और करीब 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति। घाटकोपर ईस्ट के विधायक का पराग शाह की पहचान कुछ ऐसी ही है, लेकिन एक दिन एक शख्स न विधायक था न करोड़ों का मालिक।

0: ये कोई फिल्मी दृश्य या चुनावी स्टंट नहीं था, ये अहंकार को शून्य करने की एक सच्ची आध्यात्मिक साधना थी।
1: जिस शख्स के पास करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति हो, जिसके आगे पीछे सुरक्षा का घेरा हो, वही शख्स अगर एक दिन सड़क पर हाथ फैलाकर भीख मांगता नजर आए तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मुंबई के घाटकोपर पूर्व से विधायक पराग शाह ने ये किया, किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने अहंकार को पहचानने और उसे मिटाने के लिए। जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के आध्यात्मिक गुरु नम्र मुनि महाराज ने उन्हें एक अनोखी सीख दी। गुरु ने कहा कि एक दिन अपना पद, पैसा और पहचान सब छोड़कर एक भिखारी की जिंदगी जी कर देखिए। पराग शाह ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की। महंगी गाड़ियां, घड़ी, सुरक्षा और विधायक का रुतबा सब पीछे छूट गया। मेकअप के जरिए बदला हुलिया और फिर वही विधायक घाटकोपर की सड़कों पर लोगों के सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। घंटों तक सड़क पर रहने के दौरान पराग शाह ने उस जिंदगी को महसूस किया जिसे समाज का गरीब तबका रोज जीता है। भूख, इंतजार, लोगों की बेरुखी और कभी कभार किसी अनजान शख्स की मदद।
2: ओ, रिक्शा 8 मिनट देवाना, ज़रा ट्रैफिक करता है।
1: किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने खाने का टुकड़ा, तो किसी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया।
2: अरे वाह।
1: लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था, जिस पहचान के दम पर दुनिया आपको सम्मान देती है, वही पहचान छिन जाए तो इंसान के पास बचता क्या है।
2: No, no, no.

0: शाम को मेकअप उतरा, पहचान वापस आई, लेकिन शायद नजरिया बदल चुका था। पराग शाह दोबारा उन्हीं लोगों के पास पहुँचे जिन्होंने उन्हें भिखारी समझकर पैसे या खाना दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। एक दिन की इस फकीरी ने उन्हें एहसास कराया कि दौलत और पद इंसान को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अहंकार छोटा ही करता है। इस अनोखे प्रयोग की सबसे बड़ी सीख है इंसान की असली पहचान। उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं, बल्कि वह दूसरों का दर्द कितना महसूस करता है इससे होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: मुंबई सहित देश भर में गणेशोत्सव की रौनक, भव्य पंडालों में लगा बप्पा के भक्तों का मेला, जीएनटी पर कीजिए मंगल मूर्ति के दर्शन। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के चढ़ावे की गिनती शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच खुले जा रहे हैं नकदी और आभूषणों से भरे पात्र, भक्त बप्पा के सामने रख रहे हैं मन की मुराद। होली की नगरी काशी में हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के दर्शन, शेरवाली कोठी के पंडाल में बप्पा की 6 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान।

0: आस्था और भक्ति के साथ पूजा अर्चना। रामनगरी अयोध्या में धर्मशाला बनाएंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की स्मृति को सजोने की तैयारी। एडीए को भेजा 20 से ज्यादा कमरों का नक्शा। दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने आशा वर्कर्स को दिया तोहफा। 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया मासिक मानदेय। कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी दी मंजूरी। सरकार ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का किया ऐलान। 2,000 से ज्यादा यूपीआई लेन देन पर देना होगा 0.4% चार्ज। आम आदमी और छोटे व्यापारियों के लिए फ्री सुविधा। अफगानिस्तान को दूसरे T20 मुकाबले में हराकर भारत ने सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। 15वें ओवर में ही टीम इंडिया ने हासिल किया 160 रनों का लक्ष्य। संजू ने 22 गेंदों में बनाए 57 रन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत चंदावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना हर तस्वीर कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और यही तेजी सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कोई पुरानी घटना नहीं बताकर पेश की जाती। कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से उससे दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना जांचे परखे इन्हें शेयर कर देते हैं और यही
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय का है जहां पर कुछ छात्रों ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती है हमारी रिपोर्ट। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। वीडियो में किसी ऑडिटोरियम के अंदर से कुछ लोग एक शख्स को घसीटते हुए बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। कई लोग गो बैक के नारे भी लगा रहे हैं और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था। वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है कितना गलत है जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग एक शख्स को पकड़कर बाहर ले जा रहे हैं। इस दौरान गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं और ऐसे में सबसे पहले हमने नारे को ध्यान से सुना। अब ये तो सामने आ गया कि हॉल में मौजूद कुछ लोग वीसी गो बैक के नारे लगा रहे हैं। वीसी मतलब कि वाइस चांसलर, जो विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को संभालता है। यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण फैसले, नीतियां, नियुक्तियां वीसी के नेतृत्व में होती हैं। इससे हमें ये तो इशारा मिल गया कि ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है जहां पर कुछ लोग जमा होकर कुलपति का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा है। इस दौरान हमें स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय लिखा हुआ नजर आया। इस समय ये लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम हो सकता है। वीडियो में एक जगह है वंदे मातरम ऑडिटोरियम शब्द भी देखने को मिला। जब हमने इसके बारे में जानकारी हासिल की तो ये सामने आया कि वंदे मातरम ऑडिटोरियम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थित है। यहां से ये साफ हो गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कार्यक्रम ही है और ये उसी का वीडियो है। फैक्ट चेक टीम ने यह भी जानने की कोशिश की कि हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वंदे मातरम ऑडिटोरियम में यूजीसी के नियमों के खिलाफ क्या कोई प्रदर्शन या फिर हंगामा हुआ है, लेकिन सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिली। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था, अगर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है तो फिर सत्यनिकेतन हादसे के जवाब दो के नारे क्यों सुनाई दे रहे हैं। स्टेज पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में दूसरा सवाल ये कि कहीं कुलपति योगेश सिंह के खिलाफ किसी प्रदर्शन के वीडियो को यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। और तीसरा और सबसे अहम सवाल हमारा ये था कि अगर दावा सही है तो फिर इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
3: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 8 सितंबर के एक्सपोस्ट पर मिला। पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहां सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद कुछ छात्रों ने कुलपति पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। सर्च के दौरान हमें इस घटना से जुड़ी 9 सितंबर की रिपोर्ट मिली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 8 सितंबर की है, जब कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने सत्य निकेतन में हुए हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पीसी योगेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी की थी। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में NSUI कार्यकर्ता और कैंपस लॉ सेंटर के छात्र राम निवास बिश्नोई भी शामिल थे। हिंदी विभाग की ओर से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स स्थित वंदे मातरम ऑडिटोरियम में विकसित भारत हिंदी भाषा और साहित्य विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुलपति योगेश सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान बिश्नोई समेत कुछ छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बिश्नोई कुलपति से सवाल कर रहे थे, इसके बाद उन्हें ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान DU VC गो बैक, VC शन करो, PG हॉस्टल दो और अकाउंटेबिलिटी तय करो जैसे नारे लगाए गए थे। इसके बाद हमने राम निवास बिश्नोई का इंस्टाग्राम हैंडल भी देखा। यहाँ इसी घटना का एक दूसरे एंगल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी मौजूद है। इस वीडियो में बिश्नोई को ऑडिटोरियम से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में वो कुलपति के सामने सत्य निकेतन हादसे को लेकर सवाल उठाते नजर आते हैं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें पकड़ कर बाहर ले जाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि इस वीडियो का UGC नियमों की वापसी की मांग से कोई लेना देना नहीं है। असल में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI समेत कुछ छात्रों ने सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की थी। दत्ता के साथ तीन तक चैक को न्यूज चुने।
2: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में दो लड़कियां बाढ़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं। तभी अचानक से तेज बहाव से पानी आता है, दोनों को बहा ले जाता है। इस वीडियो को हाल फिलहाल आई नेपाल की बाढ़ से जोड़कर देखते हुए वायरल किया जा रहा है। सच्चाई क्या है, हमारी इस रिपोर्ट में जानिए।
4: चारों तरफ सैलाब, पानी पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इन सब के बीच दो लड़कियां बाढ़ के तेज बहाव के बीच एक दूसरे को पकड़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। पानी के वेग के आगे इन दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती है और दोनों लड़कियां उसमें बह जाती हैं। इस वीडियो को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का वीडियो मानकर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि एक माँ और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, आखिर हार गई माँ और बेटी, इकलौती बेटी के साथ माँ बाढ़ में फंस गई। देखने वाले वीडियो बनाते रहे, लेकिन अंत में बाढ़ की जीत हुई। नेपाल बाढ़ के बाद यह सबसे दर्दनाक वीडियो आया सामने। इस वीडियो को लोग धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल 26 अगस्त को नेपाल में आई बाढ़ के दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि एक माँ और बेटी बाढ़ में बह गई और उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की, क्योंकि हाल फिलहाल में नेपाल में बाढ़ तो आई है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें, कई तरह के झूठे वीडियोज भी वायरल किए जा रहे हैं। फैक्ट चेक टीम लगातार इन दावों की पड़ताल भी कर रही है, लिहाजा अब इस वीडियो और इसके दावे की सच्चाई को भी सामने लाना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो को देखने से ऐसा तो लग रहा है कि पानी के तेज फ्लो में ये दोनों फंस गए हैं। इसके बारे में जब हमने फ्रेम को जूम करके और हाईलाइट करके देखा, तो फिर ये सामने आया कि ये दोनों स्कूली ड्रेस में हैं और इनके कंधे पर स्कूल बैग भी है। इससे हमें ये इशारा मिला कि ये दोनों स्कूल के बच्चे हो सकते हैं और अचानक पानी के तेज बहाव में ये दोनों फंस गए। इसके अलावा वीडियो में एक बात और देखने को मिली, ये दोनों पानी में फंसी हुई हैं और सामने से इस घटना को रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि कैमरे का फ्रेम पल पल हिल रहा है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अगर ये दोनों फंसी हैं, जिंदगी बचेगी या फिर नहीं, ये सवाल सामने खड़ा होता है। ऐसे में ये भी सामने आया कि वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन बचाने के लिए कोई भी कवायद नहीं की जा रही थी। ये कैसे हो सकता है? आवाज़ सुनकर आसपास जो भी लोग होंगे वो भी बिना सोचे समझे बचाने की जद्दोजहद जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। पूरे वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जब हमने इसे ध्यानपूर्वक सुना तो ये काफी हद तक फिलीपींस जैसी लगी। फिलीपींस की आधिकारिक भाषा है। ऐसे में हमारा पहला सवाल यही था, अगर वीडियो नेपाल का है तो फिर इसमें नेपाली क्यों नहीं सुनाई दे रही है। हमारा दूसरा सवाल यह कि हाल ही में फिलीपींस में बाढ़ की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट यह था कि फिलीपींस बाढ़ से जुड़े वीडियो को कहीं जानबूझकर नेपाल का बताकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
4: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तो फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। वायरल वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले हमने इसके कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें 9 सितंबर 2025 को प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य देखने को मिले। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना फिलीपींस के नेग्रोस ओरिएंटल प्रांत के गुइहुलंगन शहर के बारांगे बालोगो की थी। रिपोर्ट के अनुसार 4 सितंबर 2025 को स्कूल से घर लौटते समय दो बहनें कंसलाकन नदी के तेज बहाव के बीच फंस गई थी। भारी बारिश के कारण नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी। इस दौरान दोनों बहनें तेज बहाव में बहने लगी लेकिन आगे जाकर पेड़ की जड़ों को पकड़ने में कामयाब रही। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना की पुष्टि 8 सितंबर 2025 की रिपोर्ट से भी होती है। रिपोर्ट में बताया गया था कि गुइहुलंगन सिटी के बारांगे बालोगो में स्कूल से लौट रही दो छात्राएं अचानक आई बाढ़ में फंस गई। वे पेड़ों की जड़ों को पकड़ने में सफल रहीं और स्थानीय लोगों ने उन्हें पानी के तेज बहाव से बाहर निकाल लिया। इस तरह हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि नेपाल बाढ़ में माँ बेटी के बह जाने के दावे से वायरल हो रहा वीडियो करीब 1 साल पुराना है और फिलीपींस का है, जहां बाढ़ के पानी में फंसी दो बहनों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
6: हेलो दोस्तों, तो आज की पार्टी हम लोग कनाडा से केसा दीदी की तरफ से मिलाया, तो आज हम लोग अपने पार्टी में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, तो इसके अलावा भी हम लोग 6 आइटम शामिल किए हैं जो हम लोग।
7: इस बच्चे ने लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल सूरज को कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला ने कुछ पैसे मदद के तौर पर भेजे थे। आमतौर पर ऐसी मदद मिलने पर कोई अपने लिए जरूरत का सामान खरीद सकता है, लेकिन सूरज ने जो काम किया उसने लोगों का ध्यान खींच लिया। बच्चे ने इन पैसों से अपने दोस्तों के लिए खाने की शानदार दावत तैयार कर दी।
6: इधर मोहित मिरिंडा निकाल ले रहा है, आज हम लोग कोल्ड ड्रिंक मिरिंडा के साथ खाने वाले हैं। इधर मोहित ना सूरज इधर निकाल रहा है कपकेक, उसके बाद फिर इधर हम लोग गोजा और क्रीम रोल और जैम और काला जामुन के साथ खाने वाले हैं, जो कि हम लोग लगभग 7 आइटम शामिल हो गया है।
7: उसने खुद खाना बनाया और फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसका मजा लिया। लोगों ने बच्चों के इस अंदाज की तारीफ की कि उसने मिली मदद को अपने दोस्तों के साथ बांटा। कई लोगों ने कनाडा में रहने वाली केशा की भी तारीफ की। लोगों का कहना है कि हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी उन्होंने बच्चों के लिए मदद भेजी और इस छोटी सी मदद से कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
6: उसके बाद इधर मेरा छोटा भाई ये भी खा के दिखा रहा है, ये डायरेक्ट केके के साथ शुरू किया है।
7: हौसले के आगे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकल आता है। इस वीडियो में दो छोटे भाइयों का ऐसा ही प्यार और जज्बा दिखाई दे रहा है। एक भाई चलने में थोड़ा कमजोर है लेकिन लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रहा है, वही छोटा भाई उसके साथ खड़ा है और लगातार उसका हौसला बढ़ा रहा है। फिर जब वो फुटबॉल खेलने की कोशिश करता है तो भाई का उत्साह देखते ही बनता है। दोनों की ये बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत रही है।

0: पार्वती समझो।
1: एक छोटी सी बच्ची पीले रंग की फूलों वाली चुनरी सिर पर ओढ़े नजर आ रही है। उसके माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी है और वो कैमरे के सामने बेहद मासूम अंदाज में देख रही है। कभी उसकी नजर कैमरे पर टिकती है तो कभी वो इधर उधर देखने लगती है। कुछ ही पलों में उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं और वो प्यारी सी मुस्कान देने लगती है। बच्ची के साथ एक महिला भी दिखाई दे रही है जो उसे संभालती है और उसके साथ मस्ती करती नजर आती है। बच्ची भी कैमरे के सामने बिल्कुल सहज दिखाई देती है। उसके चेहरे पर ना तो किसी तरह की झिझक नजर आती है और ना ही बनावटीपन। यही मासूम अंदाज इस वीडियो की सबसे प्यारी बात है और लोग इस वीडियो को खूब प्यार दे रहे हैं। साइकिल पर सफर का ऐसा अनोखा जुगाड़ आपने शायद ही पहले देखा होगा। आगे साइकिल चल रही है और दोनों तरफ झोलों में बैठी हैं नन्ही बच्चियां। इस अनोखे अंदाज को देखकर कोई भी मुस्कुरा दे। खास बात यह है कि झोले में बैठी बच्चियां भी इस सफर का खूब आनंद ले रही है। इनके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उन्हें ये अंदाज कितना पसंद आ रहा है। अब यही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों का ध्यान खींच रहा है।
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: क्लास में जब टीचर्स कोई सवाल पूछते हैं तो आमतौर पर बच्चे जवाब देने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार टीचर ने सवाल ही ऐसा पूछ लिया कि पूरी क्लास का माहौल मजेदार हो गया। सवाल था, आपकी क्लास में सबसे हैंडसम लड़का कौन है?
2: हेलो स्टूडेंट, हु इज द हैंडसम बॉय इन योर क्लास?
1: इसके बाद क्लास की सभी लड़कियों ने एक ही लड़के का नाम लिया और जब इसकी वजह सामने आई तो लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल सभी छात्राओं ने एक ही लड़के अर्जुन का नाम लिया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है कि आखिर अर्जुन ऐसा क्या करता है कि क्लास की हर लड़की उसी का नाम ले रही है। लोगों को लगने लगा कि शायद अर्जुन अपनी स्मार्टनेस, पढ़ाई या फिर किसी खास अंदाज की वजह से लड़कियों का फेवरेट है। आखिर में टीचर सीधे सवाल कर देती है, अर्जुन क्यों? इसके बाद जो जवाब मिलता है वो पूरी वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है।
2: ओके हेलो गाइस, हु इज द अर्जुन? व्हाई?
1: अट्ठाईस लड़कियां एक साथ बताती हैं कि अर्जुन ही उनकी क्लास में इकलौता लड़का है। यानी अर्जुन को सबसे हैंडसम चुनने की वजह उसकी कोई खास खूबी नहीं बल्कि ये है कि पूरी क्लास में वही अकेला लड़का है।
2: ओके हेलो गाइस।
1: इसके बाद कैमरा अर्जुन की तरफ घूमता है। कैमरे के सामने उसकी मासूमियत और शर्माने वाला अंदाज देख कर लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इंडियन आर्मी बॉर्डर पर बहादुरी का खूब उदाहरण पेश करती है, लेकिन लंबे चौड़े और हिम्मती जवानों के दिल में एक छोटा सा दिल कहीं छुपा बैठा होता है। इसके लिए जब उन्हें पार्क के झूले मिले तो ये मस्ती करने से खुद को नहीं रोक पाए। सबने मिलकर खूब इंजॉय किया। वीडियो देखकर लोग अपना बचपन याद कर रहे हैं। एक लड़की का शानदार ट्रांजिशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। शुरुआत बेहद सिंपल अंदाज में होती है। लड़की कैमरे के सामने दिखाई देती है और फिर शानदार ट्रांजिशन के जरिए अचानक उनका लुक पूरी तरह से बदल जाता है। इसके बाद वो खूबसूरत साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। मराठी स्टाइल में तैयार होकर उनका लुक काफी आकर्षक नजर आता है। साड़ी के साथ पारंपरिक ज्वेलरी और ट्रेडिशनल अंदाज उनके पूरे लुक को और खास बना देता है। सड़क किनारे फुटपाथ पर दो बिजली के खंभों के बीच चादर बांधकर एक झूला बनाया गया है। इस झूले पर एक छोटा सा पपी आराम से लेटा हुआ है। पास ही खड़ी एक लड़की बेहद प्यार से उस पपी को दुलारते हुए झूम रही है। लड़की का अंदाज इतना प्यारा है कि वो पपी के गाल को छूकर अपने माथे को उसके सिर से सटा लेती है। पपी भी इस बेइंतहा मोहब्बत का पूरा आनंद ले रहा है। कुछ ही पलों में लड़की उसे हल्के हाथों से झूला झुलाकर अपनी गोद में उठा लेती है। इस दृश्य को देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरी लड़की आकर इसको प्यार करने लगती है। इस वीडियो को करोड़ों लोग देख चुके हैं और इस पर जमकर अपना प्यार लुटा रही है। इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता जब प्यार और भरोसे से जुड़ जाए तो वो बेहद खूबसूरत बन जाता है। ऐसा ही दिल छू लेने वाला पल इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। एक शख्स साइकिल से कहीं जा रहा है, तभी हाथी उसे बड़े प्यार से रोक लेता है, मानो अपने खास साथी को कुछ पल और अपने पास ही रखना चाहता हो। दोनों के बीच नजर आ रहा अपनापन और तालमेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यही रिश्ता इस वीडियो को खास बना रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
4: बात करेंगे अवधपुरी की, जिसे और भव्य और दिव्य रूप देने का काम चल रहा है। दिवाली से एक दिन पहले यहाँ दीपोत्सव की दिव्य छटा देखने को मिलेगी। इस वर्ष दीपोत्सव को और अधिक भव्य रूप से मनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ अब तक एक नया शानदार पथ भी देखने को आपको मिलेगा। इस पथ पर लगे स्तंभ भी विशेष हैं। इसके अलावा सरयू घाटों का सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है।

0: राम नगरी अयोध्या लगातार सजती सवरती जा रही है। यहाँ लगातार विकास के काम चल रहे हैं। धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ इस नगरी का कायाकल्प होता जा रहा है। अब यहाँ करीब 15.5 किलोमीटर लंबा भव्य फोरलेन मार्ग विकसित हो रहा है। इस मार्ग को त्रेता युग के भावुक अध्याय से जोड़ा जा रहा है, जहां भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की स्मृतियां बसी हुई हैं। धर्म पथ से महाराज दशरथ के समाधि स्थल तक पहुंचने वाला ये मार्ग अयोध्या की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने के साथ ही श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के बीच त्रेता युग की अनुभूति कराने वाला होगा। इस दशरथ पथ पर 30 मुद्रा स्तंभ स्थापित किए गए हैं। करीब हर 500 मीटर की दूरी पर एक स्तंभ लगाया गया है, जिनमें 15 स्तंभों पर योग मुद्रा और 15 पर शस्त्र मुद्रा प्रदर्शित की गई है। हर स्तंभ करीब 6 फीट ऊंचा है। इस मार्ग पर आधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी और करीब 1 मीटर चौड़ा फुटपाथ और बीच में डिवाइडर भी होगा। करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस पथ को दीपोत्सव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
1: राजा दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ था वहां से, और अयोध्या नगरी को सीधे जोड़ने वाला एकदम निपट सरजू के माझे में ये बनाया गया यह पथ है, जिसपे विभिन्न धार्मिक आकृतियां अनुकृतियां बनाई गई हैं, जिससे लोगों को एक एक धार्मिक वातावरण वहां प्राप्त होगा। बहुत सुंदर पथ बन रहा है। आज के पहले वो अयोध्या का माझा क्षेत्र था।
0: अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी के साथ साथ धार्मिक स्थलों के साथ साथ सरयू घाटों का स्वरूप भी लगातार निखारा जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या का आरती घाट इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घाट पर तैयार की गई मंदिर नुमा अनोखी संरचना लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।
2: अयोध्या में सरयू माँ की जो आरती होती थी वो इन्हीं तख्तों से होती थी और यहीं पे लोग खड़े होते थे, यहीं पे आरती स्थल है। ये जो पूरा एंगल लगा है यही वो स्थल हुआ करता था। जो आकृति बनाई गई है वो आरती स्थल की है और वहीं से माँ सरयू की जो आरती है वो यहीं से होगी। ये वो स्थल है जहाँ पे अब खड़े होके वो आरती होगी जो बारिश से बचाएगा। रात के अंधेरे में ठंड है तो ठंड से बचेंगे लोग, तो यही वो स्थल है जहाँ पे मंदिर की आकृति दी गई है। खास आकृति के द्वारा जो है पूरा आरती स्थल जो है मंदिर में भी नजर आएगा। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको खड़े होने में खास दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता तो वो नहीं होगा।
0: आरती घाट का बदलता स्वरूप इस बात की तस्वीर पेश करता है कि अयोध्या में धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन सुविधाओं और सौंदर्यकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसे आकर्षण श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए राम नगरी की यात्रा को और यादगार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। रामनगरी में इस वर्ष 7 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव के माध्यम से विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है और विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के पुल से लेकर लक्ष्मण घाट तक करीब 1 किलोमीटर लंबे घाट क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी के साथ फूलों की विशेष सजावट की जाएगी। शाम ढलते ही दीपों की लौ और रंगीन रोशनी से सरयू तट का नजारा अलौकिक दिखाई देगा।
2: यही वो स्थल है जिसको राम की पैड़ी कहते हैं और जहाँ पे एक भव्य नजारा होता है उस वक्त का, जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किए थे। तो वो समय था दीपावली का, तो उसके हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का खास आयोजन होता चला आ रहा है। इस बार उस दीपोत्सव को और भव्य और दिव्य स्वरूप देने के लिए प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 7 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव को खास रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
0: सरयू घाटों पर भव्य महाआरती का आयोजन भी प्रस्तावित है। वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठान और दीपों की रोशनी के बीच होने वाली महाआरती में अवध की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। सरयू की लहरों के बीच हजारों दीपों की जगमगाहट श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी।
1: घाट के रेनोवेशन का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य लगातार चल रहा था, जिसको यूपीपीसीएल कर रहा था, टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्य हो रहा था, तो वो भी लगभग कम्प्लीशन पे है। वो कार्य हो जाएगा तो हमारा दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा, और साथ ही साथ वहाँ पर जो साफ सफाई के कार्य हैं, टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, जितने भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा रिनोवेट किया जा रहा है।
0: प्रशासनिक स्तर पर दीपोत्सव की छटा को भव्य बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। योजना के अनुसार सभी काम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार का दीपोत्सव और आकर्षक और यादगार होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ